من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: प्यारे बच्चों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ, जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: साथियों, एक गांव में अली नाम का एक बच्चा रहता था। अली बहुत हमदर्द, नरम दिल और दूसरों की मदद करने वाला बच्चा था। वो हमेशा अपने दोस्तों, खानदान के अफराद और गांव के दूसरे लोगों की मदद किया करता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो अली बगैर कुछ पूछे उनकी मदद कर देता था। वो जानता था कि जिंदगी में इंसानियत, हमदर्दी और मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज है। अली के वालिद इसकी नेक दिली और हमदर्द तबीयत पर फखर करते थे। वो हमेशा उसे अच्छे इखलाक सिखाते और कहते थे, बेटा, अगर तुम्हारे दिल में हमदर्दी है तो तुम जिंदगी में बहुत कामयाब रहोगे। अली के पास अक्सर दूसरे बच्चे आकर अपनी तकलीफें और परेशानियां उसके साथ शेयर किया करते थे। वो अली से मशवरा लेते और उसकी हमदर्दाना मदद की उम्मीद करते थे। अली हमेशा इनकी मदद करता और उन्हें तसल्ली देता था। एक दिन अली अपने दोस्त अहमद के साथ गांव के बाहर खेलने जा रहा था कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली। वो औरत बहुत थकी हुई नजर आ रही थी और उसके हाथ में एक भारी बोरा था। वो बेचारी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ रही थी। अली ने उस औरत की हालत देखी और फौरन अहमद से कहा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए अहमद। अहमद ने कहा, लेकिन अली, हम इसके सामान को कैसे उठा सकते हैं? ये बहुत भारी है। अली ने कहा, अरे मेरे दोस्त, हमें कोशिश करनी चाहिए। और वो दोनों दोस्त आगे बढ़कर उस बूढ़ी औरत के पास गए। दाई जान, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? अली ने मोहब्बत और शफकत से पूछा। बूढ़ी औरत ने थक कर जवाब दिया, बेटा, ये बोरियां बहुत भारी हैं, मुझे खुद लेकर जाना पड़ेंगी, लेकिन तुम्हारी मेहरबानी।

है, मैं तुम्हें शुक्रिया कहती हूँ। वो उस बूढ़ी औरत की बोरियां उठाकर उसके घर तक रखवा कर आए। जब उन्होंने वो बोरियां उसके घर में रखवा दी तो उन्हें देखकर वो बूढ़ी औरत बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अली और अहमद जब वापस अपने घर जा रहे थे तो अहमद ने कहा, अली तुम्हारी हमदर्दी ने उस बूढ़ी औरत की जिंदगी बदल दी, अगर हम उसकी मदद ना करते तो वो कितनी परेशान हो जाती। अली ने मुस्कुराकर कहा, अहमद हमदर्दी की ताकत बहुत बड़ी होती है मेरे दोस्त, हम जब किसी की मदद करते हैं ना तो हमें भी

मुझे आज तुमसे एक बहुत अहम सबक सीखने को मिला है अली। तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो ना, चाहे वो जानबूझकर तुमसे मदद ना मांगे, लेकिन तुम आगे बढ़कर उनकी हमेशा मदद करते हो। अली ने कहा, हमें ये समझना चाहिए मेरे दोस्त कि किसी की मदद करना हमेशा फायदे का मामला नहीं होता। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम ना सिर्फ इनकी जिंदगी बेहतर बना रहे होते हैं बल्कि अपनी रूह को भी सुकून दे रहे होते हैं। साथियों, अगले दिन गांव में एक ऐसी मुसीबत आई जिसने सबको परेशान कर दिया। गांव के बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे। ज्यादातर बीमारियां सर्दी और खाने पीने की कमी की वजह से हो रही थी। गाँव के बच्चे, बूढ़े और खवातीन सबकी हालत खराब थी। अली के वालिदैन भी बीमार हो गए थे। अली बहुत परेशान था और वो अपने वालिद की देखभाल कर रहा था और हर वक्त उनके करीब रहता था। एक दिन जब वो गांव के दूसरे लोगों की मदद करने के लिए सोच रहा था, उसने एक और तरीका सोचा। अली ने अपने दोस्त अहमद को बुलाया और कहा, अहमद, हमें इस गांव के लोगों की मदद करनी होगी। मैं सोच रहा हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करें जिससे गांव के लोगों की हालत बेहतर हो सके। अहमद ने कहा, लेकिन अली, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस बच्चे हैं। अली ने कहा, हाँ भाई, हम बच्चे हैं, मगर हम जो भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। हम खाने की चीजें, दवा और पानी इकट्ठा करके गांव के लोगों तक पहुँचाएंगे। अहमद ने फौरन कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अली। ठीक है, ओके, डन हुआ। अली और अहमद ने गांव के दूसरे बच्चों को भी इस मंसूबे में शामिल कर लिया। वो सब मिलकर खाने पीने की चीजें, दवाएं और जरूरी सामान इकट्ठा करने लगे। इसके अलावा वो गांव के लोगों के साथ मिलकर खाने पीने और उन्हें दवा देने का इंतजाम भी करते थे। एक दिन जब अली और अहमद गांव के लोगों की मदद करके वापस आ रहे थे तो उनकी मुलाकात एक और बूढ़ी औरत से हुई। वो औरत गांव में पहले आई थी और अली की मदद से उसका बोरा घर तक पहुंचा था। वो औरत बहुत खुश होकर अली और अहमद के पास आई और कहा, तुम दोनों के दिल बहुत बड़े हैं बेटा, तुम्हारी हमदर्दी ने इस गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी है। अली ने कहा, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही तो हम इस गांव को बेहतर बना सकेंगे। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हारी हमदर्दी और कोशिशों को कबूल करे, तुम्हारे जरिए इस गांव में एक नया जज्बा आया है। अली और अहमद की हमदर्दी और मेहनत ने गांव के लोगों को नया हौसला दिया था। गांव के लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी गुजारने लगे थे। अली और अहमद ने ये देखा कि इनकी हमदर्दी की वजह से गांव के लोगों की हालत बेहतर हो रही थी। अली के वालिदैन भी सेहत याब हो गए थे और गांव के दूसरे लोग भी ठीक हो गए थे। गांव में खुशियां वापस आ गई थी और हर तरफ मोहब्बत और हमदर्दी की खुशबू फैल गई थी। साथियों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमदर्दी इंसानियत का सबसे अहम हिस्सा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम ना सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर बना रहे होते हैं बल्कि अपने दिल को भी सुकून पहुंचा रहे होते हैं। हमदर्दी की ताकत बहुत बड़ी होती है और इससे हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, अली और अहमद ने जो कुछ किया उससे ये साबित हुआ कि अगर आपके दिल में हमदर्दी है तो आप दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और वैसे भी ये दुनिया इसी बात पर तो रिलाय करती है कि हम एक दूसरे के साथ कैसा सलूक करते हैं। ये कहानी हमें ये बताती है कि हमदर्दी का जज्बा इंसानों को करीब लाता है। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं तो ना सिर्फ हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है बल्कि हम दुनिया में मोहब्बत और सुकून का पैगाम भी पहुंचा सकते हैं।

खोया जो लोग एक अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्दीक कर लें, एक किताब को अपनी हिदायत तस्लीम किया और एक ही आखिरत की जवाबदेही पर यकीन रख लिया, उनके दरमियान एक ऐसा रूहानी रिश्ता कायम हो गया जो महज तारुफ या दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा है। इसीलिए कहा गया है कि अकीदे से मजबूत कोई रिश्ता नहीं और इस्लाम के अकीदे से ज्यादा जामे अकीदा कोई नहीं। यही वो उखुवत है जो इंसान को अपने जाती मफाद से ऊपर उठाती है। इसीलिए ईमान की मजबूत तरीन कड़ियों में अल्लाह के लिए मोहब्बत को शुमार किया गया है। इंसान किसी दूसरे मुसलमान से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ता कि उसका ताल्लुक उसी खानदान, शहर या नस्ल से है, बल्कि इसलिए भी कि वो अल्लाह की बंदगी के उसी रास्ते का साथी है। सामने किराम, कुरान हकीकत पसंदाना किताब है। वो ये नहीं कहता कि जब लोग मोमिन हो जाएंगे तो उनके दरमियान कभी इख्तलाफ पैदा ही नहीं होगा। हाँ जी, इख्तलाफ तो होगा, नाराजी होगी, हत्ता के बाज़ औक़ात मामला शदीद निज़ा और लड़ाई तक भी पहुँच सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इस इख्तलाफ के बाद क्या किया जाए। कुरान का जवाब है, इख्तलाफ को बढ़ने मत दो, उसे छोड़कर मत बैठ जाओ, एक दूसरे को दुश्मन बनाकर माशरे को दो हिस्से में मत तकसीम होने दो, बल्कि इस्लाह करो। अल्लाह फरमाता है, फअस्लिहु बैन अखवैकुम, अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह कराओ। यानी भाईचारा सिर्फ ये नहीं कि हम एक दूसरे को भाई भाई कह दें, इस उखुवत का एक अमली तकाजा भी है कि अगर दो मुसलमान आपस में टकरा जाएं तो तीसरे लोग तमाशाई ना बने बल्कि इस्लाह ज़ातिल बैन की कोशिश करें। इस अहमियत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत मौसर अंदाज में बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से पूछा, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊँ जो नफली नमाज, रोज़े और सदक़े के दर्जे से भी बढ़कर है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस के ताल्लुकात की इस्लाह। और फिर तंबीह फरमाई कि बाहमी फसाद हालिका है, यानी मोंड देने वाली चीज़ है। फिर वजाहत फरमाई कि ये बाल नहीं मोंडती बल्कि दीन को मोंड देती है। क्या गहरी बात है सामिन इकराम। एक मिसाल से आपको समझाते हैं कि एक शख्स बहुत इबादत करता हो मगर दिल में दुश्मनी, कीना और इंतकाम भरा हो, तो ये अंदरूनी फसाद आहिस्ता आहिस्ता उसके दीन की रूह को खा सकता है। इसीलिए इस्लाम रिश्तों की इस्लाह भी चाहता है। कुरान इस उसूल को सिर्फ मामूली ज़ाती झगड़े तक महदूद नहीं रखता, यहाँ तक कि अगर दो मुसलमान ग्रोह बाकायदा बाहम लड़ पड़े तो भी हुक्म यही है, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, तो उनके दरमियान सुलह कराओ। लेकिन यहाँ इस्लाम की अदल पसंदी भी देखिए, महज सुलह के नाम पर जालिम और मजलूम को एक सतह पर नहीं रखा गया। अगर एक फरीक ज्यादती करता रहे तो कुरान कहता है कि ज्यादती करने वाले को रोका जाए यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, फिर अगर वो वापस आ जाए तो हुक्म है, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, अब दोनों के दरमियान अदल के साथ सुलह करो, इंसाफ करो, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। गोया कुरान की नज़र में पीस विदाउट जस्टिस मुकम्मल अमन नहीं। सुलह का मतलब ये नहीं कि नुकसान भुला दिया जाए, हकदार का हक ख़त्म कर दिया जाए या मजलूम से कहा जाए कि बस खामोश हो जाओ, बल्कि अगर किसी ने दूसरे का हक ज़ाय किया, नुकसान पहुँचाया या माल तलफ किया है तो उसे उसका जिम्मेदार बनाया जाए। इंसाफ के साथ मामलात दुरुस्त हों फिर दिलों को करीब किया जाए। यही वजह है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा के फौरन बाद इस्लाह का हुक्म आता है। वह कुरान हमें समझा रहा है कि उखुवत एक जज्बाती नारा नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तसव्वुर को एक और मकाम पर कुरान नहायत खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107।

FM 107. Time check. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।

Right guys, salam adab, a very very good morning Qatar. Kya hal chaal hai? Umeed kare aap log khairiyat se honge aur aaj phir ek naya din. Ek nayi subah, ek naya mauka hamare samne hai. देखो ना कभी कभी मुझे मेरे जहन में आता है कि हम जो हैं कभी हमें दिन जो है वो बहुत बड़ा लगता है कभी हमें दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार लगता है और कभी आपने महसूस किया होगा कि दिन आपको काफ़ी बोझल सा भी महसूस होता है. आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्या वाकई दिन बदलता है या हमारे दिल का मौसम बदलता है? मैं तो कहूँगी हमारे दिल का मौसम. अगर दिल उम्मीद से भरा है तो गर्मी भी नरम लगती है, ट्रैफिक भी मैनेजेबल लगता है और चैलेंजेस भी हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपॉर्चुनिटीज़ ही नज़र आते हैं. लेकिन अगर दिल थका हुआ है, उदास है, फिक्रों से घिरा है तो सब कुछ ठीक होते हुए भी ज़िंदगी मुश्किल लगने लगती है ना. इसीलिए आज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आज वो दिन है जो आपको एक फ्रेश स्टार्ट देने वाला है. कल की गलतियों को आज का बोझ बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. जो बात कल गई सो हो चुकी, जो बात आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसकी फिक्र क्यों करना, उसे अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और जो आपके कंट्रोल में है उस पर अपना बेस्ट दीजिए. कभी कभी जिंदगी ना बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी पॉजिटिव सोच, एक शुक्र का एहसास और एक छोटी सी स्माइल. तो आज जब आप घर से निकल रहे हैं, ऑफिस पहुंच चुके हैं या फिर अपने दिन का आगाज कर रहे हैं, ये बात याद रखिए कि आज आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिव सोच और काइंडनेस के साथ ऑफिस में एंट्री लेंगे या जो भी काम आप कर रहे हैं वहाँ. क्योंकि जब दिल का मौसम, मैंने कहा ना, अच्छा होता है तो ज़िंदगी का हर मौसम खूबसूरत लगने लगता है. तो बस आप अपनी हर सुबह एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ एक नए सिफा, एक नया चैप्टर जो है वो लिखने के लिए तैयार रहिए. जो गुजर गया उसे सोचने या उस पर जो है अफसोस करने के बजाय आज कुछ नया लिखेंगे, कुछ नई बात करेंगे. तो चलिए आज का गुड मॉर्निंग सेशन आपका हमारा जो है वो पॉजिटिविटी के साथ होगा, ग्रेटफुलनेस के साथ होगा एंड लेट्स मेक दिस डे ब्यूटिफुल डे टुगेदर. बहुत सारी बातें आज भी होंगी, मौसम का हालचाल होगा, कुछ आपकी बात होगी, मेरी बात होगी एंड आज उस मुद्दे पर भी बात होगी जो आप

कि मेरे लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है और हम सब के लिए, हम सब कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं, तो वो भी बात करेंगे, कुछ लोकल अपडेट्स भी होंगी एंड देन टुवर्ड्स द एंड हमारा गेम सेगमेंट. तो कहने को 3 घंटे का साथ है लेकिन ये 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं सीरियसली पता ही नहीं चलता. एंड ये साथ आपका और मेरा इतना अमेजिंग होता है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं. तो आपको करना क्या है, जुड़ना है मेरे साथ. नंबर है 666-22-107. यहाँ पर हम आपके मैसेजेस जो हैं वो लेते हैं और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर हमारा नंबर लिख लीजिए 443-443-77. इस नंबर पे

एकदम खैरियत से होंगे. आप कहाँ हैं, पहुँच चुके हैं ऑफिस, जाने की तैयारी में हैं या अभी रास्ते में ही हैं? यहाँ पे हैं काशिफ. काशिफ हमें गुड मॉर्निंग कहते हैं. और मैडम हम वकरा से जा रहे हैं. अच्छा जी, आप वकरा से ऑफिस जा रहे हैं. और राइट, मोहसिन अली जी हमारे साथ, गुड मॉर्निंग. और मोहसिन जी ने गुड मॉर्निंग कहा है. इमरान एंड मोहसिन अलखोर से हमें सुनते हुए, सो वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को भी. तो चलिए यहाँ पर मॉर्निंग के मैसेजेस आपके लेने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा. तो कहाँ कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं ज़रा हमें झटपट से टाइप कीजिए और बताइए 666-2107 पर. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ और बातें आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ. बट बिफोर दैट एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज मुझे नजर आ गया और ये है जावेद बाजवा जी का. एंड ग्रीस से हमें सुनते हुए, क्या बात है, क्या बात है. और सभी को, पूरी टीम को उन्होंने रिगार्ड्स दिए हैं और अपने लिसनर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी उन्होंने जो है वो ग्रीट किया है. थैंक यू सो मच आप वहाँ भी. और कह रहे हैं हम मिस कर रहे हैं आप सबको, इवन हम आपको मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपके विजडम वर्ड्स को मिस कर रहे हैं. सो वी होप कि आप अपना ट्रिप कम्प्लीट करके इंशाल्लाह जल्दी साथ खैरियत के वापस आए और वापस से रिकनेक्ट हो. तो आज का दिन मेकअप डे भी है. कुछ सोचा आपने, कोई है ऐसा बंदा आपकी लाइफ में जो बेचारा आपके छोटी सी नाराजगी की वजह से, या हो सकता है बड़ी नाराजगी की वजह से, या कोई और बड़ी बात है या छोटी बात है, किसी भी वजह से आपके दिल में है कि मैं उससे मिल लूँ, बात कर लूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है. तो आज बात करेंगे कि क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे हो सकता है, इस पर भी बात होगी थोड़ी देर के बाद होगी. लेकिन अभी के लिए छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो आपका और हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा. स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें, ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें, ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें, ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
0: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महावश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
3: हवा के झोंके आज मौसमों से टूट गए।
4: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107।

0: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियात खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ 6:31 ऑन द क्लॉक। एंड यस, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा तो ये था कि अगर आपका आज वैसे मैं आपको याद दिला दूं जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है कि आज है मेकअप डे। नॉट दैट मेकअप जो हम अपने फेस पे लगाते हैं, जो फीमेल्स लगाती हैं, इट्स लाइक टू मेकअप योर रिलेशनशिप्स। तो आज ये दिन है और बड़ा ही ख़ास दिन है। ख़ास दिन की शुरुआत इस बात से कि कोई बंदा या बंदी जो कभी किसी ईगो की वजह से या किसी और वजह से आपका रिश्ता उनसे बिगड़ा, तो अब अक्सर ये होता है ना कि पहल कौन करे और पहल मैं ही क्यों करूं, है ना, ये भी हमारे दिमाग में आता है। लेकिन आज हमें ऐसा नहीं सोचना है। कई बार जो इंसान पहल करता है समझ में आता है कि उसको रिश्तों की कितनी अहमियत है। तो पहल करना बहुत ही आसान भी है। हम जो है ना सोचते हैं कि बहुत अरसे से हमारी बात नहीं हुई, कैसे शुरुआत करें। शुरुआत सिंपल से आदाब से, सलाम से, ग्रीटिंग से, इससे सिंपल से कहना। और हाँ, कोशिश ये करना कि कोई ऐसी बात उसमें बीच में डाल दे जो आपके और उनके बेस्ट मोमेंट्स थे, कि आज मुझे अचानक आपके हवाले से ये बात याद आ गई तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो बस ये एक दो लाइन अगर आप किसी के लिए लिख देते हैं, अपना ईगो साइड में रख के अच्छी यादें शेयर कर देते हैं, एक्सपेक्टेशंस को कम करके दिल से बात कर लेते हैं, नाराज़गी भुला के, तो रिश्ता बच जाता है। और बचता ही नहीं है, मैं कहूँगी काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, कहने में थोड़ा सा आसान है, करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी हम और आप मिल के ऐसा कर सकते हैं। सो लेट्स सी, बताइएगा कल परसों जब भी क्या ऐसा आप कर पाए, क्या इतने गट्स आप दिखा पाए, या कोई ऐसा था जिसने आपको ये गट्स दिखा दिए, मतलब कहने का मतलब है उन्होंने इनिशिएट कर दिया, आप तो सोचते ही रह गए, तो मुझे बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल अब मैं बढ़ रही हूँ आज की लोकल अपडेट्स की तरफ। हाँ जी, तो आज की जो लोकल अपडेट्स हैं उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अनवांटेड मैसेजेस जो आपको मिल रहे होते हैं उनसे कैसे आप निजात पा सकते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो प्रमोशनल एसएमएस हैं या फिर ईमेल्स हैं या फिर मार्केटिंग कॉल्स आ रही होती हैं जो हमें काफ़ी अनोइंग लगती हैं, तो अब आप उनसे बच सकते हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने पब्लिक को याद दिलाया है कि किसी भी तरह का कोई भी अनवांटेड प्रमोशनल एसएमएस है या ईमेल्स हैं या फिर मार्केटिंग कॉल्स हैं आपको रिसीव हो रही हैं, तो आप अपने कंसेंट वापस विड्रॉ कर सकते हैं। यानी और सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपकी मार्केटिंग मैसेजेस अगर आप नहीं देखना चाहते, नहीं लेना चाहते हैं, तो पहले कंपनी या फिर सेंडर को कॉन्टैक्ट कीजिए और उन्हें स्टॉप करने को कहिए। इफ़ इन केस फिर भी वो स्टॉप नहीं करते हैं और कंटिन्यूसली आपको मैसेजेस आ ही रहे हैं, तो आप पर्सनल डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट विच इज़ PDPPD यहाँ पर अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकते हैं। और इस कंप्लेंट के बाद फौरन एक्शन लिया जाएगा और जितने भी मैसेजेस हैं जो आप नहीं देखना सुनना चाहते वो स्टॉप कर दिए जाएंगे। कहने को तो डिजिटल ज़माने में, आज के दौर में हम सब अब अपनी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और देनी भी चाहिए। हर कंज्यूमर को ये हक हासिल है कि वो डिसाइड करे कि वो मैसेजेस रिसीव करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ऐसे ज़बरदस्ती किसी को बहुत सारे भर भर के मैसेजेस नहीं भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक अपडेट और मुझे लगा एक कमाल की अपडेट है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। एक और अपडेट जो अब बच्चों के लिए है, एंड बिकॉज अब बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं, स्कूल खुलने वाले हैं, वापस से तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में वैसे तो बहुत सारी कैंपेन्स आप जानते हैं, बैक टू स्कूल कैंपेन तो ऑलरेडी चल रही है थ्रू आउट यहाँ कतर में। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, लेकिन इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए कुछ यूज़फुल गाइडलाइंस शेयर की है, जिनमें कहा है कि समर्स क्योंकि अभी भी रहेंगे, सेप्टेम्बर में भी गर्मी तो रहेगी, हालाँकि उतनी नहीं रहेगी बट रहेगी, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे में वो खाने, वो फूड लंच में बच्चों को दें जो जल्दी ख़राब ना हो, और कोशिश करें कि लंच उनका

फ्रेश ही बनाया जाए जो काफ़ी देर तक चले यानी ख़राब ना हो, और रीयूजेबल वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोशिश करें कि वो हाइड्रेटेड रहे, और पानी की एक या दो भी मेंशन की हैं कि आप बॉटल्स दे ही सकते हैं. इसमें इसके अलावा लंच में या जो भी बच्चे टिफ़िन वगैरह कैरी करते हैं उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या फिर हेल्दी प्रोटीन डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए. साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी का ये भी कहना है कि फूड वेस्ट को जितना ज़्यादा हो सके मिनिमाइज कीजिए, उतना ही खाना प्रिपेयर कीजिए जितना आपकी ज़रूरत के मतलब जितना आपको ज़रूरी है, जितना आपको चाहिए. ज़्यादा फूड बना के वेस्ट करने के लिए मना किया गया है, और रिसाइकिलिंग के हवाले से भी कहा गया है कि प्रॉपरली आप जितना भी जो भी चीज़ है, चाहे पेपर है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे ग्लास है, चाहे मेटल्स हैं, चाहे कैंस हैं, इन सब को प्रॉपरली डिस्पोज कीजिए. तो ये भी एक टिप, और बच्चों को भी इट्स अ क्विक रिमाइंडर. स्कूल तो वैसे बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स एक जोश में वो भी वेलकम करने के लिए बैठे होते हैं, वो भी उसी तरह से बच्चों को वापस से जो हैं वो इस टर्म में वेलकम कहते हैं, चीज़ें याद दिलाते हैं. लेकिन हाँ, जब मैं बात करी छोटे बच्चों की, अक्सर वो चीज़ें भूल जाते हैं या उस तरह से, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी के बाद आ रहे हैं तो नहीं जहन में हो. तो बस एक छोटा सा क्विक रिमाइंडर मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी की तरफ से पेरेंट्स को, और पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को. तो ये एक अपडेट. इसके साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि कतर कंपनी फॉर एयरपोर्ट्स ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के खिलाफ ग्लोबल इनिशिएटिव यूनाइटेड फॉर वाइल्ड लाइफ ज्वाइन कर लिया है. यहाँ पर इस इनिशिएटिव को साइन करने का मकसद है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन को रोका जाए. आपको बताएं कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग के खिलाफ अवेयरनेस और रिपोर्टिंग को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा. वहीं पर कतर एयरवेज ग्रुप ने 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग आइडेंटिफाई और रिपोर्ट करने की ट्रेनिंग भी दी है. जी हाँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिलकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को प्रमोट और सपोर्ट करेंगे. तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सिर्फ जंगलों की जिम्मेदारी है, जंगलों में जो जानवर है उनकी वहीं तक की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स भी अब देखिए एक बहुत ही अहम रोल अदा करने वाले हैं इस डायरेक्शन में. तो इस न्यूज के साथ अब आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन की इस न्यूज की तरफ. यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन ने नए एकेडमिक ईयर से पहले करिकुलम को मजीद मॉडर्न और फ्यूचर फोकस्ड बनाया है. और क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बताऊं कि ग्रेड 11 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को अपडेट किया गया है. वहीं पर ग्रेड 10 की साइंस और फ्रेंच करिकुलम को भी जो है वो डेवलप किया गया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और ज्यादा मजीद इम्प्रूव किया गया है, और 612 टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स को नए करिकुलम पर ट्रेनिंग बकायदा दी गई है. यहाँ इस करिकुलम में जो फोकस है वो है ऑफ कोर्स ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिजिटल कॉम्पिटेंसीज, इस्लामिक वैल्यूज एंड नेशनल आइडेंटिटी. जिया मिनिस्ट्री का कहना है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों का इल्म नहीं बल्कि रियल लाइफ स्किल्स और फ्यूचर जॉब्स के लिए भी तैयार करना है. तो इस हवाले से ये सारे चेंजेस लाए गए हैं. चलिए, ये सारी चीज़ें तो हमने आपके साथ शेयर कर दी, और कुछ मैसेजेस लेते हैं. थोड़ी देर में वापस आती हूँ तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर भी बात करूँगी. बट बिफोर दैट, आपको कहाँ कनेक्ट होना है, किस नंबर के थ्रू आपको कनेक्ट होना है, वो मैं क्विक रिमाइंडर आपके साथ शेयर कर दूँ. नंबर है 4434377. ये वो नंबर है जहाँ पर अब से थोड़ी देर के बाद हम आपके कॉल्स लेना स्टार्ट कर देंगे. सो मेक श्योर कि आप हमें जो है उस नंबर पर कॉल कीजिए. और आज का टॉपिक जो है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे भी और हमारे साथ अपनी बात शेयर भी करेंगे. यहाँ हमें सलाम कहते हैं, और इनका नाम है इमरान. एंड आई रिमेम्बर इमरान जो है वो मेरे बहुत पुराने लिसनर, इन्होंने लिखा था और ये बहुत टाइम से मुझे सुन रहे हैं. चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का कि आज आपने वक्त निकाला. और बहुत सारे लिसनर्स हमें सुनते हैं बट क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है. कभी कभी मौका मिला करे आपको तो प्लीज़ ज़रूर कनेक्ट हुआ कीजिए. मैं समझ सकती हूँ कॉल कर हर कोई नहीं पाता, लेकिन एटलीस्ट एक हाय हेलो एक मैसेज के थ्रू. यहाँ हिशाम हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. एंड इकराम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, सलाम कहते हैं. कैसी है मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे. उमर हमारे साथ है. एक सवाल जो बहुत बड़ा सवाल बन गया है, इस सवाल का मेरे पास पूरा सही से कुछ भी जवाब नहीं है, लेकिन चलिए आप लोग के सवाल
इंशाल्लाह इसका जवाब जल्द आपको जल्द जल्दी से जल्दी मिले, यही हमारी दुआ है। इसके साथ हमें मैसेज किया है।

0: नाम में आपने मुझे नहीं अपना भेजा, मैं जरूर चाहूंगी कि लोग अपने नाम भी लिखें. गुड मॉर्निंग कहते हैं. अच्छा, हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज है सऊदी अरेबिया से. थैंक यू सो मच. और मैडम, हम आपको सुन रहे हैं. ओह नाइस, दैट्स नाइस. अच्छा, मुमताज जी हैं. सलाम मैडम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? और आप मॉर्निंग में ही रहो, आफ्टरनून मत जाओ, आपकी आवाज़ सुनकर पूरा दिन बन जाता है. ओह दैट्स सो नाइस, कितना अच्छा आपने बोला और आपके इस मैसेज से मेरा दिन बन गया. सो थैंक यू. आफ्टरनून जाना तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, बट इंशाल्लाह यू नो आगे पीछे चेंजेस तो आते ही रहते हैं और फिर मॉर्निंग मिल सकता है, नेवर नो. तौकीर अहमद भट्ट जी हमारे साथ सलाम कहते हैं. हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ब्लेस्ड डे. यू टू हैव अ ग्रेट डे. यहाँ पर अलखोर से इमरान हमें सुनते हुए, वालेकुम अस्सलाम. नौसिन का मैसेज है. जाकिर बंगा जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू. ये सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस. अब से थोड़ी देर के बाद आज का जो मेरा टॉपिक है वो लेकर मैं आने वाली हूँ, और उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, माहौल सेट करते हैं, टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं. नंबर आप लिख लीजिए 4434377. इट्स 4434377. यहाँ पर हम आपके साथ डायरेक्टली ओवर कॉल कनेक्ट होंगे. और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं देन द नंबर इज सेम 666-22-107.
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता. इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं. तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ. प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर.
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का. आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान. बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है. आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे इस शो में जिसका नाम है समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नासिया आपके साथ। एंड यस, अब आज का जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। आज का मुद्दा काफ़ी टफ है बट बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है आपके एक कमाल के पार्टिसिपेशन के साथ। देखिए, हम सब जो है वो कहीं ना कहीं आज हमने रिश्तों की बात की, शुरुआत भी रिश्तों से ही की। रिश्तों को बचाने में, निभाने में या कई बार रिश्तों को संभालने में लगे रहते हैं, जबकि रिश्तों को बचाना, निभाना, संभालना एक हमारी आर्ट और स्किल भी है। और मैं कह सकती हूँ कि कुछ ऐसे हमारी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स आ जाएं जिन्हें हम अडॉप्ट कर लें तो शायद रिश्तों को बचाने निभाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो स्मूथली यूं ही चलते रहें। तो मेरे जहन में था कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिश्तों के लिए अहम है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दो ऐसे बड़े एलिमेंट मेरे जहन में आए और मुझे लगा कि हाँ, अब ये दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर किसी एक को ज़्यादा अहमियत दी जाए, किसी एक पर ज़्यादा काम किया जाए तो वो कौन सा एलिमेंट हो सकता है। तो बस यही आज का हमारा सवाल बन गया है। आज मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि मुझे आप बताइए, रिश्ता मजबूत जो है वो ट्रस्ट से या फिर रिस्पेक्ट किस चीज़ से होता है? ट्रस्ट या रिस्पेक्ट रिश्तों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा अहम क्या है? वैसे तो दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जिस पर ज़्यादा काम किया जा सकता है, जिसको ज़्यादा मजबूती से फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जा सकता है, तो वो कौन सी हो सकती है? अब देखिए, ट्रस्ट का मतलब है यकीन। मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम मुझसे सही बोलोगे, सच बोलोगे।

0: वादा निभाओगे, मेरी फीलिंग्स को समझोगे, मुझे हर्ट नहीं करोगे, ये एक तरह का ट्रस्ट होता है इंसान का. वही रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब है कि किसी इंसान की वैल्यू और वर्थ जो है उसको तस्लीम करना, किसी के अच्छे एटीट्यूड को देखकर उसे रिस्पेक्ट देना, उसे उसकी बात के साथ इत्तेफाक रखना और उसके साथ जो है उससे सीखना, उससे सीखना. अब ये चीज़ मैं आपको, मतलब मेरे जहन में था, ये मुझे बड़ा टफ भी लग रहा था कि मैं ये पूछूं कि क्या आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते, या कोई ऐसा बंदा है जिसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है फिर भी आप उसे रिस्पेक्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे. क्या इन दोनों का कनेक्शन अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, किस तरह का कनेक्शन है, कैसे रिश्तों के लिए अहम है, आज का यही मुद्दा है. मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिश्तों के हवाले से क्या है, रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आपको लगता है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा अहम है. तो मेरे साथ इस वक्त एक कॉलर यहाँ पे जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
1: सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं रईस यहाँ?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने ज्ञान को शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, बस और हमारे भाई आगे बढ़ जाएंगे निकल के. शुरू शुरू में बड़ा मसला टफ होता है लेकिन फिर भी हमको अच्छा हाँ, लगता है कि चलो यार कोई मुश्किल नहीं है, हो सकता हमारा कोई इस्लाह कर दे, हमारे में कोई कमी रहे, हमारी बातों से मतलब कोई बात उठा के और हमारा इस्लाह हो जाए.
0: नहीं देखिए, तो सब सबकी राय होती है और सब कुछ ना कुछ हर कोई अच्छा बताता है.
1: हम सीखते हैं बिल्कुल, हर बंदा अपने अपने हिसाब से बताता है और सीखते भी हैं हम, और हमें उस पर मतलब खुद मतलब गौर करना चाहिए. बिल्कुल, ये जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट आपने जो ये उठाया है मुद्दा ना, ये दोनों अलग अलग है मेरे हिसाब से. ये दोनों को आंख बंद करके मतलब दोनों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि रिस्पेक्ट को तो हम अपना कायम रखना, ये हमारे दीन का हिस्सा है. चाहे वो कोई भी हो, रिस्पेक्ट अपना कायम रखो, अपना मतलब बोलून जुलून उसमें कोई अगर तुम्हारे साथ में कर भी रहा है तो भी तुम रिस्पेक्टफुली होके उसके साथ में उसका जवाब दो और उसके साथ इज्जत वकार अपना कायम रखो.
0: अच्छा, अगर मान लीजिए कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, अच्छे से आपके साथ बिहेव नहीं कर रहा, फिर भी आप उसको इज्जत दे पाएंगे?
1: इज्जत देने का ये मतलब नहीं है कि मतलब नहीं बस हम जो भी बोलते जाए हम सर झुका के मतलब ये करके नहीं, बल्कि वहाँ से बल्कि हट जाओ, वो वहाँ पे उसकी बात को ना सुन के थोड़ा सा इग्नोर करके. कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वो सामने वाला हमें शूट कर रहा है मतलब बुरी भला करके तो हम वहीं पे खड़े रहे, नहीं. क्योंकि एक हदीस मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पे खड़े थे, हजरत अबू बकर भी खड़े थे, एक बंदा उनको मतलब एब्यूज मतलब बुरी भला बुरा भला कह रहा था. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक खड़े थे वहां पर, जब तक कि मतलब उन्होंने पलट के उसको उसी हिसाब से जवाब नहीं दिया, और जैसे पलट के उसके हिसाब से जवाब दिया फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले गए. फिर बड़े हैरत में पड़े, बोले यार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मतलब इस तरीके से, वो बंदा मुझे बुरा भला कह रहा था तब तक आप खड़े थे, अब जब मैंने उसका मतलब जवाब दिया तो आप वहां से चले गए. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान वहां पे वो मतलब तुम्हारे उसको सुन के बहुत मतलब तंदुरुस्त और मोटा हो गया वो सुन के हाला, और मैं इसलिए वहां से शैतान बड़ा खुश होता है अगर उसी हिसाब से उसी लहजे में जवाब दो. कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे खड़े रहो या करके, बल्कि वहां से हट जाओ और उसका मतलब एक तरीका कुछ आसान मतलब निकाल के उसको समझ लो कि उससे ये करने की कोशिश करो, बल्कि ना उसी गंदे अल्फाज में इस्तेमाल करके. तो मेरे ख्याल से मतलब हाला बहुत ये मुश्किल काम है, ये कहना तो बड़ा आसान लगता है, इसको भी मैं मतलब ये करता हूँ, तस्लीम करता हूँ, एग्री करता हूँ कि ये बड़ा कहना तो बड़ा आसान लगता है कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन जब सर पे पड़ता है तो फिर आदमी के जज्बात को बहुत बड़ा ठेस लगता है और वो शैतान उसको उभारने पे मजबूर कर देता है कि भाई ये तो हमारे दिन का हिस्सा है कि कसास लेना, बदला लेना, ये वो. लेकिन अगर आप एक बाल बराबर भी अगर आपने इजाफा किया तो आपको मतलब जवाबदेह बन जाएगा. तो कुछ ऐसे भी अमल हैं कि आपके पास ताकत रखने के बावजूद भी अगर आपने, एक हदीस में आया है मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, कि आपने अगर उसका जवाब नहीं दिया उसी हिसाब से, आपने उसको रिएक्ट नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा अल्लाह ताला उसके बदला मतलब क्यामत के दिन उसको अल्लाह ताला मतलब बहुत ज्यादा देगा आपके लिए, और आपकी दुनिया में भी आपके लिए आसानी पैदा कर देगा. लेकिन आप अगर ताकत रखने के बावजूद भी, मतलब उसमें बहुत सी चीजें आ गई, मतलब ताकत रखने के बावजूद, मतलब

0: हिसाब से उसका जवाब देना, या ताकतवर आपको सामने वाला कमजोर है आपके ऊपर ये कर रहा है, और अगर आप चाहो तो उसको उसको उससे कहीं ज्यादा जवाब में ये कर सकते हो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, तो ये चीजें बहुत मायने रखती है। और हमारे हमारा इस्लाम जो है ना बड़ा पीसफुल चीज है, मैं इसको ये कहूंगा कि इसमें जो तरह तरह के आज कुछ लोग गलत कर जा रहे हैं, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारा दीन नहीं है, ये हमारे दीन उनको देख के ना हम दीन सीखे, बल्कि जो हमारे दीन का असल दावत है कुरान और हदीस, उसके ऊपर मतलब हम ये करके चलें, तो शायद है कि मतलब ये गलत मैसेज लोगों की तरफ नहीं जाएगा। और रहा बात मतलब आपने जो ट्रस्ट का, तो ये ट्रस्ट आंख बंद करके ना करें मेरे ख्याल से, बल्कि आपको थोड़ा सोच समझ के, वही बात को सोच समझ के और आगे पीछे सोच के आपको मतलब ट्रस्ट करके, क्योंकि ट्रस्ट में बहुत बड़ा आदमी के साथ में धोखा और फ्रॉड हो जाता है, और खासकर अपने जो करीब के होते हैं ना वो अपना ही बन के और आपके साथ में फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी मतलब बात है कि बहुत सोच समझ के आगे पीछे गौर फिक्र करके किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जाए तो बहुत बड़े धोखे में पड़ जाएगा बंदा।
1: तो आप कहते हैं कि दोनों चीजें आपस में अलग हैं, रिस्पेक्ट तो आप दे सकते हैं और आपको देना चाहिए, चाहे आप ट्रस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, और ट्रस्ट जो है वो दूसरों पर भी आंख बंद करके ना करें। दिस व्हाट यू
0: सेइंग, जैसे आप आप आप आप खुद शायद इस पे मतलब ज्यादा आपका मतलब ये इत्तेफाक होएगा और हमारे भाइयों का, क्योंकि ट्रस्ट में आदमी धोखा खा जाता है अक्सर,
1: क्योंकि
0: मैंने खुद भी खाया है बहुत ज्यादा, कि हम बहुत जिससे ये उम्मीद नहीं रखते थे कि मतलब यार ये बंदा मेरे साथ में इतना मुखलिस है, इतना वो होने के बावजूद भी वो एंड टाइम पे हमें इस तरीके से मतलब हमें इग्नोर करके और हमारे साथ इस तरीके से बिहेव करेगा और इतना बड़ा लॉस करके और फिर भी और वो मेरे साथ में मतलब ये अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरे इतना सच्चा, मेरे इतना ये कोई नहीं है। तो ये चीजें बहुत अहम रहा है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा समय, कि हर एक एक जैसे नहीं है, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं सब लोगों को एक एक तराजू में आप तोलो, लेकिन आपको ट्रस्ट करने से पहले पहले उसको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। रहा रिस्पेक्ट की बात, रिस्पेक्ट हम हमेशा एक दूसरे का मतलब करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। मैंने एक हदीस पढ़ा कि उसमें अगर एक ने सवाल किया था, मतलब हदीस का मतलब उन्होंने एक मतलब बड़े बड़े बहुत बड़े आलिम है, उन्होंने एक जवाब दिया कि अगर बाप हमारा मतलब ये दो शख्सियत के ऊपर मैं कर रहा हूँ, दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो उसने कहा कि अगर हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी हमें हमारा बाप डांट रहा है, हमें मतलब ये कर रहा है, तो हमें क्या उसको मतलब जोर से चिल्ला रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बाप के ऊपर मतलब बड़े सही अंदाज में आप उसको मतलब ये कर सकते हो, लेकिन आप उस जबान में उसके ऊपर नहीं चिल्ला सकते हो, ये नहीं तो फिर आप गुनहगार हो जाओगे। तो ये सब चीजें हमारे दिन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट का मतलब इसमें सारी चीजें आती है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे हिसाब से रिस्पेक्ट करें, लेकिन मतलब ट्रस्ट को मतलब थोड़ा सा ये करके अपने हिसाब से फिर उस पर फैसला लिया करें, आंख बंद करके ना करें।
1: चलिए बहुत ही जबरदस्त बात, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। कि और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो है ना पहले कॉलर बनते हैं, ये बात सच है, जो पहले आते हैं उसको थोड़ा सा यू नो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है,
0: क्या रहता है। मैं अपने तरफ से अच्छी बातों को मतलब मद्देनजर रखती हूं।
1: नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, बिल्कुल
0: मतलब भाई हमारे भाई और आएंगे इंशाल्लाह और कुछ सीखने को मिलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि और हमारे भाई आए और मतलब इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें और हम लोग सुनकर उससे मुस्तफीद हों
1: इंशाल्लाह। जरूर, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम।
0: साथियों को हमारे भाइयों को सलाम व आदाब,
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। तो आज हमारे साथ जो कॉलर जुड़े उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं चाहूंगी कि आप भी जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है जब रिश्तों की बात हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या ट्रस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रिस्पेक्ट। वैसे तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा स्लाइटली किसी एक की तरफ आपको जाना है तो आपके हिसाब से आप किसके साथ जाएंगे एंड क्यों जाना चाहेंगे, टू लेट मी नो। नंबर इज 4434377। यहाँ पर एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक हमें लेना है, वापस आएंगे तो ये डिस्कशन जारी रहेगा।

FM 107. Time check. दोस्तों टाइम फॉर द टाइम चेक और हम अपने शो के सेकेंड आवर में एंट्री ले चुके हैं. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:06.

0: हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक डायरेक्टली जुड़ा है रिश्तों से, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या फैमिली में आपके फैमिली मेंबर से आपका रिश्ता हो या फिर वर्क प्लेस रिलेशनशिप। हम अक्सर ये कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रस्ट से पहले कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट आती है। तो बस आज यही जानना है कि रिस्पेक्ट पहले कि ट्रस्ट पहले, कि कौन पहले कौन बात, कौन चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपसे मैं पूछ रही हूँ रिश्तों के हवाले से। तो एक और कॉलम मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, आप बताइए कैसे हैं? और उम्मीद कर रहे हैं खैरियत से ही है इंशाल्लाह।
1: फ्लाइट नंबर है 443-443-77।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए थैंक यू जी, शुक्रिया, आपने भी रिपीट कर दिया नंबर हमारा।
1: सवाल तो बहुत अच्छा है।
0: क्या कहेंगे?
1: और क्या बोले?
0: रिस्पेक्ट।
1: रिस्पेक्ट,
0: भरोसा या फिर किसी को इज्जत एहतराम देना,
1: नहीं, इन दोनों में से अगर आप नहीं करते तो आपका रिश्ता मतलब टूटने का इंसान ज्यादा, यही कहना है।
0: मतलब रिश्तों के हवाले से ज्यादा अहम क्या है? वैसे तो दोनों ही अहम है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, फिर भी ज्यादा आपको क्या लगता है ज्यादा अहम क्या है? भरोसा ज्यादा अहम है या फिर रिश्तों में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज्यादा अहम है?
1: इसमें तो रिस्पेक्ट तो एक होता है, रिस्पेक्ट तो मतलब आपकी जो एक बड़ा छोटा के रिस्पेक्ट करना ही करना, इसमें सबसे बड़ा यही ये चीज है।
0: अच्छा बताइए, कह तो रहे हैं आप सब लोग के करना ही करना, वैसे ही रिस्पेक्ट आप दे पाते हैं अपने बच्चे को? वैसे देते हैं या डांट देते हैं उसे?
1: जहाँ तक रिश्तेदार है, हाँ, 15% तो मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, लगभग 85% नहीं देता हूँ। क्योंकि हो रहा है उससे मैं थोड़ा दूर हो चुका हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भरोसा। भरोसा का मतलब ये नहीं कि मैंने आपको बोला और आपने हाँ कर दिया, ये भरोसा नहीं है, उस भरोसे से निभाना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो उससे बोल दो भाई प्लीज मेरे से काम नहीं होगा, क्योंकि आप मैं नजर जी को बोलते नजर जी मुझे ये चीज चाहिए, आपने बोला उसके नो रोके डन, फिकर न करो हो जाएगा। उस टाइम पे मैं आपके साथ जा रहा हूँ मांगने के लिए, आप बोले सॉरी, आप सॉरी बोल रहे तो इसका मतलब क्या है? आपको मेरा भरोसा तोड़ दिया, मैंने दूसरे को भी भरोसा दिया था, उसके जरिए से दूसरे का भी नजर मैं गिर गया। तो भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उस भरोसे के निभा ले वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भरोसा करना इम्पोर्टेंट नहीं, भरोसे के निभाना इम्पोर्टेंट है। मेरा कहना ये,
0: आपका कहना ये है कि रिस्पेक्ट तो चलो सेकेंडरी है, फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो है वो है भरोसा एंड ट्रस्ट, वो किसी भी रिश्ते की। लेकिन ये हर बार आप कमिटमेंट के साथ अगर भरोसे जी,
1: दुनिया में आप देखिए कैसे भी मतलब कि औलाद हो या बाप हो, कभी भी बेटे अपने बाप को तुम या रे करके मतलब कि बात नहीं करता है, उसको कभी भी कितना भी मारेगा कितना भी बेची करेगा उसको रिस्पेक्ट ही करेगा वो, ठीक है। लेकिन जब वो बेटे का जब वो बाप होना भरोसा तोड़ देता है, एग्जाम्पल मैं 10 साल से कमा रहा हूँ, अपने बाप के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा हूँ, 10 साल की कमाई मैंने दे दी और उस कमाई का मैंने सोचा वो आपने क्या किया, बोलते हैं कुछ वर्ष में दिया इधर उधर चला गया, तो मतलब भरोसा टूट गया। रिस्पेक्ट तो है बाप का मेरा पास, लेकिन भरोसा नहीं, वहाँ से रिश्ता मतलब टूटना शुरू हो जाता है। तो भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट है, भरोसे के निभाना उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट है।
0: तो मतलब आपके हिसाब से ट्रस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिश्तों में। अगर रिश्तों में रिस्पेक्ट ना भी हो चलेगा, बट ट्रस्ट होना जरूरी है। हाँ नहीं चलिए, मैं खुद भी काफ़ी हद तक इस चॉइस में कंफ्यूज ही हूँ। अब देखती हूँ मैं किस तरफ ज़्यादा कौन क्या कहता है उसके हिसाब से। अच्छा मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि रिस्पेक्ट से ही शुरुआत होती है, जब आप किसी को थोड़ा सा

0: रिस्पेक्ट देते हैं उसको एडमायर करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट बनना शुरू होता है. ट्रस्ट कह के तो नहीं बनता कि मुझ पे मुझे आप पे यकीन है या ये है, ये तो बाय द टाइम थोड़ा थोड़ा थोड़ा चीज़ों को देखते ऑब्जर्व करते करते बिल्ट होना शुरू होता है ऑटोमेटिकली. और ये भी हम नहीं कह पाते पूरे दावे से कि 100% आई ट्रस्ट यू.
1: अभी मैं आपके साथ बात करता हूँ, आपको भी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ और आप भी मुझे रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है? एक दोनों तरह. लेकिन भरोसा करना बहुत मुश्किल है एक दूसरे के ऊपर. रिस्पेक्ट तो इंसान हर इंसान को देता है, अगर आपको मैं रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे भी दोगे, आप नहीं दोगे तो मैं भी नहीं आपको दूंगा.
0: ये बात सच है. अच्छा आप मुझे रिस्पेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि हो सकता है आप इतने टाइम से मुझे सुन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ मेरी पर्सनैलिटी से हल्की सी आपकी वाकफियत हो गई है ना, और सेम मेरे लिए भी है कि मैं आपके बारे में आपको थोड़ा सा जान गई हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छे शख्स हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं. तो उस रिस्पेक्ट की बुनियाद क्या थी? मेरी कुछ खूबियां जो आपको नजर आई, या आपको जो मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ उसमें आपकी खूबियां मुझे नजर आई. तो अब जब बुनियाद हमारी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग तो हो गई इस बात पर हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना शुरू किया, तो क्या ये रिस्पेक्ट धीरे धीरे ट्रस्ट में भी तब्दील हो सकती है? एकदम तो नहीं, एकदम से रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं, एकदम से ट्रस्ट तो नहीं होना चाहिए, बट क्या धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि ये फिर तब्दील हो जाए ट्रस्ट में भी?
1: जो चीज दुनिया में आसानी से मिलता है उस चीज की कदर नहीं होती. मेरा कहने का मतलब आपको रिस्पेक्ट पहली बार मिलोगे तो आपको रिस्पेक्ट में दूंगा, धीरे धीरे जानूंगा, धीरे धीरे पहचानूंगा, तभी आपके ऊपर मैं भरोसा करूंगा. भरोसा बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: बहुत गुना आगे है भरोसा.
0: अच्छा जी ये बात है, चलिए माना हमने आपकी बात. तो और आपकी बात के साथ
1: इंसान है जो अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देता है, मुझे लग रहा है कि 2% भी नहीं होगा जो अपने माँ बाप से मतलब रिस्पेक्ट नहीं देता होगा, कितना भी लफड़ा हो जाए तो रिस्पेक्ट देता है. लेकिन भरोसा मेरे ख्याल से लग रहा है कि उतना ही 95% नहीं करता होगा. जब पैसे की मामला हो या कोई चीज की भरोसे की मामला हो तो बहुत कम इंसान जो एक दूसरे पर भरोसा करता है.
0: अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक हम किसी इंसान की कदर नहीं करेंगे, उसकी फीलिंग्स को, उसके ओपिनियंस को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक उस पर भरोसा कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के साथ भी जुड़ जाती हैं, नहीं?
1: वही तो मैं कह रहा हूँ ना नदिया जी, मतलब भरोसा हर इंसान के ऊपर नहीं कर सकते है ना, रिस्पेक्ट हर इंसान को दे सकते हैं आप, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते. इसके मतलब है कि भरोसे का जो तराजू है ना वो ज्यादा मतलब कि वजनदार है.
0: अच्छा मैं रिस्पेक्ट को ज़्यादा अहमियत दे रही थी इसलिए बार बार पूछ रही थी घुमा घुमा के, लेकिन चलिए बिल्कुल सही कहा आपने कि रिस्पेक्ट दे सकते हैं आप और देते भी हैं कई बार. अब मुझे समझ में आया जैसे हमारे बॉस हैं, हो सकता है या कोई ऐसा इंसान है जिसे हम बहुत ज़्यादा एडमायर तो नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि हम बाउंड हैं रिस्पेक्ट देने के लिए. तो रिस्पेक्ट तो दी जा सकती है, बट हाँ ट्रस्ट ये बड़ी चीज़ है. ये आपने कहा ये हर किसी को आप बहुत जल्दी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ये शायद रिश्ते के लिए इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा है. सो वेरी वेल सेड, बहुत ही अच्छी बात. थैंक यू सो वेरी मच नूर जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. ओके अल्लाह हाफिज़, बाय. एंड वी आर कनेक्टेड टू वन मोर कॉलर. हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: हाँ जी,
0: हाँ जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप?
2: सत श्री अकाल जी, वधिया. तुसी दसो की हाल चाल है?
0: बढ़िया जी, चंगा सब.
2: चलो ऑल गुड जी.
0: ऑल गुड, एक्सीलेंट
2: एक्सीलेंट. उस पे मैं आने वाला था अभी.
0: मैंने कहा आप कहीं भूल तो नहीं गए, याद दिला देते हैं.
2: एक्चुअली मैंने क्या सोचा था नाजिया जी,
0: हाँ जी,
2: जिस हिसाब से आपने अपनी डिसेंट एनर्जी के साथ प्रोग्राम करके हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है ना, और हमें बोलने का मौका दिया है, तो हमारा भी मैडम फर्ज बनता है आपकी रिस्पेक्ट करने का.
0: आहा, क्या जोड़ा है आपने, वाह, एकदम क्लियर करके समझा दिया रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों. तो पहले ट्रस्ट आया फिर रिस्पेक्ट, नाइस. आपके सिनेरियो
2: वो आपके शो में आया मैडम. अच्छा. आपके शो में आया वो.
0: तो पहले क्या था, रिस्पेक्ट आया कि पहले ट्रस्ट आया?
2: पहले रिस्पेक्ट ही होती है मैडम जिंदगी में.
0: रिस्पेक्ट है फिर ट्रस्ट होता है. सही, ये बात है. अच्छा ये भी हो सकता है कि जिस पे भरोसा ही ना हो उसको भी इज्जत दी जाए, दे पता है क्या? आपका तो कोई है ऐसा रिश्ते में?
2: बिल्कुल मैडम, रिश्ते में या बाहर भी किसी को रिस्पेक्ट देना तो अपना फर्ज है ना. जैसे सपोज हमें कोई बुजुर्ग मिला, उसको सलाम बुलाना, गुड मॉर्निंग करनी, या हमारे साथ कोई बस में बैठ के बंदा ट्रेवल कर रहा है सीनियर, तो हमारी हमारा फर्ज बनता है ना, अगर वो बंदा खड़ा है उसको रिस्पेक्ट से अपनी सीट ऑफर करना। तो ये मैडम रिस्पेक्ट तो नॉर्मल दुनिया में चलता ही है हर सिनेरियो में।
0: मतलब रिस्पेक्ट आप उसको भी दे सकते हैं इस पे आपका कोई ट्रस्ट ना हो?
2: कोई ट्रस्ट नहीं है जी।
0: अच्छा, जब मैं रिश्तों की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई ऐसा फेमिलियर बंदा है जिसे आप भरपूर जानते हैं? आप चलिए, आपकी वाइफ है,
2: वाइफ के साथ मैडम जो रिश्ता है वो ट्रस्ट का है।
0: अच्छा, मुझे लगा रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए।
2: नहीं मैडम, सबसे पहले ट्रस्ट है मेरे हिसाब से।
0: अच्छा, ओके, नाइस। और ऐसा क्यों आप कह रहे हैं?
2: एक्चुअली चक्कर पता क्या है नाजिया जी, देखिए रिस्पेक्ट से अगर बंदा हर्ट भी हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है भी बंदा दूसरे बंदे की रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा। क्योंकि रिस्पेक्ट का अपनी लाइफ में ऐसा रोल है ना, बंदा डिसरिस्पेक्ट हो गया कोई बात नहीं है, मगर बंदा दूसरी जगह रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ता दूसरे रिश्ते में। मैडम अगर एक बार आपका ट्रस्ट टूट गया ना, तो उसको दोबारा जुड़ने में बहुत लंबा टाइम लगता है।
0: ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, ट्रस्ट टूटे तो वाकई रिश्ता जो है वो शायद टूट भी जाए, रिस्पेक्ट छूटे तो शायद रिश्ता ना टूटे, ये तो है।
2: मैडम अगर आप ट्रस्ट के पीछे देखोगे ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी। तो ट्रस्ट अगर एक बार बंदे का टूटता है ना, तो उसको दोबारा बनने में बंदे को बहुत एक्सपीरियंस लगता है, बहुत टाइम लगता है, मगर फिर भी वो बात नहीं बनती जो पहले होती है।
0: सही, वो बात नहीं आती है, इसलिए ट्रस्ट आपके हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी लग रहा है अभी तक जितने भी कॉलर्स मेरे साथ जुड़े उनका ये कहना है कि हाँ, ट्रस्ट कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा है, जबकि लोग कहते हैं कि रिश्तों में रिस्पेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिस्पेक्ट शुरुआत है ट्रस्ट की। लेकिन फिर भी आपने जो बात कही वो वाकई अच्छी और सही सटीक। चलिए आगे भी फर्दर देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, कोई निकल के आता है रिस्पेक्ट की तरफ कि नहीं। अभी तक तो जो है वो ज़्यादातर लोग के वोट्स हैं ट्रस्ट पे, एंड आई अग्री कि ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा बड़ा है, एंड इसका टूटना वाकई नुकसानदेह है रिश्तों के लिए।
2: नाजिया जी देखिए, अगर आप रिश्तों की बात करोगे ना, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो नाराज हो जाते हैं। एक छोटी सी वजह से भी बंदे ने मेरे को हेलो हाय नहीं किया, मेरे को अच्छे से नहीं बुलाया, मगर वो चीज इजीली सॉल्व हो जाती है। मगर जब मैडम भरोसा टूटता है ना बंदे का, मेरे हिसाब से मैडम ट्रस्ट टूटना पता क्या है?
0: क्या है?
2: सपोज एक टेबल है मैट के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर कांच का सामान भी पड़ा है, स्टील के बर्तन भी पड़े हैं, काफी सारा सामान पड़ा है। भरोसे का टूटना ऐसे है, मानिए जैसे आपने उसके नीचे से कालीन खींच दिया, जब आप कालीन खींचोगे आप देखोगे टेबल के ऊपर पड़ा सामान बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा।
0: वाह, इतनी अच्छी मिसाल दी आपने। और टीन का ये जो स्टील का है वो तो ना टूटे शायद, लेकिन हाँ जो कांच का है वो तो टूट ही जाएगा, तो रिश्ते हमारे कांच के तरह है।
2: मैडम नहीं भी टूटेगा ना, उसको समेटने में टाइम देखो कितना लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी आपकी,
0: कितनी एनर्जी लगेगी। सही, बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी, जबरदस्त, बहुत ही शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से समझाया और कन्विंस भी किया, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हमेशा ही आप बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की वजह से, जो हर बंदे की समझ में भी आता है, सटीक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, बड़े ही इम्पैक्टफुल होते हैं।
2: बाकी मैडम इसके पीछे तो बहुत कुछ है अगर आप फिलोसफी में जाएंगे।
0: हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, मैं देख भी रही थी ह्यूमन बिहेवियर पे, एक छोटी सी बुक है उसमें भी, लेकिन ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली, अभी मैं कहूँ या नहीं कहूँ पर मैं कह ही देती हूँ, ज्यादातर जितने भी स्कॉलर्स हैं उनका मानना है रिस्पेक्ट।
2: ओके,
0: जबकि मैं भी आप ही लोगों की तरह ट्रस्ट के साथ ज्यादा वो हूँ, इसलिए मैं खुद भी कुछ ये नहीं तय कर पा रही थी कि इतना ज्यादा रिस्पेक्ट को क्यों अहमियत दी गई है स्कॉलर्स के बीच।
2: अच्छा मैडम जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है।
0: हाँ जी, पूछिए।
2: आपने क्या मैडम साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी सेमिनार्स अटेंड किए हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे साइकोलॉजी वगैरह तो नहीं पढ़ी है क्योंकि वो मुझे कभी बहुत एक्साइट नहीं करती थी. हाँ कभी कभी कुछ किताबें मुझे कोई गिफ्ट कर देता है तो उसमें एक दो किताबें मैं फॉर्चुनेट रही कि मुझे मिल गई ह्यूमन बिहेवियर्स पे. इस पर तो अब कुछ नहीं है तो चलो जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ स्पेशली जब एयरपोर्ट पर होती हूँ तो मैं किताब वताब पढ़ती रहती हूँ कि चलिए आपका टाइम भी अच्छे से कट जाता है. तो दैट्स हाउ थोड़ा बहुत मैंने ऐसे पढ़ा है बट मेरा कभी भी सब्जेक्ट नहीं. आई वॉज ऑलवेज इन टू जर्नलिज्म या फिर बिजनेस मैनेजमेंट में. आप सोच रहे होंगे सारे लोग की इतनी सारी ये लेकर आ रही हैं इस तरह के टॉपिक्स तो इनका कुछ ना कुछ ताल्लुक है. नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है. हाँ सुबह सुबह इस तरह की हमें हाईली रिकमेंडेशंस हैं कि आप इस तरह के टॉपिक्स लेकर आइए जो रिश्तों को मजबूत करे, लोगों के बीच जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए और पॉजिटिविटी जो है वो आप लेकर आए मॉर्निंग में. सो दैट्स हाउ इस तरह के टॉपिक्स हम लेकर आ रहे हैं. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. वेरी गुड मॉर्निंग. कौन है मेरे साथ?
3: उसामा बात कर रहा
0: हूँ. उसामा कैसे हैं? उसामा आप मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक पे बहुत है ये बात आपने की. इसमें इतनी फिलॉसफी इतनी ज्यादा है कि कितना आदमी क्या बोले क्या कहे बहुत सारी दलील है.
3: आप दोनों टॉपिक पे पूरी पूरी बुक लिख सकते हैं.
0: पूरी बुक खोल के भी बैठे रह के तब भी आपको समझ में नहीं आएगा. आप किताब पढ़ के भी नहीं कह पा रहे कि मैं 100% कन्विंस्ड हूँ इस पॉइंट के इस ऑथर के साथ. नहीं समझ में आ रहा क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जैसे कह रहे हैं जितने भी अभी तक लिसनर्स आए उनका कहना था ट्रस्ट. तो मेरा खुद का भी मानना है ट्रस्ट बट मैं देख रही हूँ कि बाकी स्कॉलर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट को ज़्यादा रिश्तों में अहमियत दे रहे हैं.
3: रिस्पेक्ट देखिए मैं समझता हूँ कि हर हर इंसान का एक बुनियादी हक है.
0: सही ये बात सही कही. लाइन बहुत अच्छी.
3: और दोनों चीजें मेरे ख्याल से दोनों चीजें जो हैं आप यानी कि पिक एंड चूज नहीं कर सकते. दोनों आपको साथ लेके चलनी पड़ती है. जैसे आप फर्ज कीजिए कि मैं एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप खाने में आपके जैसे पानी इतना जरूरी है आपके मील में उसी तरह मेरे ख्याल से ट्रस्ट के साथ साथ रिस्पेक्ट भी जरूरी है या रिस्पेक्ट के साथ साथ ट्रस्ट भी जरूरी है.
0: सही
3: दोनों चीजें मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है. आप किसी एक को चूज नहीं दे सकते चूज नहीं कर सकते लेकिन हाँ ये है कि आप किसी एक को इम्पोर्टेंस ज्यादा इम्पोर्टेंस दे सकते हैं. तो आई विल गो विद रिस्पेक्ट मेरे ख्याल से.
0: अच्छा नाइस. क्यों आप पहले हैं जो रिस्पेक्ट के साथ जा रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए बताइए.
3: ट्रस्ट के साथ भी वेरी बात है. ट्रस्ट इज इम्पोर्टेंट किसी भी किस्म के रिलेशनशिप के लिए और खासतौर पे बिजनेस वगैरह ये इन चीजों में आपके ट्रस्ट मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन मेरे ख्याल से अगर रिस्पेक्ट होगी तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा. मेरे ख्याल से आप अगर रिलेशनशिप में देखते हैं तो तब भी आप अगर रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल से ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा. इसी तरह अगर आप सपोज आप अगर अपनी मैन पावर से देखते हैं या आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अगर रिस्पेक्ट से करेंगे मेरे ख्याल से वो ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे आपसे.
0: अगर आप ट्रस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओह सॉरी रिस्पेक्ट हो तो ट्रस्ट के चांस बढ़ जाते हैं.
3: ट्रस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं और यानी कि आप ये कह लें कि ट्रस्ट का रास्ता हमवार हो जाता है मेरे ख्याल से.
0: रास्ता हमवार हो जाता है बिल्कुल सही.
3: लेकिन उस चीज का ये नहीं है कि अब आप उस चीज का फायदा उठाएंगे जी हाँ मैं तो इस चीज को लेके इस वीकनेस को लेके तो यानी कि इस पे भी पॉलिटिक्स करूंगा. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए. जैसे एक वो पिछले दिनों एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था आपको पता है पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टोरीज वगैरह ये उसमें एक मैं चीज देख रहा था कि एक किसी बहन ने इतना वाकया लिखा हुआ था कि उनके घर में ना आग लगी थी तो वो उस वक्त घर से कहीं निकल के दूसरे घर में चली गई और पाकिस्तान में जैसे आपको पता है मिथ या इस तरह लोगों ने वो र्यूमर्स फैलानी स्टार्ट कर दी. हमारा मुआशरा तो वैसे ही आपको पता है खवातीन के लिए तो बस एक मौका ढूंढता है र्यूमर्स के लिए. वो उस चीज को लेके एक उसके कजन ने उनको प्रपोजल भेजा कि अब आपके यानी कि इस तरह बहुत र्यूमर्स हैं बहुत ज्यादा अफवाहें हैं तो आपके यानी कि रिश्ते के लिए काफी मुश्किलात हो रही हैं. तो उन्होंने उनको प्रपोजल दिया, तो वो इनके ट्रस्ट की बेस पर उन्होंने कहा चीज के लिए उनके लिए पॉजिटिव था कि बाकी ऐसे मुश्किल टाइम पे उन्होंने मुझे यानी कि वो सहारा दिया। लेकिन बाद में वो कहने लगे कि मेरी शादी को तकरीबन 7 से 8 साल हो गए हैं, अब उस बेसिस पे लेके मेरे पे यानी कि एक हक जिताया जाता है पूरी फैमिली की तरफ से कि जी हमने तो तब हाथ था मतलब कोई भी नहीं था, मतलब यानी कि ये चीज भी नहीं होनी चाहिए कि आप उस चीज का गलत फायदा ना उठाए।
0: अब देखिए यहाँ पर रिस्पेक्ट कितने इम्पोर्टेंट हो गए, आप उसको इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, कहने को आपने उस टाइम पे
3: जता रहे हैं कि हमने तो इस उस वक्त किया, तो वो आप सोचेंगे उसके दिल पे क्या गुजरती होगी,
0: क्या गुजरती होगी। बिल्कुल, और ये भी आपने बहुत अच्छी बात की, देखिए आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है आपने उसको ट्रस्ट कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन आप उसको रोज जो है बुरा भला बोल रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, इज्जत देते
3: ही नहीं, भी करें, मौका आने पे भी नहीं करना चाहिए ना,
0: नहीं, नहीं मतलब मैं एक बता रही हूँ कि किसी भी रिश्ते में जैसे हम और आप कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं भी कहती हूँ बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप हो सकता है ट्रस्ट कर रहे हैं किसी शख्स पे, लेकिन आपका रवैया ऐसा है कि आप उसको बेइज्जत कर देते हैं, आप उसका मजाक उड़ा लेते हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं पब्लिकली, अपने दोस्तों के सामने उस पर जोक्स कर दिए, मजाक उड़ा दिया, तो ये रिश्ता ठीक है आपका ट्रस्ट दिल ही दिल बन रहा है, लेकिन उसका ट्रस्ट तो आपसे खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये मुझे बात समझ में आई, इतनी देर से मैं ये भी सोच रही हूँ कि ये स्कॉलर्स इतना हाईली क्यों कह रहे हैं रिस्पेक्ट को, बट देन ट्रस्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपने ये वाली बात कह के बहुत अच्छे से मुझे समझाया, थैंक यू सो मच कि आपने ये छोटा सा इंसिडेंट हम सबके साथ शेयर किया।
3: नहीं को इसमें भी अगर आप कहें ना कि आप चीज को चूज करना, अगर पेशन चूज करें ना तो उसमें भी करना एक इम्पॉसिबल है, जहरी बात है, ये तो दोनों को लेके चलना पड़ता है। एक एग्जांपल से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कि ट्रस्ट एक सीड की तरह है, और रिस्पेक्ट आप तब जब तक आप तो पानी नहीं देंगे तब तक वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, जब तक आप पानी नहीं देंगे तब तक जहरी बात है आपका ट्रस्ट भी ज्यादा बिल्डअप नहीं होगा, तो वो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है, सॉरी रिस्पेक्ट इस लिहाज से ही बहुत जरूरी है ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए।
0: सही, वेरी वेल सर, जबरदस्त, थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू आपकी कॉल के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इट्स रियली एन आई ओपनर फॉर मी, मैं भी अभी थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि कहाँ क्या से, बट यहाँ थैंक यू कि आपने ये बात शेयर की, एंड इट्स रियली नाइस, बहुत ही अच्छा, अपना ख्याल रखिए, हैव अ फैंटास्टिक डे, टेक केयर, बाय, हाफिज। ऑलराइट दोस्तों, मैं चाहूंगी कि हम इतने अच्छे टॉपिक पे आज बात करें जो कि इतना इंटरेस्टिंग भी है और इतना कॉम्प्लिकेटेड भी, तो इस टॉपिक को हल्का भी रखें, बीच बीच में म्यूजिकल ब्रेक्स भी लेते हैं जिससे आपको भी थोड़ा सा मौका मिले चीज़ों को जो है वो एब्जॉर्ब करने का, मुझे भी थोड़ा सा मौका मिले मेरी अपनी राय जो है उसे कायम करने का, बिल्ड करने का कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कई बार ऐसे टॉपिक्स आ रहे हैं, अभी एक दो बार से मैं देख रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, मेरा क्या स्टैंस होना चाहिए। सो थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक लेती हूँ, वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी, एंड हाँ आज है ट्यूसडेज तो बहुत ही कमाल के गाने लाइंड अप हैं 90s के।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Alright guys, good morning, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ 7:39 ऑन द क्लॉक. आज अजीब सी मुश्किल का शिकार हैं आप भी और हम भी. समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्पेक्ट के साथ जाएं कि ट्रस्ट के साथ जाएं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. वैसे तो कोई कहेगा दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं. हाँ, ये मुद्दा नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ये मुद्दा है. तो फिलहाल मेरे साथ जो है वो एक कॉलर यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैसे हैं जमाल जी, खैरियत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत, सब ठीक. आज तो मैंने अच्छा खासा परेशान कर रखा है आप लोगों को भी और खुद को भी. पूरे हफ्ते से मैं परेशान कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सुधरना चाहिए. तो आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहेंगे? नहीं, आप सुधरिए मैम थोड़ा सा.
1: नहीं, वो देखिए कभी कभार ये होता है ना कि इंसान को सिर्फ फायदा जहाँ हासिल हो, तो उसके लिए मना करने आपके साथ चलते सिर्फ वही सफेद हो रहे हैं, कहीं उनको जरा सा भी खसारे का कोई चांस नहीं है.
0: तो मतलब इस
1: देखिए

0: बहुत अच्छे हैं।
1: आज के मौसम जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, मेरे अपने मतलब नुकसान नजर से कि एहतराम रिस्पेक्ट पहले जरूरी है। आप उसकी वजह भी पूछेंगे तो मुझे उसकी वजह ये लगती है कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर मैं किसी अजनबी से मान लीजिए मिलता हूँ तो मुझे क्या आपको भी शायद लगेगा, हर इंसान को ये लगेगा कि अगर हमारी पहली बार किसी से बात हो रही है तो क्या हम उससे इस बात की उम्मीद रखें कि ये हम इतना भरोसा कर लें उस पर, या इस बात की ट्रस्ट करें कि नहीं यार ये थोड़ी देर के बाद ये हमारे लिए ये सब कुछ कर जाने वाला है। नहीं, वो हम शुरू करेंगे कि हम उसके एहतराम उसको रिस्पेक्ट देते हुए है ना, पहले उसको मजबूती दे लें उसको, चाहे वो 2 मिनट 4 मिनट का रिश्ता क्यों ना हो, तभी जाके इस बात की तमाम होगी कि हाँ उससे कुछ ट्रस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिना देखे अगर तो हम मतलब बस जुबान है तो हमारा मामला 2 मिनट भी नहीं चलेगा, और अगर हमने उसको एहतराम करना उसको शुरू किया, रिस्पेक्ट देना शुरू किया और उसकी जात से हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, तभी हम आगे सोच सकते हैं कि इसको ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अवलिन तो यही है कि हमें पहले उसको है ना अपने लिए मोहतरम समझना है, या उसको उसकी नजरों में मतलब मोहतरम देखना है, तभी यह काम हो पाएगा। तो पता नहीं मुझे लगता है मुझे कि ये पहली चीज ही है। और
0: सही
1: एक शरई तरीके से भी अगर देखा जाए तो एक बार एक शख्स शादी में आया शरद लाने से पूछता है कि अल्लाह के रसूल की हालत जिंदगी कैसी थी, तो उन्होंने कहा कि टमाटर करो कुरान नहीं पढ़ा तुमने, अगर कुरान पढ़ा है तो लास्ट बड़े मरतबे पर फाइज थे। मुझे लगता है कि अगर आप हम अपना अखलाक किसी के सामने भरपूर पेश करते हैं तो वो आलू आपके सही अगर वो ऐसा करेगा, ऐसा व्यवहार आपसे करेगा सामने से कि आप खुद उस पर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे या ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, या खुद आपको वो ये समझेगा कि हाँ यार इंसान मोतबर है। वो कैसे, वो इस तरह से कि अगर ये मैं जानता हूँ कि नाजर हमारे लिए मतलब ये है कि मैं इतना एहतराम उनका करता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ, इतना रिस्पेक्ट उनको देता हूँ, उतना ही मुझे मिलता है, तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि आपका ट्रस्ट कहीं से भी मेरे कहीं जमे।
0: बहुत अच्छी बात।
1: मुझे ये कभी नहीं लगेगा कि अगर कोई आदमी मुझे बहुत प्यारा समझ रहा है या मुझे बहुत अच्छा समझता है अखलाकी एतबार से, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एहतराम है, तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगा कि मैं कोई ऐसे धोखेबाजी वाला काम करूँ, कोई ऐसा मतलब काम करूँ जिससे मेरा एतबार मजरूह हो उसकी नजरों में, या खुद कोई इंसान एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेगा जिससे ये लगे कि नहीं यार हमारी इज्जत तो ये करता है लेकिन याद में भरोसे का नहीं। वो भरोसा नहीं तोड़ेगा कभी, इत्माद और ट्रस्ट नहीं तोड़ने की कोशिश करेगा अगर तो वो आपको रिस्पेक्ट देता है दिल से। और
0: बहुत ही अच्छा पॉइंट, मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो रिस्पेक्ट से ही हो रही है, कि रिस्पेक्ट से आपने शुरुआत करी, एक आपका बना उसके साथ एक कनेक्शन, एंड देन लेटर ऑन ट्रस्ट भी बिल्ड हो सकता है, हो जाए, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन तो है रिस्पेक्ट। हाँ,
1: पहले अभी यार एक भाई ने ये बात कही ना कि ये जो रिस्पेक्ट है, ये जो मतलब लफ्ज़ एहतराम है ना, ये इंसान की जिंदगी का बुनियादी चीज है। तो उस चीज से मैं एग्री कर रहा हूँ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जुमला बोला।
0: ये बुनियादी हक है, बिल्कुल सही कहा, आप बाउंड हैं रिस्पेक्ट देने के लिए।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी सारी दुनिया के लिए भरोसेमंद ना हो, लेकिन अगर आप उसको भरपूर रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके सही मोतबर भी हो सकता है।
0: हाँ, ये बात जी जी जी बिल्कुल सही कहा, वो क्योंकि हर इंसान जो है ना वो लाइफ में एक्सेप्टेड और वैल्यूड फील करना चाहता है, हर कोई ये चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है कि उसे मिले।
1: छोटे बच्चे को अगर बाबू कहके बुलाएंगे ना तो वो जो बहुत मतलब कमकल है ना, और उसकी कमकली दुनिया की बहुत सारी चीजें नहीं जानती है, लेकिन अगर उस छोटे से बच्चे को भी आप मतलब रिस्पेक्ट देते हैं जो 5-6 साल का हो, 8 साल का हो, जो दुनियादारी नहीं जानता है, तो वो कभी भी आपको देख कर मुंह नहीं बनाएगा, मुस्कुरा कर मिलेगा, और कभी आपको किसी मतलब खराब लफ्ज से नहीं पुकारेगा।

0: सही,
1: वो मासूम अनिल खत्ता बता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत जबरदस्त
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो सही है कि आप अगर इज्जत देते हैं किसी को, एहतराम करते हैं किसी को, रिस्पेक्ट करते हैं भरपूर दिल से, तो वो आपको कभी खोना नहीं चाहेगा, वो कभी आपको जाया नहीं करना चाहेगा। क्योंकि मैंने देखा है कई बार, एक छोटा सा रील में देख रहा था
0: जी, जी।
1: एक बंदा बोलता है कि मैं तुमसे यार कितने सालों से मोहब्बत करता हूँ, कि जब हम लोग छोटे से सभी से हम मोहब्बत करते हैं आपसे, तो आज आप अपने घर वालों से मेरे लिए बात नहीं कर सकते हो या और कोई चीज। तो ऐसे बहस होते होते उसने कहा कि हम जब छोटे से सभी से ये महसूस कर रहे हैं कि तुम हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन तुम्हें हमको इज्जत देना मंजूर नहीं, ऐसा क्यों?
0: Nice. बहुत ही अच्छी बात कही, और मतलब आपकी इस बात से मैं बहुत अच्छे से इत्तेफाक रखती हूँ कि जब आप किसी को भरपूर रिस्पेक्ट देते हैं तो वो आपके लिए हर तरह के, हर तरीके से ट्रस्टवर्दी इंसान भी बनता है और बन के दिखाता है। तो शुरुआत कहीं ना कहीं, हाँ, जो जो और भी कहा लिसनर ने, ये कहीं ना कहीं शुरुआत रिस्पेक्ट से होनी चाहिए। तो रिश्तों में रिस्पेक्ट मैंडेटरी है ही, ये तो है, और ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, ये सबसे पहले है जो आता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह कि आपने वक्त निकाला, आप मेरे साथ आए, जुड़े, थैंक यू सो मच, और बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर की हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू वंस अगेन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह
1: हाफिज़।
0: रोज कुछ ना कुछ ऐसा निकल रहा है, अभी दो दिन से ऐसा, आप सोचिए दो दिन हो गए मुझे जमाल जी, ऐसा हो रहा है कि मैं अपना कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, आखिर में मैं क्या कहूँगी कि ये चॉइस ज़्यादा बेटर है कि ये चॉइस है, क्योंकि दोनों ही इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी सॉलिड होती हैं कि मतलब समझ में नहीं आ रहा होता ना शख्स को कि क्या कहेगा आखिर में। लेकिन ग्लैड कि आप लोगों के पास इतना कुछ होता है कि हमेशा आप कुछ एक नया एंगल देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, मेरे लिए बहुत ही अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। सो रियली रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी आप सबको कि बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आप लाते हैं, और हर कोई कुछ एक नया ऐड करता है ना पॉइंट, ये बड़ा मज़ा आता है मुझे सुन के। सो थैंक यू वंस अगेन जी।
1: एक चीज़ तो है ये, 107 FM पे हम लोग कहते थे कि मतलब ये खुशी कर्म लगता है अल्लाह का, इसमें बंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से एक बंदे आते हैं और जो बुनियादी नजरिया रखते हैं, बल्कि कभी कभी है ना हमारी जहन में थोड़े से थोड़ी सी वसी करने का काम करते हैं वो बंदे, यानी एक होता ना कि आदमी मतलब अपने जहन से जरा महदूद हो तो उसके जहन के फैलाव का भी वक्त यहाँ पे मिल जाता है, वो कई एक एंगल जो उसके मतलब जहन से निकला हुआ होता है या उस तरफ नहीं सोच पाता। देखिए एक चीज को हर तरह से हर पहलू पर सोचना कोई आसान काम भी नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे शिक्षक उसके जहन से जहन में नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन जब आपका ये मतलब क्या कहते हैं प्रोग्राम शुरू से आखिर तक अगर लिसनर को सुनो तो ये पूरी तौर पर पता ये चलता है कि नहीं, तो हम तो ये कहते हैं कि भाई ये गॉड गिफ्ट है, और बहुत सारे फिल्म चलते हैं यहाँ पे लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों का जो खुलूस है ना एक सामयिक के ताल्लुक से जो एक नजरिया आया है उसमें लिल्लाहियत की तरह है कि उसी तरह से बंदे भी कहते हैं कि अगर आप अच्छे हो तो आपको हर आदमी अच्छा लगता है, और सब पहलू की तरफ से आप आगे बढ़ते हैं ना तो हर चीज आपको इस बात में नजर आता है, नफी में कुछ नहीं दिखता है। तो हमें तो हम लोग शुक्रगुजार लोग, मुझे लगता है ऐसे तो मैं फिलहाल आपसे अकेले बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सारे सामने की तरफ से अगर मैं ये कहूँ तो मेरी बात से कोई लाइफ तपाती नहीं रखेगा कि हम लोगों को मशकूर और ममनून होना चाहिए कि ये एक प्लेटफॉर्म, ये एक स्टेज ऐसा मिला हुआ है जहाँ से जहन को थोड़ा सा न सिर्फ वसी किया जा रहा है बल्कि कुछ बोलने का भी हुनर, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो खुद मैं अपनी भी बात कर लूँ कि कभी कभी ऐसा लगता है कि न सिर्फ अल्फाज की कमी महसूस होती है बल्कि ये है कि अपने मन जमीर अदा करने में दुश्वारियां पैदा होती हैं, लेकिन बहुत मशकूर बहुत ममनून है आपसे।
0: जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, और हमें भी खुशी होती है कि हम आपके साथ जुड़ते हैं और आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस कि आप लोग टाइम निकालते हैं, हालांकि सब बिजी हैं लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं और जुड़ते हैं, तो ये वाकई इसके लिए हम आपके बहुत ग्रेटफुल हैं। थैंक यू वंस अगेन, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और अपने दिन को अच्छे से इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अलाफ़िस। तो यहाँ पर बहुत ही सॉलिड बात चल रही है, एक के बाद एक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझे कॉल कर रहे हैं 6622107 पे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं हमारा नंबर लिख लीजिए 4434377। नंबर है 4434377। इस नंबर पर हम आपकी कॉल ले सकते हैं, वरना 666 पे सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस ही हम ले पाएंगे। यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि हमारे मैसेज नहीं लिया आपने। तो ये है हिशाम जी का मैसेज, उनका कहना है ट्रस्ट कम फर्स्ट। हाँ, ट्रस्ट रिश्ते में बहुत ज़रूरी, रिश्ते में अगर ट्रस्ट ना हो तो वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है रिश्ता निभाना या उस रिश्ते में बने रहना। तो ट्रस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हम डिनाई नहीं करते। लतीफ़ खान जी हैं एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको, सलाम कहते हैं। इब्राहिम जी सभी को सलाम कहते हैं, हमें सलाम कहते हैं, सो थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो दोबारा सही सही से नहीं जुड़ पाता, और हर रिश्ते में ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है। हो भी अगर जुड़ भी जाए तो रिश्ते में एक दरार सी रह जाती है। तो ये बिल्कुल ग्लास की तरह है, टूटता है तो दोबारा जुड़ेगा तो दरार रह जाएगी। तो यहाँ पर ये कहना है मोहम्मद अरफातुल इस्लाम जी का, और उनका कहना है कि ट्रस्ट, अरफात जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो अरफात जी का कहना है इट्स द ट्रस्ट। नोमी जी हैं और कहते हैं रिस्पेक्ट इज़ द की, ये हालांकि उन्होंने नीचे लिखा, मैंने इसको सबसे ऊपर कर दिया, और फिर ये कहते हैं यू कैनॉट ट्रस्ट एवरीवन, इट कम्स विद एफर्ट्स रिलेशंस एंड इट्स अ टू वे ट्रायल, यू गिव ट्रस्ट एंड यू गेट ट्रस्ट एंड इट गोज़ विद द रिस्पेक्ट ऑल्सो। ना आप दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं वो भी आपको देते हैं, एंड रिस्पेक्ट इज़ द बेस लाइन इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेशन और द रीज़न, इट कुड बी वन वे, डोंट नीड अ रीज़न। हाँ, for respect you don't need a solid reason, but for trust yes of course you need a strong reasons। Shahzada ji kehte hain humko call kar lijiye, abhi karte hain aapko hum call। Aur yahan par ye wala message hai Saudi Arabia se, aur inka naam nahi inhone likha hai, but ye kehte hain main delivery rider hu, roz bahut sare logon se milta hu, lekin hum sab se respect se baat karte hain, kisi se kisi par trust nahi kar sakte। Trust karna ek alag baat hai। हाँ, ट्रस्ट तो ऑल टुगेदर एक अलग ही मैटर है, ये बात तो हम भी इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। यहाँ पर रिजवान जी का मैसेज जो कहते हैं मेरा ख्याल है कि बिना रिस्पेक्ट के आप किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकते, रिस्पेक्ट एक फाउंडेशन है। ओह नाइस, अच्छी बात। अच्छा, मैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। आरिफ अंसारी जी का कहना है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं, ठीक हैं। अच्छा, अब हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रऊफ जी हमारे साथ।
2: जी जी, अब्दुल रऊफ।
0: अब्दुल रऊफ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन।
0: तो आज
2: मेरी नज़र में रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पेक्ट आप एक इंट्रोडक्शन है आपकी, जब जो रिस्पेक्टफुल होगा वो ही ट्रस्टी होगा।
0: नाइस, बहुत ही अच्छी बात।
2: क्योंकि एक आपकी किसी भी शख्सियत जो रिस्पेक्ट है वो इसकी इंट्रोडक्शन है। आप किसी खूबी के बिना भी किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो सामने वाला भी जब ये देखेगा कि मेरी रिस्पेक्ट हो रही है तो वो उस ट्रस्ट बिल्ट होगा।
0: ये मुद्दा, यही मैं भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछ रही हूँ कि मान लीजिए आप ट्रस्ट तो करते हैं लेकिन आप उसका टाइम टू टाइम मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बेइज्जत फील करा रहे हैं, तो क्या वो ट्रस्ट बरकरार रहेगा?
2: नहीं, तो पहले आपने ट्रस्ट, अपने रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट के बाद उसकी क्वालिटीज आपके सामने आएंगी, वो आपको जानेगा तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ट होगा।
0: यस, ये तो बिल्कुल आपने स्कॉलर वाली बात कही है।
2: कामयाबी की, ट्रस्ट की कुंजी जो है वो रिस्पेक्ट है।
0: रिस्पेक्ट है, ओके नाइस। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन मैं ट्रस्ट को भी इक्वली बहुत बहुत वेटेज देती हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू कन्विंस लाइक कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है वो अभी भी। लेकिन आपने ये पॉइंट अच्छा कहा, बहुत अच्छा कहा कि इट्स अ फाउंडेशन, एंड दैट्स ट्रू।
2: क्योंकि रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट जब शुरू करेंगे ही तो उसकी शख्सियत के जो पहलू हैं सामने आएंगे ना। आप किसी को जाने बगैर ही तो अंधाधुन तो ट्रस्ट नहीं करेंगे ना। आप किसी से मिलते हैं, उसका तारफ होता है आपसे, फला बंदा ऐसा है, तो रिस्पेक्ट ने आपको बेस फ्राहम किया करने के लिए. किसी को जाने बगैर, किसी से मिले बगैर तो आप ट्रस्ट नहीं करते ना. तो आप फर्स्ट जो आप सलाम किसी से लेते हैं तो रिस्पेक्ट पैदा हो गई ना.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
2: उसके बाद फिर आप दोनों की खूबियों पे डिपेंड करता है, दोनों की क्वालिटीज हैं कि आप किस तरह आप ट्रस्ट एक दूसरे पे करते हैं.
0: बात
2: तो अखलाकियात में भी यही है कि आप रिस्पेक्ट करें, फिर फर्दर आपने जो भी उससे. तो रिश्तों में तो रिस्पेक्ट लाजमी है, माँ बाप बहन भाई. रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर भरोसा करेंगे कि इसने मुझे जो रिस्पेक्ट दी है उसके बाद ही मैं इस पे एतमाद कर सकता हूँ.
0: सही. सो अगेन लाइक आपने भी कहा, रिस्पेक्ट इज की, इट्स अ फाउंडेशन. पहले रिस्पेक्ट आती है, देन देयर कम्स द ट्रस्ट. तो रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी रिश्तों में और हर किसी को. बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. कभी कभी आप जुड़ते हैं लेकिन बहुत ही अच्छी सोच के साथ, बहुत अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जुड़ते हैं. बट ग्लैड कि आप जुड़ते हैं जब आपको टाइम मिलता है. थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं चाहती कि मैं आपकी ओपिनियन को जो है वो अपने हिसाब से यू नो मैनिपुलेट करूँ अपने. मैंने क्योंकि एक लाइन कह दी, तो आप ऐसे मत सोचिए. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट ही है जो रिश्तों के लिए जो कोर एलिमेंट है वो है ट्रस्ट, और मुझे लगता है कि नहीं, ट्रस्ट के बगैर कोई रिश्ता कामयाब नहीं हो सकता, जस्ट गो विद ट्रस्ट. कोशिश कीजिए कि आप मुझे भी समझाएं और मैं भी आपको समझूं. एंड अब मैं दोनों ही तरफ हूँ. मैं ये नहीं कहूँगी कि आई एम 100% विद रिस्पेक्ट और आई एम 110% विद ट्रस्ट. नो, आई एम क्वाइट मॉडल्ड कि मैं किधर जाऊँ, इधर के उधर. बट देखते हैं आज की इस डिबेट में किसको ज़्यादा वोट मिलते हैं, रिस्पेक्ट को या फिर ट्रस्ट को. एक और कॉलम मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं, चलिए जल्दी से इनसे बात कर लेते हैं. हेलो,
3: सलाम अलैकुम नाज़िया.
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शिमोना?
3: मैं खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. तो
3: आपको डोलने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर रहिए, इंशाल्लाह सही रहेगा.
0: मुझे मतलब मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है?
3: नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं एक्चुअली. आई डोंट थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन.
0: अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और हम किसे ज्यादा कहें, किसको कम सेकंड पे रखा जाए, समझ में नहीं आ रहा. आपको क्लियर है कि रिस्पेक्ट या ट्रस्ट?
3: दोनों का ज्यादा इंपॉर्टेंट होना डज नॉट मेक देम कंफ्यूजिंग, राइट? एंड दोनों कैन बी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम कैन बी क्लियर आल्सो.
0: ओके,
3: आई मीन ऐसा नहीं है कि किसी को दोनों को एक मतलब कंफ्यूजन भी हो उसमें और इंपॉर्टेंट भी हो, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं.
0: नहीं, मान लीजिए आपको एक चॉइस ही है आपके पास. अब आपको नहीं लगता कि मैं जो हूँ वो मैं किधर जाऊँ? आई मीन ट्रस्ट इज रियली समथिंग वेरी बिग.
3: आप कह रही हैं ट्रस्ट के साथ हैं लेकिन आप हैं नहीं, आप नहीं, मतलब हम में से ज्यादातर लोग नहीं होते हैं. I'm just saying this कि
0: नहीं नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लिसनर्स जुड़े, उनका कहना है ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं है तो रिश्ते में कुछ भी नहीं है.
3: वो देखिए क्या होता है कि हम उस चीज को उस तरीके से समझ नहीं पा रहे होते हैं शायद. मतलब मैं अपनी पर्सनली मैं अपनी बात करूँ, अगेन लाइक व्हेन आई से इट ओनली पर्टेन्स टू मी, मैं अपनी बात कर रहा होता हूँ, वो 100% अगेन गलत हो सकती है. तो उसमें अक्सर होता ही है, देखिए भरोसा जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप पूरी जिंदगी में अपने पूरी जिंदगी में अपनी मुश्किल से एक दो चार लोगों के ऊपर ही कर सकते हैं, कर पाते हैं. लेकिन क्या आप रिस्पेक्ट भी सिर्फ दो चार लोगों को ही देंगे क्या पूरी जिंदगी में अपनी?
0: नहीं.
3: आप अच्छा लाइक आई पोज योर क्वेश्चन, ओके, आप एक आजी हैं, आप लोगों से कनेक्ट करती हैं, आपके लिसनर्स हैं, कॉलर्स हैं, राइट? तो इनके बीच में क्या रिश्ता है, रिस्पेक्ट का कि ट्रस्ट का?
0: पहले तो रिस्पेक्ट का है. And then, I trust you guys also. मतलब हो सकता है trust का मतलब ये नहीं.
3: Trust, because trust is a very heavy in the sense, you know, like you trust someone when you know them.
0: Okay, I can say this way, trustworthy listeners. What if I say this line, trustworthy listeners?
3: No, trust, क्यों trust करेंगे? I mean, suppose, see, देखिए trust किस बात का है आप?
0: Consistency से. Consistency से मुझे एक trust मेरे अंदर built हुआ. A few of my listeners are quite consistent throughout.
3: हाँ,
0: and that's how एक trust built हो रहा है, built हो रहा है, ना?
3: Correct, correct. तो पहले पहले क्या है कि पहले आपका और इनका जो

0: एक रिस्पेक्ट कहे पहले, तो उसके बाद जो है वो हल्के हल्के वो ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है. बट एज आई सेड यू नो, जैसे कि जो ट्रस्ट है ना वो जनरली पूरी लाइफ में अपने आप बहुत ही कम लोगों के ऊपर कर पाते हैं, कर सकते हैं. जनरली स्पीक, जो आपके बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं ना उसमें भी नहीं कर पाते हैं अक्सर. अक्सर मैं बता रहा
1: हूँ,
0: नॉट नेसेसरीली ऑलवेज बट अक्सर बेशतर. तो इसको प्रॉब्ली आप जैसे हमारे कुछ एक कॉलर्स ने कहा भी, बड़ी अच्छी बात कही और ये बात आई भी बीच में, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं. लेकिन वो जैसे कि एक मकान है फॉर इंस्टेंस, राइट, तो मकान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो होगी उसकी बुनियाद.
1: फाउंडेशन, सही
0: फाउंडेशन, ठीक है. और उस बुनियाद के ऊपर फिर आप जो है वो दीवारें उठाएंगी, उसका लिंटर बनाएंगे, ठीक है. तो बुनियाद जो है यहाँ पर वो रिस्पेक्ट है. और उसके ऊपर फिर जो आप वो दीवारें उठा रहे हैं और जो लिंटर डाल रहे हैं वो हो गया ट्रस्ट सारा, ठीक है. उसके ऊपर वो रिलेशनशिप बिल्ड होगी, ठीक है. अब उसके अंदर आपके जो सारे और बाकी के भी बाकी दिनों के तड़के हैं, लव, कमिटमेंट, ये सारा जो है वो सब डाल देंगी, तो आप उसको सजाएंगी फिर. अब आप तो इस तरीके से ही जो है ये घर जो है वो मुकम्मल होगा. तो ना तो बिना बुनियाद के हो सकता है, ना ट्रस्ट के हो सकता है, ना प्यार और कमिटमेंट के हो सकता. खूबसूरत घर जो होगा, घर हो सकता है, एक घर डेफिनेटली घर हो सकता है जिसकी बुनियादें बिल्कुल हिली हुई हों, लेकिन वो होगा क्या, जब वो कोई आंधी आएगी तो वो गिर पड़ेगा वो.
1: सही सही,
0: ठीक है. तो इसी तरीके से जो है वो हमारे हम जिस तरीके से इसको देखते हैं, और साइकोलॉजिस्ट भी सब वो भी सारे जैसे आप कह भी रही थी ना, स्कॉलर्स वगैरह वो भी इसको इसी तरीके से शायद देखते हैं कि रिस्पेक्ट के ऊपर जो है ना कोई चीज आप बिल्ड कर सकते हैं. ट्रस्ट, आप ट्रस्ट पहले दिन दूसरे तीसरा आदमी से कैसे कर सकते हैं, दूसरा आदमी से, किसी भी अनजान से, या सपोज इवन फॉर योर किड ऑल्सो, राइट. जो बच्चा जो है वो आपका और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्ट का है एक तरीके से. पहले वो जब वो देखते हैं कि भाई मैं आप जो है, रिस्पेक्ट का मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट ये होती है कि आप दूसरे को ये बताना चाहते हैं कि यू आर वैल्यूड बाय मी. ट्रस्ट से क्या होता है, ट्रस्ट मेक्स यू फील इन समबडी प्रेजेंस,
1: फील सेफ.
0: तो वो जो है, हाँ, मतलब अब जैसे एक एक जो मैच्योर रिलेशनशिप होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दे. आप एक दूसरे के लिए ट्रस्ट, आई कैन ट्रस्ट यू विदाउट लूजिंग माय इंडिपेंडेंस, राइट, एंड आई कैन रिस्पेक्ट यू आल्सो विदाउट. और रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि मेरा डिसएग्रीमेंट हो सकता है आपका बहुत चीजों के साथ, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट यू. तो डिसएग्रीमेंट होना, और यही देखिए यही चीज होती है जिसकी बात जिसकी तरफ आप बार बार शायद इशारा भी कर रही हैं कि हम लोगों को उसके जो है वो गलत बिहेवियर करते हैं, उनको डांटते हैं, उनको फटकारते हैं, खासतौर से एक जो है जो स्पाउजल रिलेशनशिप है, मैरिटल रिलेशनशिप है, उसमें जो है आपने मुझे ऐसा महसूस हुआ कई बार आपने इस तरीके से इशारा करा कि वहां पर जो है ऐसा होता है.
1: हाँ, नहीं, मैंने देखा है, मजाक होता है, लेकिन ट्रस्ट है अपनी बीवी पर, बट उनका मजाक उड़ाया जा रहा है.
0: ट्रस्ट नहीं है वहाँ, एक्चुअली ऑनेस्टली ट्रस्ट नहीं है, इट इज जस्ट यू नो यू आर बाउंडेड इन अ रिलेशनशिप, दैट्स ऑल. वो उसके ज्यादा उससे ज्यादा किसी, बल्कि इसमें आपके मेरे ख्याल से आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली द नेम, महमूद साहब शायद है जो अक्सर अजान के बाद पैगाम जो बोलते हैं.
1: महमूद साहब, बिल्कुल हाँ, वो उन्होंने बोला हुआ है कि बीवी का मजाक उड़ाना उनकी पब्लिकली, यू नो, उन पे जोक्स करना एंड ऑल दैट. या
0: और उन्होंने एक चीज भी बड़ी अच्छी एक बार बोली थी, वो ये थी कि क्या था से ही सेड कि हाँ, अगर प्यार ना हो किसी रिश्ते में तो वो फिर भी चल सकता है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी ना तो नहीं चलेगा वो रिश्ता. अब आप सपोज करिए, अब आप एक ऐसे रिश्ते में हैं, मोस्टली हम लोग ऐसे ही रिश्ते में होते हैं, एक जो मैरिटल रिलेशनशिप है जिसमें आप सोसाइटल प्रेशर होता है ना कि भाई आपको साथ ही चलना है, तो आप चल रहे होते हैं, बट ना तो उसमें ट्रस्ट होता है ना प्यार होता है, बिकॉज उसमें रिस्पेक्ट नहीं होती है.
1: तो रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है.
0: तो ये जो है, ये हालांकि एज यू राइटली सेड, दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों एक दूसरे के

0: difficult. It's quite challenging. हो सकता है आप मुझ पे trust करते हैं, मैं आप पे नहीं करती.
1: Correct.
0: है ना? And at times मैं admit भी ना करूँ.
1: बिल्कुल.
0: और तो यहाँ पे gap आएगा जो कि दिख भी नहीं रहा है. It's quite covert और दिख भी नहीं रहा है और वो gap आ रहा है.
1: It is measurable.
0: Yeah.
1: It is not measurable. Respect yeah, is measurable.
0: Yes. और एक और चीज मैं आपको बताऊं respect का, अभी आपसे बात करते करते ही मेरे जहन में चीज आई कि respect self respect के साथ भी जुड़ी है. वो लोग जो खुद अपनी इज्जत नहीं करवाते या नहीं करते अपनी इज्जत, लोग भी उनको value नहीं देते.
1: Very well said. हाँ, respect आपकी self respect आपकी dignity जैसा आप चाहते हैं खुद को treat करते हैं ना वैसे ही दूसरे. But the only issue is, you know, as you have rightly said, that we have been living in patriarchal society for a very, very long time. यहाँ पर आकर ना थोड़ा सा वो एक आ जाता है कि भाई ये सोचा जाता है एक रिश्ते के अंदर एक पर्टिकुलर इंसान को जो है वो हक है इस बात का कि वो दूसरे इंसान की बेइज्जती कर सके. ये एक माइंडसेट बना हुआ है. और वो अब फिर उससे फिर ये भी फिर हम उससे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं उस रिश्ते को कि वो चलता भी रहे अच्छे से. और होता भी यही है अनफॉर्चुनेटली.
0: सही कहा.
1: हालांकि अब हल्के हल्के आई एम श्योर दिस इज चेंजिंग. एंड जैसे जैसे लोगों के जहन में ये बात क्लैरिटी आएगी और लोग इस बात को समझेंगे तो आई एम श्योर कि ये भी चीज चेंज होगी कि आप जो है रिस्पेक्ट के बिना जो है वो रिश्ता जो है वो मतलब हो तो सकता है लेकिन खूबसूरत नहीं हो सकता.
0: खूबसूरत नहीं हो सकता, ये आपने सही कहा. बहुत खूबसूरत नहीं होगा, हो तो सकता है. ठीक है, आप चला रहे हैं, चल रहे हैं, आपकी कुछ हाँ कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, कुछ निभा लेते हैं. और मैं इसमें लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि सिर्फ फैमिली में, आप ऑफिस में देखिए, आप अपने कलीग्स के साथ देखिए. ठीक है, आप यू आर बाउंड टू गिव देम रिस्पेक्ट विद नो चॉइसेस लेफ्ट फॉर यू, बट दिल से शायद नहीं करते आप. शायद वो चीज़ें नहीं है, ट्रस्ट तो खैर है ही नहीं, लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट दी जा रही है एक दूसरे को. क्योंकि वो
1: आपका कोई सुपीरियर है जो आपको ट्रस्ट करता है. ठीक है, he trusts you with the work, he trusts you with the deadlines, project and everything. But वो आपको कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता जिसमें आपको ह्यूमिलिएट करता हो, ना करे.
0: बिल्कुल.
1: Would you really respect this senior?
0: Neither. Nor I'll respect. Never. Nor I'll trust him.
1: No. तो आप वहाँ पर काम कर रहे हैं सर. बस वो क्या है, यू आर ट्रेडिंग योर टाइम दैट पर्टिकुलर पर्सन. भैया आपने अपना वो टाइम दे रखा है उसको. उसमें भी हो सकता है कुछ मजबूरी हो. और द मोमेंट आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले वेर आप जहाँ पर इससे कम पैसे में भी जो है वो आपको कुछ काम धंधा मिल जाए तो आप यू विल नॉट इवन
0: स्विच.
1: किसी भी रिश्ते में ये की बात, चाहे वो एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिश्ता हो, एक मैरिटल रिश्ता हो, या और कोई सभी किड्स, यू नो, बिटवीन द पेरेंट्स एंड किड्स, एवरी रिलेशनशिप. और आजकल खास तौर से जो जिस तरीके की जो यंग जनरेशन है ना, वो आपसे ले लेंगे रिस्पेक्ट अगर आप देंगे नहीं.
0: सही बात है. आजकल के तो बेचारे उनकी डिक्शनरी में रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट है ही नहीं. उनका तो एक अलग ही रिस्पेक्ट का तरीका है. जितने ज़्यादा वो आपके साथ एफेबल वे में बात कर रहे हैं, जितना फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, जितना चिल्ड है सो कॉल्ड, उतनी रिस्पेक्ट है. रिस्पेक्ट टू अस इज डिफरेंट, टू देम इज डिफरेंट.
1: I think we need to differentiate between you know, respect का थोड़ा सा हम, मुझे लगता है थोड़ा सा एक वो कर लेना चाहिए उसको. रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इस खाली जैसे आपने अपने बच्चे ने आपको सलाम कर लिया, वालेकुम सलाम, बहुत कैसे हो, बहुत नहीं, ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है. रिस्पेक्ट इन ट्रू वर्ड मीन्स कि आप दो लोगों की राय अलग हो और फिर भी आप जो है वो एक दूसरे से अच्छे से बात करें. ये है रिस्पेक्ट.
0: नाइस, बहुत अच्छा काम आपने. ये है एक्चुअल रिस्पेक्ट कि आप उसे टॉलरेट कर रहे हैं.
1: रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो आप घर पहुंचे तो आपने कहा सलाम वालेकुम, बच्चे ने कहा वालेकुम सलाम अब्बा, कैसे हैं अम्मा, कैसी हैं, बहुत बढ़िया. आप ऑफिस आए तो आप ऑफिस में, यू नो,
0: सो यू आर सेइंग कि रिस्पेक्ट वर्ड से नहीं, एक्शन से देखी जाती है.
1: एग्जैक्टली. और एक्शन में भी इम्पोर्टेंटली दिस पर्टिकुलर एक्शन की जब आप दो लोगों के बीच में किसी बात को लेकर कोई बात हो रही हो किसी टॉपिक को लेकर और आप उसमें डिसएग्री कर रहे हो एक दूसरे से,
0: बिल्कुल
1: उस टाइम आप किस तरीके से दूसरे से बिहेव करते हैं, ये है
0: रिस्पेक्ट. बिल्कुल बिल्कुल सही.
1: तो आप घर में बच्चों के साथ बहुत अच्छे हो सकते हैं बट आप वो कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और आप टाइट दो फॉलो नहीं, ये तो मुझे ऐसा नहीं, दैट इज नॉट रिस्पेक्ट.
0: रिस्पेक्ट ये है कि आप सुन लें लोगों को,
1: आप सुने उनकी बात को और आप डिसएग्री भी करें, ये आपका हक है कि आप डिसएग्री करें, बट इन द राइट वे, राइट
0: वे. ट्रू, वेरी वेल सेड. थैंक यू मिस्टर.

0: इंटेलेक्चुअल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ते हैं और कितना अच्छा कुछ हमारे लिसनर्स के लिए शेयर करते हैं. थैंक यू वंस अगेन, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, हैव अ ग्रेट डे.
1: और मैं बाकी सारे लोग भी बड़ी तारीफ करते हैं सर आपके प्रोग्राम की, और मैं तो नहीं कर पाता हूँ इतना. हालांकि
0: नहीं नहीं, आप बिल्कुल सच ही रखिएगा जब हो तभी.
1: मैं जरूर ये बात कहना चाहता हूँ अगेन, यू नो टॉकिंग स्पीकिंग टू यू इज एडिक्टिव एक्चुअली.
0: थैंक यू.
1: ये चीज जरूर है कि आपसे बात करके ना बड़ी सारी चीजें जो है वो आप नहीं बता पाते हैं, आपकी सुन पाते हैं. तो दिस इज व्हाट पर्सपेक्टिव आई गेस अगेन, यू नो.
0: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.
1: दूसरे की बात सुन पाना और उसको अब्सॉर्ब कर पाना, ये इंपॉर्टेंट है.
0: ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह से हम लोग सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, लोगों का फायदा भी हो रहा है. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जान के कि वाकई
1: लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मेरा जरूर हो रहा
0: है. चलिए, मेरा भी हो रहा है. आई एम श्योर जितने लिसनर्स आते हैं वो सब ये कहते हैं कि हमारा जो ना, हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं मैम, हमें कुछ ना कुछ आ रहा है. और मैं भी कहती हूँ कि मैं रोज कुछ ना कुछ एक नया, मेरे लिए कुछ ना कुछ एक पावरफुल टेक अवे होता है मेरे लिए कि आज मैंने ये सीखा, आज मुझे ये लाइन बहुत ज्यादा समझ में आई. एंड आई एट टाइम्स डिस्कस विद माई कलीग्स, विद माई फैमिली मेम्बर्स कि फलाने लिसनर ने ये बहुत अच्छा बोला, एकदम दिल को छू गई बात, यू नो. सो दैट वे हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और खुद को बेहतर कर रहे हैं, यही होना भी चाहिए. सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अपना ख्याल
1: रखिएगा.
0: तो आज का मुझे लगता है जो टॉपिक है, इट्स ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज, आई थिंक नॉट ऑन द वर्ज, लाइक कंक्लूजन की तरफ ही आ चुका है. इसलिए है कि कुछ बचा नहीं है मेरे पास. अभी हमारे साथ जो कॉलर जुड़े शिमोन, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स रख दिए हैं. फिर भी अगर आपके जहन में रहा कि कुछ है जो मैं शेयर कर सकता हूँ, तो ये मैं जो है वो फटाक से कॉल करें मुझे 443-443-77 पर. यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ये डिस्कशन जारी रहेगा.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर दिल से देसी
1: राइट गाइस एक बार वापस आप सबको कहेंगे वेलकम खुशामदीद आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स मैं हूं नासिया आपके साथ 8:25 ऑन द क्लॉक और आज इतना चैलेंजिंग टॉपिक हो गया कि समझते समझते मुझे समझ में आया कि फिर वही समझ में आया जो मुझे समझ में आया था लेकिन चलिए खैर बात समझने वाली है और अभी बहुत सारे लिसनर समझा के गए हैं तो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी यहाँ पे तूबा का मैसेज है और तूबा कहती हैं कि व्हाट्स अ कॉलिंग नंबर वैसे मैंने बताया था चलिए मैं आपको मैसेज भी कर रही हूँ और रिपीट भी करती हूँ नंबर 443-443-77 ये नंबर है जिस पर आप हमें कॉल कर सकती हैं यहाँ मोहम्मद यूसुफ जी का मैसेज है सलाम कहते हैं और सभी सुनने वालों को सलाम और कहते हैं कि आई वुड चूज ट्रस्ट ओवर रिस्पेक्ट ऑल्दो ये दोनों ही कनेक्टेड हैं दैट्स ट्रू लेकिन फिर भी जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं ऑब्वियसली आप उसे रिस्पेक्ट दे ही देते हैं ये कहना है यूसुफ खान जी का नॉट एट ऑल बैड ओके सलाम कहा है बहुत सारी दुआएं भेजी हैं गुल नफीस जी ने वालेकुम अस्सलाम और सलाम कर रहे हैं हम भी लाइन में हैं इंतज़ार कर रहे हैं समझ जी का है कॉल सो प्लीज़ कॉल कीजिए और हमें बताइए आप बिल्कुल आप मुझे कॉल कर सकते हैं हुसैन जी हमारे साथ हैं सैयद खादिम हुसैन जी सलाम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम एंड वी आर कनेक्टेड टू दी लास्ट कॉलर फॉर दिस

0: क्वेश्चन, उसके बाद सेगमेंट में, गेम सेगमेंट में आपके साथ हम कनेक्ट होंगे. तो चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, एम आई ऑडिबल? हेलो
1: हेलो.
0: हाँ जी, हाँ जी, हेलो
1: जी. जनाब, बात हो रही है आपसे मेरी?
0: जी जी जी, बिल्कुल आपसे बात
1: जी. मेरा नाम खालिद खान है.
0: खालिद
1: खान इस्लामुद्दीन. मैं पिछले 3 दहाइयों से इस रेडियो को सुन रहा हूँ. इससे पहले जो लिस्नर आए थे आपके कॉलर, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और मजा आया उसकी बातें सुनने का. लेकिन उन्होंने बहुत टाइम लिया ताकि दूसरे कॉलरों को टाइम ही ना मिले. बस ये ख्याल नहीं किया उन्होंने. उनकी हर बात बहुत अच्छी थी माशाल्लाह.
0: चलिए,
1: मैं एक जुमले में आपके मौजू को सबमिट करना चाहूंगा.
0: प्लीज प्लीज गो अहेड.
1: रिस्पेक्ट की मेराज है ट्रस्ट. अगर कहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा. क्योंकि रिस्पेक्ट आप नॉन अननोन हर बंदे की करते हो.
0: हाँ.
1: लेकिन ट्रस्ट आप हर बंदे पे नहीं कर सकते. उसके लिए जानना उसका जरूरी है. तो मैं एक ही जुमले में अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि दूसरा भी कोई बात करे. उन्होंने इतना टाइम लिया, मेरा दिमाग घूम गया यार. बातें तो सारी अच्छी थी उसकी माशाल्लाह.
0: इसीलिए
1: तो, लेकिन रियली ये 30 सालों के अंदर मैंने पहली दफा टेलीफोन किया है.
0: ओह, दैट्स रियली रियली बिग अचीवमेंट.
1: मैं सुनता
0: हूं, खुशी हुई है कि आप फाइनली आप कॉल कर पाए.
1: मैं सुनता जरूर हूँ हर प्रोग्राम को. मैक्सिमम कोशिश करता हूँ मैं सुनूं
0: जी.
1: और लेकिन बस सुन रहा होता हूँ लोगों की राय. आज मुझसे रहा नहीं गया, ये टॉपिक ऐसा था. आपकी चीजें दोनों डिफरेंट हैं, एक नहीं है.
0: हाँ, एक नहीं.
1: तो मैंने यही कहा कि रिस्पेक्ट की मेराज है ट्रस्ट. बस
0: चलिए, बहुत
1: थैंक यू वेरी मच एंड सो नाइस ऑफ यू. आपको और आप सारे सुनने वालों को और आपके जो जो अमला है आपका, जो आपके इंजीनियर हैं, ऑपरेटर हैं, जो टाउन करने वाले, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. और अल्लाह ताला उनका दिन आज का बेहतर करे और आने वाला दिन उससे बेहतर करे. सबके लिए खैर का सबब बने.
0: अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वंस अगेन. अल्लाह हाफिज़. तो भाई बहुत ही अच्छी पावरफुल बात और एक लाइन में ये बड़ा बहुत बड़ा टैलेंट है दोस्तों. हम बहुत देर तो समझा सकते हैं लोगों को, समझाते समझाते समझा, लेकिन एक लाइन में अपनी बात कहना ये बहुत बड़ा टैलेंट है. यू वोंट बिलीव, आजकल कॉर्पोरेट लेवल्स पे वर्कशॉप्स की जाती है कि वन लाइन स्टेटमेंट एंड दैट टू वेरी इंपैक्टफुल कैसे क्रिएट किया जा सकता है. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बड़ा टैलेंट है. अच्छा, अब जैसे आप सब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था. हम रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की बात कर रहे थे और हमें और आपको समझ में आया कि रिश्तों के हवाले से देखा जाए तो ये दोनों ही बहुत ही अहम है. और ट्रस्ट कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देता है. ये वो एहसास देता है जो अपने आप में बड़ा पावरफुल है कि मैं आप पर भरोसा करता हूँ या मैं आप पर भरोसा करती हूँ. और अगर कोई ये कहता है तो हम जो है बिना डर बिना झिझक अपनी सारी बात उस पर रख देते हैं, सब कुछ कह देते हैं. लेकिन हाँ, दूसरी तरफ रिस्पेक्ट, जैसा आपने कहा कि रिस्पेक्ट जो है वो एक तो हक है सबका. हर किसी को आपको रिस्पेक्ट देनी ही देनी है, वेदर यू नो देम या फेमिलियर आप नहीं है, बट वी आर बाउंड. कहीं कहीं रिस्पेक्ट जो है वो दिखावा भी होती है. हम दिखावे के लिए लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जैसे ही वो गया तो उसके पीठ पीछे बुरा भी बोल दिया, क्योंकि मुंह पे नहीं बोल सकते फॉर सम रीजंस. तो हम जो है वो पीछे खड़ाक से बोलते हैं. तो ना तो हमारे पास ट्रस्ट ही होता है ना रिस्पेक्ट होती है. लेकिन दिखावा हम रिस्पेक्ट के हवाले से कर सकते हैं. अब ट्रस्ट के हवाले से हम दिखावा नहीं कर पाते. अब ट्रस्ट का ताल्लुक जो है वो हमसे है भी नहीं. कहने को है कि हम किसी पे करें, लेकिन डायरेक्ट पूरी तरह से हमसे नहीं है. ट्रस्ट ऐसी चीज़ है जो टू वे है. आप उस पे कर रहे हैं तो वो भी आप पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ट्रस्ट है ही नहीं, देयर विल बी अ गैप. और अगर आप पे वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहा है तब वाकई रिश्ता बहुत ही अच्छा मजबूत होता है. जैसे आपने कहा, इसकी बुनियाद है रिस्पेक्ट. कहीं ना कहीं शुरुआत होती है रिस्पेक्ट से, जब आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं. अब रिस्पेक्ट भी कैसे, जैसे शिमोन ने मुझसे पूछा आपका आपके लिसनर्स के साथ क्या रिश्ता है, तो मैं स्ट्रेट वे ये नहीं कह सकी कि मेरा ट्रस्ट का रिश्ता है ही नहीं. नहीं है. आई ट्रस्ट देम अ लॉट. I really trust them a lot. When I say I really mean it, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे consistent listeners हैं इतने साल से, जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, जिन्हें मैं जान गई हूँ, उन पर मुझे trust है. मैं उन पर यकीन करती हूँ कि बहुत ही हमारे बहुत ही consistent, बहुत loyal listeners हैं. हालांकि हम आपस में मिले नहीं, हमने एक दूसरे को वन टू वन देखा नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो रिश्ता बन रहा है, धीरे धीरे धीरे धीरे बिल्ट हो रहा है. रिस्पेक्ट तो हमें देनी है, दोनों तरफ से दे रहे हैं, मिल रही है. यहाँ पर मैं इस टॉपिक को एक छोटी सी स्टोरी के साथ कंक्लूड भी करना चाहूँगी. और मुझे ये स्टोरी अपनी अभी की याद आ रही है, जब हमारा लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ रीयूनियन और हम सारे जर्नलिज्म के जितने स्टूडेंट्स थे सब पहुँचे वहाँ पर. हमने अपने कुछ टीचर्स को भी इन्वाइट किया था एंड आई रिमेम्बर

हमारे जो टीचर थे वो खैर अब तो रिटायर हो चुके हैं, बट उन्होंने मिलते वक्त पूछा कि आप लोग मुझे बताइए एक एक करके कि आपको मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती। तो मतलब कुछ लोगों ने कहा कि सर आप इंटेलिजेंट बहुत थे, हमें अच्छा लगता था। किसी ने कहा सर आप बहुत स्पॉन्टेनियस थे, हमें वो बहुत अच्छा लगता था। किसी ने कहा सर आपकी नॉलेज, आप नॉलेजेबल थे, ये बहुत हमें इम्प्रेस करती थी। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर आप हमें रिस्पेक्ट देते थे। हम जब गलती करते थे तो आप हमें अलग बुला के अलग रूम में समझाते थे, सबके सामने क्लास में कभी आपने हमें जलील या ह्यूमिलेट नहीं किया। और शायद ये बात मेजॉरिटी ने कही और ये बात साबित हुई कि देखिए हो सकता है कि हम कोई इल्म हमें दे वो हमारे जहन से निकल जाए, हो सकता है कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट इंटेलेक्ट था तो वो हमारे लिए रहे, इम्प्रेस करे हमें, लेकिन फिर उससे वो बात जहन से निकल जाए। लेकिन अगर किसी ने आपको इज्जत दी और बड़ा कंसिस्टेंट रहा इज्जत देने में, तो वाकई वो बात आपके दिल और दिमाग में हमेशा रहती है और ये रिस्पेक्ट की असली ताकत है। ये वाकई रिस्पेक्ट की असली ताकत है। लोग अक्सर भूल जाते हैं बातों को, लेकिन अगर आपने उन्हें जो है वो कैसा महसूस करवाया है, ये उन्हें कभी भी उनके जहन से नहीं निकलता। तो ये हमेशा याद रखिए कि ट्रस्ट रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है, वो रिश्तों को मजबूत बनाता है, लेकिन रिस्पेक्ट उसे कीमती बनाता है। ट्रस्ट के बगैर जो है वो रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन रिस्पेक्ट के बगैर रिश्ता बन ही नहीं सकता, शुरुआत ही नहीं हो सकती। तो रिस्पेक्ट का होना हमारी और आपकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, आपके काम भूल सकते हैं, लेकिन जो इज्जत आपने उन्हें दी है वो एक एहसास की तरह है। इसे भूल पाना थोड़ा मुश्किल नहीं, ज़्यादा मुश्किल होता है। तो चलिए, वैसे तो कहने को बहुत कुछ है इस पे, बहुत कुछ था भी, बट टाइम नहीं है मेरे पास। सो आई जस्ट लाइक टू कंक्लूड दिस वे एंड थैंक यू सो मच। इतना कमाल का रिस्पांस आप सबका मुझे मिला। अब मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ जुड़िए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ गेम के लिए। यहाँ पर आज कुछ वॉइसेस भी आपके लिए मैंने सेट की जो हम प्ले करेंगे, जिन्हें आपको गेस करना है और हमें बताना है कि ये एक्चुअल में कौन सी किसकी आवाज़ है। तो इसमें हमने आज काफ़ी कुछ मिक्स कर दिया, इसमें क्रिकेटर्स भी हैं, फुटबॉलर्स भी हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं। सो ऑल टुगेदर बहुत सारी वॉइसेस हैं। आपको पहचाननी है, 30 सेकेंड्स का आपको टाइम मिलता है, दैट इज़ समथिंग दैट यू नो, और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मुझे कॉल डायरेक्टली करना चाहते हैं तो नंबर है 4634437, या फिर आप मुझे जो है वो मैसेज करना चाहते हैं, देन द नंबर इज़ 666-22107। यहाँ पर छोटा सा क्विक ब्रेक लेती हूँ, मैं लाइनअप करती हूँ अपना कार्ट एंड आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल।

0: Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं Summer Mornings. मैं हूँ नासिया आपके साथ और मेरे साथ यहाँ पर एक चैंपियन जुड़ गए, तो चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. आप तो वाकई चैंपियन है. कैसे हैं आप? आरिफ है नाम ऐसा. अल्हम्दुलिल्लाह. मैं उम्मीद कर रही हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे. चलिए जी, अब तो टाइम ऐसा है कि आपको मेरे साथ गेम तो खेलना ही खेलना है. सॉरी,
1: रिम जा रहा था और कलर इसमें थे कि मैं कनेक्ट नहीं हो पाया.
0: हाँ, इतफाक से आज कॉल्स बहुत थी और क्योंकि टॉपिक भी ऐसा था और शायद कॉल नहीं मिल पाई होगी. और मैंने खैर आपका मैसेज तो देखा और यहाँ पर मुझे अभी याद आया शहजादा जी ने बोला है मुझे कॉल करना, तो आप पता नहीं अब कहेंगे कि नहींगे. चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर कुछ वॉइसेस हैं और ये मिक्सड हैं. हाँ, एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं और कुछ क्रिकेटर्स की भी वॉइस. मैंने फुटबॉलर्स चलो हटा दिया, मैंने लगा बहुत टफ ना हो जाए कहीं. तो बस इस तरह से दो मिक्स की हैं और आपको वॉइस पहचानी है. 30 सेकंड्स आपके पास है, ठीक है?
1: स्कोर का तो मालूम नहीं है पर हाँ, खेलना.
0: अच्छा, गेम्स आप उतना नहीं खेलते?
1: नहीं नहीं, गेम खेलूंगा पर स्कोर का उतना मैं गारंटी नहीं लूंगा, स्कोर होगा या नहीं होगा.
0: इंशाल्लाह, वो तो खैर बात की बात है. बस गेम स्टार्ट करते हैं. चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
2: मुंबई का किंग कौन? विकू बात्रा.
0: बिल्कुल सही.
3: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनार्क.
4: दान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि दादू को बैंगलोर में ट्रीट करना चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है?
5: जो मेरी सब तो पहली दो तीन क्रिकेटिंग मेमोरीज हैं जो मैंने याद है, मैं जो तो छोटा हुंदा सीगा सारा दिन मेरे हाथ बैठ रहा.
6: एक्चुअली सर, एक बात पूछना चाहता हूँ. जो मम्मियाँ होती हैं वो बड़ा फोर्स करती हैं अपने बच्चों को शादी करने के लिए.

0: पास पास पास और टाइम भी पास हो गया, कोई बात नहीं, आपने कम से कम कुछ तो स्कोर किया है, ये बड़ी बात है। शायद ये टफ हो गया।
1: मैं देखता रहता हूँ, मैं दो एक्टर को बहुत देखता हूँ, मनोज
0: वाजपेयी।
1: हाँ, क्या नाम है उनका?
0: मनोज वाजपेयी आपने पहचाने, और कोई पहचाना था क्या? नहीं ना,
1: नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं इन दोनों को बहुत देखता हूँ, मनोज वाजपेयी और एक और
0: मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या नाम है उनका, प्लीज कोई बताए। त्रिपाठी आगे लगता है ना,
1: एक्टिंग मेरे को ना लगता है।
0: हाँ हाँ हाँ, ये तो है। चलिए खैर, आपने फाइनली कुछ तो स्कोर किया, ये बड़ी बात है, और कॉल किया और गेम में पार्टिसिपेट किया, ये उससे बड़ी बात है। सो हैट्स ऑफ फॉर दैट एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं आते हैं, कुछ कॉलर्स आते हैं, कुछ थोड़े से घबराते हैं, ये बात तो सच है। कुछ लोगों को लगता है हार जाएंगे। हाँ, टॉपिक पे तो बहुत ही, क्योंकि उसमें हार जीत का डर नहीं है ना, ये पार्ट चैलेंजिंग है। यहाँ पे हार जीत का डर जो है वो लोगों को रिलक्टेंट फील कराता है, इसीलिए वो कॉल नहीं कर पाते।
1: हाँ,
0: ये सीखना है हमें और आपको कि हार जीत मायने नहीं रखती, मायने रखता है पार्टिसिपेट करना, ये बस इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे यूसुफ जी ने बता दिया, पंकज त्रिपाठी, अभी मैं कह रही हूँ त्रिपाठी लगाते आगे याद नहीं आ रहा, पंकज त्रिपाठी, मैं भी भूल गई, मुझे त्रिपाठी याद है, याद नहीं आ रहा क्या आगे क्या
1: आगे।
0: हाँ, ये हुआ था, देखते हैं, पसंद करते हैं। जी जी जी, बहुत ही अच्छे एक्टर है, कमाल के। बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आरिफ जी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कल फिर कॉल कीजिएगा। हाँ, ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ बीच बीच में आना बंद हो जा रही है क्या? आ गई।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो समन जी की आवाज़ लग रही है।
2: बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं तो समझा के पता नहीं आज कॉल मिल पाएगी भी या नहीं। मिल गई,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गई, क्यों नहीं, सच्चे दिल से आप सोचे और ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा, लेकिन आज आप जो है अलग ही फॉर्मेट में आए हैं एंट्री लेकर।
2: हाँ, एक्चुअल में यू नो मैं थोड़ा सा रीच हो गया था मेरे वर्क लोकेशन पे, तो इसके लिए अब गाड़ी में होता हूँ तो थोड़ा मूड अलग होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी फंक्शन करना पड़ता है ना मैडम।
0: तो अभी आपके मूड के मुताबिक कुछ खेल वेल नहीं आपके साथ कि नहीं?
2: हाँ जी,
0: गेम हम खेल रहे हैं, कुछ वॉइसेस आपको पहचाननी है, ट्राई करेंगे क्या?
2: अच्छा चलिए, ठीक है, देखते हैं।
0: नाइस, वेरी गुड, ये बात होती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप पास बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
3: मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे।
2: मनोज वाजपेयी।
0: सही।
4: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: अरे बाप रे, ये तो
0: नहीं पहचाना। दूसरा सुनिए,
5: मेरी सब तो पहली।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ये सुनिए।
5: मैं जो छोटा हुंदा सीगा सारा दिन मेरे हाथ च बैठ रहिंदा सी, मैनूं लगदी सौन लगे भी मेरे सराहणे थले होना चाहिए, नहीं तां हो सकदा गुम हो गया तां फिर मैं अगले दिन की करूंगा। मेरी ओह मेमोरी है कि या तां बैड दे नाल पिया होवे।
0: कुछ आया समझ में? क्रिकेटर है
2: ये, कुछ कुछ कलेक्ट हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं कह सकते हैं। पास,
0: पास। वैसे टाइम यहाँ पर अप हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आपने एटलीस्ट ट्राई किया है।
2: दो आंसर तो मैंने ठीक दिए, बट हाँ वो नाम मुझे उनका दारा सिंह के वालिद का कुछ आइडिया नहीं था।
0: अभी मैं इसलिए नहीं बता रही कि कोई और शायद पहचान ले और शायद ये मेरा यूज में आ जाए तो उनके थ्रू पता चले, बट आपने कोशिश अच्छी की उसके लिए Hats off, बड़ी बात।
2: Thank you
0: once again, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, and I hope आपकी family अब सब ठीक है घर में, है ना?
2: Alhamdulillah, glad.
0: Thank you, अपना ख्याल रखिए।
2: कल बात करते हैं।
0: जरूर. Okay जी, Allah Hafiz. Alright, ठीक है, यहाँ पर कॉलर देखो, आज कुछ लोगों ने थोड़ी ज्यादा सी हिम्मत दिखाई है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेलो।
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका नाम?
6: शफीक।
0: शफीक जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?

0: जी जी ठीक है, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आपके साथ मैं गेम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। 30 seconds आपको दिए जाएंगे, वॉइसेस आपको पहचाननी है, ठीक है? चलो जी, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा।
1: बिल्कुल सही।
3: दान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि दादू को बैंगलोर में ट्रीट करना चाहिए तो प्रॉब्लम क्या है?
0: नहीं पता।
4: जो मेरी सब तो पहली 2-3 क्रिकेटिंग मेमोरीज हैं जो मैंने याद हैं, एक मैं जो तो छोटा हुंदा सीगा सारा दिन मेरे हाथ च बैठ।
1: नहीं, हर बचन नहीं है।
5: एक्चुअली सर एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ। जो मम्मियां होती हैं, हाँ, वो बड़ा फोर्स करती हैं अपने बच्चे।
1: बिल्कुल सही।
6: इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। आई थिंक यू लुक एट अ वर्ल्ड कप एंड इट्स ऑलवेज यू नो इट्स ऑलवेज ऑन द होराइजन, इट्स ऑलवेज इयर्स अवे एंड देन
1: ये नहीं पहचान है। ये पहचान।
7: सलमान गोज ऑन रिकॉर्ड एंड सेज यू आर द बिगेस्ट मूवी स्टार। यू गो ऑन रिकॉर्ड एंड सेज से दैट सलमान। या ही ऑलवेज सेज।
0: नहीं पता।
1: अरे फिर भी हाँ, ये दो टफ पड़ गए, बट आपने फिर भी पहचान लिए। आपने कितने पहचाने हैं? पृथ्वी राज पहचाना बिल्कुल सही, एंड कपिल शर्मा आपने पहचाना है तो वो सही है, एंड कुछ और भी पहचाना था क्या? दो पहचाने
0: और कोई नहीं था, बस ये दो
1: दो पहचाने। चलिए, लेकिन दोनों ही टफ थे और एक मतलब दोनों को कोई भी नहीं पहचान पा रहा था जब आपने दोनों नए वॉइसेस पहचाने। सो ग्रेट, ये अच्छी बात है अपने आप में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।
0: नाजिया जी, एक शिकायत है मुझे।
1: हाँ बताइए प्लीज।
0: वो हम लोग तो कभी कभी कॉल करते हैं, पिछली बार भी मैंने कॉल किया तो मैं ट्राई कर रहा था, मैं सुन रहा था कुछ कॉलर जो है ना वो मतलब अपनी बातों को इतना एक्सटेंड करते हैं, इतना एक्सटेंड करते हैं यार, सामने वाला बोर हो जाता है। वो बोले जा रहा है और आपको तो मतलब आप सबर की मिसाल हैं। आप बेचारी सुन रही हैं आपके हाँ से मुझे पता चल जा रहा है कि आप भी पक रहे हैं।
1: अरे नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं बोलिए भाई, मैं भरपूर सुन रही होती हूँ और मुझे अच्छा लग रहा होता है, ऐसा नहीं है। शायद 1-to-1 बात हो रही है तो मेरा तो कनेक्शन बनता है और बाहर आप सुनने वालों को उस तरह से नहीं बन पाता होगा, आई अंडरस्टैंड। तो
0: वो चीज को हम यार कुछ लोग छोड़ते ही नहीं,
1: कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं तो लगता है कि चलो और थोड़ा सा सुन ले क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, बट अगेन हम चाहेंगे सबको चांस मिले। जैसे आज बहुत सारे लोग चाहते थे इस टॉपिक पे बात करना बट चांस नहीं मिल पाया, सो वी विल सी कि सबको चांस मिले, ये बात।
0: और भी कॉलर कॉल कर रहे हैं तो ऐसा करके आप जो है थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए अगर कोई बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है तो।
1: चलिए जरूर ऐसा करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज बाय। ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ पर हमारे साथ। आज मुझे लग रहा है मैंने टफ कर दिया क्या, बहुत ही हो गया क्या? हेलो,
8: मेरे करण अर्जुन आएंगे।
1: मुझे यकीन था रही से आएंगे जरूर आएंगे।
8: भैया बात एक्सप्लेन करना पड़ता है थोड़ा सा, इसमें दीनी बात थोड़ा सा, कोई भी बात को अगर कोई बात को अधूरा छोड़ के मतलब मजा नहीं आता है ना। ये कोई जरूरी नहीं है अब हजारों लोग सुनने वाले हैं, अब हजारों लोग को एक एक मिनट देना, ये कोई जरूरी बात नहीं है, कोई जरूरी लगा
1: कभी कुछ बात थोड़ी सी लंबी हो जाती कभी तो, हो नहीं आने आज असल में हुआ भी ना रही सी, बहुत लोग चाह रहे थे कि उनसे कॉल हो, मुझे कंटिन्यूअसली 666 पे भी कॉल्स आ रहे थे तो वो इतफाक से नहीं ले पाई मैं उतनी कॉल्स। तो
8: मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई लोगों का मैसेज मतलब आप गाना बल्कि डबल गाना ना करके उन भाई उन बीच में थोड़ा सा।
1: अरे रईस जी सुनिए तो, गाने मुश्किल से 3 घंटे में 4 चल पा रहे हैं, अब इतने भी नहीं चलेंगे,
8: अब क्या करें मतलब भाई क्या ना, भाई साहब आपने शो का ये बना दिया है ना, इतना शो का ये बना दिया कि लोगों को अंदर सबके अंदर ये के ये मतलब जगता है कि यार मैं भी थोड़ा बात कर लूं, मैं भी थोड़ा बात कर लूं।
1: ये तो है नहीं, कई बार टॉपिक बहुत ऐसे होते हैं कि हर कोई चाहता है कि हम भी बताएं कुछ कहें और इत्तेफाक से कॉल नहीं हो पाती कनेक्ट।
8: जहां से मेरा यही अभी भी है कि रिस्पेक्ट से ही आपको मतलब ये सारा चीज निकलता है।
1: आप पहले ट्रस्ट की बात कर रहे थे कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि रिस्पेक्ट।
8: मैंने कहा था रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है।
1: अच्छा,
8: बाद में मैंने आप
1: तो शायद मेरे जहन में गलत रहा। हाँ, ऐसे हो सकता है,
8: मैं नहीं कंफ्यूज हो गई। मैंने ट्रस्ट को नहीं कहा था, मैंने कहा ट्रस्ट हर एक पे हम नहीं कर सकते। सबसे ऊला है।
1: हाँ,
8: और मैंने मिसाल भी दिया था, बात थोड़ा लंबा हुआ था, 7-8 मिनट गया था, लेकिन मैंने मिसाल भी दिया था।
1: अब ये मत बोलिए कितने मिनट गया था।
8: नहीं,
1: मैं तो बरी करती हूँ आपको। अच्छा चलिए।

0: शुक्रिया आपके साथ हम गेम खेल लेते हैं जल्दी से 30 सेकंड्स
1: में। क्रिकेटर क्रिकेटर को बीच में मत शामिल करें भैया, हमारे हमारे हालत नीचे नहीं उतरेगा बिल्कुल।
0: अच्छा चलिए आप चलिए, अच्छा ठीक है हम क्रिकेटर्स को देखते हैं कि नहीं करते हैं आपके लिए। हाँ चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कोई बात नहीं कोशिश करिएगा। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: Yeah, kind of because the kind of question that you ask, like they get too personal and
3: I am a disco dancer. Zindagi mera gaana, main usi ka gaana.
1: Bilkul.
0: Bilkul sahi.
4: Hum hamesha sochte the, jisse shaadi karenge na hum, uski zindagi ban jayegi. Par tumko dekhne ke baad humko aisa lagta hai.
0: Kaun?
1: Ranbir?
0: Nahi, Ranbir nahi hai.
5: इजी लगता है मोनिका डांस, इजी नहीं है डांस, एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट।
0: हाँ
1: आगे जाएं,
0: आगे जाएं तो निकल गए आगे, टाइम खत्म हो गया,
1: निकल गए आगे, निकल गए
0: हम आगे निकल गए, टाइम पीछे रह गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज का थोड़ा सा टफ भी था ना, ये भी हो गया, तो कल कल के लिए कल ट्राई करेंगे।
1: अनंत अंबानी का हम नहीं सुन पाते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम, अनंत अंबानी जी का इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे, बीच में ड्यूटी खत्म हो जाता।
0: नहीं नहीं जरूर सुनिएगा, कोशिश कीजिएगा उनसे भी कनेक्ट हो, बट बहुत बहुत शुक्रिया।
1: असल में ड्यूटी हमारा थोड़ा सा बीच में मतलब बहुत कम चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा मसला हो जा रहा है।
0: जी जी जी ठीक
1: है, इंशाल्लाह सुनते हैं सबको अच्छा लगता है।
0: जरूर चलिए, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। ऑल राइट एंड दोस्तों अभी हालांकि कॉल्स आ रही है बट आई डोंट थिंक मेरे पास टाइम है, बस जाते जाते कुछ लोगों के यहाँ पर मैसेजेस। अहमद है हमारे साथ और हम इसलिए नहीं गेम खेल पाते हैं, मत करें क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं। एंड या आई नो आई अंडरस्टैंड, मैंने तो ऐसे ही कहा जस्ट दैट वे, मैं समझ सकती हूँ। और मैम हिशाम जी कह, चलिए आप लोग जो है अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं कोशिश करूंगी कि कल से ज़्यादा लोगों को चांस भी मिले और सारी की सारी बात आप तक पहुंचे। आपके हालांकि मैसेजेस जो हैं वो मैंने जो है वो लेना स्टार्ट कर दिया है। मुबीन बख्ता दीजिए, थैंक यू सो मच। नौमान हमारे साथ है हमारे शो की बहुत तारीफ करते हुए, एंड थैंक यू सो वेरी मच एंड बहुत शुक्रिया। यहाँ मैसेज किया है हमें, इनका नाम नहीं है और बहुत सारी तारीफें, सो थैंक यू। वेल इसी के साथ दोस्तों अब वक्त है कि मैं आपसे इजाज़त लूँ इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह आपकी मेरी मुलाकात होगी कल सुबह 6 बजे इसी शो में जिसका नाम है समा मॉर्निंग्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: रहे हैं और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नन्ही नवासी आपके साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने कंधे या बाजू पर उठाए हुए हैं। जब रुकू या सजदे का वक्त आता है तो मोहब्बत से ज़मीन पर बिठा देते हैं और जब क़याम के लिए खड़े होते हैं तो दोबारा उठा लेते हैं। ये मंज़र कितना खूबसूरत मंज़र है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और शफ़क़त दोनों का हसीन इम्तिज़ाज दिखाता है। कभी बाज़ लोग ये समझते हैं कि बच्चे इबादत में रुकावट होते हैं, अगर मस्जिद में बच्चा हल्की सी आवाज़ निकाल दे तो फ़ौरन सख्ती की जाती है, अगर बच्चा नमाज पढ़ने वाले के करीब आ जाए तो नाराज़ी का इजहार किया जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें सिखाता है कि बच्चे दीन और इबादत के माहौल से दूर किए जाने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ उस माहौल का हिस्सा बनाए जाने के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की मौजूदगी को बोझ नहीं समझा बल्कि उसकी ज़रूरत और मोहब्बत का ख्याल रखते हुए नमाज अदा फरमाई। उमामा रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा और अबुल आस बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी थीं, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों और नवासियों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। आप उन्हें गोद में लेते, बोसा देते, उनके साथ खुश तबई फरमाते और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। सामनेकराम, इस हदीस में हमारे लिए सबक है कि बच्चों को मस्जिद और नमाज से मानूस करें। बच्चे अगर इब्तदाही से अपने वालिदैन को नमाज पढ़ते देखें, मस्जिद का माहौल देखें, अजान सुने और इबादत के साथ मोहब्बत का बर्ताव महसूस करें तो उनके दिल में भी दीन से मोहब्बत पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अपने इस अमल से हमें बताया है कि बच्चों की दीनी तरबियत नरमी और मोहब्बत के साथ होनी चाहिए। तो सामने कराम, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें नमाज का दुश्मन न समझें, यानी ये नहीं कि नमाज के वक्त उनको पूरे इलाके से दूर कर दें बल्कि उनके अपने करीब रखिए, उन्हें नमाज की हरकत दिखाइए, उनके लिए छोटी जाय नमाज रखिए। अगर वो कभी आपकी पुश्त पर आ जाएं या करीब बैठ जाएं तो तहम्मुल से काम लीजिए और जब मुनासिब उम्र हो तो मोहब्बत के साथ नमाज सिखाइए, यही नबवी तरबियत है। अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक साले और नमाज से मोहब्बत करने वाला बनाए और हमारे घरों को इबादत और मोहब्बत से आबाद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर फारिस इब्राहिम के बारे में। फारिस इब्राहिम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में मर्दों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ दो ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किए। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में फारिस ने मजमी तौर पर 402 किलोग्राम वेट उठाया। बहुत ये जो वेट कैटेगरी के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, काफ़ी यू नो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट रहा है। उन्होंने स्नैच में 177 किलो और क्लीन एंड जर्क में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ 225 किलोग्राम लिफ्ट किया, जिसकी बदौलत वो ओलंपिक चैम्पियन बने। इसके बाद फारिस ने अपनी वेट कैटेगरी तब्दील कर ली और 102 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबले किए। अब वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 94 केजी वेट क्लास में ट्रांजिशन कर रहे हैं। बताता चलूं, 2028 का जो ओलंपिक होने जा रहा है वो लॉस एंजलिस में होगा। फारिस आज भी दुनिया के बेहतरीन वेटलिफ्टर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने IWF वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप और कतर इंटरनेशनल कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कई गोल्ड मेडल्स जीतकर कतर का नाम रोशन किया है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
1: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स, जनरेशन टॉक्स विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 2:30 PM ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it. Don't miss it.
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
5: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डिस्टेंस

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: One Step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
0: One Step to 2030.
1: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ वुमेन इन स्टेम शेपिंग द फ्यूचर. आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से तेजी से तब्दील हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी फील्ड्स मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं, और इन तमाम फील्ड्स का ताल्लुक स्टेम से है.

का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया को ज्यादा इनोवेशन और नए आइडियाज की जरूरत है। जब सिर्फ सोसाइटी का एक हिस्सा सॉल्यूशंस डेवलप करता है तो बहुत से पर्सपेक्टिव मिस हो जाते हैं, लेकिन जब विमेन भी स्टेम फील्ड्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं तो नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और मजीद स्ट्रॉन्ग वे में सामने आते हैं। आज दुनिया के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हमें और आपको सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी के भी नई चैलेंजेस हैं। इन मसाइल को सॉल्व करने

0: सब जरूरत है. वेमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन प्रॉब्लम्स की यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं. इसीलिए स्टेम में फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को फ्यूचर की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है. वेमेन इन स्टेम हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डालती हैं. जो मोबाइल एप्स हम यूज़ करते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम हासिल करते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, उन्हें कई फीमेल्स ने डिज़ाइन किया है. ये यूँ कहें, उनमें कई फीमेल्स का भी अहम किरदार है. जब ज़्यादा वुमेन टेक्नोलॉजी और साइंस में काम करेंगी तो प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी की तमाम ज़रूरियात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी. इस टॉपिक का एक और अहम पहलू इकोनॉमिक ग्रोथ भी है. रिसर्च ये बताती है कि जब वर्कफोर्स में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव होती हैं. वुमेन का स्टेम सेक्टर में आना नए जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमीज को मजबूत बनाता है और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है. आज कई मुल्क और ऑर्गेनाइजेशंस गर्ल्स को स्टेम एजुकेशन की तरफ इनक्रेज कर रही हैं. स्कूल और यूनिवर्सिटीज स्पेशल प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाएं. ये सिर्फ इक्वालिटी का मसला नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रेस और इनोवेशन का भी मसला है. फ्यूचर में एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी. अगर वुमेन इन फील्ड्स में ज़्यादा नुमाया किरदार अदा करती हैं तो दुनिया को बेहतर सोल्यूशन और ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल होगा. इस तरह वो सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाएंगी बल्कि पूरी सोसाइटी की तरक्की में एक अहम हिस्सा डालेंगी. वुमेन इन स्टेम सिर्फ करियर्स का टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर की लीडरशिप, इनोवेशन और तरक्की का भी टॉपिक है. जब लेडीज साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का इजहार करती हैं तो नए इन्वेंशंस, नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं. मुस्तकबिल उन माशरों का होगा या उन लोगों का होगा जो टैलेंट को जेंडर की नज़र से नहीं बल्कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इनोवेशन की नज़र से देखेंगे. अगर आज हम ज़्यादा गर्ल्स को स्टेम फील्ड में सपोर्ट करेंगे तो कल हम एक ज़्यादा एडवांस, क्रिएटिव और प्रॉस्पेरस दुनिया देख सकेंगे. वुमेन इन स्टेम वाकई मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं और उनका किरदार आने वाले दौर में और भी ज़्यादा अहम होगा. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, वुमेन को स्टेम में जाना चाहिए, तो अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को भी, लेकिन लड़कियों को भी ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए इनक्रेज करें, मोटिवेट करें. चलिए, मैं तो आपसे अब यहाँ पर इजाज़त लूँगी इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल एक और नए टॉपिक पे आपकी हमारी मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2020.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Cricket ho.
2: And he's hooked that away. That's four runs.
1: Football ho. Ya koi aur bada sporting action. हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
4: की। हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
5: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
6: Anytime, anywhere.
7: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Go to our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें।
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488880 या ईमेल करें marketing@qmc.ae।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, ऑफिस लाइफ में लंच ब्रेक एक ऐसा वक्त होता है जहां हम थोड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो क्यों ना रिलैक्स अपने कोलीग्स के साथ वक्त गुजारते हैं और अपना खाना भी एंजॉय करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऑफिस लंच हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है? देखिए, रोजाना के मील्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कंटेनर्स और फूड वेस्ट, ये सब मिलकर अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लंच रूटीन में कुछ सिंपल चेंजेस ले आए ना, छोटे छोटे, हम अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। ट्रस्ट मी। तो भाई क्यों ना आज इको स्विच में बात कर ली जाए इको फ्रेंडली ऑफिस के बारे में, यानी सी हैबिट्स जो सेहतमंद भी हों और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हों। तो भाई पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए, ऑफिस लंचेस के दौरान कुछ कॉमन हैबिट्स वेस्ट को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि आप कह लें क्या कहा जाए, रोजाना डिस्पोजेबल फूड का इस्तेमाल, प्लास्टिक कटलरीज और बैग्स ज्यादा, खाना ज्यादा ऑर्डर करना और फिर वेस्ट कर देना, अपना लंच घर से ना लेकर जाना और अननेसेसरी पैकेजिंग क्रिएट करना। देखिए, कभी कभी हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही चीजें चूज करते हैं जो कि भाई कुछ मिनट के लिए हमारे लिए यूजफुल होती है, लेकिन बाद में क्या बन जाती है, वेस्ट। देखिए, फूड वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ग्लोबली, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, खाना बनाने में पानी, एनर्जी और रिसोर्सेज लगती हैं। इसलिए स्मार्ट लंच चॉइसेस एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती हैं। तो ये सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ऑफिस लंच को इको फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे से आइडियाज दे देती हूँ। पहली चीज तो ये कि रीयूजेबल लंच बॉक्सेस यूज करें ना। प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉक्सेस की जगह आप रीयूजेबल लंच कंटेनर्स यूज कर सकें। वो जो आते हैं ना ड्यूरेबल से, स्टील के होते हैं, या कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो ज्यादा अरसे तक चल सकते हैं और वेस्ट कम प्रोड्यूस होता है कि नहीं। अच्छा, अपनी वाटर बॉटल और मग अपने साथ रखें। देखिए, ऑफिस में अपनी रीयूजेबल बॉटल और कॉफी मग रखने की आदत डालें, ये एक अच्छी हाइजीन भी है और इससे रोजाना डिस्पोजेबल कप और बॉटल्स का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि मील प्लानिंग करें। अगर आप घर से लंच लेते हैं तो पहले से ही करने की कोशिश करें। देखिए, इससे फूड वेस्ट कम होता है और आप अपनी पसंद का खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। चौथी चीज ये कि लेफ्ट ओवर फूड को स्मार्ट यूज करें। देखिए, घर का बचा हुआ खाना अगर प्रॉपरली स्टोर किया गया हो ना तो वो अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से उसे वापस यूज किया जा सकता है। इससे खाना भी कम वेस्ट होता है और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है क्योंकि आप घर का खाना खा रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेक अवे में स्मार्ट चॉइसेस करें। देखें, अगर कभी कभार लंच ऑर्डर करें, आपको जितनी जरूरत हो ना उतना ही ऑर्डर करें। ये नहीं कि जब आपकी भूख डबल ट्रिपल हो जाए तब जाके आप ऑर्डर करें डबल ट्रिपल ट्रिपल खाना, और जहां किन हो अननेसेसरी पैकेज को अवॉइड करने की कोशिश करें। इसकी एक अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल ली जाए ना तो बहुत से ऑफिसेज में एम्प्लॉयज ने सिंपल इको फ्रेंडली लंच हैबिट्स अडॉप्ट की हुई है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग हर रोज अपना लंच रीयूजेबल बॉक्स में करते हैं, कुछ कोलीग्स मिलकर लंच शेयर करते हैं ताकि फूड का वेस्ट, खाने का वेस्ट कम हो। कुछ ऑफिसेज में अपने जो है ना, मेरे अपने ऑफिस में लोगों के पास मग हैं, अपनी बॉटल्स हैं, उन्होंने कल्चर बनाया हुआ उसका, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल कम होता।

0: सोचिए अगर ऑफिस में सिर्फ 50 लोग ही रोजाना एक डिस्पोजेबल आइटम कम करें का यूज कर दें तो उस भर में कितना वेस्ट कम होता है। छोटी सी ऑफिस हैबिट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है भाई। तो भाई साथियों आज का इको स्विच चैलेंज ये है आपके लिए कि अगर ऑफिस लंच वक्त एक इको चॉइस जरूर अपनाएं, चाहे वो रीयूजेबल लंच बॉक्स हो, अपनी वाटर बॉटल लाना हो या खाने का वेस्ट कम करना हो। और हमें जरूर बताएं कि ऑफिस में लंच ज्यादातर घर से लेकर आते हैं या बाहर ऑर्डर करते हैं। मैं हूं ज़फ़ा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए बेहतर लंच सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि हम प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर से आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क करें और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107 से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हवा के झोंके मौसमों से उठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ, फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों

0: साबित होंगी, तो इसलिए हम आप कराए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से देसी।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, The ultimate mind workout as pure fun. यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ पजल्स एंड एक्साइटमेंट।
2: अनलॉक योर माइंड, ट्यून इनटू रेडियो यूनिक गेम शो एस्केप रूम विद ए फॉर अमिता, संडे टू थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से, ओनली FM 107, दिल से देसी।
3: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे आखिरत की तैयारी के बारे में। जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दुनिया ही बल्कि आखिरत की कामयाबी है। हर दिन जो हम गुजारते वो हम अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करें। छोटी छोटी नेकियां, सच्चाई, इबादत और अच्छा रवैया, ये सब आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है। अक्सर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन असल प्लानिंग आखिरत की होनी है जो हमेशा के लिए है। आज का अमल ये है कि अपने किसी एक अमल को अल्लाह की रजा के लिए इम्प्रूव करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
5: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से जी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107
1: Time Check. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. की घड़ी में 11 बज के सही 2 मिनट
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ।

0: हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब नूर कहता हूँ वैसे मैं, अभी तक ऐसी बात नहीं है, सब हाल खैर भी कहा जा सकता है क्योंकि भाई जाए अभी दोपहर जो है वो शुरू नहीं है और 11 बजने के साथ ही आप लोगों को तो पता ही होता है एफएम 107 पे मैं और सफा आपके साथ जुड़ जाए हैं, जहां पे मेरा और सफा का साथ आपके साथ दो घंटे तक रहता ही रहता है और खूब सारी बातें होती हैं, मौजू छेड़े जाते हैं, हंसी मजाक की जाती है और जितनी अपडेट्स है वो भी बताई जाती है कि कहां पे क्या चीज खासम खास हो रही है कतर में और कहां कहां हमारा कतर जो है वो तरक्की करता चला जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि सफा सफदर जो है वो क्या कह रही हैं और क्या है उनका अहवाल। अस्सलाम वालेकुम।
1: ए, मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही?
0: नहीं, मुझे आपको आ रही है।
1: अच्छा हाँ, अब आ रही
0: है।
1: मैं कहूं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी आवाज ना आए?
0: कैसी है सफा?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर भाई आप सुनाएं।
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और
1: आज बड़े अच्छा, आज जो है ना सर भाई का अगर मैं नक्शा खींचू ना, जिस जिसको सर भाई नहीं नजर आ रहे, ऐसा लग रहा है किसी की वली में जाने वाले हैं ये। इतना माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार शशके मारते हुए आए सर भाई।
0: लिप पाउडर और क्या क्या होता, फाउंडेशन?
1: नहीं सर भाई, आप
0: कजरा तो दूसरी, हाँ कजरा इज
1: कजरा, वो जो फूलों वाला होता है।
0: नहीं वो तो गजरा होता है यार, देखिए साहब ये भी नहीं जानती लड़की होगी
1: भाई, ऐसी वाली लड़की से बात करो ना, ये एक और मुद्दा खुल जाएगा।
0: तो चलिए साहब अब हम दोनों जुड़ गए आपके साथ आपकी आफ्टरनून को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए इंशाल्लाह ताला, जहां पर आप खुश हो जाएंगे। आपने करना क्या है, हमारे साथ जुड़ जाना है और बहुत आसान से दो रास्ते हैं और वो क्या है सफा
1: भाई? आपने हमें मैसेज करना है 666-2107।
0: नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाँ
1: आपने हमें
0: फिर ये बात होगी कि आपने बताया नहीं
1: वो घोड़ा गाड़ी चलाते हैं। आपने हमें मैसेज करना है 666-2107 पर, यानी के 666-2211
0: 107।
1: इतना स्लो बोल रही हूँ, खुद भूल गई कि क्या बोल। और भाई अगर आप चाहते हैं एज अ कॉलर शामिल होना तो आप जरूर कर सकते हैं। अपने अपने खर्चे पे खुश रहो, जिसके पास नहीं है बैलेंस खत्म हो गया कोई बात नहीं, सर भाई को मैसेज कर देना,
0: हम
1: सर भाई
0: कॉल बैक कर लेंगे।
1: आपने करना ये है कि आपने हमें कॉल करनी है 443-443-77 पर।
0: बिल्कुल सही, और यहाँ पर मैसेजेस आना शुरू भी हो गए, तो हम इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी देर में
1: क्या वेदर रिपोर्ट दें क्या
0: शो में बिल्कुल लेंगे। और हाँ बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं वेदर के साथ।
2: वेदर का हाल 107 देनाल।
0: और वेदर का हाल तो बहुत बेहतरीन होता जा रहा है सफा, क्या कहती है?
1: हाँ जी भाई, वेदर का हाल इस वक्त ये कि 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो टेम्परेचर पहुंचा हुआ है। इस वक्त हवाओं की रफ्तार तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तबड़क तबड़क तबड़क तबड़क दौड़ रही हैं, क्योंकि गर्मियों में हवाएं ऐसी होना तो फिर दौड़ना ही होता है। अच्छा भाई, अगर उसी के साथ देखा जाए तो देखें ह्यूमिडिटी को जो है ना वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी अहम नहीं आ रहा, कल से ज्यादा हो गई है, हायर हो गई है, यानी कि 49% पर ह्यूमिडिटी वापस से पहुंच गई है। दुआ करें कि थोड़ी सी कम हो जाए और आज का जो टेम्परेचर है वो रहेगा मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जाएगा ये नीचे 32 डिग्री सेल्सियस तक।
0: तो भाई देखिए टेम्परेचर के हवाले से तो कमी आती चली जा रही है, जाहिर बात है क्योंकि ह्यूमिडिटी का माहौल है, ह्यूमिड तो रहता ही है और ये सीजन भी है तो उसमें हमें ह्यूमिडिटी से कोई शिकायत नहीं है ऐसी, अभी बस इंशाल्लाह ताला एक आध महीने की बात है। क्या कहा कल हमने आपको बताया कतर कैलेंडर हाउस ने, जो सुहेल साहब की आमद हुई है, मतलब सुहेल सितारे की आमद हुई है, उसके हवाले से भी हमने आपको बताया। यहाँ पर कुछ और भी खबर है, अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं और वो ये कि भाई जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक कतर में 20 सितंबर, हाँ डेट याद रखिएगा, 20th of September से मौसम में पहली तब्दीली जो है वो महसूस होना शुरू हो जाएगी। क्या बात है, आज का तारीख है 25, तो 25 ही दिन रह गए समझे, करीब करीब 20 सितंबर की अगर बात करें तो साहब पहली नुमाया तब्दीली जो है वो महसूस होना शुरू होगी जैसा कि बताया गया है, और जो टेम्परेचर है दर्जा हरारत में धीरे धीरे कमी और भी ज्यादा आने शुरू हो जाएगी। कदर

0: एंडर हाउस ने जो हमें कल बताया था उसके अलावा मतलब ये कि सुहेल सितारे की आमद के बाद से ये चीजें शुरू हो जाती हैं, उसके अलावा जो वहां के कतर कैलेंडर हाउस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल अंसारी ने ये बात बताई है कि भाई इस दौरान दिन और रात तकरीबन बराबर हो जाएंगे। बराबर मतलब समझ रही हो ना सफा तुम, 12 इधर 12 इधर, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत में कमी होना शुरू हो जाएगी ऑब्वियसली। उन्होंने ये भी बताया कि तब्दीली खासतौर पर जो मछली पकड़ने वालों या कश्तियों पे जो सवार होते हैं या जो भी साहेली इलाकों में काम करने वाले हैं वो ज़्यादा महसूस करेंगे। इसका मतलब यह है कि ह्यूमिडिटी में भी कमी होना शुरू हो जाएगी क्योंकि वहीं से शुरुआत होगी ना, पानी के ऊपर तो ज़्यादा महसूस होती है। साथ ही जो दूसरी जगहें हैं उसमें भी बदलाव नजर आना शुरू हो जाएगा। मजीद ये कि 3 अक्टूबर से अल सरफह का जो मरहला है वो शुरू होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 4 मरहले होते हैं सुहेल के आने के बाद से, जो पहला होगा वो अल सरफह का होगा, जबकि 16 अक्टूबर से अल वस्म का मौसम शुरू हो जाएगा जो रिवायती तौर पर भाई बारिशों का मौसम होता है। मतलब बारिश के गाने जो हैं वो चलेंगे,
1: बरसा पानी
0: अक्टूबर में जाकर चला पाएंगे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि भाई जब चाहे जब बारिश करा दें और जब चाहे जब बारिश हो जाए, अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वेदर बेहतर होता चला जाए। मजीद ये कि माहिरीन का कहना है कि ये तमाम जो

0: हाय हाय हाय हाय,
1: ढोल पताशे बजते हुए
0: हाय हाय हाय,
1: नगाड़ा बजा।
0: ढोल वाकई चीज ऐसी है, आदमी अपने आप यार हिलना मटकना शुरू हो जाता। तो फिलहाल आपके लिए ये पहला गाना जलवा वाजिद और अर्ल डिसूजा एक दूसरे का साथ देते हुए गाने को बेहतरीन बना रहे हैं।
1: आप सिंगर्स को याद रखें, हम सल्लू भाई को याद रखें।
0: तो भाई सन एंड साउंड पे सर्वर और सभा आ चुके हैं, कहाँ आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, गाने को एंजॉय कीजो दिल से
1: देसी।

जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ एफएम 107 पर दिल से एसी।
1: अंजी वेलकम सहलन खुश आमदीद स्वागत है और बिल्कुल इस वक्त सफा और सरवर आपके साथ मौजूद हैं।
2: हाजिर हो गए
1: और चलिए भाई अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले कॉलर को यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत देर से हमें कॉल करना चाह रहे हैं। हेलो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
2: कौन है हमारे साथ?
3: हमारा नाम उसामा है।
2: अच्छा, उसामा, अरे उसामा भाई, मेरे सबसे छोटे वाले भाई का नाम उसामा है।
3: अरे देखिए ना, आपके भाई ने आपको दूसरे भाई ने आपको
2: मेरे दो भाई एक ही नाम के उसामा नाम के। कैसे हैं
1: उसामा भाई?
3: अल्हम्दुलिल्लाह
1: माशाल्लाह अहलन व सहलन। तो कैसा रहा अभी तक का दिन आपका?
3: अभी तक का दिन तो अच्छा है, इस्बा में घूम रहे हैं।
1: कहाँ पे घूम रहे हैं?
2: इस्बा
1: शाहनिया में। ओ हो हो, तो वहाँ तो बादल वगैरह होंगे मेरे ख्याल में, वहाँ तो बारिश होती रहती है। वो तो
3: नहीं, आज नहीं, पर गर्मी है
1: ऐसी। मैंने तो यही कहना शुरू कर दिया,
3: हमारे सफा मैडम को गर्मी पसंद है तो उनको ये जगह
1: सूटेबल।
2: अरे पता है उसामा भाई, शाहनिया से मेरी बड़ी याद है। शाहनिया मुझे वैसे भी बहुत पसंद, दिल के करीब है शाहनिया मेरे। मेरे वाले साहब का काम हुआ था जब वो टीवी वगैरह में काम करते थे, तो वो जो है ना, क्योंकि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे, तो उस जमाने में हम छोटे होते थे ना, तो वो ऊँटों की रेसों में हुआ करती थी। और क्या तो लशपश, अरे भाई वो मेरी फेवरेट जगह है
3: वहाँ पे, हमारी ड्यूटी यहाँ पे।
2: सही सही सही सही,
1: चलिए साहब बड़ी अच्छी बात।
2: गर्मी वाला है वो जगह, सेट गर्मी वाली।
1: अभी अभी पहुंच नहीं है सफा, थोड़े में बस शो कर। अच्छा ये बताइए उसामा भाई के आज का मौजू और मुद्दा भी छोटे इनके साथ, और वो ये कि भाई आपको उनमें सफर करना पसंद है?
3: जी बिल्कुल।
1: अच्छा, तो इस सफर को आप एंजॉय करते हैं या डरते हैं?
3: एंजॉय भी करता हूँ और कभी डरता हूँ, दोनों भी कर सकते, बोल सकते हैं। कभी टर्बुलेंस रहता है तो ज्यादा डर लगता है।
2: अच्छा,
3: पिछली ट्रिप में जब इंडिया गया था तो बारिश का वक्त, बारिश थी काफी, बारिश भी दो, तो मतलब बस लैंडिंग में तो हमारे 40 मिनट लगे, तो बस कलमा पढ़ लिए थे हम लोग ने वहीं पे।
1: अल्लाह ताला खैर करने वाले। तो वैसे एंजॉय करते हैं सफर को प्लेन के,
3: बस
1: जब टर्बुलेंस वगैरह होता है खुदा ना खास्ता, उस वक्त जरा सा डर लगता है, वरना चाहते हैं कि हाँ मैं प्लेन से ज्यादा सफर करूँ। चलिए यार, ये तो बड़ी
3: अच्छी बात है, एक कन्वीनियंस होता है हमें, ज्यादा आसानी होती है। जैसा पिछली बार एक मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि पिछली बार मरतबा मैंने उमरा का इरादा किया, तो मैंने पहले बस की बुकिंग किया, फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों 18 घंटे 20 घंटे बस में बर्बाद करूँ, मैं यहाँ से 2 घंटे में मक्का जा सकता हूँ।
2: हाँ, सफर करने में ना, बाकी गाड़ी से या बस से सफर करने में बहुत थक जाता है।
3: 2 घंटे में यहाँ से कन्वीनियंट है मेरे लिए, मैं आराम से 2 घंटे में सफर कर सकता हूँ, यहाँ से मक्का जा सकता हूँ, फ्रेश रहूंगा, उमरा भी करूंगा, फ्रेश रहूंगा उमरा करने के लिए। मैं बस में चला जाऊंगा, गाड़ी से चला जाऊंगा, 20 आवर्स लगेंगे मुझे, मैं थक जाऊंगा, मेरी इबादत में खलल हो जाएगा।
2: हाँ अच्छा, ये डिपेंड करता है ना कि आप किस नियत से नियत बांध रहे हो, कहाँ की ट्रैवलिंग की। अगर आपकी इबादत की नियत है तो फिर वह वाकई में, मैं तो कहती हूँ, मैं खुद इस बात पे कहती हूँ कि आप जो ना शॉर्ट फ्लाइट लो। हाँ, अगर आपका वैसे ही रोलू पोलू होने का प्लान है,
3: आपको वेकेशन वेकेशन हाँ, ये एक अलग चीज होती है। अगर आपको इंजॉय करना है, आपके पास वक्त है इंजॉय करना, आप गाड़ी स्टार्ट निकल दुबई के लिए, सऊदी जाकर रुकते रुकते चले
2: जाए, इंजॉय करते हुए फलाने पेट्रोल पंप पे रुको, फलाना चिप्स खाओ, फलाना जूस पियो, मजा आता है।
1: बिल्कुल, मौसम उसके लिए साथ
2: देना चाहिए। मौसम वो मैं कहती हूँ
3: इस मौसम में नहीं जा सकते हम लोग।
2: वो आप कहते हो ना कि अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक का जो ये बीच वाला जो होता है ना, इसके अंदर फिर भी मौसम अच्छा होता है।
1: यार देखिए, मसला तो ये होता है कि मौसम तो जब अच्छा होता है, जब साथ अच्छा हो, तो कैसा भी मौसम हो तो अच्छा हो जाता है। और यकीन जानिए कि अब मैं तो शायद अगले हफ्ते जाने भी वाला हूँ, और वो ट्रिप से ही
3: नहीं, ये आपने कुछ और बात कर ली, इसके लिए एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। सफर करना है तो कौन साथ में होना चाहिए,
1: कौन साथ में होना चाहिए? नहीं देखिए, कोई भी सफर
3: अगर
1: लेट्स अगर आप प्लेन

0: का सफर ही कर रहे हैं और आप अकेले हैं,
1: तो आप अकेले करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात।
1: साथ में
0: क्योंकि उसमें तो वैसे भी कोई लोग साथ में ही है ना, उसमें तो वैसे भी 200 लोग साथ में ही है। जी
1: जी, कुछ अच्छे दोस्त आपकी फैमिली, अच्छे दोस्त आपकी फैमिली, जैसे आपकी वाइफ बच्चे, आप इंजॉय रहे, वो आपका सफर कब खलास हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
0: सही सही, चलिए सब।
1: ऐसे दोस्त को गलती से भी सफर पे मत लेके जाना जिसका मुंह हमेशा बना हुआ है, वरना आपका सफर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा।
0: आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं इसको?
1: बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस किया।
0: मतलब सफर जैसे को साथ में लेके नहीं जाना है?
1: अब मुझे तो सफा मैडम के बारे में
2: आपको बता रहा हूँ,
1: मैं सेकंड डे सुन रहा हूँ आपको। मैं पहली बार बता रहा हूँ।
2: अरे वाह, अरे भाई
0: एलन वेफेलन, चलिए साहब आपने बर्दाश्त किया, मगर सफा का ऐसी रहता है। भाई कुछ लोग होते हैं जो सफर करना चाहते हैं।
2: सफर करना मेरे लिए जो है सफर करना वो लिटरली सफर करना हो रहा था, उर्दू वाला नहीं इंग्लिश वाला, मेरे लिए वो वाला सफर सफर होता है, तो मैं सफर में बिल्कुल डिफरेंट इंसान हूँ।
0: चलिए साहब
1: जी, जज़ाकअल्लाह खैर, शुक्रिया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया उसामा भाई, ख्याल रखिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू अहलन व सहलन। तो भाई ये तो उसामा भाई हमारे साथ जो बता रहे थे, और आज का मौजू यही है कि क्या आपको प्लेन का सफर जो है वो करना अच्छा लगता है, और पर आपको डराता है या वो आपको और ज्यादा कराता है, तो ये आप अपने जो एहसास हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको हमारे पता ही है, 666-22107 पे आप अपने मैसेज भेज सकते हैं, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। सफा कैसा लगता है वैसे प्लेन का सफर?
2: मुझे डर लगता है, जबकि मैं जब 12-13 साल की थी तब से मैं अकेले सफर कर रही हूँ, इंग्लिश और उर्दू दोनों वाला, लेकिन लेकिन डर लगता है, फिर भी डर लगता है,
0: अभी भी डर
2: लगता है मुझे। आई डोंट लाइक प्लेन्स, मेरा कुछ मसला है, बैठ जाऊंगी।
0: सच्ची बात, सच्ची बात है, और ये तो अपनी अपनी लंग्स पे है कि आपको क्या अच्छी लगती है,
2: आपको कैसा लगता है सर भाई?
0: और कितना यार, मैं सही बताऊं, बचपने से और अभी तकरीबन एक 10-12 साल पे मैं बहुत एंजॉय करता था, पिछले 10-12 साल से मैं भी थोड़ा सा डरने लगा।
2: अच्छा, मुझे पानी का सफर और जहाज का सफर नहीं अच्छा लगता। आई डू नॉट लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है आप मुझे गाड़ी में कहीं ले जाओ लॉन्ग ड्राइव पर, ऐसे ऐसे मुझे अच्छा लगता है, मुझे ना वो ठहर ठहर के चीजों को एंजॉय करके और क्लोजअप से देख कर एक जगह पे आप खड़े हो जाओ, ऐसे वाला सफर अच्छा लगता है मुझे।
0: सही सही सही सही सही, चलिए ठीक है, ये भी अच्छी बात है। वैसे जहाज का भी सफर अपने आप में, मतलब पानी के जहाज का सफर भी अपने आप में काफी आराम देता है जो लोगों से जाना चाहते हैं।
2: ना भाई ना भाई ना ना ना
0: ना चाहते
2: मेरी तो अभी यहाँ पे अपना माशाल्लाह से कॉर्निश पे चले जाए, वहाँ पे आपने देखा है ना वो बोट्स वगैरह खड़ी होती है जहाँ से हम थोड़ा सा सफर वगैरह कर आ सकते हैं बोट का, तो मैं भी जाती हूँ, वो बेचारे 20 मिनट की राइड देते हैं वो, लेकिन उस 15-20
0: जो डाओ है, जो डाओ है, कॉर्निश पे भी है, ये दूसरी जगह पे भी है जो हम एंजॉय करते हैं,
2: जो ट्रेडिशनल डाओज हैं, वो भाई मेरी ना सांस आती है, वो घर वाले कहते हैं वो देखो वो फलानी मछली, वो देखो ये देखो पानी के अंदर, और मैं ना यूं साकत बैठी होती जैसे मुझे किसी ने पत्थर का बना दिया।
0: कहते हैं भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, इस बार के मजे लेने आ जाइए कैमल रेस क्लब में। ओहो उसामा भाई ने मैसेज भी कर दिया हमें भाई इतनी देर में, क्या बात है यार, इंशाल्लाह ताला जरूर। कहते हैं सफा नूर कैसे हैं आप और सरवर भाई आप कैसे हैं? सफा नूर को भी गर्मी के साथ ही भेजना पड़ेगा।
2: कहाँ भेज रहे हो, कहाँ का टिकट करा रहे हो? देखो अजरबैजान का कराना प्लीज, आजकल मेरी लिस्ट में जो है ना मेरी फीड में अजरबैजान बहुत ज्यादा आ रहा है।
0: अगला जहाँ भी घूमने जाना टिकट करवा दीजिए,
2: कजाकिस्तान
0: बेहतर हो। कहते हैं आपको वीक फील्ड में, फील्ड में या फील्ड में लगवाया जाए, आप गर्मी को याद भी ना करें सिस्टर। अच्छा
2: अच्छा, ये जो फिर कहेंगे कि सफा जो है ना, सफा का कोई ना कोई किस्सा निकल आता है किसी ना किसी चीज से, तो अब मैं क्या बोलूं सर भाई, क्या बोलूं, बोला जाए कि नहीं बोला जाए?
0: मुख्तसर है तो
2: मुख्तसर ये फील्ड में भी काम किया है, अब्बा के साथ खड़े हो गए कंस्ट्रक्शन फील्ड पे,
0: तो
2: वो टाइम भी देखा है। अब सब बोलेंगे कि देखो इसके पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आता है, भाई अब क्या करें, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस बोलेगा। ये और बात है कि मैं ये बात मानती हूँ, मैं तभी रेडियो पे भी अक्सर ये कहती हूँ कि ख्याल किया करें, जो खासतौर पर हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भाई वगैरह काम कर रहे होते हैं उनको, और कुछ नहीं तो ठंडा पानी, वो जो लस्सी का क्रेट होता है वो आपने बांट दिया, एक दूसरे का ख्याल कर चले।

0: सेल्सियस उस गर्मी का अंदाजा है जब आप फ्राई हो रहे होते हैं तो मुझे अंदाजा है उस गर्मी का. और ये बिल्कुल बात सही है इनकी कि अगर फील्ड में किसी को खड़ा कर दिया जाए ना गर्मी में. अच्छा मजे की बात ये कि मैंने तो जो है ना बैंकिंग में भी ऑन फील्ड काम किया है तो मुझे पता है जब आप एक जगह से यहाँ से दोहा से राह जाते हो तो उसके अंदर भी आप पिघल जाते हो बेशक आप गाड़ी के अंदर होते हो. तो हाँ मैं ये बात मानती हूँ लेकिन लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहती हूँ कि भाई हमें ऐसे भी जज नहीं करना चाहिए कि आपको लगे कि हम बड़े मजे में बैठे हुए और आप ही सिर्फ जो है ना वो मसले मसाइल भुगत रहे. हर किसी के अपने अपने चैलेंजेस हैं कि नहीं सरवर भाई?
1: सब अपना अपना काम अंजाम दे रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. गुड मॉर्निंग सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल. वेलकम टू सन एंड साउंड. दिल से देसी यूसुफ भाई हमारे साथ और सभी को ट्यूसडे मॉर्निंग विश कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ. उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे. अस्सलाम वालेकुम. है क्या पूछा?
0: मेरे का ट्यूसडे आ गया क्या
1: भाई? ये हाँ और क्या, आज क्या है? और
0: आज जो मेरी आजकल जो हालत चल रही है ना उसके अंदर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ समझ नहीं आ रहा,
1: याद नहीं रह रहा. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई. सफा मैम कैसे हैं आप दोनों? बिरयानी की हाल सरवर भाई के नाल, क्या बात है माशाल्लाह. मुमताज अहमद कहते हैं और बिल्कुल हम इनसे बात भी करते हैं यहाँ पर.
0: भाई किसको किसको कॉल मिला रहे? मुमताज भाई को मिला रहे हैं. मुमताज भाई आपसे बात करने को दिल कर रहा है सरवर भाई का क्योंकि आपने बिरयानी का नाम ले लिया है ना. तो देखें अगर आपको सरवर भाई से बात करनी है ना, आपने सरवर को कैसे ट्रिगर करना है मैं आपको बता देती हूँ. कोफ्ते, शामी कबाब, बिरयानी, इन चीजों के नाम ले लिया करें आप. हाँ कोई है? अच्छा आ गए क्या लाइन पर? नहीं पहले भी लाइन पर थे. वालेकुम अस्सलाम.
1: वालेकुम अस्सलाम तुल्लाहि व बरकातहू. कैसे हैं मुमताज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से ही होंगे इंशाल्लाह ताला.
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: तो ये बताइए
2: सवाल पूछे हैं बहुत मजा वाला है इसके लिए.
1: जी जी जी बिल्कुल.
2: फ्लाइट में क्या ना, मेरा जब एक बार मैं फ्लाइट में ऐसा बैठ गया, 2:30 बजे का फ्लाइट था सुबह.
0: सही.
2: जब रनिंग किया और रनिंग बहुत स्पीड भगाता है ना शुरू में, उसी टाइम जैसे फ्लाइट ऊपर किया उसी टाइम मैं सो गया. थोड़ा सा ऊपर किया मैं सो गया, फिर हमको पता नहीं कि मैं किधर पहुंचा किधर नहीं पहुंचा.
0: अरे भाई ये मस्त है.
2: जा रहा जब आधे रास्ते में किधर पहुंचा, जब वो खाना लेके आया फिर बाद में वो लोग बोला इसके उसमें सर, हम बोले किधर पहुंच गया.
0: ऐसी तो कोई आइडली के भाई सो गए
1: कि आपका स्टॉप आने वाला है.
2: हमको बहुत मजा उस दिन आया कि वो मतलब पहली बार था, मतलब इधर घर से कतर आया, कतर से फिर जा रहा था वापस.
1: अच्छा चलिए.
2: लेकिन जब इस बार आया, लेकिन इस बार जब आया तो उसका नहीं सुनो.
0: वो
2: 12 तारीख को जब इंडिया में फ्लाइट करा हुआ था ना,
1: 12 जून
2: था, तो मेरा भी 13 जून फ्लाइट था. तो बार बार मैं मोबाइल में देखा, दिमाग और ऐसा हुआ कि जब डोमेस्टिक में बैठा तो डोमेस्टिक में बहुत डर लगता है, ठीक फ्लाइट होता है, तो जब वो लैंडिंग करता है ना, जब वो ब्रेक पकड़ता है ना पायलट, तो मैं भी अपना ब्रेक पकड़ता हूँ. तो मैं भी ब्रेक करता रहता हूँ, मेरे पास है नहीं लेकिन फिर भी पांव जाता है ब्रेक.
1: हम सबको बताते कि ये हमारे ममालिक की बात हो रही है.
0: हमारे यहाँ की डोमेस्टिक
1: ऐसी चीजें नहीं,
0: अल्हम्दुलिल्लाह.
2: लेकिन जब इंटरनल पे बैठा सरवर भाई
1: जी,
2: तो भी आधे रास्ते में आएगा बराबर, कुछ मुश्किल नहीं है. लेकिन आधे रास्ते में अब आ गया पूरा हाई है, तो वो आके बोलता है भाई अपना अपना सीट बेल्ट लगाओ. तो हम बोला अभी इसको क्या हो गया, तब तो शुरू में बोलता है लास्ट में बोलता है अभी.
0: वो होता ये कि जब मौसम की खराबी की वजह से ना कभी कभी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, टर्बुलेंस होता है जहाज पर. वो कहते हैं कि अपने जहाज की पेटियां बांध रहे हैं, अपनी सीट की पेटियां.
1: सही.
2: लेकिन वो कल वाला दिमाग में बात आ रहा है ना, फ्लाइट वाला
0: उड़ते के साथ सो गए.
1: अब बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके. और अब अजान का वक्त भी हो रहा है तो इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा बात करेंगे. अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच मुमताज भाई. ख्याल

0: किया अपना, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये थे मुमताज भाई हमारे साथ जो बता रहे थे।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारे कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: ये है आपके लिए खासम खास इश्क जलाकर, क्या बात है कारवां। तो भाई इसके अंदर शशवद सचदेव शहजाद अली और सुभादीप, यार क्या क्या नाम, बिल्कुल मिले जुले आपस में। एंजॉय कीजिए ट्रैक सर्वर और सफा आपके साथ ओनली ऑन FM 107।
2: दिल से देसी।

0: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se.

0: only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड हार्दवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 101 दिल से देसी।
2: वेलकम बैक। गोभी दे भुल्लो जरा आ जाओ खुशबू लगा के। हमें मैसेज करो 666-22107 पर। 666-22107 पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं 443-443-77 पर। देखो भाई, जिंदगी में ऐसा तो होने से रहा कि कोई डरता ना हो किसी चीज से। आज हमने डर से रिलेटेड ही सवाल किया है, लेकिन कुछ डिफरेंट किस्म का। जहाज में बैठने से डर लगता है? लगता है तो हमें बताओ ना फोन करके। 443-443-77 इज द नंबर। और देख सकते कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप कैसी हैं? आप
2: बिल्कुल वैसी जैसे कि सरवर भाई के साथ बैठ के होना चाहिए। मतलब कि खुशबाश शुएब भाई हैं क्या?
3: जी जी
2: हां, शुएब भाई ही हैं। शुएब अख्तर
4: कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है। सरवर भाई आप कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है भाई।
2: तो कल जितना वजन था आज भी उतना ही है माशाल्लाह से, माशाल्लाह।
4: क्या कहते हैं शुएब भाई, जहाज की क्या खबर है सफर की?
3: देखो सरवर साहब, मुझे जो है ना, अगर कोई भी चीज है जैसे कि साइकिल है, बाइक है, ड्राइविंग के मामले में अपने ऊपर बिलीव है।
2: कोई और होता
3: जैसे कि अब जैसे ट्रेन का जो सफर है, जहाज का है, तो मैं जैसे कि जाता हूँ, मतलब सारी चीजें एकदम मतलब रहती है, जैसे कि मतलब राइट प्लेन पर हूँ, राइट सीट पर हूँ, अल्लाह का नाम लिया, दो चार दुआएं पढ़ी और सो गए। बस होगा देखा जाएगा। मैं मेरी जितनी भी
2: आज कहीं तो कहीं तो पहुंचूंगा या ऊपर या और ऊपर जाऊंगा या जमीन पर।
3: हाँ, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई चलो पांच लोग देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वीडियोस बनाते हैं। सच में मैं तो बस ट्रेन के सीट पर बैठते ही सो जाता हूँ
2: भाई। ये टैलेंट है, ये टैलेंट है।
4: हाँ ये भी अच्छा है यार, सो जाते हैं तो हाँ
2: खो जाते हैं।
3: जो भी हो अल्लाह की मर्जी है, देखा जाएगा।
2: या ऊपर या नीचे रुकूंगा या थोड़ा सा और ऊपर हो जाएंगे।
4: तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं घबराहट रहती है?
3: नहीं सच में मुझे प्लेन के अंदर मुझे कोई घबराहट नहीं होती। आज लास्ट टाइम कुछ टर्बुलेंस आए थे, उससे थोड़ा सा मन हिचकिचाया था, लेकिन ठीक हो गया। जैसे वो टर्बुलेंस ठीक हुआ तो फिर उसके बाद मैं भी ठीक हो गया। फिर दोबारा
2: आप कह रहे हैं के घबराते हैं, आदमी सो रहा है और कह रहे हैं घबराते हैं। सोने में किसको नींद आती है भाई?
3: नींद बहुत खराब है सरवर साहब, अगर कोई ढोल भी बजाएगा तो मैं नहीं उठता हूँ भाई।
2: अरे
3: पांच अलार्म लगा के सोता हूँ एवरी डे, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में।
2: सारे आदमियों का ये मसला क्यों होता है कि साथ वाले पड़ोसी उठ जाएंगे इनके अलार्म से, ये ना उठेंगे, और जबकि इनके कान के अंदर पड़ा हुआ होता है मोबाइल।
4: मेरे साथ भी सेम है यार,
3: ऐसी बात नहीं है, लड़कियों का भी है ना
2: भाई। रहने तो भाई, हमारे तो कमरे का एयर फ्रेशनर ऑटो एयर फ्रेशनर है, वो भी अगर जरा सा पिच करता है तो मैं जो ना उठ जाती हूँ।
4: सुनो सफा,
2: मैं ऐसे आंख खुलती है मुझे तो, अगर कोई बिल्ली से दबे पांव आती है ना, अगर बिल्ली के कदमों से की आवाज से मेरी आंख खुल जाए, मेरी इतनी कच्ची नींद है।
4: माय गॉड,
3: अभी देखो हमारी बहन
4: नहीं नहीं करो
3: वो तो बिल्कुल, मतलब ऐसे अगर कोई ढोल बजाए डीजे बजाए फिर भी वो मेरे आराम से उठती,
4: उसको तो जानबूझ के ना उठना कहते हैं शोएब भाई। वो
2: इस आदमी को कितनी शिकायतें हैं अपनी बेगम से।
3: नहीं शिकायतें नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, शिकायतें कुछ नहीं है,
4: शिकायतें कुछ
2: मतलब
4: नहीं।
2: इनकी बात ना कोई
4: हमेशा
2: बड़ी जल्लाद किस्म की औरत
4: शोएब भाई की जो भी बात होती है मैं ये कहता हूँ शोएब भाई इसको कॉम्प्रोमाइज कर, आपने नाम दे दिया अलग अलग तरीके का। कौन है? ड्यूटी पे आप इस वक्त? एनी हाउ
3: यार नहीं, ड्यूटी पे। अच्छा, दिन में तो ड्यूटी पर ही होता हूँ मोस्टली।
4: सही सही सही,
3: अभी तो कुछ
2: भाई हम भी दिन के टाइम ड्यूटी पर होते हैं, हम तो शाम के टाइम भी होते हैं,
4: हम तो इस वक्त भी ड्यूटी पे।
2: अरे वाकई में हम तो इस समय ड्यूटी पर हैं।
3: मतलब मेरा कहना मतलब ये जैसे आपकी ड्यूटी है ऐसी हमारी ड्यूटी है, बीच बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं
4: अल्लाह ताला कायम रखे भाई।
2: भाई होना चाहिए भाई, देखिए एक दूसरे को खुशबाश रखना चाहिए, कुछ खुशियां हम प्लेट में।
3: हाँ बताइए सर साहब,
4: दो पूछिए।
3: नहीं ये वेद साहब का मैंने कम टाइम से नहीं सुना है।

0: वो छुट्टी पे गए हुए हैं फिलहाल, और अभी वापसी का उनका कुछ नहीं मालूम है हम लोगों को भी फिलहाल, मेरे ख्याल में तो अभी भी वो छुट्टी और मजीद हैं, तो जैसे ही कुछ पता चलेगा तो जरूर आप तक भी बात पहुंचेगी
1: इंशाल्लाह। मैंने काफी टाइम से सुना है, एक बार पूछ लेता हूं। पहले वो मॉर्निंग में कुछ प्रोग्राम करते थे,
0: लीव पे हैं वो फिलहाल, तो बाकी इंशाल्लाह ताला आगे पता चलेगा। तो फिलहाल का ये है मसला के शुएब भाई जो हैं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हर जगह, भले ही जहाज हो भाई किचन हो
2: भाई, नाम चेंज कर
0: भले आराम हो,
2: नाम चेंज कर कॉम्प्रोमाइज भाई रख ले।
1: नहीं नहीं सर साहब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मैं भले से वैसे तारो करता है,
0: बड़े अच्छे आदमी है यार, बड़े अच्छे आदमी है।
2: ये वो गाय बैल घोड़े गधे बेचकर सकते ये बेगम को तो अच्छा पता है, इनकी बेगम से मिलने का, इनकी बेगम से मिलने का मुझे बड़ा तजस हो रहा है कि मैं देखूं कि मैं देखना चाहती हूं।
0: आप हमारे इतने अच्छे कॉलर हैं और माशाल्लाह से हमें रेगुलर सुनते भी हैं, तो क्या वजह है कि मिसेज हमसे कनेक्टेड नहीं है, अगर मैं जानना चाहूँ? शौक नहीं होता,
1: नहीं शौक की बात नहीं, वो कनेक्टेड होती है जब मैं वो मेरे साथ गाड़ी में होती है, तो अच्छा। अभी उनकी जो वो एक ब्यूटिशियन है और
0: मजबूरियत की वजह से ऑब्वियसली सही सही, हाँ। सही।
2: नहीं पर भाई नहीं, मैं बताती हूँ क्या मामला है, किसी दिन जिस दिन ये बुराई ना कर रहे हो ना उस दिन समझ जाना बेगम साथ बैठी है।
1: नहीं,
2: बेगम से चुप चुप के बात करते
1: हैं जब हम लोग छुट्टी पर होते हैं, तो हम लोग मोस्टली ऑफ वाले दिन हम लोग जो है ना बाहर ही होते हैं, तो वो मेरे पास में बैठी होती है और मैं ऐसा मतलब जैसे कि आपसे बात कर रहा हूँ इस तरह से मैं कॉल करता हूँ, खामी में थोड़ा सा
2: तुम्हारी
1: ड्राई करता हूँ, मैंने सबको सुनाता हूँ आप कहती हो, तो बस उसी तरह से थोड़ा सा फन हो जाता है।
2: उसी उसी उसी टाइम के बाद ना फिर उनको खाना पीना मिलना बंद हो जाता है, साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, फिर
1: खाना पीना वो बनाएगी तो मिलना बंद हो जाता
0: है। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है भाई, वाह क्या कहने। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया शुएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, अपना ख्याल रखिए भाई, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच,
1: अल्लाह हाफिज जनाब।
0: तो भाई ये थे शुएब भाई हमारे साथ, और एक कॉलर और लेते हैं क्योंकि दो लाइन इस वक्त बिजी हैं, तो निराश नहीं करेंगे सभा, और बात करने के बाद फिर ब्रेक लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सरवर भाई, कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, कौन है हमारे साथ?
3: इश्फाक बात कर रहा हूँ जी।
0: इश्फाक?
2: इश्फाक मियां कैसे हो?
0: अरे एक मिनट, अशफाक या इश्फाक ये दोनों एक ही है क्या? मतलब हम अशफाक
3: जी जी जी भाई, कहने कुछ लोग आई से जो है ना वो लिखते हैं और जो है ना ए से, और मैं ए वाला हूँ।
2: अशफाक है, अशफाक
0: नहीं मगर बोला इश्फाक, तो चलिए ये
2: लिखते ए से बोलते आई से,
0: कह रहे हैं दोनों मेरे, किधर भी नहीं जाएगा ये, राम मेरा ही रहेगा, सारे कॉपीराइट खरीद रखे हैं मैंने,
3: उर्दू में अलफ ही आएगा, चाहे इश्फाक कर लो चाहे इश्फाक कर लो।
0: क्या बात है यार, कैसे हैं? खैरियत से हैं, और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो जो है ना आपका सुना कि आपको जो है ना वो जहाज में सफर कैसा लगता है ना,
0: जी जी कैसा लगता है बताइए।
3: मुझे एक किस्सा याद आ गया भाई, मुझे तो जहर लगता है, सीधी बात है। सही बात है, मैं अगर कहूँ ना कि यहाँ से पाकिस्तान जाना है भाई बस, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, चाहे 5 दिन लग जाए।
2: लेकिन अगर
3: सही बात है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत डरता हूँ।
2: और अशफाक भाई
3: एक किस्सा याद आ गया
2: भाई, एक और बात ये कि अगर जहाज में 1 से 2 बच्चा हो कोई छोटा वाला, और वो बीना बाजा बजाता रहे, तो बस भाई कानों की तो जाती है।
3: मैं वही बात सुन लगा था, मैं ग्रीस में था, तो हम जो ना एक वहाँ पे एक जगह का नाम है माइकोनोस से हम जा रहे थे रोदो ना,
2: सही।
3: तो एक दोस्त था मेरा ना, और उसका बेटा था 12 साल का,
2: सही।
3: तो हम जैसे ही जो है ना वो मतलब था तकरीबन सफर उसका तकरीबन 1 घंटे का होगा,
2: सही।
3: तो हम जब जो है ना लैंड करने लगे, बारिश इतनी कि मैं क्या बताऊँ ना, बहुत ज्यादा बारिश ना, तो भाई साहब वो जब लैंड हुआ तो लैंड क्या हुआ कि हमें ऐसे घुमाया जैसे वो बच्चे 10 वाला ट्रैक्टर लेके नहीं घुमाते, ऐसे घुमाया उसने ना।
0: ओ, हो,
3: अब सारे के

0: सारे जो है ना वहां पे वो दुआएं करने लगे। तो जब जहाज रुक गया ना तो जो मेरा दोस्त है ना उसका बेटा बोलता है बाबा मुझे एक बार फिर चाहिए ऐसे।
1: ये देखो ड्रिफ्टिंग जहाज की ड्रिफ्टिंग।
2: वही वाह
0: जी बोला बाबा मुझे एक बार फिर चाहिए पूरा जहाज सांस के जितनी परेशानी थी बिल्कुल सब कुछ।
2: ये होता है यूजुअली होता है कि कोई एक अगर इस तरीके की बात करे जो थोड़ी हटके हो तो दूसरों का भी सफर आसान हो जाता है और उन लोग का भी दिल लग जाता है और ऐसे ऐसे जो किस्से होते रहते हैं और यादगार बन जाते हैं जैसे कि आपने शेयर किया हमारे साथ।
0: जी वो मैं सोच रहा था यार
2: एक बार और पापा
0: जी बोला पापा एक बार और चाहिए मुझे ऐसे बोले यार खुद आके बंदे यहाँ पे जान पे बने ही है तू कह रहा दोबारा चाहिए तो मैं सुन रहा था तो मैं बोला यार जरा
2: बहुत अच्छा किया आपने शेयर किया इसी वजह से ये मुद्दे निकालना है हम लोग के भाई अपनी बातें भी शेयर हो। चलिए साहब बहुत बढ़िया इशफाक भाई और कनेक्टेड रहिए दुआओं में याद रखिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बड़ी की ड्रिफ्टिंग होगी हो, देखी होगी हमने जहाज की पहली दफा सुनी है
2: क्या बात है वो भी अब होने लगी और ख्वाहिश भी कर रहे थे भाई वो। तो चलिए साहब अब बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं क्या कहती है सफा बढ़ा जाए आगे। वैसे सफा आपने अभी तक बताया नहीं क्या आपने क्यों डर लगता है जहाज से क्या वजह है उसकी।
1: मल्टीपल वजहें एक तो मैंने कहा कोई बच्चा जहाज के अंदर हो तो वो जो बींडा बाजा बजता है वो ना बजे। दूसरा ये कि मुझे
2: सोती रहूं
1: नहीं मुझे जहाज में नींद नहीं आती मेरी आंखों के पट ऐसे खुले होते हैं जैसे पता नहीं क्या
2: इसीलिए वो ब्लाइंड आते हैं लगाने के लिए।
1: हाँ और बस दिल घबराता है मेरा जहाज में शायद सफोकेशन फील
2: होती है। देखिए उसी हिसाब से गाना लगा दिया गया है इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए कह रहे हैं मीका पाजी इस वक्त।
1: चलो भाई चलो डबल ए डबल ए डबल ए
2: अब बात रोड की हो रही है हम नहीं चाहते कि आप ज्यादा लंबा सफर करें जहाज में जो डरते सारी बातें कर दी हैं इसमें मीका पाजी ने कि बस किसी तरह चले चलो इनके साथ कि गाड़ी ऐसी लाया हूँ ये करूंगा पार्टी शार्टी करेंगे ये करेंगे वो कर दूंगा
1: बस चल लो तो चल
2: किसी तरह चलो बेचारे मनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। बहरहाल आप भी एंजॉय कीजिएगा ना सर्वर और सभा आपके साथ है ओनली ऑन FM 107 दिल से
1: देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए हमारे और आपके सबके 12 बज के सही 2 मिनट।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: जी वेलकम बैक, हेलो वसहलन, खुश आमदी, स्वागत है। बिल्कुल इस वक्त सरवर और सफा आपके साथ बने हुए हैं और जहां पर आप लोगों की भी बातचीत हो रही है भाई, हवाई जहाज के सफर के जो सवाल आ रहे हैं और जो जवाब आ रहे हैं और जिस जिस तरीके के किस्से आ रहे हैं, जैसे कि अभी बताया अशफाक भाई ने कि भैया उनके दोस्त के लड़के ने बोला इतनी जबरदस्त तरीके से जान बच गई सबकी, वो कह रहे हैं एक बार और पापा एक बार और। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम,
2: कैसे कैसे गाबा भाई, खैरियत से?
3: ऑल ओके रिपोर्ट।
2: ओके रिपोर्ट है, क्या बात है यार। उम्मीद करता हूँ कि दिन अभी तक अच्छा गुजरा होगा और सुबह से जो जो चेहरे नहीं देखने थे वो नहीं देखे होंगे और जो देखने थे वो देख लिए होंगे। आवाज तो मेरी सुनी रहे
3: हैं।
2: सफा जी पानी वगैरह पीने के लिए गए हैं। सफा जी पानी पीने के लिए गई हैं, अभी आपसे थोड़ी से देर में बात करेंगी। बिल्कुल, तो क्या कहते हैं गाबा भाई के
3: सर्वर भाई, देखिए बात ऐसी है, हम लोग तो चलो पैसेंजर हैं, हमारा तो डरना बनता ही है जब बंदे का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। आप कभी ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो भाई कोई रनवे भी ऐसा हो जिस पे पायलट्स को भी परेशानी हो, पायलट को भी डर लगता हो उस रनवे पे उड़ाने से?
2: हाँ हाँ बिल्कुल, काफी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि खैर पायलट्स को तो खैर आदत हो जाती है, नए जो होते होंगे लगता होगा, मगर मुझे जहां तक याद आ रहा है, मुझे हमारे नेपाल के भाई करेक्ट करेंगे, शायद आप भी उसी का ही जिक्र करना चाह रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आई नो वो एक मसला है भाई। हमारे नेपाल वाले जो भी वहां पे उतरते हैं वो मुझे बताते हैं, मुझसे डिस्कस करते हैं, मुझे दिखाया भी है कभी, मैंने खुद तो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आपने किया क्या गाबा भाई, कभी गए उस तरफ?

0: नहीं सर्वर भाई, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने वहाँ पे पेंगोंग लेक है ना, वैसे ही हिमालय की वादियों में एक लेक बनी हुई है नेपाल में, रोरो लेक,
1: सही,
0: सराना लेक,
1: सही सही सही।
0: आप उसको देखोगे ना सर्वर भाई, एकदम उसका रंग ना मौसम के हिसाब से बदलता
1: बदल
0: रहता
1: जाता है,
0: है
1: बिल्कुल। मेरे ख्याल में अक्स की भी वजह है उसके अंदर, एनी हाउ बिल्कुल ये भी सही, ठीक है।
0: तो वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है उस एरिया के पास, वहाँ पे अच्छा। एक एयरपोर्ट है सर, तालचा एयरपोर्ट बोलते हैं उसको। तो वो जो एयरपोर्ट है ना सर्वर भाई, वो ऐसे नहीं है भी हर प्लेन के लिए वो है। आप देखिए उसका जो रनवे है सर्वर भाई, सिर्फ 570 meters, बस इतना ही है।
1: और सामने पहाड़ है वो गालबन, है ना
0: सर्वर भाई, आसपास में पहाड़, ना कोई वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप, ना कुछ, उसका नजारा ही ऐसा है सर्वर भाई। और उसका रनवे ऐसा है ना सर्वर भाई, यकीन मानिए जिंदगी में मौका मिला मैं तो जरूर जाऊंगा।
1: वाह, एक्सपीरियंस करने के लिए।
0: प्लेन जी, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने लगता है ना, क्योंकि वो लाइन है उसका एंड तो नहीं है, जैसे तो मोस्टली जो रनवे होते हैं उनके 1 kilometer के बाद दीवार होती है या ग्राउंड होता है, उसके बाद तो सीधी खाई है सर्वर भाई।
1: पहले तो वो पहाड़ के ऊपर से निकालना पड़ता है और फिर वो सामने खाई आ जाती है, मेरे ख्याल में ऐसा है ना,
0: फिर खाई आ जाती है सर्वर भाई। मगर उसका नजारा ना यार, एक बार तो बंदे को फील होता है जब प्लेन टेक ऑफ करता है गए नीचे, मगर जब टेक ऑफ करता है ना सर्वर भाई, तो क्या यार व्यू है उसके आसपास का,
1: वाकई बड़ी खूबसूरत। यार नेपाल वैसे ही इतनी खूबसूरत जगह है, फिर जहाज से पहाड़। जब आप आसपास होते हैं तो वो, मगर मसला जो चैलेंज जो आ रहा है इस जहाज में बैठ के उड़ने का, ये जिनको डर लगता है उनके लिए भाई जरा सा, जरा नहीं मेरे ख्याल में तो बड़ा चैलेंज है। बहरहाल जो वहां रहते हैं अब तो सबको आदत भी होगी, और कोई ना कोई हमें इसके हवाले से बताएगा भी जिसका अपना एक्सपीरियंस रहा होगा। बात आपने बड़ी सही
0: की, और आपकी सीट के पास की विंडो सीट के पास जो फीमेल बैठी है वो आ गई या नहीं अभी?
1: ये बैठी हुई है यहाँ पे, बाहर के नजारे दिख रही थी कि अच्छा मुझे भी दिखाओ नेपाल के बाहर कैसे दिखता है।
2: नहीं, मैंने कहा देखो ऐसे दिखता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जैसे ये सर्द वाले इलाके हैं, स्कर्दू पाकिस्तान का हो गया या इससे ऊपर वाले, और ये नेपाल वगैरह वाली साइड, क्योंकि मैंने फिल्मों में नेपाल का देखा है कि पहाड़ी इलाके सर्द ठंडे इलाके, मैं ये सोचती हूँ कि यहाँ तक जाते जाते मैं तो फ्रीज हो जाऊंगी जहाज के अंदर ही,
1: पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा
2: है। मेरी हालत ये कि सर्वर भाई के साथ बैठकर ना मुझे 5-10 मिनट बाद बाहर जाना पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा।
0: सर्वर भाई यार आप थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया
2: ना भाई।
1: यार देखो गावा भाई, कहे सुने पे मत जाना, क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग हमेशा से।
2: गावा भाई मैं बता रही हूँ, ये आदमी ऐसा तो कोई टेम्परेचर रखता है, मैं कह रही हूँ कनाडा जाकर जैकेट लेकर आई भाई, मैं उससे ज्यादा और क्या ही कोई भारी जैकेट होगी, वो पहनने के बावजूद मैं थर थर थर थर कांप रही होती, मेरे नाखून नीले हो जाते हैं।
0: देखियो सर्वर भाई, इस बात पे अभी क्या बंदा वो क्या लॉजिक चाहिए बताइए, इस बात पे कोई लॉजिक तो है नहीं। बालों का तो मान सकता हूँ यार, बाल बढ़ा के उसके बाद में बंदा बेच सकता है, नाखूनों पे अभी क्या ही सोचती है।
2: ये नई मार्केट आई, ये नई मार्केट
1: भाई। वाह, बात है गावा भाई की। और गावा भाई कुछ और शेयर करना चाहते हैं? आपने पर्सनल एक्सपीरियंस का नहीं बताया कभी भी, डर लगता है
0: सर्वर भाई। एक बताता हूँ आपको, बताता हूँ सर्वर भाई, देखिए एयरपोर्ट्स तो बहुत है, मेरे दिमाग में एक और एयरपोर्ट आ रहा है,
1: अच्छा
0: हांगकांग है ना, हांगकांग। हांगकांग में क्या है सर्वर भाई, बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं।
2: सही,
1: ओके।
0: हांगकांग एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बच्चों का जो बचपन है वो भी बिल्डिंग्स के अंदर ही गुजरता है सर्वर भाई। इवन बहुत सारे जो स्कूल्स हैं वो भी बिल्डिंग्स के अंदर ही बने हुए हैं, मेजोरिटी में जो एरियाज हैं। वहाँ पे जो एयरपोर्ट होता था ना
1: वो भी बिल्डिंग के अंदर होता है। I'm a joking. मतलब I'm sorry, on a lighter note, on a lighter note. हाँ ठीक है
0: सर्वर भाई, 15 से 20 साल पहले जो वहाँ पे एयरपोर्ट होता था ना, आप उसकी वीडियो एक बार देखा सर्वर भाई।
1: अच्छा,
0: वहाँ पे एयर प्लेन को लैंड करना ना सर्वर भाई, एक तो सीधा होता है सीटी लैंडिंग, उसमें लैंडिंग करने के लिए ना प्लेन को आले द्वाले उसके आसपास चक्कर लगा के फिर ज्यादा लैंडिंग होती थी। वो लैंडिंग ऐसे होती थी भी, एक स्ट्रेट भाई प्लेन आया नीचे उतर गया, ऐसे नहीं जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना भी टर्बुलेंस हो रही है प्लेन में, सेम ऐसे ही लैंडिंग होती थी वहाँ पे।
1: मतलब यूजुअली ऐसे ही होती है वहाँ, मतलब यूजुअली
0: नहीं, अभी नहीं आज से 15-20 साल पहले, अभी तो वो एयरपोर्ट को बंद कर दिया। और वहाँ पे सर्वर भाई जो बंदा लैंड कर गया ना उसको दुनिया का बेहतरीन पायलट माना जाता था।
1: वाह वाह वाह वाह।

0: क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है भाई, बड़ी खतरनाक किस्म की लैंडिंग हो
1: और पहिए तो सारे
0: डिपार्चर होता है उसका,
1: उतरते होंगे ना।
2: आपको एक और बता देता हूँ एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट और है नेपाल में,
1: अच्छा
2: उसको बोलते हैं लुकला एयरपोर्ट, जैसे अभी सफा मैडम ने बात की ना सर्वर भाई, तो उसको जो ओपन करते हैं वो भी जो लोकल ग्रामीण है ना वहाँ के, वही ओपन करते हैं उसको, और वही सड़क है और वही एयरपोर्ट का रनवे है। तो इतना ज्यादा पहाड़ियों के अंदर वो एरिया बना हुआ है, आप एक बार सर्च करके जरूर देखना इन दोनों एयरपोर्ट्स को।
1: देखा हुआ होता है सब, मगर जाहिर जहन से निकल जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कोई पर्सनल हमारा कोई अगर नेपाली भाई हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तो हमारे साथ जुड़े और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें, जो अभी हमने और गाबा भाई ने बात करी इस हवाले से।
2: जिसने हिमालय के आसपास सराउंडिंग्स ट्रैवल किया है वो बंदा सर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है।
1: मगर है अपने आप में बड़ी ही जबरदस्त बात के भाई इस तरीके की भी चीजें जो हम नॉर्मल और रोजमर्रा लाइफ में नहीं सोचते वो भी सोचनी पड़ती हैं जब किसी को परेशानी।
0: पायलट से पूछो, वो पायलट तो भाई चीता होता होगा,
1: वही तो बताया ना उन्होंने कि वो उस टाइम पे तो पायलट भी जबरदस्त जो कहलाते
2: थे। आप एक बार जरूर देखना हांगकांग की लैंडिंग है ना जो, हाँ जी, हाँ जी, ये नेट जियो की डॉक्यूमेंट्रीज है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ आपसे।
0: अच्छा मैंने एक जगह कहीं पे ये भी पढ़ा था कि एक्सट्रीमली शॉर्ट रनवे जो है ना वो ये नेपाल में एक जगह है, इफ़ आई एम सेइंग द नेम राइट, जो नेपाली भाई सुन रहे हैं अगर मैं कुछ नाम गलत ले रही हूँ तो सॉरी मैं नोन नहीं हूँ, तेंजिंग हिलारे करकर एयरपोर्ट का नाम है, और उसे ना लुकला एयरपोर्ट भी कहते हैं।
1: अच्छा,
0: और उसको भी कहा जाता है कि ये बड़ा डेंजरस एयरपोर्ट है, बड़ा डेंजरस एयरपोर्ट है, और इसका रनवे बड़ा छोटा है। नहीं, डेंजरस इन द सेंस कि इसका रनवे बड़ा छोटा सा है और बड़ा ही स्लोप स्टीप सा है, यूं कॉम्पैक्ट है, बहुत रूम फॉर एरर जीरो है यहाँ पर।
2: जब आप पानी पीने गए थे ना हम लोग इसी का ही जिक्र कर रहे
0: हैं। अच्छा, मैंने ये मिस कर दिया।
1: हम यहाँ फ्लाइट हो चुके हैं, उसके बाद हम गए थे थाईलैंड की तरफ।
0: सही सही,
2: जी सर्वर भाई, बाकी और भी बहुत है मगर चलो इतना अच्छा है आज के लिए, बाकी नेक्स्ट टाइम में जैसे ही
1: गाबा भाई
2: दोबारा बात करेंगे।
1: थैंक यू सो मच गाबा भाई, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, एहलन वर्स,
2: ओके।
1: तो भैया ये थे गाबा भाई बताते हुए हमें, और बजे यहाँ 12:12 और
0: 12 तो बज गए सर भाई,
1: तो साहब MBB आ गए, मुबीन बुखारी बगदादी साहब, और यहाँ पर तकरीबन 73 मुझे वॉइस नोट और 2 वीडियो जिसके अंदर क्या है ये हम जान लेंगे।
0: अभी ना खोल देना गलती से,
1: ओके हाँ अभी तो नहीं कहते हैं, मैसेज कुछ लिखा हुआ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सरवर जी, सफा जी, गुड मॉर्निंग कतर, आपको और तमाम लिसनर को अब तो गुड आफ्टरनून हो गई, हमने आपका मैसेज देर में पढ़ा, MBB नमाज पढ़ने चले गए थे, उसके बाद कुछ वॉइस नोट्स हैं तो इंशाल्लाह ताला इसको हम सुनने की कोशिश करते हैं। बाद में हमें नमाज का भी टाइम बताया है इन्होंने, तो मेरे ख्याल में जा रहे होंगे नमाज, इसलिए हमें बताया। ठीक है साहब, MBB बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बढ़ते हैं आगे।
0: ये देखें भाई, ये देखें जो नेपाल के एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना,
1: जो हम लोग बात कर
0: रहे हैं, अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल पैक, जैम पैक, यूं पट्टी टू पट्टी जुड़ा हुआ है वो, बस एक एक छोटी सी पट्टी है उसके ऊपर उतारना है। इधर तो
1: मैं यूसुफ भाई कहते नहीं, मुझे नहीं लगता प्लेन में डर, बल्कि मैं तो एंजॉय करता हूँ, अच्छा लगता है। क्या
0: कौन है ये लोग,
1: खतरों के खिलाड़ी यूसुफ भाई, ओके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सरवर भाई, सफा आप ही, मैं बस बुरे वक्त से डरता हूँ और किसी से नहीं।
0: तो बुरे वक्त में हम क्या सांबा करते हैं?
1: अदील क्या बात है भाई,
0: देखो अदील भाई सांबा नहीं करते हम, तो हम भी डरते हैं भाई बुरे वक्त से।
1: और अदील बॉडी शॉडी बना रहे हैं यहाँ पर, फोटो क्यों नहीं खुल रहा है इनका, फोटो खोल रहा हूँ तो कहीं और चली जा रही है तस्वीर, क्या बात है। अच्छा हाँ, पुरानी वाली दिखा रहे थे, ये हो क्या रहा है दिल भाई, एक्सरसाइज किस तरीके की रही है ये, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। वैसे हैंडसम है अपना भाई, ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कादिन साहब की हो गई आमद, शेर व शायरी लग रही है यहाँ पर, सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी मर जाता है, मर जाते हैं कुछ लोग, हाय हाय हाय,
0: अब क्या रुलाओगे पगले।
1: खादिम भाई कहाँ हो और ऐसी शायरी क्यों कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु, सफा बहन और मोहम्मद सरवर मिर्ज़ा भाई, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब आपको भी, और सेम दुआएं आपके लिए भी, ओके। बढ़ते हैं आगे खादिम भाई के मैसेज के बाद, यहाँ पर वॉइस नोट है हमें, ओके हैं कौन हमारे साथ, रोहेल हैं, रोहेल हम यार सुनने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह ताला, जैसी ब्रेक श्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।

0: इट्स लुकला एयरपोर्ट, यार आप लिखेंगे तो अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो हम गलत ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये जो पहले गए इसको हिज्जे कर करके ही हमने लुकला बोला था इससे पहले भी।
1: मैंने भी
0: तो नहीं, मेरे कहने मतलब या तो वॉइस नोट भेजेंगे हमें फोन पे आके बताएंगे नहीं भाई ये कहते वरना तो हम तो लुकला एयरपोर्ट ही कहेंगे। मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट, शॉर्ट एयरपोर्ट रनवे है उसका, है कौन है डीपी की जगह डीपी लिख दिया भाई ने, नाम क्या है आपका, नाम भी बताते यार तो मैं ले देता ऑन एयर। मोहम्मद रैन आ गए हैं और क्या कहते हैं, ये भी वॉइस नोट भेज रहे हैं, आज वॉइस पर बहुत भेज रही पब्लिक, तो कॉल पे अगर बात हो जाती तो हम समझ जाते क्योंकि हम ऑन एयर जिस वक्त होते हैं वॉइस नोट हम नहीं प्ले कर सकते हैं। कहते हैं गुड आफ्टरनून बुजुर्गों
1: बुजुर्गों आपको बोल रहे हैं कि मुझे बोल
0: आगे लिख दे रहे हैं, जस्ट जोकिंग भी लिख रहे हैं आगे ब्रैकेट के अंदर, कहते हैं होप यू आर डूइंग वेल टुडे मैम एंड सर। अरे यार मैम तो ठीक है मगर सर काम तो कहां, सर काम
1: पैर
0: हमारी। कहते हैं प्रोग्राम आउट क्लास है और यहां पर उल्लू बना के भेजा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद
1: देखें उल्लू जो होती है,
0: चाह रहे थे कि मैं आपको दिखा दूं।
1: नहीं नहीं, देखें उल्लू जो होता है ना वो अकलमंदी की निशानी होता है,
0: मुझे दिखाना चाहिए
1: बेस्ट फ्रेंड वर्ल्ड में। अच्छा उसने कपड़े भी आपके जैसे रंग के पहने हुए,
0: यार ये बात तो सही है, ये तो मैच कर दिया है उन्होंने तारीफ करते हुए कह रहे हैं बनाया किसने
1: ये अपने कौन से राइट ब्रदर्स थे और इसका डिजाइन कहीं डिवेंची ने बहुत पहले कहीं जो ना कभी ग्राफ्स में ड्राइंग में किए था
0: जब ही हुआ था
1: उसे बोले वो चले गए
0: थोड़ा था। तो चलिए एक कॉलर ले लेते हैं उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। हेलो सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ?
2: कैसे हैं सर और भाई
0: जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। आप सुनाएं भाई कैसा चल रहा है सब कुछ, कौन है हमारे साथ?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आज तक तो खैरियत है, मजीद आगे भी अल्लाह खैरियत फरमाए।
0: नहीं बताएंगे नाम नहीं बताएंगे, मैं कुछ नाम ना बताऊंगा, सवाल कर लो मैं अपनी बात करूंगा नाम नहीं बताऊंगा आज।
2: सरोवर भाई पहली बंदा खैरियत पूछते हैं कैसे हो, मौसम कैसा है, हालात कैसे है,
0: तो ये तो पता चले बंदा है कौन, बंदा है कौन ये तो पता चला।
2: अगर मैं ये कहूँ कि मंसूर है कि गरम गरम गलियों से गुजर कर मैं मंतजर के सिग्नल पर,
0: यार वो तो मुझे पता चल रहा है कि आप किधर से आ रहे हैं किधर जा रहे हैं, नाम क्यों नहीं बता रहे ये तो बताइए आप, कौन बताएगा मैं बताऊं?
2: मैंने इतना आसान कर दिया कि मैं मंसूर की गर्म
0: अरे तो मैं मुझे पता है कि कौन बोल रहा है,
1: मैं यहां क्या हो रहा है
0: यार मुदस्सिर भाई हमारे साथ मगर खुद नहीं बताते कभी भी नाम
1: क्या चल रहा
2: है सर भाई ठीक ठाक?
0: अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए मंसूरा से मुंतजा जब पहुंचे आप तो बाई रोड पहुंचे बाई फ्लाइट पहुंचे?
2: नहीं बाई रोड, अभी तो बाई रोड जा रहे हैं ना भाई यार, तो अल्लाह करे कि वो दिन भी जल्दी आ जाए।
0: यार मैंने अभी बातों में याद आया, मैंने कल देखा था एक अपडेट अल जजीरा की थी और उसमें मैंने देखा कि इतनी तेज हवाएं थी, कौन सा मुल्क था मैं ये भूल गया, जिसमें 3-4 एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे
1: और वो स्लाइड हो गए।
0: एग्जैक्ट नहीं स्लाइड नहीं भाई, अपसाइड डाउन हो गए, इतना तेज प्रेशर था
1: ना करें।
0: जी सुभानअल्लाह। तो अभी बातों से याद आया। एनी हाउ मुदस्सिर भाई कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत सब,
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अल्लाह का करम है।
0: तो क्या कहते हैं जहाज के सफर से कितना खुश होते हैं या घबराते हैं?
2: सर मैं पहले भी ये बात कह चुका आज भी बता रहा हूँ, मुझे दो चीजों से बहुत डर लगता है।
0: अच्छा
2: एक हवाई से मतलब ऊंचाई से, जिस तरह हम सफर करते हैं या यहाँ से मुल्क जाते हैं या वहाँ से इधर आते हैं, ऊंचाई से जहाज चाहे वो जहाज हो या सफर हो कोई भी चीज हो, मतलब ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है। दूसरा पानी से मुझे बहुत डर लगता है। जो लोग अगर आपको याद है अगर मैं प्रॉपर एग्जांपल दे दूं, जो लोग इलीगली यूरोप जाते हैं ना टैंकी के जरिए, जो बीच में जो पानी होते हैं ना जो समंदर होते हैं ना उन चीज से मुझे बहुत डर लगती है। एक ऊंचाई हवाई मतलब हवा से बहुत जो मतलब हम जहाज में सफर करते हैं चाहे वो जहाज हो या सफर हो या मुल्क जाते हैं या उधर से आते हैं, बिलीव पता नहीं मुझे।
0: अच्छा ये बताइए कि ये अपना कोलंबस वगैरह में बैठे हैं आप, मतलब जो फन पार्क होते हैं एंटरटेनमेंट पार्क जो होते हैं उसमें आपको डर लगता है, मतलब रोलर कोस्टर वगैरह वो राइड्स झूले वगैरह उसमें डर लगता है उसमें बैठ जाते हैं?
2: मेरी बात सुनो सरो भाई, जब हम रात को चरपाई पे सोने जाते हैं ना तो फिर भी उस टाइम भी मैं रात की मतलब नींद की दुआ पढ़ता हूँ, तो उस चीज से मुझे बहुत डर लगता है। उधर मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग खराब।

0: मतलब ये राइड्स वगैरह में भी नहीं बैठते।
1: अच्छा ट्रॉली का सफर किया कभी आपने?
0: ये कीड़ा सफर था
1: क्या कहते हैं
2: उसको? चीज़ का सर भाई?
1: अरे वो जो
0: अच्छा वो
1: वायर पे हम तो ट्रॉली कहते हैं।
0: नहीं वो क्या
1: कहते हैं?
0: चेयरलिफ्ट
1: तो फिर बिल्कुल खुली नहीं यार, वो तो सीट होती है बाकायदा लगी हुई।
2: एग्जैक्टली एक बार चेयरलिफ्ट का मेरा सफर हुआ था, सफर मैडम को शायद याद होगा, वो अयोध्या में एक होता है।
1: उसके बाद नहीं कर पाए।
2: नहीं नहीं नहीं फिर इंशाल्लाह करूंगा भी नहीं
1: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे भाई सभी के साथ। तो मुदस्सर भाई को भी सफर पसंद नहीं आया। चलिए साहब तो कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आगे और अब खेल लेते हैं, गेम की शुरुआत कर लेते हैं। सफा क्या कहती है? मुदस्सर भाई का साथ है और उल्टी गिनती चल रही है, तो रेडी है मुदस्सर भाई?
2: जी जी सर भाई, कोशिश करते हैं इंशाल्लाह।
1: उल्टी गिनती खेल लेते हैं, घड़ी अपनी रेडी कर लूं जरा मैं, किधर है किधर है इधर है। ओके तो रूल तो आपको बताइए, सच इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको मैं एक स्लॉट दूंगा गिनती का जिसमें आपने वापस जाना है, उल्टे भागना है और जितनी जल्दी तेज आप दौड़ेंगे भागेंगे उतना ही आपका रिकॉर्ड।
2: इंशाल्लाह बस थोड़ा ख्याल रखे सर, पड़ोसी है ना, पड़ोसी का बंदा थोड़ा ख्याल।
1: चलिए तो आज हम कर रहे हैं भाई 700 की गिनती का सफर। पहले शुरुआत है मुदस्सर भाई से, मुदस्सर का नाम लिख लिया है यहाँ पे, घड़ी कर ली है रेडी हमने। 786 से 776 वापस जाना है, 786 से 776। क्लियर है?
2: इंशाल्लाह।
1: ओके देन आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: जब स्टार्ट करो फिर मुझे बोल सकते क्या स्टार्ट करना है?
1: कर दिया था फिर कर रहा हूँ, तो मैं जब कहूंगा ना आपका टाइम शुरू होता है अब तो मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है? रेडी?
2: ओके
1: आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: ओके 786 785 784 782 782 788 789 788 777।
1: वेरी
0: गुड, ओह माय गॉड,
1: आज तो हम ताली वालों को लेके आए अपने साथ यार। ताली किधर है? ताली ताली ताली ताली ताली ताली।
0: गुड हो गया, गुड हो गया।
1: तो भाई भाई ने कर दिया है 7.56 सेकंड्स में।
0: 7.
2: जी सर भाई, थोड़ा सा 7 से थोड़ा ऊपर है, वो मेरा गला खराब है, वो गले की वजह से थोड़ा सा वो
0: जो भी है भाई।
1: नहीं तो 7 सेकंड में किया आपने
0: कल, पॉलिश करके आना गले को।
1: वेरी गुड वेरी गुड। तो सेकंड अच्छा स्कोर है, मैं बता दूं अभी तक का टॉप स्कोर तो 6 का है वैसे इस गेम के अंदर, बट बेहतरीन साहब क्या ही आपने जबरदस्त खेला है, क्या बात है जबरदस्त। तो ये थे मुदस्सर भाई हमारे साथ जिन्होंने अभी तक उल्टी गिनती में स्कोर कर दिया है 7 का, और जैसा कि उन्होंने बताया कि जहाज के सफर से भाई को तो डर लगता है, हैं सफा?
0: मुझे भी लगता है भाई, मुझे बहुत लगता
1: इनको
0: है,
1: इनको भी लगता है।
0: अच्छा कुछ चीजों की ना वजह ज्यादा क्लियर नहीं होती मुझे, मेरे डर की वजह क्लियर नहीं है, पता नहीं क्यों।
1: नहीं देखिए इंसान के अंदर दिमाग होता है ना आप बात पूरी नहीं होने देती है,
0: चलो,
1: देती
0: चलो,
1: है।
0: ब्रेक लो, चलो, चलो। गंदे बच्चे।
1: और बेहतरीन सा गाना आपकी तरफ आता हुआ सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाज में, मैंने टी लगाना भूल गया शायद, सिद्धार्थ है। अच्छा गाना है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। आई वाह, तो एंजॉय कीजिए मलंग। Sun and Sound पे इस वक्त सर्वर और सफा आपके साथ हैं, ओनली ऑन FM 107
0: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए, जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी, वेलकम बैक, हेलन व सेलन। और यहाँ पर कुछ मैसेजेस फिर बढ़ेंगे आगे और गेम भी जारी सारी है आपका।
3: भाई, आपकी आवाज तो मेरी टोपी से पार होती भी आ रही है, हेडफोन से क्रॉस करती। मैं इस वक्त एस्किमो बन के बैठी हूँ, टोपी लगाई हुई है, ये हाल चल रहा है हमारे स्टूडियो का सबर भाई की वजह से।
1: तो भाई, आप भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं 6662107 पे, आप अपने मैसेज भेज सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि मैं आपको कॉल करूं और गेम खेलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। गेम खेलने के लिए डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो नंबर है 443-443-77। यहाँ पर कुछ मैसेजेस फिर बढ़ेंगे आगे या पहले कॉल ले लें, क्या कहती हो सफा?
3: मर्जी, जो मर्जी भाई, जो मर्जी सर्वर भाई, पूरा शो आपका। क्या बात कर रहे हैं सर्वर भाई?
1: तो आइए, कोई जुड़ गया हमारे साथ। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
4: वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से सबको सलाम।
3: अच्छा, ये मेरी तरफ से कौन है?
4: ये मोहम्मद इब्राहिम है।
3: अच्छा, मोहम्मद इब्राहिम है, मोहम्मद इब्राहिम वही है हंसने वाले?
4: जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसा है सब?
1: ये अब हंसेंगे, देखो मेरी आवाज सुनती।
3: ये क्या हो रहा है अभी? याद करते इब्राहिम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाख वत अल्लाह, आपकी उम्र बड़ी लंबी है भाई, उम्र दराज आदमी है आप।
1: हम याद ही कर रहे थे आपको और हमारे साथ
3: याद कर रहे थे।
1: इकराम भाई थे, कौन थे? इकराम भाई थे।
3: उन्होंने मैसेज किया बाकायदा।
1: कैसे हैं इब्राहिम भाई?
4: अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नमाज जब पढ़ा बाहर आया, बस ट्रेनिंग किया था, मैं बोला चलो।
1: है मेरा भाई, कैसा? मैं कह ही रहा था सफा से कि वो इब्राहिम भाई हमारे साथ कनेक्ट होते जरूर हैं और इंशाल्लाह वो तशरीफ ले आएंगे। इब्राहिम भाई, एक मैसेज करिएगा ताकि आपका नंबर भी हम सेव कर सकें। अब हम ये कर रहे हैं कि हम अपने नंबर जो है आप लोगों के सेव भी कर रहे हैं ताकि हमें, काफी बार ऐसा होता है नाम नहीं लिख पाते हैं आप लोग, तो हमें नाम कम से कम पता रहे। तो कैसा गुजरा अभी तक का दिन सुबह से?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख करम, शुक्र है।
1: तबीयत वगैरह सही है, अच्छी है, घर पे सब खैरियत है?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मस्त है अल्लाह का।
1: अब एक बार
4: सुनाए और सब सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार हंसी के लिए बहुत बार हंसी के लिए आपके कल वो एक सवाल थे, आज फिर मैं एक सवाल पूछूंगा, फिर कहेंगे कि नहीं ये तो फिर हमारे लिए कोई मुसीबत है, सब मुसीबत मान दी ये तो। हाँ, इंशाल्लाह एक सवाल पूछूंगा और वो गेम
1: खेलेंगे
4: के बाद,
1: गेम खेलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए। अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे साथ चैंपियन जब जुड़ जाते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है।
3: इनकी हंसी सुनने वाली है माशाल्लाह।
1: घड़ी रेडी कर ली है मैंने और
4: रेडी
1: है। आपने 777 से 767 वापस जाना है, यानी
4: सब साथ।
1: हम आप एक साथ FM 107। अरे सुनो तो सही,
3: प्रमोशन भी नहीं करने दे रहे ये
1: तो 777 से 777 से 76।
3: चलो भाई, मैं जा रही हूँ, मुझे ना मुन्ना भाई MBBS याद आ गई से, इन दोनों से।
1: अच्छा इब्राहिम भाई, सुनो तो सही यार, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा, मेरे अंदर भी यही बीमारी है।
5: दोनों एक से मिल गए असल में, मुझे भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूँ सुन लो।
3: मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ जाऊँ, मेरा क्या होगा।
5: माय गॉड, कोई रोको यार। तो भाई सात सात सात से उल्टे जाने, सात छह सात, क्लियर है? उर्दू हिंदी इंग्लिश किसमें, सिंधी पंजाबी,
4: ये तो सब में तो वही कह रहा हूँ कि सब ये सात सात सात सात सात तरह सब बोलते रहेंगे।
5: हाँ,
4: जो भी आएंगे सात। हाँ
5: हाँ, तो इजी है ना, इजी है, इसलिए आज हम 700 की उसमें है।
3: देखो अरे भाई बस कर जाओ, भाई बस कर जाओ।
5: चलिए मैं घड़ी रेडी कर रहा हूँ और आपका टाइम
4: साथ साथ हटा दो फिर तो कुछ।
5: अरे क्यों हटवा रहे हैं, ये तो बहुत इजी। अरे सुनो तो इमरान भाई, ये तो बहुत इजी है भाई, 777 से वापस जाना है आपने, 777 76 75 74 73 72 71 70 इजी है, 700 लगाना है आगे बस, ठीक है? राइट देन, हाँ 777 आपको पूरा कहना है, 777 776 मतलब हाँ नहीं नहीं सही कह रहा हूँ यार, मैं हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ओके देन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
4: 777 776 775 774 773 772 771 770 768 767
5: यार क्या बात है इब्राहिम भाई की, 6 सेकंड भाई, 6 सेकंड जो अभी तक का टॉप स्कोर रहा है उस पे आप पहुंच गए, क्या कह रहे हैं? ताली आ जाओ, ताली आ जाओ।
4: ये तो
5: ये था हमारी तरफ से इनाम, इस वाले इनाम को आप बाद में नहीं याद रखना है, हमने इनाम दे दिया ताली बजा के।

0: सब हंसो।
1: ये तो हमारी तरफ से इनाम था आपको, देखिए इस वाले का। अब आप पूछेंगे पिछले इनाम के बारे में, मुझे मालूम है, ऐसे ही है।
2: मैं हाँ जी मैं निकालने वाला लोग निकाल बहुत करते होंगे, बाद में वो लोग बोर हो जाएंगे कि ये कौन सी बात इसके पूछ रहे हैं, और सुबह का टाइम इतना मिलता नहीं तो ये।
1: अरे सर आप आते हैं, मजा आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपकी कॉल का भी बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और हंसाते रहिए हम सबको। थैंक यू सो मच।
2: चलो जी, सबके लिए सलाम और
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच। अहलन व सहलन। ओके देन सफा, एक कॉल और लेते हैं फिर ब्रेक पे चलेंगे। ऐसी क्या,
0: और आज हमने स्टूडियो जल्दी छोड़ना है, आपको याद दिला रही हूँ मैं बस।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: कैसे हैं आप लोग?
1: बिल्कुल अच्छे हैं, और आप कैसे हैं?
0: चुप, इतनी खामोशी क्यों हो गई? सब खामोश हो गए।
1: खैरियत पूछने पे इतनी खामोशी?
0: खैरियत ही पूछी थी भाई, बैंक बैलेंस ना पूछा था, ये ना पूछा था कि सरवर भाई खाने पे कब आए।
1: कनेक्टेड तो है मगर आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल में उधर से होल्ड पे लग गया है या क्या। अगर हम हमें आप सुन पा रहे हैं तो कॉल तो कनेक्टेड है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है।
0: कॉल को क्या ही
1: कनेक्ट दिख रहा है मुझे तो यहाँ से। चलिए इंशाल्लाह ताला दोबारा इनकी कॉल ले लेंगे। तो फिलहाल कुछ मैसेजेस लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख्याल में कॉल इन्हीं की आ रही है वापस या कोई और, आई डोंट नो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ना भैया ना, आज ना हो पा रहा। दूसरी कॉल लेते हैं।
0: सर दिल से कॉल नहीं उठाए, दिल से उठाएं कॉल, दिल बाहर निकालें, दिल से कॉल उठाएं।
1: ये कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रही भाई, आवाज ही चली गई हमारे सिस्टम की, क्या हो गया ये?
0: हम इतना बोले कि बाकी सब चीजों ने हार मान ली।
1: हाँ मेरे ख्याल में तो सफा देखिएगा जरा अगर आपको कुछ समझ में आ रहा, क्योंकि हम तो यहाँ कनेक्टेड ही दिख रहे हैं भाई। देखिए कॉल तो कनेक्टेड
0: ही है।
1: अच्छा इसको सेकंड पे लेके देखते हैं। हेलो हाय। नहीं भाई कुछ गड़बड़ हो गई है फिलहाल कॉल में, और को देखते हैं लेके अगर शायद इनकी कनेक्ट हो जाती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: मुझे लग रहा है ये जो है ना वो अपने क्या कहते हैं अपने
1: कुछ टेक्निकल डिसऑर्डर हुआ है मुझे ऐसा
0: अमीन
1: लगता
0: भाई
1: है।
0: के डर से जो ना कॉल नहीं,
1: अमीन भाई का नाम लेते ही कॉलें गायब हो गई। चलिए भाई कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और इसको भी देखेंगे फिर हम रीस्टार्ट करके। तो कहते हैं हाय गुड आफ्टरनून, दिस इज मनदीप, यू कैन चेक लुकला एयरपोर्ट लैंडिंग। ओ यहाँ पर वीडियो भी भेज दिया।
0: हाँ, तो मैंने नाम सही लिया था ना लुकला।
1: तो, ये कौन बता रहा है? किसी ने फोन पे बताया नहीं अभी तक।
0: अच्छा
1: हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ।
0: अच्छा नहीं उसका
1: हम तो लुकला ही कह रहे हैं।
0: उसके दो ना, इट इज आल्सो नोन टू बी लुकला एयरपोर्ट।
1: हाँ ओके, अब वही तो कोई आके अगर बताता तो बात अलग होती। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड सफा, आप दोनों को ये वीडियो जो मैंने भेजा है यही है लुक लाइक एयरपोर्ट। अब यहाँ पे लुक लाइक लिखा हुआ है लुकला की जगह। नेपाल का सबसे डेंजर एयरपोर्ट, मैं जासिम नेपाली। तो जासिम भाई मतलब जासिम रैन है हमारे साथ। जासिम भाई ये लुक लाइक नाम है, लुकला नाम है, नाम क्या
0: ऑटो करेक्ट पर आ गया।
1: हम हैं आपके साथ एफएम 107, बताओ कौन है?
0: शहजादा साहब।
1: ओके बढ़ते हैं आगे भाई, कॉल पता नहीं हमारी रिसीव नहीं हो पा रही, क्या हुआ है? कहते हैं माशाल्लाह। अच्छा इन्होंने शायद कहा था इब्राहिम भाई की आवाज़ सुनने के लिए। एमबीबी के यहाँ पर खूब सारे स्टीकर। खादर अब्दुल हादी, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, सफा जी गुड। सफा जी शायद आप गॉट गोल टॉप पहने होंगे तो सरवर भाई कौन सी, अच्छा टोपी पहने हैं कंट्रोल सरवर भाई। अरे यार मुझे तो इन्होंने वैसी टोपियां पहना रखी हैं बतेरी
0: भाई। रन दो ये वो आदमी है जो सर्दियों में माइनस की सर्दी में भी जैकेट ना पहने, ये वो आदमी है। तो सोचो इसने क्या स्टूडियो।
1: अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र
0: कोई आ गया
1: किसी तरह से तो हुई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन है हमारे साथ?
4: सरवर भाई कैसे हैं आप? और सफा मैम आप कैसे
1: हैं? हम दोनों ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं और कौन है, नाम तो बताइए।
4: मोहम्मद आजम पाकिस्तान से।
0: मोहम्मद आजम भाई, मोहम्मद आजम भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ से?
4: मुल्तान।
0: अरे वाह गरम तरीन सिटी।
4: देख लें जी फिर, तो यहाँ पे भी गर्म तरीन सिटी है और वहाँ पे भी गर्म तरीन है।
0: जो मुल्तान से आते हैं ना, मैं तो कहती हूँ उनको फिर कोई मसला ना होगा उन्हें कोई।
4: नहीं मसला तो नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी जाएं कोई मसला नहीं होता।
0: सही। अच्छा भाई ये बताएं कि आपको जहाज में बैठने से डर लगता है कि नहीं लगता?
4: नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले सऊदीया में था और अब कतर में पहुंच आया हूँ, लेकिन कतर का जो सिस्टम है वो बहुत प्यारा लगा है मुझे, बहुत अच्छा लगा है।
0: सही।
4: और सऊदीया तो खैर देखो जी उस जैसी जगह तो है ही नहीं कोई।
0: सही सही सही सही सही।
4: लेकिन ये है कि भी वहां से यहाँ कतर में जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है, मुझे पसंद आया।
0: भाई जहाज जहाज सिस्टम तो एक अलग चीज होता है, जहाज में बैठने से डर लगता है आपको? नहीं लगता?
4: नहीं नहीं नहीं, जहाज
0: नहीं लगता। अरे भाई को डर ही लगता, एक मेरे जैसे लोग हैं जो जरा जरा सी बात पे डर जाते हैं, पानी से डर जाते हैं।
4: हाँ। एयरपोर्ट हमारे साथ ही है, घर के साथ है।
0: सही,
4: मुल्तान का जो एयरपोर्ट है इसलिए।
0: सही हो गया। अच्छा ये बताएं कि गेम खेलेंगे आप?
4: गेम क्या गेम है जी, बस अपनी ऑन किया था मैंने देखो।
1: अरे हमने भी ऐसे ही गेम खेलना है, और क्या करना है।
4: अच्छा सरवर भाई ठीक है, आप कह रहे हैं खेलेंगे।
1: क्या बात है, तो चलिए भाई मोहम्मद आजम तैयार हैं। आजम भाई आपको 748 से 738 जाना है। मैं 700 पे आ गया, अपनी देसी जबान पे आ गया था मैं, अलीगढ़ वाली। तो 748 से 738 जाना है, ठीक है? 748 से 738, ओके। अभी जब मैं बोलूंगा टाइम शुरू होने के लिए तो रेडी हो जाइएगा, ठीक है? मतलब रेडी हो जाइए, स्टार्ट हो जाइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब।
4: 747
1: में 300 जो कम हो गए ये कौन देगा?
4: अच्छा जी वो हम दे देंगे।
0: हम दे देंगे।
1: मेरा भाई ने इसमें हिस्सा लिया, ये इसलिए भी तालियां देंगे आपको मोहम्मद आजम के लिए। एलन बस एलन, बहुत बहुत शुक्रिया आजम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
4: या मरहबा।
1: तो भाई खादम भाई कहते हैं मुझे डर नहीं लगता जहाज में। क्या बात कर रही हो तुम सफा, मैं खूब इंजॉय करता हूँ लेकिन मुझे डर मुनाफिकीन से लगता है।
0: ये इतने टची क्यों चल रहे हैं, इतने इमोशनल।
1: कहते हैं इटली में हवा की वजह से एयरपोर्ट पर जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। मेरे ख्याल में जो हम वीडियो का जिक्र कर रहे थे क्या वो इटली की थी, हमें ये नहीं।
0: हाँ भाई ने बताया था।
1: तो कहते हैं सलाम अलैकुम, गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम, वेरी आफ्टरनून। अब्दुल्ला मोहम्मद जफरुल्लाह साहब, क्या बात है, चौधरी साहब से लग रहे हैं एकदम बेहतरीन भाई लग रहे हैं।
0: आपसे कंपीट कर रहे हैं, मैं भी यही हो रहा
1: है। तो भाई अब्दुल्ला मोहम्मद जफरुल्लाह साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? किसको फोन मिला रहे हैं डीपी में? कहते हैं इटली में सर ये है, वेरी फास्ट हवा, बहुत फास्ट थी। हाँ बिल्कुल इटली का ही है वो वीडियो, है तो पक्का हो गया। कहते हैं ऊंचाई और समंदर का सफर बोलना चाहिए।
0: ये क्या चल रहा है मार्केट में?
1: मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, सही समझ रहा हूँ।
0: समंदर का सफर क्या है?
1: वही जो फिल्म आई थी ना शाहरुख खान की।
0: अच्छा ठीक है,
1: ऐसी कुछ लग रहा है मुझे भी।
0: हाँ ठीक है। हाँ जी भाई, ये वैसे हम ना पढ़ेंगे ना, देखो हमारा आखिरी शो नहीं होना चाहिए।
1: समझ गए। कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम, दिलबर अली आ गए। दिलबर कहाँ थे इतनी देर से आप? ओके एक चैंपियन और यार, अब कॉल है तो अब बनता नहीं ब्रेक पे जाना। हेलो सलाम वालेकुम। हाय
5: सलाम
1: वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व बरकातहू। मैं ख्याल में शोएब भाई की आमद हो गई दोबारा गेम खेलने के लिए लग रहा मुझे।
5: नहीं नहीं मैं
1: हुसैन
5: बात कर रहा हूँ।
1: हुसैन? अच्छा नाराज हो गया। नहीं मैं हुसैन फ्रॉम
5: कतर।
1: क्या बात है यार, क्या कहने हुसैन भाई के।
0: हुसैन भाई कहाँ हैं इस वक्त आप?
5: इस वक्त मैं अलवकरा की वादियों में हूँ।
0: इतना मजा आया मुझे सुनकर, अलवकरा की वादियों में। जैसे आपने कहा ना वादियों में, तो मेरे दिमाग में आया पहाड़, उसके ऊपर कहीं कहीं बर्फ गिरी हुई, और यूं जो है ना वो शाहरुख खान और काजोल झूमते हुए।
1: वापस आ जाओ स्टूडियो में, कुर्सी पे बैठो।
5: हम तो रोड के मुसाफिर हैं।
1: किस काम पे लगा दिया, किस काम पे लगा दिया हुसैन भाई आपने सफा को। ओके चलिए गेम खेलने के लिए रेडी हुसैन भाई?
5: बिल्कुल मेरे साथ।
1: 728 से 708
0: कह रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ जिंदगी
5: 28 से

0: अच्छा
1: आज 700 है, आज 700 है, ठीक है, रेडी है, चलिए आपका टाइम शुरू हो गया अब।
0: एक सेकंड
1: निकल गए थे आपके, मैंने रोक दिया, चलिए
0: नहीं चलिए अभी फिर से रेडी। ओके
1: ओके तो रेडी स्टडी गो।
2: 700, 2800, 2700, 2600, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, 2700, दो के आगे नहीं जाना,
1: दो और आगे चले गए, अब उसका हिसाब कौन देगा भाई?
2: वो इमोशनल इमोशनल होगा ना,
0: ये आपने नहीं बताया ना कि कहाँ तक रुकना था।
1: इसी बात पे तालियां बजा मैंने आपके लिए, किसी को भी निराश नहीं करूंगा। आपने वैसे पूरा सफर जो है अपना आपने कर लिया था 7 point something में, तो 7 second पे माना जाएगा। हुसैन भाई भी अच्छा खेले, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है भाई, तालियां हो रही हैं आपके, खुश हो जाइए।
2: आज इन्होंने तनख्वाह दी तालियों वालों को, तालियों वाले तभी आए।
1: चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हुसैन भाई, थैंक यू सो मच। आपने 7 second का स्कोर किया, अल्लाह हाफिज।
2: तो भाई साथियों, आप सुन रहे हैं फिल्मों 7 पर, शो का नाम है सन एंड साउंड, और इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं,
1: हमारे साथ कॉलर नहीं कनेक्ट हो पा रही कॉल, पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है आज, मेरे समझ में नहीं आ रहा।
2: आज हमारा नाराज हो गया है,
1: उल्टी गिनती हमारा कॉल,
2: जाओ मैं कॉल नहीं
1: करना चाह रहा। चलो तो एक ब्रेक लेके इसको थोड़ा सा हम रीस्टार्ट सा करते हैं, फिलहाल वरने लगे जो भी नोटियाल वो आ जाएंगे, जिनको इनसे नाराजगी रहती है। ऑर्बिन की आवाज में एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, साउंड पे सर्वर और हवा आपके साथ हैं, ओनली वन FM 107
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: क्या क्या मसले होते रहे, होते जा रहे हैं भाई गानों में। निकम्मा भी हो रहा आदमी, पहले तो निकम्मा किया इस दिन ने, याद है वो तो शहर के ऊपर था, वो सूट भी कर रहा था एक्चुअली।
1: भाई दिल का मामला है, सब दिल का मामला।
0: मैंने कहा घर पे वो सूट भी कर रहा था, राहत भाई भी सूट नहीं कर रहा था। वैसे दिल निकम्मा हो रहा है ना, ये खुद हो रहे हैं। हाँ नहीं, खुद हो रहे हैं,
1: खुद हो रहे हैं। चार जमातें पढ़ लेके जाते तो ये हाल ना होता।
0: गड़बड़ है, गड़बड़ है। कुछ भी गा दे, कैसे भी गा दे यार, दिल जो है लगी जाता है। तो भाई यहाँ पर कुछ ट्रैफिक अपडेट और इसी के साथ आपसे इजाजत भी। और फिलहाल की ट्रैफिक अपडेट ये है कि आपने सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, उस हिसाब से आपने देखना
1: सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं।
0: फिलहाल यहाँ पर सीरिंग रोड क्लियर है और मतार वगैरह सफा, तुम्हें कोई ट्रैफिक मिलेगा नहीं आज इंशाल्लाह।

0: मुझे अगर यहाँ से जाओगी अभी,
1: एक्सक्यूज मी, ये जो आपने बात कही है ना, ये नेक्स्ट भी इम्पॉसिबल है
0: अभी। नहीं देखिए, सिग्नल का तो ट्रैफिक ट्रैफिक नहीं कहलाएगा ना यार, मतलब ये अल्लाह का रहम है, एक लाइट पे अगर आप निकल रहे हैं तो वो कंट्री दोहा कतर है।
1: हाँ, ये बात है, आपको एक सिग्नल खुला मिले ना, आपको बाकी सारे खुले मिलते हैं।
0: आप नहीं, खुले भी मिलते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि आप चार पांच तीन बार भी, आप समझ लीजिए कि जुमे का रोज अगर है नमाज का, तो आप एक सिग्नल पे रुक रहे हैं, वरना एक बार में ही आप रवाना हो जाते हैं। एनी हाउ भाई, अब जल्दी जल्दी इसीलिए करी कि आपसे ले लें इजाजत, अब से थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे मोहम्मद अमीन को, हमारे इस जर्नलिस्ट को, जो आकर आपको खबरों से, खेल की खबरों से दो चार कर देंगे। अमीन भाई वैसे भी दो चार कर देते हैं, अमीन भाई तो खेल की खबरों में तो वैसे भी महारत हासिल लगते हैं वो। तो भाई फिलहाल आज के लिए मुझे और सफा को इजाजत दे दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल फिर आएंगे, फिर आप ख्याल करेंगे, आप भी हमारा ख्याल कर लीजिएगा थोड़ा।
1: उल्टी गिनती
0: अभी चलती रहेगी, आगे फिर देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला दूसरा गेम फिर बहुत पेंडिंग है, ऐसी बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए गाना लगा देते हैं आपके लिए, ये वाला। आतिफ असलम, ज्योतिक और भाई ब्रुआ,
2: जैसे
1: हवाओं में सुनता हूँ।
0: तो एंजॉय ट्रैक और मुझे बागो दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते सुनते रहिए FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केट टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ua।
1: आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट विद स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद अमी, प्ले ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समर स्पोर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। 9:01 हमारे स्टूडियो की घड़ी पर और खुश आमदीद है, समर स्पोर्ट्स है और समर का मौसम है और स्पोर्ट्स काफ़ी है, हर पे स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स है मुझे। और दोस्तों हमारे साथ ये क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे खेलों की ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प वाकया, अहम अपडेट्स और थोड़ा आप लोगों से इंगेज होने का एक मौका मिल जाता है हर इतवार मंगल और जुमेरात को। जुमेरात का प्रोग्राम का नाम है स्पोर्ट्स राउंड अप और ये दोनों प्रोग्राम्स हैं इतवार और मंगल को, इसका नाम है द समर स्पोर्ट्स और मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप 107 की जानी भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज का सवाल है वो पहले से बता देता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और आज का सवाल ये है, काइंडली नोट इट और अपने मोबाइल को थोड़ा सा ऑन रखिए, बंद मत कीजिएगा। क्रिकेट के हवाले से ये सवाल है और आपको बताना है कि कौन से बॉलर ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स लिए हैं। आपको मैं ऑप्शन दे दूंगा, तीनों ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शन ए वसम, ऑप्शन बी है कपिल देव, ऑप्शन सी है लासिथ मलिंगा। दोबारा क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, कौन से बॉलर ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स लिए हैं। तमाम फॉर्मेट से मुराद टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई और टी20 क्रिकेट, इन तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर किस बॉलर ने सबसे ज्यादा हैट्रिक्स ली हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए है वसीम अकरम और ऑप्शन बी है कपिल देव, इंडिया के मारूफ राउंडर थे, कप्तान थे, और ऑप्शन सी है मलिंगा। आपको इन तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 6622107 और इसी के साथ आप इस प्रोग्राम में जुड़ भी सकते हैं विद योर इनपुट्स एंड ओपिनियंस ऑन स्पोर्ट्स। तो आप शुरू करते हैं मेजर हाइलाइट्स के साथ, कतर में क्या हो रहा है, कतर के बाहर क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स के हवाले आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। तो सुन लीजिएगा कि आज खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का आगाज हुआ है। 2026 कतर जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप आज से खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में शुरू होगी। ये जो है ये खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम वो स्टेडियम नहीं है जो स्पोर्ट्स सिटी में है, ये खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वाश कॉम्प्लेक्स जो है इस तरह, जब आप कॉर्निश की तरफ जाते हैं या आप जब सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं तो आपको बाएं हाथ पे

एक टेनिस कॉम्प्लेक्स नजर आता है आपको, वो ही उसी उसी उसी वेन्यू में ये जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप होने जा रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ स्पोर्ट्स। और वहीं अगर 19 हैंडबॉल के बारे में बात करूं तो एशियन में यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में कतर अंडर 19 फुटबॉल टीम ने अपना परफेक्ट रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए ईरान को 22 के मुकाबले में 24 पॉइंट आ दिया और ये ग्रुप में कतर की लगातार तीसरी जीत थी। सो कांग्रेचुलेशंस टू द कतर अंडर 19 हैंडबॉल टीम। और वहीं अगर बात करूं अंडर 23 वुमेन्स 3x3 बास्केटबॉल की, कतर की टीम सिंगापुर में जारी इस टूर्नामेंट में, फीफा का ये टूर्नामेंट है 3x3 यूथ नेशंस लीग 2026 एशिया वेस्ट पैसिफिक नॉकआउट स्टेज में जगह बनाने में नाकाम रही। इट वाज अ डिफिकल्ट टूर्नामेंट फॉर द कतर 20 अंडर 23 वुमेन्स टीम के लिए। और अब चलते हैं, अब थोड़ा स्काई डाइविंग के बारे में बता दूं कि कतरी स्काई डाइवर सोयाल अबीदी ने स्लोवाकिया में 48th CISM वॉलंटरी पैराशूटिंग चैंपियनशिप सीनियर विजुअल एक्यूरेसी लैंडिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता है। सो वाह वाह वाह वाह, आई मीन दिस इज अ फैंटास्टिक एफर्ट बाय कतरी स्काई डाइवर सोयाल अबीदी। और अब चलते हैं हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स हम कहते हैं कि हॉकी और क्रिकेट, किससे शुरू करें, पहले क्रिकेट से शुरू करें या हॉकी? चलिए हॉकी से शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों मैचेस कल खेले गए हैं और बड़ा ही अफसोस की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा एंड बोथ ऑफ देम हैव ऑलरेडी फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट स्टेजेस। इंडिया पास एक मौका था लेकिन इंडिया ने उसको गवा दिया। कल के जो इस मैच में पूली के इस आखिरी मैच में अगर इंडिया की जीत होती अगेंस्ट अर्जेंटीना तो इंडियन टीम वुड हैव रीच्ड द सेमीफाइनल्स, लेकिन अर्जेंटीना ने इंडियन टीम को 3-5 से हरा दिया। और वहीं पाकिस्तान के बारे में बात करूं, पाकिस्तान को पिछले परसों 2-3 पहले जापान के अगेंस्ट में एक जीत मिली थी, दैट वॉज पाकिस्तान हॉकी के लिए 16 सालों के बाद एक जीत हुई थी वर्ल्ड कप। लेकिन कल जो मैच खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट में न्यूजीलैंड का और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2-4 से हरा, ये मैच 9th पोजीशन के लिए खेला गया था और इस हार के बाद पाकिस्तान की टॉप 10 में जगह बनाने की उम्मीदें ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं। देर हैज टू बी लॉट ऑफ सोल सर्चिंग हैज टू डन इन इंडियन हॉकी एज वेल एज पाकिस्तान हॉकी। जैसे कि मैंने परसों बताया था, ये जो है नेशनल स्पोर्ट तो है लेकिन ये दोनों ममालिक में क्रिकेट कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है और इसीलिए हॉकी को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया गया है। लेकिन इंडियन हॉकी ने थोड़ा बहुत रिवाइव तो किया है, लेकिन अगर ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करूं, इस वर्ल्ड कप की बात करूं तो इंडियन हॉकी परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू दैट मार्क। ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं लेकिन परंतु ये देखने के बाद, इस रिजल्ट को देखने के बाद मैं अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, अभी भी इंडियन टीम को हैव टू रियली रियली वर्क हार्ड। और वहीं पाकिस्तान टीम को, आई मीन पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर दिस आफ्टर 12 इयर्स, और 12 साल के बाद पाकिस्तान हॉकी की जो ये हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप में, दैट वॉज नॉट रियली एक तरह से अचीवमेंट ये कह लीजिए कि हाँ, खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान टीम को जगह मिली वर्ल्ड कप में, लेकिन परफॉर्मेंस के अगर तहत बात तो इट वॉज नॉट रियली रियली गुड परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तान हॉकी टीम। सो उम्मीद है कि आने वाले टूर्नामेंट्स, आने वाले चैंपियनशिप्स में इन दोनों ममालिक के हवाले से अगर हम कभी भी बात करेंगे तो हो सकता है कि हमें कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिले। अब क्रिकेट की बारी है और क्रिकेट में क्या हो रहा है, इंडिया वर्सेज श्रीलंका का मैच जो है जारी है और कल इंडियन टीम ने डिक्लेयर कर दिया अपनी इनिंग्स को और इंडियन टीम ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 503 रन पर एक मैसिव स्कोर पर उन्होंने इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जब श्रीलंकन टीम यानी मेजबान टीम जब बल्लेबाजी करने उतरे तो देवर रियली रियली पैनिक की सिचुएशन हमें देखने को मिला और पहले ही 3 विकेट्स 35 रन पर गवा दिए मेज़बान टीम श्रीलंका ने। उसके बाद थोड़ा तो संभाल लिया इस पारी को पसिदु सूर्यावंदा, इन्होंने 80 रन कर थोड़ा बहुत इस इनिंग्स को थोड़ा संभाल लिया और उनके साथ कामिंडो मेंडिस 32 रन बनाए और अभी जो टी तक के जो स्कोर है वो है 7 विकेट के नुकसान पर 216 रन और सोनाल

जो है उसको क्रॉस करा एंड क्रॉस करने के बाद श्रीलंका के सामने एक चैलेंज छोड़ दिया कि आओ भाई अब आप जो है इस रन को क्रॉस करो और अपना फॉलो ऑन बचा लो। तो इंडियन बॉलर्स में देखते हैं कि कौन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है इस इन पारी में। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बॉलर रहे प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने 3 विकेट लिए, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट और मानव सुथार जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, टोटल 10 विकेट लेकर उन्होंने 2 विकेट लिया। और रविंद्र जडेजा वन ऑफ द वेटरन मेंबर्स ऑफ दिस इंडियन क्रिकेट टीम, उन्होंने 1 विकेट 27 रन देकर। अच्छा, इसी क्रिकेट से हवाले मैं आप लोगों को दोबारा इस क्वेश्चन का जो क्विज था उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। जिन्होंने भी जिन भाइयों ने भी अभी अभी मोबाइल अपना ऑन कर लिया हो, रेडियो ऑन कर लिया हो, तो उनके लिए एक सवाल है। सवाल ये है कि कौन से बॉलर क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा हैट्रिक ली है, हैट्रिक। ऑप्शन ए वसीम अकरम, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी है लसित मलिंगा। वसीम अकरम, नो नीड टू इंट्रोड्यूस यू टू द गाय, आई मीन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान। कपिल देव के बारे में भी आई मीन ऑल मॉडर्न जनरेशन के लोगों भी जाने, वन ऑफ द लीडिंग ऑलराउंडर्स ड्यूरिंग हिज टाइम फ्रॉम इंडिया। लसित मलिंगा श्रीलंका के जबरदस्त फास्ट बॉल चुके हैं। सो ये जितने भी आपके आंसर्स हैं, जो रिप्लाइज हैं, इस आपको लगता है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, आप हमारा इस व्हाट्सएप नंबर 666-22-107 पर अपना जवाब दे सकते हैं विथ योर नेम। और नाम के बिना थोड़ा सा ये मामला थोड़ा सा मजा नहीं आता है। सो एनीवे, आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, कीप लिसनिंग टू FM 107, दिल से देसी।

दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है, हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने अपनी और दूसरी

0: यात्रों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आप सुन रहे हैं समर स्पोर्ट्स विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यहाँ वेलकम बैक दिल से देसी। और आपने एक बेहतरीन ट्रैक सुना खालिद से। खालिद एक अल्जेरियन सिंगर है और काफ़ी पॉपुलर, ये गाना भी काफ़ी पॉपुलर था पाकिस्तान में अराउंड अर्ली 90s। एनीवे हम बात स्पोर्ट्स के बारे में, और स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ हो रहा है और काफ़ी कुछ यू नो न्यूज़ जो है, जो अपडेट्स है, आप लोगों से मैं शेयर कर चुका हूँ। और एक सवाल पूछा था, कौन से फास्ट बॉलर या बॉलर ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली हैं। ऑप्शन ए है वासिम अकरम, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी है लसिथ मलिंगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर खुला हुआ है 6622107 पर, इस पर आप अपना जवाब दे सकते हैं एंड विथ योर नेम, और नेम आपके साथ जो भी है, आप रेडियो पर होंगे तो आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। एंड थोड़ा बहुत और ऐड कर देता हूँ आज के क्या क्या अपडेट्स हैं। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल जो है ऑलरेडी यू नो शुरू हो चुका है, कतर स्टार्स लीग के जैसे ही है बेसिकली। तो लॉन्ग फॉर्मेट है, इट गोज अंटिल मे, जहाँ कतर स्टार्स लीग गोज अंटिल अप्रैल तक किए जाएगा। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग के बारे में बात करूँ, चेल्सी ने नए कोच चावी अलोंसो के तरबियत में अपने सफर का आगाज फुलहम के खिलाफ 2-1 गोल्स की शानदार जीत से किया। जो पेड्रो मॉर्गन रॉजर्स और कोल पामर ने चेल्सी के लिए 1-1 गोल किया। एंड उसी के साथ एक और न्यूज में बता दूं, एशियन अंडर 19 हैंडबॉल चैंपियनशिप में साउथ कोरिया ने जॉर्डन को 24-25 पॉइंट से शिकस्त दी। अच्छा, एक दफा वो क्रिकेट पे वापस जाते हैं और हम जरा चेक करते हैं कि इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच है वो कब शुरू होने जा रहा है। ये भी अपडेट दे देता हूँ, 27 अगस्त यानी परसों से इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच, जो 3 मैचों की ये टेस्ट सीरीज है। और इंग्लैंड पहले टेस्ट जीतकर दे आर लीडिंग इन दिस टूर्नामेंट, आई मीन इन दिस टेस्ट सीरीज। और इसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान देयर विल बी आई एंड दिस ओडीआई जो है सितंबर 9 से लेकर 13 तक, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज कहूँगा मैं। और इम्पॉर्टेंट सीरीज इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ कर दिखाना है, कुछ बताना है कि दे आर द बेस्ट आउट देयर। थोड़ा बहुत यू नो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से टीम को बनाई गई है, लेकिन आई फील दैट पाकिस्तान कैन हिट बैक इन द सेकेंड टेस्ट मैच। और एक अपडेट है फ्रॉम द इंग्लैंड टीम के हवाले से, ब्रायडन कार्ट्स हैज बीन रूल्ड आउट और इंग्लैंड की इस टेस्ट स्क्वाड से यानी सेकेंड टेस्ट से वो बाहर हो गए हैं। एंड देखते हैं कि उनको उनकी जगह पे किसको खेला जाएगा, जबकि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी कह दिया कि सोनी बेकर को ऐड कर लिया गया है। अब खेलना ना खेलना बात की बात है, जो प्लेइंग 11 है वो तो एक दिन मैच से एक दिन पहले ही पता चलेगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और वहीं अगर अभी हम बात करें कि कतर में जो कतर स्टार्स लीग जो शुरू हुआ है उसमें कौन कौन से टीमें टॉप पर हैं, एज़ यूजुअल असद क्लब जो है एक मैचेस ऑलरेडी सबके एक एक मैचेस ही होंगे, पिछले हफ्ते तो शुरू हुआ था तो 3 पॉइंट्स। और असद की परफॉर्मेंस पे काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है कि दे रियली शोन ब्रिलियंटली एंड दे रियली प्लेड वेल अगेंस्ट अल अहली, 3-0 से जीत और काफ़ी कन्विंसिंग विन, जिसको हम कहते हैं कन्विंसिंग यू नो परफॉर्मेंस बाई दी अलसद जो डिफेंडिंग चैम्पियन है। अल दोहेल का भी जीत हमें देखा, 3 पॉइंट्स लेकर वो भी सेकेंड पोजिशन पर है। अल गराफा भी जीत के साथ अपना कैंपेन शुरू किया, वहीं अर्रयान ने भी अपना कैंपेन जो है 1 फतेह के साथ जो है शुरू किया था। अच्छा, परसों जो मैचेस हैं वो बता दूं कि सो गराफा का सामना होने जा रहा है शमाल से, वकरा का अर्रयान से, और ये दोनों मैचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रयान 2015 के बाद कभी भी लीग चैम्पियन होने पे उनके काफ़ी रुकावटें आई हैं एंड इस 12 साल तकरीबन 11 साल ही, हाँ 2015 से लेके 2026 इस सीज़न में उनका टारगेट जो है लीग को दोबारा जीतना है। अर्रयान इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लब्स, फैन बेस्ड क्लब्स इन कतर। अगर सद के बाद अगर कोई क्लब है तो अर्रयान क्लब है, और गराफा भी उनके बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे फैंस आते हैं उनके मैचेस देखने के लिए। ये ओवरऑल एक चीज़ बता दी आपको। और ला लीगा में हम देखते हैं कि ला लीगा में क्या चल रहा है, एंड ला लीगा में सीविया जो है वो सबसे टॉप पर है 2 मैचेस में 6 पॉइंट्स के साथ। एटलेटिको मैड्रिड 2 मैचेस में 4 पॉइंट, और बार्सिलोना ने एक ही मैच खेला है

और उनके पास 3 points हैं। बार्सिलोना से एक बात मुझे याद आ गई कि उसमें छावी हर्नांडेज को सब लोगों को याद होगा, बार्सिलोना असद क्लब, ये दोनों क्लबों को जोड़ रहा हूँ बिकॉज बार्सिलोना पहले छावी हर्नांडेज जो स्पेन के मारूफ मिडफील्डर थे वो 2015 में कतर आए थे और यहाँ पर असद के लिए खेलने आए थे, उसके बाद असद के कोच बने और कोचिंग करते करते करते उन्होंने असद को चैंपियन टीम भी बनाया। एंड उसके बाद बार्सिलोना से कॉल आता है, स्पेन के बार्सिलोना मशहूर क्लब बार्सिलोना, बार्सिलोना क्लब के कोच भी बनते हैं और उनको चैंपियन भी बनाते हैं और फाइनली छावी हर्नांडेज जो है अभी हाल ही में छावी हर्नांडेज को कोच बनाया गया। आपको बता दूं किस कंट्री का, क्लब के बारे में नहीं, कंट्री, द नीदरलैंड्स के जो फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने छावी हर्नांडेज को अपना नेशनल हेड कोच बनाया है। एंड दैट्स अ वंडरफुल न्यूज बिकॉज इससे कतर कनेक्ट हो जाता है बिकॉज ही केम हियर एज अ प्लेयर और उसके बाद प्लेयर करियर खत्म करने के बाद उन्होंने कोचिंग में अपने इंटरेस्ट शो किया और कोचिंग असद क्लब को कोचिंग करवा दो। उन्होंने कहा भी कि उनको जितने भी एक्सपीरियंस मिला है फ्रॉम द कतर एंड असद क्लब से, तो ये दोनों जगह पे उन्होंने कोचिंग करवाने के बाद फाइनली ही इज द नेशनल हेड कोच ऑफ द नीदरलैंड्स फुटबॉल टीम। तो दोस्तों आप आ जाते हैं हमारे आज के सवाल के जवाब पर और क्वेश्चन ये था आप लोगों को, इस बार मैंने ऑप्शन दिया है, अगली बार ऑप्शन भी दूंगा।

ने क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा हैट्रिक्स लिए हैं। और आप लोगों को मैंने थोड़ा इजी करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन दे दिया, वसीम अकरम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कपिल देव, ऑप्शन सी जो है लसित मलिंगा। अब मैं उठाता हूँ फोन और चेक करता हूँ किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं। ये कौन साहब हैं, रमजान खान साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम और टीम मेंबर्स ऑफ एफएम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब भी सही है। और आप लोगों ने, अच्छा आसिफ अंसार ने भी एक जवाब दिया है, सही जवाब है लेकिन नाम बता दूंगा बाद में। ओके, नाम क्या है, नाम क्या, अच्छा मुमताज़, अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, वालेकुम अस्सलाम मुमताज़, बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का। जी सही जवाब आपने दिया है, आपने बड़ा ही खूबसूरती से आपने ये मैसेज दिया, अल्लाह पाक आपको और एफएमओ 7 के सारे टीम को हमेशा खुशहाल रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा ओके, और किन किन साहब ने दिया है, मकसूद अली साहब ने भी सही जवाब दिया है एंड उन्होंने परफेक्ट जवाब दिन में मुकम्मल तरीके से आपने लिख दिया है। और कौन है, दिलबर अली साहब ने लिखा सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, और आपने सही जवाब के नाम थोड़ा सा, पहला नाम जो है इस बॉलर का थोड़ा आपने गड़बड़ा दिया है इनको, एनीवे मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपका मिस्टेक था। और कौन है, और है मनदीप, आपने सही जवाब दिया है। ये दोस्तों क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स तीनों फॉर्मेट्स में लेने वाला बॉलर ना तो वसीम अकरम है ना तो कपिल देव है, और सही जवाब है लसित मलिंगा। खतरनाक बॉलिंग करते थे, खतरनाक, उनके बालों के जो वो जो नो स्पाइरल हेयर वो देखते ही लोग बैट्समैन जो घबरा जाते थे। लसित मलिंग के बॉलिंग एक्शन भी कमाल का था, अगर देखा जाए कमाल का बॉलिंग एक्शन, एंड किसी को लगता था कि वो चक कर रहे हैं यानी बॉल को थ्रो कर रहे हैं यानी गेंद को उल्टा सीधा फेंक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। और उनका बॉलिंग एक्शन वो सो परफेक्ट सो एक्यूरेट कि ज़्यादातर यॉर्कर से टो क्रशिंग यॉर्कर से वो विकेट लेते थे एंड क्लीन बोल्ड होते थे ज़्यादातर उनके बल्लेबाज। उनके बॉलिंग एक्शन आज भी बड़ा ही लाजवाब बॉलिंग एक्शन है, देख के डर पैदा हो जाता था किसी की किसी भी बैट्समैन को उनको फेस करते हुए, वेरी मच श्योर कि थरथराते होंगे। और कमाल का बंदा था, 99 नंबर जर्सी पहन के श्रीलंकन टीम को रिप्रेजेंट किया और IPL में भी उन्होंने खेला। और उनका अगर पूरा नाम बताऊं, सेपारामाडू लसित मलिंगा, किसी एक साहब ने लिखा है नासिर मलिंगा नहीं है, लसित मलिंगा है LSITH। तो लसित मलिंगा इज वन ऑफ द बॉलर्स नहीं बल्कि ओनली बॉलर इन द क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में अगर देखा जाए मिलाकर सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स, वो भी 5 हैट्रिक्स, नॉट जस्ट 1-2 बल्कि 5 हैट्रिक्स लेने का एक अनोखा रिकॉर्ड जो है उनके नाम पर है। और ODI में देखूं कि 2026 मैचेस खेलने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर विकेट्स लिए तो 338, इनफैक्ट टेस्ट मैच से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। T20 में 84 मैचेस में 107 विकेट्स, टेस्ट मैचेस 30 खेले जिसमें 101 विकेट्स, तो ज़्यादातर परफॉर्मेंस उनका हमें देखने को मिला है फ्रॉम दी ODI यानी वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट 50 ओवर गेम में। सो ही वॉज अ ब्रिलियंट बॉलर। 5 विकेट्स इनिंग्स अगर यहाँ पे स्टैटिस्टिक देख रहा हूँ मैं, ODI में 8 मरतबा, टेस्ट क्रिकेट में 3 मरतबा और T20 फॉर्मेट में दबा। सो ओवरऑल दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ लसित मलिंगा, ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट। और कई ऐसे विक्ट्रीज हैं श्रीलंका को मिली हैं बिकॉज ऑफ लसित मलिंगाज बॉलिंग, स्पेशली इन द एंड ओवर, इन द स्लॉग ओवर्स में जब वो खतरनाक हो जाते थे, एंड ओपनिंग स्पेल में तो डेफिनेटली ही वॉज वन ऑफ द ब्रिलियंट बॉलर्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन। अच्छा दोस्तों, ये आज हमारा टोटल जो समर स्पोर्ट्स का था, इसमें मैंने सारे कुछ आप लोगों को पेश किया। इफ़ यू थिंक दैट आप लोगों को और भी स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल होना है तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, एंड FM 107 के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। FM 107 के जो पेजेस हैं ऑन फेसबुक, ऑन टिकटॉक भी है, ऑन ट्विटर में भी है, यूट्यूब में भी है,
यू कैन ऑलवेज फॉलो द FM 107 की पेजेस. और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अगले जुमेरात को आप लोगों से फिर मिलेंगे इन द स्पोर्ट्स राउंडर प्रोग्राम इंशाल्लाह. तब तक के लिए अपने मेहमान को इजाजत दीजिए और खेलों की दुनिया से जुड़े रहिए हमेशा. बी स्पोर्टिंग, लव स्पोर्ट्स एंड एंजॉय स्पोर्ट्स. अल्लाह हाफिज. आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक, टाइम
2: चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर 1:30, यानी ये वक्त हो चला है।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
2: हां जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है। तो 3-2-1 कहते ही हमें सिग्नल मिल जाता है कि भाई देखो टाइम हो चला है, हमको पूरी तरह से ना रेडी होना पड़ेगा, बिकॉज हमें एक नया चैलेंज मिल सकता है। मिल सकता है क्या? डेफिनेटली मिलेगा। सो एस्केप रूम में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता एंड आई एम श्योर कि अभी तक का आपका दिन बहुत शानदार गुजरा होगा, है कि नहीं। तो आज आप कहां रहने का सोच रहे हैं, सोचा है इसके बारे में? मुझे लगता है हमने म्यूजियम्स तो बहुत देखे, ठीक है, बहुत सारे खूबसूरत म्यूजियम्स, वी जस्ट लव्ड इट। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि हम किसी मेमोरी म्यूजियम में कैद हुए? भाई आज का जो ट्विस्ट है ना, बड़ा कमाल का है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है एस्केप रूम में, तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए और अभी शानदार म्यूजिक एंजॉय कीजिए। और हाँ, ये नंबर नोट कीजिए।

6622107 6622107 इस नंबर के जरिए हमारी बातचीत कंटिन्यूसली होने वाली है. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा लूजन अप होता है, म्यूजिक से अपने आप को एनर्जाइज करते हैं और उसके बाद एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आज की सिचुएशन आपके नाम हो जाए. तो कहीं ना जाए, बने रहे अपने मन पर दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: वेक अप समर मॉर्निंग्स पर यू नीड टू वेक अप. सुनिए हर संडे से थर्सडे सुबह 6 बजे से समर मॉर्निंग्स आरजे नाजिया के सिर्फ FM 107.8 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम, ए फॉर अमी.

0: Taki only on FM 107 Dilli Deep.
1: वेलकम वेलकम वेलकम फ्रॉम 107 सुन रहे हैं आप. हूँ आपकी ए फॉर अमिता और इस वक्त एस्केप रूम की खूबसूरत से रूम में आप मौजूद हैं. एस्केप रूम की गलियों में चल रहे हैं. आज आप कैद होने वाले हैं. हम आज किसी दीवारों वाले कमरे में नहीं कैद होंगे बल्कि अपने ही जहन के एक ऐसे हिस्से में वहाँ फंसेंगे जहाँ हकीकत अहम के बीच की ना एक लकीर होती है पर वो भी ना धुंधली हो चुकी है. यस, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम कदम रख रहे हैं द मुरी म्यूजियम में. यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ आपकी याददाश्त नहीं बल्कि आपकी समझदारी तय करेगी. सो अब आप आगे बढ़ें इस मेमोरी म्यूजियम में. जैसे अंधेरे में पुराने कागजात फड़फड़ वैसा कुछ आपको सुनाई दे रहा है. ठीक है, आज हम इस वक्त एक ऐसी लाइब्रेरी में खड़े हैं जहाँ धूल भरी ग्रे फाइल्स कैबिनेट्स में रखी हैं. हमें मतलब दिख रही है उसकी भीड़ लगी हुई है, मतलब जैसे कहते हैं ना अंबार लगा हुआ है. पहली नज़र में ये एक नॉर्मल आर्काइव जैसा लगता है लेकिन ज़रा इन ड्रॉर्स पर लिखे लेबल्स को देखिए. कहीं पर लिखा है चाइल्डहुड कार्टून्स, कहीं लिखा है फिल्म मूवी लाइन्स, कहीं ब्रांड के लोगोज हैं. और अभी आपने कार्टून्स वाले सेक्शन से एक फोल्डर निकल लिया. और सच कौन तो मैं सच हूँ तो मैं बहुत कन्फ्यूज हो रही हूँ. ठीक है, मतलब मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि इस जगह में आप कैसे आगे बढ़ेंगे. ये कार्टून वाला फोल्डर आपने निकाला एंड यू सॉ इट कि बाप रे इसमें बड़े कार्टून्स हैं. और आपके हाथ में पिकाचू की तस्वीर लग गई. आपको अच्छे से याद होगा कि जब ये पिकाचू था ठीक है तो वो कैसा दिखता था. ठीक है, आप शर्त लगा सकते हैं कि उसकी टेल के सिरे पर एक काला निशान, ठीक है, ब्लैक टिप था. लेकिन इस म्यूजियम की पिक्चर में टेल बिल्कुल प्लेन येलो है. फिर आप आगे बढ़े, मोनोपोली मैन को देखा और आपको याद होगा कि वो कहते हैं ना कि जिन्होंने चश्मा लगाया होता है मोनोपोली मैन ने, लेकिन जब आप रिकॉर्ड देख रहे हो तो वहाँ कोई चश्मा भी नहीं है. क्या ये कमरा हमसे झूठ बोल रहा है, मतलब ये जो म्यूजियम का पर्टिकुलर एरिया है क्या हमसे झूठ बोल रहा है या हमारा अपना दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा है? ये बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हो रही हैं क्योंकि हम मेमोरी म्यूजियम में कैद हो गए हैं. इस म्यूजियम से एस्केप करने का बस एक ही रास्ता है कि हमें ये समझना होगा कि हजारों लोगों को एक ऐसी दुनिया याद है जो कभी थी ही नहीं. तो क्या वो दुनिया थी, क्या वो दुनिया नहीं थी, अब हमें अपने आप से पूछकर सही जवाब देने पड़ेंगे जैसे जैसे हम सिचुएशंस में आगे बढ़ेंगे. अब माहौल जो है काफ़ी एरी और वो कहते हैं ना थोड़ा सा डरावना होते जा रहा है. यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है लेकिन यस, क्योंकि हम मेमोरी की कुछ चीज़ें, हमारे जो दिमाग की चीज़ें हैं वो मेमोरी लॉस हो रहा है या फिर हमारा कन्फ्यूजन है उसमें हम परेशान हो रहे हैं. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बात को लेकर 100% श्योर हो कि यही होगा लेकिन ये पता चला कि आप बिल्कुल भी हुआ है ना? हाँ, जैसे कि अगर हम बोलें कि वो लूनी टून्स, ये लूनी टून्स था तो कुछ लोग कहेंगे नहीं लूनी ट्यून्स था, मतलब ऐसे कई वर्ड्स हैं. हम कहेंगे नहीं था तो दूसरा बोलेगा नहीं था और उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है. जैसे कि ये बड़ी फेमस लाइन है कि मिरर ऑन द वॉल, पर कभी कभी लोग कन्फ्यूज जाते हैं मिरर ऑन द वॉल था या मैजिक मिरर ऑन द वॉल था. आप बताएं ज़रा. तो लोगों को ये सारे लोगों को बहुत बड़ा जो ग्रुप होता है उसे एक ही गलत मेमोरी को जैसी फील आती है कि वो सच मान रहे हैं या सच मानने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैट्रिक्स में कोई ग्लिच आ गई हो, है ना. लेकिन साइंस की दुनिया में इस कलेक्टिव चीज़ को एक नाम दिया गया है और यही हमारा क्लू नंबर वन से आपको सॉल्व करना है. सो क्लू नंबर वन, थोड़ा अब ध्यान से सुनिए कि मैं वो जहनी धोखा हूँ जहाँ पूरी दुनिया की याददाश्त एक साथ गलत हो जाती है. मैं तब पैदा होता हूँ जब हजारों लोग किसी ऐसी चीज पर यकीन करते हैं जो कभी हुई ही नहीं. जैसे किसी ब्रांड के लोगों में कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन या किसी पुरानी फिल्म का कोई बदला हुआ डायलॉग, या यूँ कहें तो जब पूरी कॉम एक ही झूठ को सच मानने लगी है तो उस कलेक्ट धोखे को क्या कहते हैं. अब साइंस ने इसका एक नाम दिया हुआ है.

ठीक है, और वो नाम मैं आपको तीन नाम बताऊंगी, उनमें से कोई एक नाम आपको चुनना है. मेमोरी इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट, ब्रेन इट, इन तीन से क्या सही जवाब होगा? आप मेमोरी म्यूजियम में कैद हो गए हैं, ठीक है, आपने फोल्डर उठाया, कार्टून्स दिखे, कुछ चीज आपके जहन में कि ये कार्टून ऐसा होगा, लेकिन आप जब फोल्डर में दिख रहे हो तो उसकी पिक्चर में कुछ और है. और यहीं पर क्लू नंबर वन है कि मैं वो जहनी धोखा हूँ जहाँ पूरी दुनिया की याददाश्त एक साथ गलत हो जाती है. वो कौन सी चीज़ हो सकती है? मैं तब पैदा होता हूँ जब हजारों ऐसी किसी चीज़ पर यकीन करते हैं जो कभी हुई ही नहीं. तो साइंस उस चीज़ को क्या कहता है? मेमोरी इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट या ब्रेन इफेक्ट? सही जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 666-22-107 पर, 666-22-107. और इस पहले, वो कहते हैं ना, हमारे दिमागी गेम से बाहर निकले, इस पहले पड़ाव को एस्केप करें. और अभी एक शानदार सा गाना. ये म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी, तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और यू कहें तो आज एस्केप रूम की सिचुएशन बड़ी कमाल की क्योंकि हम एक मेमोरी म्यूजियम में कैद हो गए जनाब। मतलब हमारी जो मेमोरी है ना हमारे साथ कर रही है, हमारा दिमाग जो है हमें कुछ ऐसे दिखाया है जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है लेकिन असल में वो पिक्चर्स जैसे हम सोच ऐसे नहीं है। मतलब ये अलग तरीके के इल्यूजन्स वो कहते हैं मैजिकल वर्ल्ड में हम एंट्री मार ली है। तो ये मेमोरी म्यूजियम बड़ा कमाल है लेकिन ठंडे दिमाग से हर चीज़ को सही तरीके से समझना होगा और एक एक करके क्लूज सॉल्व करने होंगे और अगले पड़ाव को भी पार करना होगा। ठीक, सो पहला पड़ाव आपको पार करना था, क्लू नंबर वन आपके लिए कि मैं वो ज़हनी धोखा हूँ जहाँ पूरी दुनिया की याददाश्त एक साथ गलत हो जाती है। मैं तब पैदा होता हूँ जब हज़ारों लोग किसी ऐसी चीज़ पर यकीन करते हैं जो कभी हुई ही नहीं, जैसे किसी ब्रांड का लोगों में कोई एक्स्ट्रा डिज़ाइन हो जाना या पुरानी डायलॉग एकदम से बदल जाना और जो है नहीं डायलॉग वो लोगों ने यकीन कर लिया, फिर जब पूरी कौम एक ही झूठ को सच मानने लगती है तो उस कलेक्टिव धोखे को क्या कहते हैं साइंस। आपको मैंने ऑप्शन दिया मेमोरी इफेक्ट, मंडेला इफेक्ट, ब्रेन इफेक्ट और तीनों ही हमारे लिसनर्स यूज कर रहे हैं लेकिन हम सीधा सही जवाब की तरफ जाएंगे। सो राइट आंसर इज मंडेला इफेक्ट। जोरदार तालियां हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने हमें सही जवाब दिए। पीठ थप दबाओ भाई, पहला पड़ाव पार गए। आइए जरा देखें जिन्होंने सही जवाब दिया। सो मुश्ताक हैं, आरिफ, अशफाक, जमील, मदीप, उन्होंने सही जवाब दिया, मिस्टर खान ने सही जवाब दिया है, यूसुफ शमीम ने भी सही जवाब दिया है और ये जनाब कौन है इनका नाम नहीं लिखा है लेकिन इन नंबर के आखिरी के दो डिजिट है 31। अच्छा आसिफ, ओके आसिफ ने हमें सही जवाब दिया है और कुछ वॉइस मैसेजेस हमें आ रहे हैं। देखिए आप कोशिश करें हमें लिख कर अगर लिखेंगे लिख कर टेक्स्ट लिख कर बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि एकदम से अभी हम आपके ऑडियो मैसेजेस नहीं सुन पाएंगे। ऑल राइट, सो क्लू नंबर वन आपने सॉल्व किया एंड बहुत सारी मुबारकबाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा मंडेला इफेक्ट, पहला पड़ाव पार हो गया। अब हम जो है एग्जिट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये जो हॉलवे है ये मेमोरी म्यूजियम का ये ना बार बार बदल रहा है। आखिर हमारा जो दिमाग है हमारे साथ ये दगाबाजी क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, साइंटिस्ट का मानना है कि मेमोरी किसी वीडियो कैमरे जैसे नहीं होती है, स्टोरी टेलर की तरह है। हमारा दिमाग जानकारी के छोटे छोटे टुकड़ा है और कहानी पूरी करने के लिए जो बैंक्स होते हैं ना उनको फिल करने लगता है। अगर हम एक रईस बूढ़े आदमी को टोपी लगा के देखेंगे और बड़ी सी हैट लगाए हुए देखेंगे तो हमें वो मोनोपोली मैन याद आएगा। ठीक है, और खुद ब खुद हमें लगेगा कि हाँ उसके आंखों में चश्मे भी होंगे। तो ये चीज़ें हर किसी के साथ होती है। ठीक है, तो अब क्लू नंबर टू हमें सॉल्व करना है और आपके लिए क्लू नंबर टू ये रहा। मानिए कि आपका यूँ कहें मानिए कि आपको बचपन की ना कोई ऐसी बात साफ याद, आपका उस पर पूरा यकीन है लेकिन हकीकत में वो किस्सा कभी हुआ ही नहीं। ये आपके दिमाग की एक खूबसूरत चालाकी है या एक खूबसूरत उपज है। ठीक है, अब

ऐसी याद को, ऐसी याद को हम क्या कहेंगे जो दिल को तो सच लगती है पर होती बिल्कुल गलत है या होती बिल्कुल झूठी है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन दूंगी मैं आपको, ऑप्शन दे रही हूं, ध्यान से सुने और फिर सही जवाब देने की कोशिश करें। ऑप्शन है फ्री मेमोरी, फॉल्स मेमोरी, फिल्टर मेमोरी। आज हमारे लिसनर्स को लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट हो गया रूमा। क्लू नंबर टू है कि माँ आपको बचपन की कोई बात बड़े प्यार से याद है, वो लग रहा है वो बिल्कुल सच्ची है, पूरा यकीन है, लेकिन हकीकत में वो किस्सा कभी हुआ ही नहीं, ये सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। अब ऐसी याद को हम क्या कहेंगे, इसका एक टर्म है, बताए जरा, जो बिल्कुल हमें सच लगती है पर होती झूठी है। फ्री मेमोरी, फॉल्स मेमोरी, फिल्टर मेमोरी। अब इन तीनों में से क्या जवाब है वो लिख कर आप हमें भेजें 6622107 पर, 6622107 पर, अपने नाम के साथ। एक हो गए हम और तुम। और अभी एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी ही न जाने FM 107 पर, दिल

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.ca।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जनाब, एस्केप रूम का सेकंड फ्लोर हो चुका है इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के

0: 2:01, ये वो वक्त है जहां पर हम एस्केप रूम की सिचुएशन में आगे बढ़ने से पहले ये दुआ करें कि आज की इस मेमोरी म्यूजियम से हम एस्केप कर पाए।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
0: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। मेमोरी म्यूजियम में इस वक्त हम सफर कर रहे हैं और यहाँ पर एक से बढ़कर एक मेमोरीज हमारे सामने आते जा रही हैं जो हमें सच की तरह लग रही हैं, बट असलियत में चीज़ें कभी हुई ही नहीं। बताएं ज़रा, इस कन्फ्यूजन इस इल्यूजन में हम सफ़र कर रहे हैं और हमें इस मेमोरी म्यूजियम से बाहर निकलना है। तो पहला पड़ाव हमने पार कर लिया जैसे तैसे। क्लू नंबर 1 सॉल्व किया, सही जवाब था मंडेला इफेक्ट। अब क्लू नंबर 2 पर आए हैं और वो ये है कि मानिए कि आपको बचपन की कोई बात बिल्कुल साफ याद है, ठीक है, आपका और पूरा यकीन भी है, लेकिन हकीकत में वो किस्सा हुआ ही नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग की एक खूबसूरत चाकी है, एक खूबसूरत उपज है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या कहेंगे, जो चीज़ हमें लगती है कि हुई ही नहीं, वो याद क्या है? आपको मैंने ऑप्शन दिया, फ्री मेमोरी, फॉल्स मेमोरी। इन तीनों में से सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है फॉल्स मेमोरी। जोरदार तालियां हो जाए भाई, क्या बात है। दूसरा पड़ाव भी आपने चुटकियों में सॉल्व कर लिया। कुछ लिसनर्स ने फ्री मेमोरी लिखा है, फ्री मेमोरी इज द रॉन्ग आंसर, फॉल्स मेमोरी ही सही जवाब। तो सही जवाब जिन्होंने हमें दिए हैं, आइए इसके नाम देखते चले। तो मनदीप ने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट्स रियली नाइस। यूसुफ शमी ने भी अभी सही जवाब दिया, मिस्टर खान ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया है, मुशाक हैं, आरिफ हैं, अशफाक जमील, क्या बात है, गजब। आप सब ने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। अब जो एग्जिट डोर है वो बिल्कुल आपके सामने है, लेकिन उस पर धूल की एक मोटी परत, एक मोटी लेयर जमी है। अब इसे खुलने के लिए हमें आखिरी चाबी की ज़रूरत है, ठीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां आपकी याददाश्त आपसे झूठ बोल सकती है, मतलब सोचे ज़रा, वहां आपको इस सॉलिड चीज़ की ज़रूरत है। अब वो सॉलिड चीज़ क्या है? आपको चाहिए, आपको हिस्ट्री की रिसीट्स चेक करनी होंगी, ठीक है। चले क्लू नंबर 3 आपकी राहों में। मैं वो काम हूँ जिसमें हम गैसिंग नहीं लगाते, ठीक है, हम अंदाज़ा नहीं लगाते, बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और असली तस्वीरों को देखकर सच्चाई की जांच करते हैं। मैं क्या हूँ? ऑप्शंस आपको मैं दे रही हूँ, वेकेशन, वेरिफिकेशन, वाइब्रेशन। बताएं इन तीनों में से सही जवाब क्या हो सकता है। क्लू नंबर 3 एक बार फिर से आपके लिए। मैं वो काम हूँ जिसमें हम अंदाज़ा नहीं लगाते, बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और असली तस्वीरों को देखकर सच्चाई की जांच करते हैं। तो मैं क्या हूँ? ऑप्शंस हैं वेकेशन, वेरिफिकेशन, ब्रेशन। सही जवाब दीजिए अपने नाम के साथ 6622107 पर, 6622107। और देखते हैं ये तीसरा और आखिरी पड़ाव आप पार कर पाते हैं या नहीं। पर हर एक ब्रेक आपको एक एनर्जी दे, तो कि हमारी जो प्लेलिस्ट है बड़ी शानदार है, इसे एंजॉय करें और सोचें कैसा ही जवाब होता है। फिर आपकी मेरी मुलाकात वापस होगी एफएम 107 पर दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: हाँ जी वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आज एस्केप रूम की गलियाँ बड़ी ज़्यादा तंग लग रही हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रही हैं हमारे लिसनर्स के मैसेज के जरिए, ये मुझे एहसास हो रहा है। देखिए, एस्केप रूम का मकसद ये है, एक थोड़ी कंफ्यूजन, थोड़ी हलचल दिल में, थोड़ी चीज़ें वो तो होनी ही होनी है कि नहीं, ना वो चैलेंजेस का मज़ा ही क्या बात है। वल आज हम मेमोरी म्यूजियम में अटक गए भाई, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसी जगह अटक जाएंगे जहां हमें सच भी झूठ लगेगा और झूठ हमें सच लगेगा। अब इस कन्फ्यूजन के चलते चलते किसी तरह हमने दो पड़ाव पार कर लिए। पहला क्लू हमने जब सॉल्व किया तो सही जवाब था मंडेला इफेक्ट, दूसरे क्लू का सही जवाब था फॉल्स मेमोरी। अब तीसरे क्लू पर आके अटके हैं भाई। देखो, एग्जिट डोर के हम बिल्कुल सामने हैं लेकिन उस पर ना बड़ी मोटी धूल जमी हुई है और ये खुलेगा तभी जब हम क्लू नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और क्लू नंबर 3 ये है कि मैं वो काम हूँ जिसमें हम अंदाज़ा नहीं लगाते हैं बल्कि पुराने रिकॉर्ड और असली तस्वीरों को देखकर सच्चाई की जांच करते हैं। तो मैं क्या हूँ? और आपके ऑप्शंस हैं वेकेशन, वेरिफिकेशन, वाइब्रेशन। अब इन तीनों में से क्या सही जवाब हो सकता है, सोचिए जरा। फिर से दोहराऊंगी क्योंकि ये सिर्फ आखिरी मौका है और अगर अभी आपने ध्यान से सुनकर सही जवाब नहीं दिया तो आज इस मेमोरी म्यूजियम में ही हम कैद होने वाले हैं। और अगर कैद हो गए ना तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि यहाँ पर झूठ सच है और सच झूठ, ठीक है। सो क्लू नंबर 3, मैं वो काम हूँ जिसमें हम अंदाज़ा नहीं लगाते बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और असली तस्वीरों को देखकर सच्चाई की जांच करते हैं। मैं क्या हूँ? वेकेशन, वेरिफिकेशन, वाइब्रेशन। सोचे और 666-22107 666-22107 पर अपने नाम के साथ मुझे सही जवाब दिए जनाब। ये आखिरी मौका है, एग्जिट डोर के सामने है, बस ये एग्जिट डोर खुलेगा जवाब सही जवाब देंगे। और अभी म्यूजिकल ब्रेक जो हमें थोड़ा सा सुकून देगा और हमारी एनर्जी को बरकरार रखेगा। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से रेडियो।

अरे मौसी जी, कतर के चपे चपे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी।

0: समर्स का टेम्परेचर गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिर नहीं देंगे। हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सर्वर में और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे थर्सडे सुबह 11 बजे से FM 107 पर, दिल से देसी, दिल से
1: देसी। आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं हम अपने शो के, और वो कहना कि इस सिचुएशन, इस मेमोरी से बाहर निकलेंगे। हमने कई सारी चीज़ों का सामना किया, सामने एग्जिट रोल निकल नहीं पा रहे, निकलेंगे निकलेंगे, क्योंकि मुझे लगता है हमारे लिसनर्स ने बहुत जद्दोजहद कर ली है कि नहीं। क्लू नंबर वन हम सबने सॉल्व किया, सही जवाब था मंडेला इफेक्ट। क्लू नंबर टू हमने सॉल्व किया, दैट वाज फॉल्स मेमोरी। अब क्लू नंबर थ्री हमें सॉल्व करना है, एग्जिट डोर है खुलवाना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली खुल जाएगा जब हम क्लू नंबर थ्री सॉल्व कर लेंगे। और वो ये है कि मैं वो काम हूँ जिसमें हम अंदाज़ा नहीं लगाते, बल्कि पुराने रिकॉर्ड्स और असली तस्वीरों को देख कर सच्चाई की जाँच करते हैं। तो वो चीज़ है वेकेशन, वेरिफिकेशन, वाइब्रेशन। अब इन तीनों में से सही जवाब क्या हो सकता है? तो सही जवाब इज वेरिफिकेशन। एब्सोल्युटली राइट। जब हम सही फैक्ट्स को देखकर वेरीफाई करते हैं तो सच्चाई और सच्ची लगने लगती है कि नहीं? तो चलिए अपनी पीठ थपथपाएं, क्योंकि जिन्होंने सही जवाब दिया है उन्होंने ये तीसरा पड़ाव पार कर लिया है। और कौन कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है, आइए जरा उनके नाम देखें। तो यूसुफ शमीम है, अंसारी ने भी हमको सही जवाब दिया है, मोहम्मद अहमद हदीज अंसारी ने भी सही जवाब दिया है, मिस्टर खान ने सही जवाब दिया है, असद अब्बास ने सही जवाब दिया है, मंदीप है, राशिद है, सरफराज हैं, मोहम्मद यूसुफ खान है, मुश्ताक हैं, आसिफ, आरिफ, अशफाक जमील हैं। क्या बात है, आप सब ने सही जवाब दिया। और एक चीज़ तो आपने यकीन मान ही ली होगी कि हमारे एपिसोड से, कि भले ही हमारी फीलिंग्स कुछ भी कहें, जब तक सही फैक्ट्स सामने नहीं आते तब तक सच्चाई का असलियत में पता नहीं चलता है कि नहीं। तो आज के हमारे जो फैक्ट चेकर हैं, विनर जो हैं, वो कौन हो सकते हैं, आइए ज़रा उनका नाम भी देख लेते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ, उनका नाम है जिन्होंने आज सभी का दिल जीता है और आज के हमारे शो के लकी विनर बने हैं, वो हैं मिस्टर यूसुफ शमीम। ज़ोरदार तालियां आपके लिए, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, मुबारका मुबारका, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा प्यार, नॉन स्टॉप आपने हमें सही जवाब दिए, और सबसे पहले सही जवाब दिए। और हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने भी सही जवाब दिए, भाई उनके लिए भी जोरदार तालियां। देखिए विनर तो कोई एक गा, लेकिन आप सब ने मिलकर आज के शो को जीत लिया है कि नहीं? तो जैसे ही आपने सही जवाब दिया, ये एग्जिट डोर अपने आप

खुला और आप अपनी अपनी जगह पर आराम से पहुंच गए बिना किसी तकल्लुफ के। तो कैसा लग रहा है मेमोरी म्यूजियम से बाहर निकल के, जहां सच और झूठ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा था। आई एम श्योर कि आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब कल एक नया चैलेंज होगा जो कि दोपहर 1:30 बजे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, जहां पर ये जो बैटरी सेल है ना, ये डेड भी हो सकते हैं या फिर इनकी बैटरी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सिचुएशन क्या होगी वो तो कल ही पता चलेगा। और अभी के लिए क्या करना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ भाई, FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ो, हमारी सारी लाइव अपडेट, सारी चीज अपडेटेड रहो। और अपने आरजेविता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हो, कभी कभी मैसेज कर सकते हो, है कि नहीं। चलिए अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो मुझे जाना होगा। और आप क्या करेंगे, आपको जाते जाते तो ये कहना बनता है हमें प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। चलते चलते अपने रेडियो से वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, शानदार गाना एंजॉय करो, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, ऑफिस लाइफ में लंच ब्रेक एक ऐसा वक्त होता है जहां हम थोड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो क्यों ना रिलैक्स करें, अपने कोलीग्स के साथ वक्त गुजारते हैं और अपना खाना भी एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ऑफिस लंच हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है? देखिए, रोजाना टेक अवे मील्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कंटेनर्स और फूड वेस्ट, ये सब मिलकर अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लंच रूटीन में सिंपल

0: चेंजेस ले आए ना छोटे छोटे, तो हम अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी एनवायरमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। ट्रस्ट मी। तो भाई क्यों ना आज इको सोच में बात कर ली जाए इको फ्रेंडली ऑफिस लंचेस के बारे में, यानी ऐसी लंच हैबिट्स जो सेहतमंद भी हो एनवायरमेंट के लिए बेहतर भी हो। तो भाई पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए ऑफिस लंचेस के दौरान कुछ कॉमन हैबिट्स वेस्ट को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि आप कह लें क्या कहा जाए रोजाना डिस्पोजेबल कंटेनर्स का इस्तेमाल, प्लास्टिक कटलरीज और बैग्स का ज्यादा यूज, अच्छा खाना ज्यादा ऑर्डर करना और फिर वेस्ट कर देना, अपना लंच घर से ना लेकर जाना और अननेसेसरी पैकेजिंग क्रिएट करना। देखिए कभी कभी हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही ऐसी चीजें चूज करते हैं जो कि भाई कुछ मिनट के लिए हमारे लिए यूजफुल होती है लेकिन बाद में क्या बन जाती है वेस्ट। देखिए फूड वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ग्लोबली, क्योंकि भाई सीधी सी बात है खाना बनाने में पानी एनर्जी और रिसोर्सेज लगती है, इसलिए स्मार्ट लंच चॉइसेस एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती हैं। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ऑफिस लंच को इको फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे से आइडियाज दे देती हूँ। पहली चीज तो ये कि रीयूजेबल लंच बॉक्सेस यूज करें ना, प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉक्सेस की जगह आप रीयूजेबल लंच कंटेनर्स यूज कर सकते हैं, वो जो आते हैं ना ड्यूरेबल से स्टील के होते हैं या कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो ज्यादा अरसे तक चल सकते हैं और वेस्ट कम प्रोड्यूस होता है कि नहीं। अच्छा अपनी वाटर बॉटल और मग अपने साथ रखें। देखिए ऑफिस में अपनी रीयूजेबल बॉटल और कॉफी मग रखने की आदत डालें, ये एक अच्छी हाइजीन है और इससे रोजाना डिस्पोजेबल कप और बॉटल्स का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। अच्छा तीसरी चीज ये है कि मील प्लान करें। अगर आप घर से लंच लेकर आते हैं तो पहले से ही प्लानिंग करने की कोशिश करें। देखिए इससे फूड वेस्ट कम होता है और आप अपनी पसंद का हेल्दी खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। चौथी चीज ये कि लेफ्ट ओवर फूड को स्मार्टली यूज करें ना। देखिए घर का बचा हुआ खाना अगर प्रॉपरली स्टोर किया गया हो ना तो वो अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से उसे वापस से रीयूज किया जा सकता है, इससे खाना भी कम वेस्ट होता है और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है क्योंकि आप घर का खाना खा रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक अवे में स्मार्ट चॉइसेस करें। देखें अगर कभी कभार लंच ऑर्डर करें आप तो जितनी जरूरत हो ना उतना ही ऑर्डर करें, ये नहीं कि जब आपकी भूख डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाए तब जाके आप ऑर्डर करें डबल ट्रिपल ट्रिपल खाना, और जहां मुमकिन हो अननेसेसरी पैकेजिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। इसकी एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना तो बहुत से ऑफिसेज में एम्प्लॉयज ने सिंपल इको फ्रेंडली लंच हैबिट्स अडॉप्ट की हुई है। बहुत सारे लोगों को देखा है कुछ लोग हर रोज अपना लंच रीयूजेबल बॉक्स में लेकर आते हैं, कुछ कोलीग्स मिलकर लंच शेयर करते हैं ताकि फूड का वेस्ट खाने कम हो। कुछ ऑफिसेज में अपने जो है ना मेरे अपने ऑफिस में लोगों के पास अपने मग्स हैं अपनी बॉटल्स हैं वो रखते हैं और उन्होंने कल्चर बनाया हुआ उसका, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल कम होता है। सोचिए अगर एक ऑफिस में सिर्फ 50 लोग भी रोजाना एक डिस्पोजेबल आइटम कम करें यूज कम कर दें तो साल भर में कितना वेस्ट कम हो सकता है। ये ऑफिस हैबिट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है भाई। तो भाई साथियों आज का इको स्विच चैलेंज ये है आपके लिए कि अगली बार ऑफिस लंच के वक्त एक इको चॉइस जरूर अपनाएं, चाहे वो रीयूजेबल लंच बॉक्स हो अपनी वाटर बॉटल लाना हो या खाने का वेस्ट कम करना हो। और हमें जरूर बताएं कि आप ऑफिस में लंच ज्यादातर घर से लेकर आते हैं या बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए एक बेहतर लंच सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें, और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे आखिरत की तैयारी के बारे में। जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है। हर दिन जो हम गुजारते हैं वो हमें अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करें। छोटी छोटी नेकियां, सच्चाई, इबादत और अच्छा रवैया, ये सब आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है। अक्सर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, लेकिन असल प्लानिंग आखिरत की होनी चाहिए जो हमेशा के लिए है। आज का अमल ये है कि अपने किसी एक अमल को अल्लाह की रजा के लिए इम्प्रूव करें। ये था हमारा मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ का आरजे महावश के साथ।
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
3: One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
4: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ Women in STEM Shaping the Future. आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से तेजी से तब्दील हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी फील्ड्स मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं, और इन तमाम फील्ड्स का ताल्लुक स्टेम से है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। वुमेन इन स्टेम, इससे मुराद उन फीमेल से है जो इन फील्ड्स में तालीम हासिल की हैं और अपने आइडियाज, रिसर्च और इन्वेंशंस के जरिए दुनिया को बेहतर बना रही हैं। माजी में स्टेम फील्ड्स को ज्यादा मर्दों की फील्ड समझी जाता था, लेकिन आज फीमेल्स साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स के तौर पर काम कर रही हैं। उनकी मेहनत ने साबित कर दिया है कि टैलेंट और कैपेबिलिटी का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया को ज्यादा इनोवेशन और नए आइडियाज की जरूरत है। जब सिर्फ सोसाइटी का एक हिस्सा सॉल्यूशंस डेवलप करता है तो बहुत से पर्सपेक्टिव मिस हो जाते हैं, लेकिन जब वुमेन भी स्टेम फील्ड्स में

0: actively participate karti hai to naye ideas naye solutions aur zyada creative innovative aur masid strong way mein samne aate hain aaj duniya ke samne kai badi challenges hain jinka hame aur aapko samna karna pad raha hai climate change hai health crisis hai food security hai technology ke bhi nayi challenges hain इन मसाइल को सॉल्व करने के लिए डाइवर्स माइंड्स की जरूरत है जी हाँ डाइवर्स माइंड की सख्त जरूरत है वुमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन प्रॉब्लम्स की यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं इसीलिए स्टेम में फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को फ्यूचर की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है वुमेन इन स्टेम हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डालती हैं जो मोबाइल एप्स हम यूज़ करते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम हासिल करते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं उन्हें कई फीमेल्स ने डिज़ाइन किया है ये यूँ कहें कई फीमेल्स का भी अहम किरदार है जब ज़्यादा वुमेन टेक्नोलॉजी और साइंस में काम करेंगी तो प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी तमाम ज़रूरियात को बेहतर तरीके से समझेंगी इस टॉपिक का एक और अहम पहलू इकोनॉमिक ग्रोथ भी है रिसर्च ये बताती है कि जब वर्कफोर्स में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव होती हैं वुमेन का स्टेम सेक्टर में आना नए जॉब्स क्रिएट करता है इकोनॉमीज को मजबूत बनाता है और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है आज कई मुल्क और ऑर्गेनाइजेशंस गर्ल्स को स्टेम एजुकेशन की तरफ एनकरेज कर रही हैं स्कूल और यूनिवर्सिटीज स्पेशल प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाएं ये सिर्फ इक्वालिटी का मसला नहीं है दोस्तों ये प्रोग्रेस और इनोवेशन का भी मसला है फ्यूचर में एआई स्पेस टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी ग्रीन एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज और तेजी से आगे बढ़ेंगी अगर वुमेन इन फील्ड्स में ज्यादा नुमाया किरदार अदा करती हैं तो दुनिया को बेहतर सॉल्यूशन और ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल होगा इस तरह वो सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाएंगी बल्कि पूरी सोसाइटी की तरक्की में एक अहम हिस्सा डालेंगी वुमेन एंड सिर्फ करियर्स का टॉपिक नहीं है ये फ्यूचर की लीडरशिप इनोवेशन और तरक्की का भी टॉपिक है जब लेडी साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का इजहार करती हैं तो नए इन्वेंशंस नए आइडियाज़ नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं मुस्तकबिल उन माशरों का होगा या उन लोगों का होगा जो टैलेंट को जेंडर की नज़र से नहीं बल्कि एबिलिटी कैपेबिलिटी और इनोवेशन की नज़र से देखेंगे अगर आज हम ज़्यादा गर्ल्स को स्टेम फील्ड में सपोर्ट करेंगे तो कल हम एक ज़्यादा एडवांस क्रिएटिव और प्रॉस्पेरस दुनिया देख सकेंगे वुमेन इन स्टेम वाकई मुस्तकबिल को शेप दी है और किरदार आने वाले दौर में और भी ज़्यादा अहम होगा तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वुमेन को स्टेम में जाना चाहिए तो अपनी बच्चियों को लड़कियों को लड़कों को भी लेकिन लड़कियों को भी ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए इनक्रेज करें मोटिवेट चलिए मैं तो आपसे अब यहाँ पर इजाज़त लूँगी इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल एक और नए टॉपिक पे आपकी हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी

0: in sustainability. Tune in to Kar Green Beat with A for Amita. Future ki awaaz aaj suno. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. शो का नाम है कतर ग्रीन बीट. तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? वेल, हमारे कतर ग्रीन बीट का ये दूसरा सीजन अब यूँ कहें तो अपने फाइनल मुकाम पर है और ये फाइनल एपिसोड है इस सीजन का. और उसके बाद जब दोबारा हम कतर ग्रीन बीट लेकर आएंगे तो और भी खास बातों को कंटिन्यू करेंगे. वेल, पिछले कुछ हफ्तों में हमने एक लंबी जर्नी तय की थी. हम अल थकीरा के उन गहराइयों में गए जहां मैनग्रूव सांस लेते हैं और वहां से निकलकर हमने हमारे स्टेडियम्स के हाईटेक कूलिंग सिस्टम्स को भी देखा. हमने इंजीनियरिंग के बड़े बड़े अजूबे देखे और रेगिस्तान के उस पुराने, वो कहते हैं ना, हिकमत विजडम को भी समझा जो इस मिट्टी को सदियों से जिंदा रखती है. मगर आज इस ऊंचाई से जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात साफ है, सस्टेनेबिलिटी कोई आखिरी मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है. ये तो एक होराइजन है और एक ऐसा खूबसूरत इत्तेफाक है जो हमें हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है कि नहीं? आज हम उस ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं जिसे पूरी दुनिया बड़े गौर से देख रही है, द कतर नेशनल विजन 2030. लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये विजन जो है सिर्फ उन ऊंची इमारतें या चमकते स्काईस्क्रेपर्स या सोलर पैनल्स के बारे में है. अब ये सब हम जानते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है, पर सच तो ये है कि इस विजन की असली जो रूह है, इसका सबसे मजबूत पिलर जो है वो है हमारा ह्यूमन पिलर. ये उन बच्चों के बारे में है जो आज एस्पायर पार्क में खेल रहे हैं. ये उस विरासत यानी लेगेसी के बारे में है जो हम उनके लिए छोड़कर जाएंगे. तो बस आज कुछ ऐसी ही कमाल की बातें हम अपने शो कतर ग्रीन बीट पर करने वाले हैं. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हम साथ ऑन एफएम 107 पर. दिल से देसी.
2: हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट.
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन. एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ. और चलिए, अब वक्त है हमारे सबसे एक्साइटिंग सेगमेंट का जिसे हम कहते हैं द ग्रीन वायर. आज हम स्कोरबोर्ड पर एक गहरी नजर डालेंगे क्योंकि पिछले कुछ साल में हमारे इस प्यारे से कतर ने जो करिश्मे कर दिखाए हैं ना, वो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है. अक्सर हम हेडलाइंस पर पढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी या ग्रीन एनर्जी, पर ये क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये लफ्ज़ हमारी ज़मीन पर कैसे उतर रहे हैं, कैसे ये काम कर रहे हैं? आज हम सिर्फ डेटा की बात नहीं करेंगे, आज हम उस जज्बे की बात करेंगे जो कतर को एक ग्लोबल लीडर बना रहा है. सो आर यू रेडी फॉर दैट? इफ़ यू रेडी देन आगे हमारी बातचीत करने में हमें बड़ा मज़ा आने वाला है. तो सबसे पहले करते हैं उस पावर की, उस शक्ति की, उस एनर्जी की जो हमारे सर पर हर रोज चमकती है. दैट इज सन या सूरज. तो जनाब, इसी साल हमने अलखरसा सोलर पीवी पावर प्लांट का इनॉग्रेशन देखा. सोचिए, कई स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए लाखों सोलर पैनल्स. ये सिर्फ कांच और सिलिकॉन के टुकड़े नहीं हैं, ये कतर की एनर्जी का नया चेहरा है. ये रीजन का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो तकरीबन 800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करता है. इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि हम हर साल 26 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने रोक रहे हैं. जब हम सूरज की गर्मी से परेशान होते हैं, वही सूरज हमारे घरों को रोशन करने की ताकत बनते जा रहा है. ये है टेक्नोलॉजी और कुदरत का सही बैलेंस या सही मेल. और जनाब, वो दिन हम कैसे भूल सकते हैं जब पूरी दुनिया हमारे स्टेडियम्स में बैठी थी. यस, ये तो एक हिस्ट्री की तारीख में एक बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख हो चुकी है, फीफा वर्ल्ड कप 2022. इसने सिर्फ फुटबॉल के रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि रीसाइक्लिंग का एक ऐसा नया, वो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड दिया कि दुनिया देखती रह गई. कतर ने जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था कि एक कार्बन न्यूट्रल इवेंट का एक बड़े पैमाने में इसे होस्ट किया जाएगा, बस वो हमने कर दिखाया. स्टेडियम से निकलने वाला कचरा लैंडफिल में नहीं गया बल्कि

0: उसे रिसाइकल करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या एनर्जी बदला गया। हर स्टेडियम की अपनी एक कहानी थी, जैसे स्टेडियम 974 जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो नए मकसद के लिए रिसाइकल हो रहा है। ये हमारा कमिटमेंट था पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन सफर यही नहीं खत्म हुआ। अगर आप आज कतर की सड़कों पर निकलें तो आपको एक बदलाव भी दिखेगा। हमारा ग्रीन बेल्ट हर दिन फैल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी की प्लांट मिलियन ट्रीज इनिशिएटिव के तहत रेगिस्तान की रेत अब हरियाली में बदल रही है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये पेड़ हमारी मिट्टी में जान फूंक रहे हैं, हवा को ठंडा कर रहे हैं और हमारी बायोडाइवर्सिटी को बना दे रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपनी एनवायरमेंटल स्ट्रेटजी 2021-2026 लॉन्च की है। टारगेट बड़ा है, 2030 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को 25% तक कम करना। ये कोई आम बात नहीं है। ये रोड मैप हम बताता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे हम हर सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को एक लाजमी हिस्सा बना सकते हैं। तो जनाब, इन सब बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच सबसे प्यारी बात पता है क्या है? वो ये है कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम इसे जी भी रहे हैं। हम सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं हैं, हम प्लेयर्स भी हैं। जब आप सुबह अपनी कार के बजाय दोहा मेट्रो पर सफ़र करते हैं या दोहा मेट्रो को चुनते हैं, या जब आप मुशर्रफ के किसी कैफ़े में वो जो प्लास्टिक स्ट्रॉ मिलता है ना उसको ना कह देते हैं, या जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पानी की एक बूंद कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, तो आप बन जाते हैं वो ग्रीन वायर जो हमारे नेशनल विजन 2030 को हमारी हकीकत से जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं आज के प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट पर।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
0: कर ग्रीन बीट। अक्सर जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी मशीन्स, फ्यूचरिस्टिक रोड्स या ग्लास से बनी बिल्डिंगें, ये इन सब की ना तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। हम सोचते हैं कि शायद कोई जादुई टेक्नोलॉजी आएगी और हमारी धरती को बिल्कुल बदल लेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा फ्यूचर हमारे पास्ट में छुपा है? इस सीज़न का हमारा आखिरी और सबसे खास प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट जाता है एक ऐसी संस्था को जो कतर की मिट्टी से उपजी है, अर्थना। यस, कतर फाउंडेशन ने अर्थना को लॉन्च किया तो मकसद सिर्फ एक नया ऑफिस बनाना नहीं था, मकसद था एक ब्रिज बनाना, एक ऐसा पुल जो ग्लोबल साइंस और हमारी लोकल लेगेसी को आपस में जोड़ सके। अर्थना हमारा वो मिरर है जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और हमें कहाँ जाना है। ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की बातें नहीं है, ये हमारी रूह को हमारी ज़मीन से दोबारा जुड़ने का काम करता है। अर्थना की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो है उनका नज़रिया। वो कहते हैं लेट्स बैक टू मूव फॉरवर्ड। सोचिए, सदियों पहले जब ना बिजली थी, ना एसी था और ना ही मॉडर्न इंजीनियरिंग थी, तब हमारे जो पुरखे थे या एंसेस्टर्स थे, उन्होंने इस तपते रेगिस्तान में कैसे गुजारा किया होगा? वो विजडम क्या थी? हमारे बेदुइन एंसेस्टर्स कुदरत के साथी थे। वो जानते थे कि कब हवा का रुख बदलेगा, कब बारिश होगी और कैसे पानी की एक एक बूंद को, यानी इस अमानत को हम समझ सकते हैं और इसे बचा सकते हैं। अर्थना इसी पुरानी समझ को आज की मॉडर्न साइंस के साथ मिला रहा है। वो स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पुराने आर्किटेक्चर को कैसे बर्जील यानी विंड टावर्स गर्मी में ठंडक दे सकते हैं। वो देख रहे हैं कि डेजर्ट प्लांट्स कैसे कम पानी में भी जिंदा रहें। अर्थना हमें बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी कोई नया वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारे खून में है। हमने हमेशा से रेगिस्तान के साथ दोस्ती की है, उसका मुकाबला नहीं किया। बात करते हैं एक ऐसे लव्स की जो अर्थना की फिलॉसफी की जान है, और वो है बैलेंस। तो जनाब, कुदरत ने इस दुनिया को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर बनाया है। जितना हम लेते हैं उतना ही हमें लौटाना भी पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ डेकेड्स में अगर हम देखें तो इंसान ने इस बैलेंस को ना बिगाड़ दिया है। हमने धरती से बस लिया ही है, लौटाया कुछ भी नहीं। अर्थना हमें वापस देना, ये बैलेंस सही तरीके से करना सिखाता है। वो हमें सिखाते हैं

0: है कि तरक्की या प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं है कि कुदरत को पीछे छोड़ दे। असली तरक्की वो है जहाँ स्क्रेपर्स और मैनग्रोव्स के एक साथ सांस लेने में हम मदद कर सकें। अर्थना के प्रोग्राम्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने कंजम्पशन को कम करें और अपने रिसोर्सेज का बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, पूरी इंसानियत खतरे में पड़ जाती है। अर्थना सिर्फ रिसर्च पेपर्स और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड नहीं है, इनका असली रंग दिखता है अर्थना प्राइज में। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि अर्थना हमारे शहर के उन अनसंग हीरो पहचान रहा है जो खामोशी से बदलाव लाए हैं। वो स्कूल के टीचर्स जो बच्चों को स्कूल के गार्डन में कंपोस्टिंग सिखाते हैं, वो छोटा SME या स्टार्टअप जो दुहा की धूप से बिजली बनाने के लिए नए तरीके ढूंढ रहा है, या वो स्टूडेंट जो प्लास्टिक वेस्ट से आर्ट बना रहे हैं। अर्थना प्राइज ये साबित करता है कि सस्टेनेबिलिटी किसी एक मिनिस्ट्री का नाम नहीं है, ये हमारी शेयर्ड लेगेसी है। मैंने देखा है कि कैसे मुशायरे में या एजुकेशन सिटी में छोटे बच्चे अर्थना के वर्कशॉप में मिट्टी से जुड़ते हैं। जब एक बच्चा अपने हाथ से एक पौधा लगाता है और उसे बड़ा होते हुए देखता है, तो वो सिर्फ एक पेड़ नहीं लगा रहा, वो अपने अंदर हिफाजत का एक एहसास जगा रहा है। अर्थना इस कम्युनिटी स्पिरिट को जिंदा कर रहा है।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: अब आते हैं हमारे नेशनल विजन 2030 पर। यस, विजन 2030 के चार पिलर्स हैं, उनमें सबसे अहम है ह्यूमन पिलर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमिता 2030 में कतर कैसा दिखेगा। मेरा जवाब होता है 2030 सिर्फ टेक्नोलॉजी का साल नहीं है, वो हमारी अमाना का इम्तिहान है। यस, अमाना यानी ट्रस्ट। हमें ये ज़मीन, ये समुंदर, ये रेगिस्तान हमारे बुजुर्गों से तोहफे में नहीं मिले, बल्कि हमारे बच्चों से उधार मिला है। इट इज़ अ ट्रस्ट वी मस्ट सेफ गार्ड। अर्थना हमें बताता है कि 2030 का ह्यूमन पिलर वो इंसान है जो कॉन्शियस है, वो जो जानता है कि उसके हर एक्शन का असर इस मिट्टी पर पड़ता है। अर्थना इज बिल्डिंग अ जनरेशन ऑफ एनवायरमेंटल गार्जियंस। हम सिर्फ एक शहर नहीं बना रहे जो 2030 में चमकेगा, हम एक ऐसी लेगेसी तैयार कर रहे हैं जो सदियों तक चलेंगी। अर्थना का प्रोजेक्ट, हर वर्कशॉप और हर रिसर्च इसी ह्यूमन पिलर को मजबूत करने के लिए है। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां ये सीजन खत्म हो रहा है। अक्सर शो के आखिर में मैं आपको एक ग्रीन टिप देती हूँ, कभी पानी बचाने की, कभी प्लास्टिक कम करने की, लेकिन आज क्योंकि ये हमारा फिनाले है, आज हमारा आखिरी शो है इस सीजन का, मैं सिर्फ एक एडवाइस आपको देना चाहूँगी। आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि हमारा ग्रीन बीट मैनिफेस्टो, हाँ वो क्या है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि एक ऐसा ऐलान, एक ऐसा वादा जो हम अपने आप से करते हैं। ये तीन ऐसी बातें, ये कुछ ऐसी बातें जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग में महफूज कर लें, ताकि जब तक हम अगले सीजन में ना मिलें, आप कदर ग्रीन बीट के इस बीट को जिंदा रखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो बस जिंदगी जीने का एक नया और बेहतर तरीका है। हमारा पहला उसूल क्या है? पहला उसूल है द वन लेस रूल। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ये क्या है, तो हमारे कतर में लाखों लोग हैं, अगर मैंने एक प्लास्टिक बैग ले लिया तो क्या फर्क पड़ेगा। यही वो सोच है जिसे हमें बदलना है। सोचिए, अगर कतर का हर रेजिडेंट सिर्फ एक चीज कम करने का फैसला कर ले, तो उसका असर कितना बड़ा होगा। अगर एक महीने के लिए अपने आप से एक वादा कीजिए, सिर्फ एक चीज कम, शायद वो एक प्लास्टिक बैग हो सकता है जो आप सुपरमार्केट में मना कर देंगे, शायद वो एक मिनट हो जो आप अपने शहर में कम बिताएंगे, शायद वो एक अननेसेसरी कार ट्रिप हो जिसके बजाय आप वॉक करेंगे या मेट्रो लेंगे। एक मिनट पानी बचाने का मतलब है तकरीबन 10 से 12 लीटर पानी। अगर 30 लाख लोग एक मिनट बचाएंगे, तो सोचिए कितना बड़ा समंदर हम बचा रहे हैं। याद रखिए, समुंदर में उठने वाली हर बड़ी लहर एक छोटी सी हलचल से शुरू होती है। स्मॉल रिपल्स क्रिएट बिग वेव्स। ये वन लेस रूल आपकी लाइफ को आसान बनाएगा और हमारी मिट्टी को सुकून देगा, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। उसके बाद आए जो मुझे पर्सनली

0: भी बहुत पसंद है कि बिकम अ सिटीजन साइंटिस्ट. आपको साइंटिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी लैब या व्हाइट कोट की जरूरत नहीं है. आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो दुनिया का सबसे बड़ा सिक टूल बन सकता है. कैसे? हम कतर में रहते हैं, ठीक है, जहां लोग सोचते हैं कि सिर्फ रेत है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी बायोडायवर्सिटी लाजवाब है. एक आई नेचुरलिस्ट या इसके जैसे कई सारे एप्स हैं जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं. तो जब आप वीकेंड पर जकरीद जाते हैं या फुवारित के बीच पर होते हैं या अपने गार्डन में बैठे होते हैं, तो जरा रुकिए. वहाँ कोई अनजान सा परिंदा दिखे या रेगिस्तान का कोई छोटा सा फूल, उसकी एक फोटो लीजिए और ऐप पर अपलोड कीजिए. आपको शायद लगेगा कि ये सिर्फ एक फोटो है, लेकिन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है. आपकी एक फोटो से उन्हें पता चलता है कि हमारी वाइल्ड लाइफ कहाँ पनप रही है, कौन से पौधे खत्म हो रहे हैं और किन्हें हमें हिफाजत देनी है. समझ रहे हैं आप? आप कतर के डिजिटल गार्जियन बन सकते हैं, हमारी मिट्टी की कहानी लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं, साइंस को लैब से निकाल कर अपने फोन में जगह दे सकते हैं. हमारा तीसरा और सबसे अहम उसूल, कीप द कॉन्वर्सेशन अलाइव. सस्टेनेबिलिटी खामोशी में दम तोड़ देती है. आप समझते हैं, अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो ये सिर्फ एक किताबी लफ्ज बनकर रह जाएगी. इसे अपनी मजलिस का हिस्सा, अपने दस्तखान पर इसका जिक्र कीजिए. सबसे जरूरी है हमारे बच्चे, उन्हें बताइए कि ये रेगिस्तान सिर्फ धूल और रेत नहीं है, ये एक नायाब खजाना है. उन्हें सिखाइए कि अट्रैक्शन सिर्फ मॉल की लाइट्स में नहीं, बल्कि एक खिलते हुए सिद्रा के पेड़ में भी है. जब हम बात करते हैं तो हम अवेयरनेस पैदा करते हैं, और जब अवेयरनेस पैदा होती है तो हिफाजत, प्रोटेक्शन अपने आप शुरू हो जाती है. तो जनाब, हमने आज क्या बचाया? अपने पड़ोसी को बताएं कि रीसाइकलिंग क्यों जरूरी है. जब हम एक साथ बोलेंगे ना, तो हमारी आवाज 2030 के विजन को हकीकत में बदल देगी. तो बिल्कुल ना झिझके, अपनी जमीन पर अपना हक जमाएं और सही बात सब तक पहुंचाएं. इसी के साथ मैं कहूंगी कि आज का हमारा ग्रैंड फिनाले, आज हमारा कतर ग्रीन बीट ये आखिरी एपिसोड था, जिससे अब मैं रुखसती लेना चाहूंगी. अब दुआ करते हैं कि अगले एपिसोड में आपकी फिर मुलाकात हो नए नवेले टॉपिक्स के साथ. आपको हमारा कतर ग्रीन बीट कैसा लगा, आप बेशक हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने मैसेजेस के साथ, और हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं. और अभी इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत. अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, और अपने कतर को हरा भरा बनाने में, सस्टेनेबल बनाने में जो भी आपसे कॉन्ट्रीब्यूशन हो सके वो जरूर दीजिएगा. Stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
2: कतर ग्रीन बीट.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर. दिल से देसी.

0: FM 107. Time check.
1: टाइम कर लो चेक हबीबी, 4:01. हेलो हबीबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे

0: वाले दोस्तों, आप सभी का 4:01 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये शो द रिक्वेस्ट शो। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। जी भाईजान, क्या है हाल चाल? 4 से लेकर 5 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है आज ट्यूसडे, और तकरीबन 6 दिन और बचे हैं शो के। अगर देखे जाए तो अब 2 ये ले लो, 3 और, 3 भी नहीं है भाई, संडे मंडे बचा है। तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फिर संडे और मंडे, ये 5 दिन और आपका साथ रहने वाला है। फिर उसके शाम को 6 से 7 मिलेंगे और ये मुलाकात फिर थोड़ी लंबी होगी, वहां चीज थोड़ी सी ज्यादा होगी बगैर गानों के। लेकिन ये जो 5 दिन है, अपन यानी कि हम और आप मिलके भयंकर एंजॉय करेंगे। और लेकिन बाकी आगे आने वाले दिनों के बारे में बात करें, उससे आज के बारे में बात करते कि आज क्या खास है। आज क्या आपकी प्लेलिस्ट से गाने प्ले होंगे, या फिर आप अपनी मर्जी से गाने प्ले करेंगे फजील साहब, या फिर दूसरे के जो प्लेलिस्ट है वहां से गाने आने वाले? वेल, ये आप डिसाइड करिए जब मैं थीम बताऊंगा। तो आज की थीम इंटरेस्टिंग है और ये है आमिर खान की थीम, आमिर खान की हिट मूवी के गाने। क्योंकि जब मैं आमिर खान कहूंगा तो आप आमिर के फैन हैं, आप कह देंगे कि हाँ फला गाना प्ले कर दो, फला गाना प्ले कर दो। फिर एक बंदा आएगा कहेगा थग्स ऑफ हिंदुस्तान प्ले कर दो, तो वो तो नहीं हो पाएगा। बहुत ही बेकार मूवी थी भाई, उसके तो गाने भी मेरे को ऐसा दिल पे चुभेंगे तो मेरे को बहुत बुरा लगा था। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो मूवी लोगों को पसंद नहीं आती, जो हिट नहीं होती है, वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। ये क्यों होता है मेरे को आइडिया नहीं है भाई। मुझे गुंडे मूवी और रणवीर की अच्छी लगी थी, मुझे थग्स ऑफ हिंदुस्तान अच्छी लगी। तो ये मेरे साथ होता है भाई कि जो मूवी एकदम नहीं चली है, बहुत कम चली हो, वो मुझे मूवी जब भी मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी है। बाकी क्रिटिक्स का कहना, लोगों का कहना, अपनी अपनी पसंद है और अपनी अपनी तरह से लोग मूवीज भी पसंद करते हैं। लेकिन थग्स ऑफ हिंदुस्तान तो वैसे बहुत ही कोई खास नहीं रही थी और बॉक्स ऑफिस में उसने कमाया भी नहीं, तो उसके गाने भी कोई ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फेमस वाले नहीं है। एक गाना मुझे याद है जो थोड़ा बहुत फेमस हुआ भी था, तो वो वाली बात है। लेकिन फिर भी आज आमिर खान जो सुपरस्टार हैं, उनके गाने जो है वो प्ले किए जाएंगे, उनके फिल्म के गाने, उनके हिट मूवी के गाने जो हैं वो प्ले किए जाएंगे। एक से बढ़कर एक हिट मूवी दी है आमिर खान ने, और आज जो है वो गाने प्ले होंगे जो आमिर खान ने। अब वो वाला जो एक है ना बहुत पुराना गाना, वो पुराने गाने जिसमें दर्द और परेशानी है, वो प्लीज़ मत कहना। लेकिन दंगल हो, चाहे 3 इडियट हो, PK हो, धूम 3 के बहुत अच्छे गाने हैं। हाँ, लगान का वो रोने वाला मत कहना, बाकी डिकचिक डिकचिक अपन प्लीज़ ज़रूर कहेंगे। तारे ज़मीन पर, फिर उसके बाद दिल चाहता है के गाने अगर आपने नहीं रिक्वेस्ट किए तो मैं ये समझूंगा कि आपकी प्लेलिस्ट हल्की है। चलो देखते हैं कि प्लेलिस्ट हल्की, किसकी प्लेलिस्ट भारी है FM 107 के इस खास शो में जिसका नाम है।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज के साथ शुरू करते हैं, कितने लोगों के मैसेज है वो आ गए हैं। और सबसे पहले ये मैसेज आया है सलाम का, इब्राहिम साहब का, वालेकुम अस्सलाम। फिर उसके बाद अगर एक गाना है, अगर ये गाना ना चले जब भी आमिर खान की बात हो तो आमिर खान अधूरे हैं। फिर गाना है चांद से फारिश, और ये रिक्वेस्ट किया है मुबीन भाई ने, और बिल्कुल वाजिब, लाजवाब, हैरत अंगेज रिक्वेस्ट है। फजल भाई क्या बोलते हैं, आज का क्या सीन है? अपन दोनों ही मस्त मौला है, बजाओ फिर आमिर खान का फना मूवी का सॉन्ग, सुभान अल्लाह। ओके, मेरे को अगर देखना पड़ेगा, कई बार होता है ना लाइनों के वजह से हम गाना प्ले नहीं कर सकते। रमेश कहते हैं पहला नशा पहला खुमार कयामत से कयामत तक। ओके, तो हमारे पास कम से कम 3 गाने तो आ गए, बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। दिलबर भाई कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बाहर बन गए, थोड़ा नए जमाने का अगर मुझे मिल जाएगा तो वो मैं प्ले करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, बाजी मूवी का ट्रैक। यूसुफ भाई कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, चांद सिफारिश कहा है फना मूवी का ट्रैक अलीम साहब ने, और अब हमारे पास मुबीन के बाद अलीम भाई भी हो गए जो ये गाना सुनना चाहते हैं। भाई धूम मूवी से एहसान अली बिल्कुल मैं प्ले करूंगा, लेकिन सबसे पहले बाकी लोगों के मैसेज खुल जाएंगे ना तो फिर गायब हो जाते हैं वो लोग। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं चांद सिफारिश से, और दो है जो गाना रिक्वेस्ट करके सुनना चाह रहे हैं। ये शान और कैलाश खेर का गाना है फना मूवी का ट्रैक, एंड दिस सॉन्ग इज चांद सिफारिश। इसकी म्यूजिक की शुरुआत ही

साधन सरगम और रोदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक सुना आपने, पहला नशा एफएम 107 पे फजील के साथ है। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या है हाल चाल। और उम्मीद है कि इन गानों को सुनने के बाद हाल चाल तो लाजवाब हो गया होगा। वेल, एक गलती बस इतनी सी हुई कि मैं ये समझ रहा था चांद सिफारिश और वो वाला गाना जो है वो अलग है, ऑल दो ये दोनों गाने जो हैं वो बिल्कुल सेम ही है, शुरुआत वैसे ही होती है। बाकी अब जो तीन गाने हैं ना, वो तीन गाने भी बड़े लबा रहे हैं। सबसे पहला जो गाना आ रहा है इस रिक्वेस्ट शो में, वो बहुत ही उम्दा तरीके से कह लें या उम्दा सोच के साथ धूम 3 का ट्रैक आसिफ आलम ने रिक्वेस्ट किया है, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड मलंग। फिर उसके बाद एक और भाई हैं, इनका नाम एहसान अली है, इन्होंने कहा था भाई धूम मूवी से, तो धूम मूवी का ये ट्रैक मलंग मैं गाना प्ले कर रहा हूँ। सबसे पहला गाना आ रहा है, लोगों के मैसेज में सलाम लिखा है श्याम भाई की व्हाट्सएप पे, ओके सलाम वालेकुम, अस्सलाम मेरे भाई। फिर उसके बाद यूसुफ भाई की जो रिक्वेस्ट है वो आ रही है आखिर में, और ये है धीरे धीरे आप मेरे दिल में मेहमान हो गए, बाजी मूवी का ये ट्रैक है, साधना सरगम और उदित नारायण ने इसे गाया है, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए। तीसरे नंबर पे, लेकिन पहले नंबर पे मलंग है, लेकिन उसके बीच सगना है। ये जो गाना है ये भी गजब का है, लाजवाब है, और ये गाना रिक्वेस्ट किया है मुमताज ने, एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड आई होम, मेरी जिंदगी में, उदित नारायण की आवाज। और ये ट्रैक बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आने वाला है, क्योंकि कहीं ना लोग इस गाने से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, किसी भी उम्र के हों, वो बसों में ट्रकों में इस गाने को सुना होगा, है ना। ऐसा होता था कि कई बार आप अपने जब गांव जाते हैं तो गांव में आपको रात में या फिर दोपहर बहुत ज़्यादा जब धूप हुआ करती थी तो आपको सिर्फ दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते थे, जैसे कि ट्रक होता था या बस होती, इन दोनों में ही जगह मिलती थी और आप जा पाते थे, है ना, टेम्पो वगैरह रिक्शा वगैरह नहीं मिला करती थी। तो जब भी आप ट्रक में या टेम्पो में बैठते थे तो ये ही गाना चल रहा होता था, आयुर्वेद तुम बाहर बन के। तो गाँव के उस सुदूर इलाकों में जाना, घर पहुंचना, गर्मी के दिन है, है ना, पतझड़ का मौसम है, ट्रक में या फिर उस बस में ही जगह मिलती थी, और इन दोनों जगह पे ये गाने बहुत प्ले हुआ करते थे। अब तो खैर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अलग अलग हो गया, आप घर पे बुला लेते हैं, आप फ़ोन कर देते हैं अपने घर वालों को, पहले तो मोबाइल वगैरह भी नहीं थे ना, तो आप कैसे पहुँचे, घर भी बहुत दूर है, कैसे जाए, मेन रोड से भी घर बहुत दूर है। तो मुझे सुल्तानपुर की ये बातें याद आती हैं, जब सुल्तानपुर में जाया करता था तो अक्सर ऐसा होता था, सुल्तानपुर एक जगह है जहाँ से कहीं दूर आपको तेरी एक जगह है, वहाँ से फिर और अंदर जाना होता था, तो अपन लोग ट्रक में या बस में ही जगह मिलती थी तब जाया करते थे। तो आए हो मेरी जिंदगी में लगता है दूसरे नंबर पर ये ट्रैक बहुत लोगों को पसंद आएगा। बाकी ये आमिर खान की मूवी का ट्रैक है फजील भाई, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ और ये सॉन्ग लगा दो, ठीक है, तो ये सॉन्ग आ रहा है। फिर ये जो गाना है ना आए हो मेरी जिंदगी में, ये सिर्फ मुमताज ने नहीं दिलबर अली ने भी रिक्वेस्ट किया है, तो ये तीन गाने बैक टू बैक आ रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे पहले सिद्धार्थ और शिल्पा राव की आवाज में धूम 3 का ट्रैक मलंग, ये भी दो लोगों की रिक्वेस्ट है, एक है अली और असल में जो रिक्वेस्ट है वो इस भाई की एकांग है अभी तो थे, हाँ मलंग जो है आसिफ आलम की रिक्वेस्ट पे। सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

पहले जाओं वो फिर जाने जहां हो गए, दिल खुश कर देने वाला गाना। और मुझे पूरा यकीन है कि ये गाना ऑब्वियसली लोगों को पसंद आया होगा। उसका एक खास रीजन है कि ये पुराने गाने बहुत करीब हैं, और फिर ये पुराने गाने हमें इसलिए ज्यादा नहीं याद है कि हमें अच्छे लगे थे, इसलिए कि बसों ट्रकों में सफर कर करके ये गाने जहन में रह गया भाई। लेकिन बहुत ही लाजवाब, उस दौर में तो ये हुआ करता था ना कि लोग कैसेट में भरवा लिया करते थे, एक ही कैसेट में 8-10 गाने, और फिर कैसेट पलट पलट के भाई सुना जाया करता था, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा मोबाइल नहीं था, ना ही पेन ड्राइव हुआ करती थी। अब तो इंटरनेट है, पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, कैसेट की जरूरत नहीं है, सीडी की जरूरत नहीं है। पहले तो लोग सीडी भी लिया करते थे, और इवन मुझे याद है सीडी भी कार में लगा करती थी, फिर उसके बाद कैसेट वगैरह भी काफ़ी यू नो चलन में रही। तो मुझे इसका याद है कि ये पुराने गाने बस और ट्रक में ऊपर की तरफ लोग जो है कैसेट वाला कोई पूरा सेट रखते थे, और फिर पलट पलट के वहाँ पर बजाया करते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे जो बस ड्राइवर रहते थे ना, उनको पसंद नहीं आ रहा होता था, तो गाड़ी चलाते हुए वो बटन कहाँ से भाई सामने नजर रहती थी, लेकिन बटन दबाते थे, उधर से कैसेट निकालते थे, पलटते थे, फिर पसंद नहीं आता था, फिर वो निकाल के रखते थे, फिर दूसरी कैसेट उठाते थे, और फिर उसी में अगर वो जो यू नो धागा होता था या जो भी कहते थे उसको, मुझे नहीं पता, रील जो होती थी, वो रील कानी उंगली से सही भी कर रहे होते थे यार। ये सारी चीज़ें जो है वो भाई बस चलाते हुए एक हाथ गियर पे, फिर एक्सेलरेशन भी ध्यान रखना है, कौन अगल बगल से निकल रहा है उसको भी बचाना है, ट्रक भी एकदम संभाल के चलानी है, पीछे सवारी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाई का गाना है वो पूरा लबालब सही चलता है। अपने अपने शौक है, बाकी तीन गाने भी हमारे पास तैयार है फिलहाल। और एहसान भाई, आपका गाना धूम से चल गया है, अब परदेसी परदेसी तो मत ही सुनो मेरा भाई। मुमताज़ भाई ने भी थैंक यू बोल दिया। ओके मेरा भाई। और एक ने कहा है भाई आपने यूपी के प्राइवेट बस की याद दिला दी, UPSRTC, मुझे याद है इसका पूरा फुल फॉर्म भी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश UPS का पता नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ये सब है। UPSRTC। फिर उसके बाद ये मैसेज है, चाह है तुमको, अब तो वक्त ख़त्म हो गया है, जिसने भी ये रिक्वेस्ट करी है, मलिक भाई ने रिक्वेस्ट किया है, मलिक भाई माजरत। आसिफ कमाल, दिल मूवी का सॉन्ग, ना जाने दिल को खो गया, अब तो देर हो गई, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुबशिर यार, हो गया बस, कितनी बार करोगे रिक्वेस्ट। खैर हमारे पास तीन गाने तैयार हैं, और सबसे पहला जो गाना आने वाला है वो है तेरे हवाले। वैसे तीन गानों में से दो गाने थोड़े पुराने हैं, लेकिन आपके दिल को जवान बनाने के लिए एकदम नए हैं। तो सबसे पहला गाना नहीं, सबसे आखिरी गाना इमरान खान की रिक्वेस्ट पे प्ले होगा, विच इज तेरे हवाले। फिर दूसरे नंबर पे गाना प्ले होगा तन्हाई मूवी का, दिल चाहता है मूवी का ट्रैक, सॉरी, और तन्हाई गाना है, ठीक है। बाकी फराज भाई ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, आई होप आप ठीक होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ, शो का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह वाले गाने से। चाहे तुम ना कहो, क्या सॉन्ग है, तन्हाई गाना आखिर में रिक्वेस्ट किया, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, सुन निगम का ट्रैक है। लेकिन सबसे पहला गाना वो रिक्वेस्ट किया है फैयाज भाई ने, और गाने का नाम है आँखों से तूने ये क्या कह दिया, कुमार और अलका की आवाज़ में, कुमार सानू और अलका की आवाज़ में। गाने को एंजॉय करते

सकते हैं। दूसरे नंबर पे तन्हाई आ रहा है फरहत भाई की रिक्वेस्ट पे और इमरान भाई की रिक्वेस्ट पे तेरे हवाले। तेरे हवाले थोड़े नए जमाने का ट्रैक है, ये है लाल सिंह चड्ढा, 2022 में ही मूवी आई थी, अरिजीत सिंह है इसमें। लेकिन सबसे पहला गाना आए हाय दिल के करीब

अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में ट्रैक आपने सुना, लाल सिंह चड्ढा मूवी का ट्रैक, FM 107 पे ब्यूटीफुल ट्रैक तेरे हवाले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 के स्टूडियो की घड़ी में 4:50 और ये वो वक्त है जब हम खेलते हैं पहचान कौन, जहां पर आपको गाने को पहचानना होता है। बड़ा सिंपल सा ये गेम है और मज़ा इसलिए भी आता है कि कहीं ना कहीं लोग फंस भी जाते हैं, गाने को पहचान नहीं पाते हैं, और आज मुझे लगता है ऐसे ही कुछ होने वाला है क्योंकि 3 गाने मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, ये गाने यहाँ पर तैयार हैं। इनमें से एक गाना तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से, और 2 गाने ये भी बेहद आसान है, लेकिन क्योंकि बीच से लिरिक्स जहां से मैंने काटी है, मैंने तैयार की है, वो थोड़ा सा टफ जरूर होने वाला है, क्योंकि वो लिरिक्स मेरी भी सुनी हुई कोई खास है नहीं। मतलब ऐसा लगता है कि कानों पे ये नई आवाज पड़ रही है, लेकिन जब आप इसका हुक सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि अच्छा ये गाना असल में वो है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपने म्यूजिक उसके पीछे का पहचान लिया, हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए था लेकिन अगर आपने म्यूजिक पहचान लिया, पीछे की कॉम्पोजिशन पहचान ली, तो आप समझ जाएंगे ये गाने का नाम क्या है। तो नए लोगों को बता दें, गाना बीच से कहीं से प्ले किया जाएगा और आपको बताना है गाने का नाम या गाने का हुक आपको बताना है। नंबर है 666-22-107, यहां पर आइए, व्हाट्सएप पर बताइए। शुरू करते हैं, सबसे पहला जो गाना आ रहा है थोड़ा पुराना है लेकिन वेल नोन है। पहला गाना आपके लिए पहचान का ये रहा।

0: हाँ जी बताओ क्या लगता है, ये गाना आपने कहीं सुना है? म्यूजिक थोड़ा सा है और शुरुआत के जो लफ्ज हैं उसमें एकदम से पकड़ में आ जाता है कि ये गाना एक्चुअली में कौन सा है, या लफ्ज ना कह के आप जैसे ही लफ्ज से पहले हाँ जो हो रहा है ना उससे पता चल जाएगा।
1: हाँ
0: इसमें आपको काफी कुछ पता चल जाएगा, इसमें आपको मैसेज मिल जाएगा कि ये असल में

0: सा है। सलाम भाई और बहन, कैसे हो? ये क्या आसिफ भाई, वालेकुम सलाम। एक तो आसिफ नाम के तीन लोग हो गए हैं। आज अगर देखा जाए तो सबसे पहले रैंकिंग वाले फलक हैं, और ये फलक एसआर के नहीं है। फिर उसके बाद इमरान भाई ने सही जवाब दिया है, और फिर फरहाद भाई ने सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। यूसुफ भाई चौथे नंबर पे हैं, अगर चौथा नंबर होता या चौथा रैंक हम खेल रहे होते तो यूसुफ भाई चौथे नंबर पे होते, लेकिन सही जवाब है। फिर उसके बाद सलाम है और जवाब भी बिल्कुल सही लिखा है, गुलाम शरीफ इनका नाम है, बिल्कुल सही जवाब है। हुसैन भाई ने भी सही जवाब दिया है, हाय फजील सैयद हेयर। नहीं यार, ये गाना मैं नहीं मानूंगा, इवन अगर आप बीच का हुक बता रहे तो मैं नहीं मानूंगा, ये वो जवाब नहीं है। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है जीशान शरीफ का, बिल्कुल सही जवाब बताया है। ये है आसिफ के कैसी, हाँ इन्होंने बिल्कुल सही जवाब बताया है। एंड देन जीशान साहब, ये दूसरे वाले, इन्होंने सही जवाब है। फिर उसके बाद अरमान खान ने भी सही जवाब बताया, तो ये वाला मुझे लग रहा था थोड़ा टफ पड़ेगा आप लोगों के लिए, लेकिन आसान पड़ गया। मकसूद साहब ने गलत जवाब दिया है, शहजाद भाई ने सही जवाब दिया है, और भी लिखा है सैयद खादिम भाई ने सलाम किया, वालेकुम सलाम, बहुत देर बाद आए। दोस्तों साथियों सॉन्ग का नाम लिखा है, नहीं भाई गलत जवाब है आपका आसिफ भाई, मोहम्मद आसिफ, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा भाई, मैंने पहले मैसेज किया था लेकिन आपका आते आते देर हो गया होगा, इंटरनेट का मसला। वेल जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन हुसैन भाई का एक और है सलाम, वालेकुम सलाम, अदील भाई का मैसेज लेकिन सिर्फ सलाम ही है। चलो तो एक बार फिर से सुनो।
1: चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, ये हमरी आशाओं के।
0: सच बताएं तो मितवा मूवी का या मितवा गाने का ये जो वर्स है, ये जो लाइन है, मुझे असल में पता ही नहीं था। लगान मूवी का ये ट्रैक ओ मितवा।
1: ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है,
0: बस ये गाना है। और इसमें ये लाइन कब आई कब गई मेरे को सच में याद नहीं।
1: हाँ चले हम लिए आशा के दिए नैनन में, दिए हमरी आशाओं के कभी बुझ न।
0: लेकिन आप सबने बिल्कुल सही जवाब बताया, एक दो लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो जवाब है

0: हाँ जी, गाने का नाम बताना है 666-22107 पे। क्या ये गाना आसान है या टफ है आपके लिए? लेकिन अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे इमरान भाई आ गए हैं। ऑल्दो सबसे पहले जो जवाब आया है वो फलक एसआरके का आया है, लेकिन एक ही जवाब आया है, इसलिए ये तो रैंकिंग में भी शामिल भी नहीं है, क्योंकि दो जवाब होने चाहिए एटलीस्ट। तो फलक एसआरके ने सबसे पहले सही जवाब दिया है, फिर फरहत भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और एक्चुअली में फरहत भाई सेकंड नंबर पे आ गए हैं इमरान भाई के बाद। अरे वाह, तो पहला इमरान भाई, फरहत दूसरे नंबर पे, आसिफ के केसी ने दोनों जवाब बताए तो तीसरे नंबर पे आ गए, और जो पहले फलक सिंगल वाले फलक वो चौथे नंबर पे आ गए, लेकिन चौथा नंबर है नहीं। फिर उसके बाद गुलाम शरीफ ने सही जवाब दिया है, इन सब ने सही जवाब दिया है। एक मिनट, एक करेक्शन होने का, आसिफ के केसी तीसरे नंबर पे नहीं है, फलक है तीसरे नंबर पे। तो ऐसा कुछ है कि इमरान, फरहत और फलक, सिंगल वाले फलक। फिर उसके बाद ये मैसेज और है, किसका नहीं समझ में आ रहा है। दिल भाई ने इमोजी भेज दिया कि यार ये कौन सा गाना पता नहीं। जहांगीर ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, कहाँ थे अभी तक? पहली लाइन याद नहीं आ रही है, गजनी का ट्रैक है, बिल्कुल सही बताया, गजनी का ट्रैक है। सैयद भाई ने बिल्कुल सही बताया है, और फिर मैंने यार ना मिले, ये गलत जवाब है, क्या हो गया यार, गलत जवाब कैसे दे रहे हैं मोहम्मद आसिफ भाई आज। फिर उसके बाद इब्तिसाम इलाही की तरफ से सलाम, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? फिर उसके बाद एक और मैसेज है, किसका है, सलाम है, ओके। तो गाने का नाम बिल्कुल मोस्टली लोगों ने सही बताया है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल जितने जवाब आए उसमें से ये सिर्फ 80-85% लोगों ने सही जवाब बताया। गाने का नाम है
1: बहका,
0: बहका,
1: वो बहकी हवा से आए, एक नजर में सब मंजिल
0: पाए। अगर आपने ये दो गाने पहचान लिए तो तीसरा गाना तो हवाई तरफ कहते हैं भज।

भज्जर बहुत ज्यादा भज्जर आसान है यार अगर आप ये गाना ही नहीं बता पाए तो मैं मान जाऊंगा और समझा कि आप गाने के शौकीन है ही नहीं गाने से कोई मतलब ही नहीं मैं ये मान जाऊंगा ये तो भयंकर आसान है भाई बताओ गाने का नाम क्या है ये सॉन्ग सुना दो अरे रुक जाओ मेरा भाई अब तो सुनने का मसला खत्म हो गया अब अभी मिलेगा आपको फिलहाल ये एक और मैसेज है भाई ये गाना सुना दीजिए जहांगीर भाई बहुत लेट हो गया आप थोड़ा टाइम पे आए फरहत भाई ने पहली रैंकिंग हासिल कर ली है आज की दूसरे नंबर पर यूसुफ भाई हैं कि नहीं है क्योंकि दूसरे नंबर पर आई मीन इस वक्त दूसरे नंबर पे आने के लिए तीनों सही जवाब होने चाहिए लेकिन दूसरा जो गाना है वो पहचान नहीं पाया था यूसुफ भाई लेकिन गाना अभी सही बताया आखिरी वाला हुसैन भाई ने कहा है बिल्कुल सही जवाब कहा है बहुत ही उम्दा फिर इमरान खान दूसरे नंबर पे आ गए हैं बहुत ही उम्दा किधर से लेके आते हो ये सॉन्ग यार ये तो बहुत ही आसान है मेरा भाई फिर उसके बाद तीसरा रैंक वाला आदमी भी हमें मिल गया आसिफ के केसी बिल्कुल करेक्ट जवाब तो अगर देखा जाए पहले नंबर पे हमारे पास आ गए हैं इमरान दूसरे नंबर पे आसिफ केकेसी तीसरे नंबर पे कौन है ओके ये तो सब कुछ चेक होता हुआ दिख रहा है लेकिन मुझे लगा नंबर पे सैयद आ जाएंगे बट पहला जो जवाब था वो उनका गलत था फिर उसके बाद जहांगीर ने सही गाना पहचाना है तीसरे नंबर की तलाश अभी भी जारी है और जो लाइन में था भी नहीं अरमान खान तीसरे नंबर पे आ गया क्या बात है मेरा भाई गाना बिल्कुल सही बताया है फरहत साहब थोड़ा लेट कर दिया आपने ना सॉरी फरहत नंबर वन पे थे फिर हानिकारक बापू ये किसने लिखा है फलक एस आर के ने तो अब मैं मैसेज नहीं लूंगा क्योंकि जवाब लोगों को पता है फिर शहजाद ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया है भाई सुन मितवा सॉन्ग प्ले कर दो यार अब वक्त नहीं है मेरा भाई सॉरी फिर उसके बाद ये मैसेज मुबीन भाई का सलाम करते हुए और एक और ये मैसेज है मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं बेबी को बेस पसंद है जी

बिल्कुल सही पहचाना है लोगों ने, और ये गाना था हानिकारक बापू, दंगल मूवी का ट्रैक है जिसे गाया था प्रीतम सरवर खान सरताज खान ने, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त ट्रैक था। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ, और कल फिर से हम खेलेंगे पहचान कौन और देखेंगे कि आपकी प्लेलिस्ट कितनी जिंदा है और आपके दिल और दिमाग में कितनी जिंदा है आपकी अपनी प्लेलिस्ट या आपके पकिए हुए गाने। तब तक इजाजत दीजिए दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: बात बात बात बात हो गए बेटा, 5:01 हो गए, आ गए बस, आ गए अभी कबीर अंकल आ जाएगी, बस आ गए, बस आ गए, रोते नहीं रोते नहीं, और ले ले ले ले, बात बात बात, और ये बच्चा पकड़िएगा 2 मिनट के लिए, मैं शो कर गया, रोना नहीं बेटा, अंकल अभी संभाल लेंगे, अंकल संभाल लेंगे, ये लो है, चॉकलेट नहीं देना इसको।

0: अरे सरदार को दुखी कौन करेगा भाई, खुशी रहा करे सरदार तो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। क्या हाल है आपके, बढ़िया चल रहा है सब मामले? आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज रजी लट काट दिया हमने, जाने की तरफ भी नहीं देंगे आपको। आपने सिर्फ एक चीज करनी है, म्यूजिक रोक दो भाई छोटे बेटे, म्यूजिक जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था, व्हाट्सएप करना बहुत जरूरी है, उसके बिना बात नहीं होती है, समझ रहे हैं आप? सो 666-22-107 नंबर है, अगर आप चाहते हैं मेरे 500 लीटर ज्यादा हो गया 500 ग्राम खून बढ़ाना चाहें तो आप इसमें योगदान दे सकते हैं। आपको सिर्फ करना है व्हाट्सएप पे मैसेज 666-22-107 पे, बस इतना ही है। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत भाई? एकदम बढ़िया भाई, कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ कबीर भाई। भाई आ गए भाई, आपने बुलाया और हम चले आए। कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मबरूक फॉर द न्यू बॉर्न मकसूद भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, आज आवाज़ भाई, मैं उन्हीं का इंटर्न था ना इसलिए उनके ऐसे लगेगी आपको आवाज़। जीशान भाई और वो मेरे पड़ोसी भी साथ में, लगता है ये स्टोरी भी बन सकती है। कौन सी स्टोरी भाई? ये वाली स्टोरी पता क्या है कि ये स्टोरी बहुत छोटी कहानी है, समझ रहे हैं आप? ये कहानी मैंने देखी थी जो आपने मुझे भेजी है जीशान भाई, बट वॉज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, सम टाइम अराउंड मैं देख लूँगा इसको। एक मैसेज, हम आए भी नहीं और शो चालू हो गया। भाई आपका टाइम आ गया मोहम्मद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये जैस भाई ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम, रजिस्ट्री ओपन करो, हाजिर लगाओ। ये जैस भाई हैं, इनसे साइन करा लेना ठीक है, पिछली बार के इनके 10 रियाल रहते, नहीं छोड़ना नहीं, खाता नहीं चलेगा, ले लो इनके साइन ले लो। खादर अब्दुलरादी भाई वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कह रहे हैं क्या, किसका योगदान कर देंगे, मैं समझा नहीं। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, इकबाल नेपाली साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत टाइम बाद। मुबशिर मुइन भाई लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मूड बहुत ख़राब था, अच्छी सी स्टोरी सुनाए, वाह जी वाह। जुल्कनैन साहब वालेकुम अस्सलाम, अरे आप आए। साजिद भाई वालेकुम अस्सलाम, मिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम। इनके बाद एक मैसेज, कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अशफाक भाई क्या हाल है भाई के? फलक भाई वालेकुम अस्सलाम, खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम। और सैयद हमजा भाई ने मैसेज किया, हेयर टू मार्क माई अर्लीस्ट प्रेजेंस। भाई आपका ना सबसे पहला मैसेज आज बाय द वे। आसिफ भाई बहुत सारा प्यार, वालेकुम अस्सलाम भाई को। एंड इनके बाद उस्मान और अगजई साहब, अब्दुल करीम साहब, और कोई बच तो नहीं गया भाई। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई आवाज़ कैसी हो रही है, बड़ी कर्कश आवाज़ हो रही थी आपकी कुछ दिनों पहले। और एक मैसेज है दिलबर भाई का, दिलबर और क्या कह रहे हैं आसिफ भाई, क्या कह रहे हैं? मेरा मैसेज नहीं पढ़े भाई, इनका मैसेज मत पढ़ना, आसिफ नाम है ठीक है, इग्नोर कर दें। आसिफ भाई कुछ कह रहे थे भी, कबीर भाई बोलते आ रहे ले अपन बाबा ले, क्या कल मैंने देखा तुमको मुबारक हो, मैंने किधर, मुझे किधर देखा, मैं किधर देखा भाई? एक तो लोग डराने का काम कर रहे हैं, कल मैंने आपको वहाँ देखा, मैं खुद ही पे शक करने लग जाता हूँ मुझे कहाँ देखा। जैस भाई कह रहे हैं रियाल चलेंगे, रुपी
1: इनसे रुपये लेना ठीक है,
0: रुपये दे देना, वो क्या इंडिया में काम आ जाते हैं छुट्टी पे। एक भाई कह रहे हैं जल्दी सुनाइए कहानी,
2: सांस तो लेन दो शमशाद भाई, भाई शमशाद
0: और कह रहे क्या बोल रहे ली पब्लिक, ये इस्माइल आफरीद भाई का मैसेज है। और फलक भाई का कह रहे हैं हाजिर लगवा दीजिए जी, हाजिर लग गई आपकी भाई साहब। और खादर अब्दुल्लादी भाई कह रहे हैं आई एम प्रेजेंट अवेटिंग एनर्जी टू लिसन टू योर स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई। और फरद भाई कह रहे हैं आज तो दिन बन गया, जुल्कन भाई जुल्कन पता क्या करते हैं, सलाम कह के भाग जाते हैं, वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, वो सलाम लिखते हैं फिर बोलते हैं तुम्हारी डैन अब तुम्हारी डन, चैन चैन खेलोगे चैन चैन। मोबीन भाई साहब वालेकुम अस्सलाम, अवेश भाई साहब वालेकुम अस्सलाम, अम्मा यासिर साहब वालेकुम अस्सलाम, और एक भाई जो है मुझे चाचू लिखते रहते हैं इनको भी, खान साहब वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज, यार मेरी गाड़ी का रेडियो ख़राब हो गया, आज मोबाइल पे चला रहा हूँ, अच्छा लगा आपको सुन के, बहुत टाइम बाद। साजिद भाई मुझे सुन के अच्छा लगना भी चाहिए, डॉक्टर भी यही कहते हैं। एक मैसेज है आबिद भाई का, वालेकुम अस्सलाम, आप देखो मेरी बात सुनो, आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ मुझे पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊं ये कहानी सुनने के लिए, बट लेट मी टेल यू, इस कहानी के पीछे मैंने बहुत पापड़ मिले

0: दो तीन वजह है. पहली वजह यह कि जिसकी बंदे की कहानी है उसका असली नाम बोलना नहीं, सो आई विल नॉट टेक हिज रियल नेम. वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है. बट आज की कहानी इज वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट स्टोरीज. जब आप सुनेंगे तो कुछ इसके हिस्से ऐसे हैं जो शायद आपने किसी मूवी में भी नहीं सुने या देखे होंगे. बट आज जो ये किस्सा जब आप सुनेंगे, ये ऐसा है जैसे गाड़ी की स्पीड नहीं होती, लोग कहते हैं 0 to 60 जाती है गाड़ी 3 सेकंड में, ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है. कहानी धीरे धीरे 1, 2, 3 पे सीधा 10 पहुंच जाएगी, तो एकदम से इसकी इंटेंसिटी जो है वो बड़ी हो जाएगी. एंड दैट इज हाउ इट इज. तो ये बहुत टफ कहानी मेरे लिए सुनाने के लिए, बिकॉज इट इज इट हैज सो मेनी लेयर्स. और ये हर कैटेगरी में आती है, आप इसको इमोशनल समझें, थ्रिलर समझें, मिस्ट्री समझें, हॉरर समझें. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है. कल वाली स्टोरी काफ़ी सेंडी थी लेकिन मोटिवेशनल भी थी. दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी एंड तक, और उनका मैंने फैमिली ट्री देखा तो शॉक्ड ही हो गया. बाकी कबीर भाई एक बात बताएं, वो मैं आपको अलग से बताता हूँ. क्या है, सॉफ्टी भाई नज़र नहीं आ रहे काफ़ी टाइम से, कौन सॉफ्टी भाई यार. और सलाम कबीर भाई. रियाज बंगश, थैंक यू. फयाज भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं थैंक्स कहानी भेजने के लिए, कभी कभी बिजी हो जाता हूँ. नो प्रॉब्लम भाई, मैं जानता हूँ मुझे सुनने वाले कौन कौन हैं, आई मेक श्योर कि उन तक कहानी पहुँचता है. अगर मुझसे चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ी. कौन वो शख्स है जिसने इनविजिबल कबीर भाई को देखा है. मुझे AI बना दो आप, ठीक है. और शेर आया मेरा भाई समीर भाई को बहुत सारा प्यार. और चॉकलेट भाई, इकराम भाई कह रहे हैं क्या क्या नाम है मेरे. और लास्ट में से ताहिर भाई का, ठीक. तो मैं ये कह रहा था कि मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद और फिर कहानी शुरू होगी. पर जैसे मैंने कहा, इस कहानी, जिस बंदे की कहानी है, मैं उसका असली नाम मुझे छुपाना पड़ेगा प्रोटोकॉल की वजह से, बिकॉज कहानी ही ऐसी है. सो आई एम गोइंग टू हाइड द रियल नेम. मगर केस एकदम असली है, इट इज़ अ वेरी वेल रिकॉर्डेड केस दैट हैपेंड. और ये सारी ही कैटेगरी में आता है, लाइक यू कैन पुट इट इन हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री, जो मर्जी आप समझना चाहो, हर जगह फिट होता है. बहुत क्रेजी कहानी है ये, बहुत ज़्यादा क्रेजी. सो अगर आप 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिल रहे हैं मुझसे, तो गारंटी है इस कहानी के आखिर में आपको साइड में गाड़ी रोक के सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है. और सिस्टम पे सुन रहे हैं आमिर भाई बहुत सारा प्यार आमिर भाई को, थैंक यू सो मच मसईद से. तो मिलते हैं. क्या है, एक मैं से कल वाली स्टोरी सुनाई अपने दोस्तों को, सब मेरे जैसे सवाल और जवाब मेरे पास भी नहीं था, जस्ट बोला इमेजिन कर लो. वेरी गुड मूविन भाई. तो भाई आज की कहानी इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. 11 मिनट 2 सेकंड एंड उसके बाद मिलते हैं शाम के अधिकार के बाद. ओके, जाना नहीं आपने.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का इहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर.

सरदार एकदम टिप टॉप है भाई, सरदार एकदम खुश है। एक मैसेज और आ गया, अस्सलाम वालेकुम भाई, फ्रॉम मोहम्मद अब्दुल हलीम राणा वहीद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल कलीम भाई, ओह सॉरी सॉरी कलीमुद्दीन, क्या बोल रहा हूँ मैं, कमालुद्दीन शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम। नसीम साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज सारे पढ़ दिए मैंने, ठीक है। सऊदी अरब से मैसेज किया है, और इन भाई की भी अटेंडेंस लगा जाए। मोहसिन भाई कैसे मेरा, क्या माहौल है सऊदी अरब में भाई? प्लान कर रही हूँ मैं वीजा लेके गाड़ी से आने का, आ जाऊँ क्या? साबिर भाई वालेकुम अस्सलाम। और सीधा पंजाब तो भाई मेरा, भाई मणि भाई क्या हाल है भाई के? मणि भाई ने कल अपने ग्रास खोला, मणि भाई जस्ट टोल्ड मी कि वो बड़े इंट्रोवर्ट हैं।

कम बात करते हैं। जब भी कोई मुझे मेरा साथी मिलता है पंजाब से हरियाणा से और वो बोलते हैं कि वो कम बोलते हैं तो मुझे हजम नहीं होता, फिर मैं अपनी तरफ देखता हूँ, आई एग्री, हम जैसे लोग भी हैं हरियाणा पंजाब की तरफ से जो कम बोलते हैं, दैट इज अ फैक्ट। लोग यकीन ही नहीं करते, अरे आप तो हरियाणा पंजाबी दोनों के दोनों, आप भाई उसी एरिया से हैं तो आप कैसे इंट्रोवर्ट है? भाई हम भी होते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने वीडियो देखा होगा, और नहीं करना बंगड़ा यार, नहीं पाना मैंने पकड़ा। एक मैसेज है, हुसैन भाई वालेकुम अस्सलाम, गुरुजी क्या हाल है, आज तो कहां बिजली करेगी भाई, काफी सॉलिड लग रहा हो भाई, कहां देख लिया आपने भाई, मैंने फोटो भेजी थी क्या, किधर देख लिया भाई, लोग मेरा लुक तो कहीं लीक भी नहीं हुआ, मेरा नया लुक कहां से देखा आपने? साबिर भाई वालेकुम अस्सलाम। ओके तो अब जो है मैं आज का किस्सा शुरू कर रहा हूं, बट आई रियली वांट टू नो कि कौन कौन है जो भी इस कहानी को पूरी तरह से सुन पाएगा, आई रियली वांट टू नो। विक्रम भाई मैसेज कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो तो कौन आया, शेर आया मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो सो मच, और ढोल में कुछ देर मजा दूंगा। इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी लाइव, ये बहुत क्रेजी कहानी है भाई, तो प्लीज़ मेरे साथ रहना। मैं पहले ही आपको बता दूं कि जिस बंदे की ये कहानी है, आई कैन नॉट टेक हिज नेम प्रोटोकॉल की वजह से, उसका क्या रीज़न है नाम ना लेने का, वो आपको कहानी सुनते सुनते सब समझ में आ जाएगा। सो जस्ट ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि मैं शुरू कर रहा हूँ। एक मैसेज है उपासना जी का, उन्होंने कहा बच्चा रुला दिया क्योंकि आपने स्टोरी नहीं सुनाई, सुना दो बच्चे को अभी सुना दो, ठीक है। फरहत भाई कह रहे सारे आरजे एक तरफ, कबीर भाई एक तरफ, मेरा भाई प्यार प्यार प्यार भाई, भाईचारा ऑन टॉप, क्या चलो लेट्स बिगिन। तो ये कहानी सुन के मैसेज जरूर कीजिएगा, ऐसे नहीं कि आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं और आप मैसेज ना करें, दैट इज वे वे मोर इंपॉर्टेंट टू मी। ओके आई एम नर्वस राइट नाउ। ओके तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ भाई मैं। तो फिर सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती, एफएम 97 किसी भी किस्म की सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हूँ ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है, सब कुछ एकदम असली है, इज दैट आई हैव टू हाइड द नेम प्रोटोकॉल की वजह से। एंड एक दो डॉक्टर्स हैं मेरे जान पहचान वाले जिनसे जिनकी मदद लगी है, तो आई एम गोना टेक देयर नेम आफ्टर द स्टोरी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं दोहा वाला कबीर एफ एम 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मुझे इस कहानी की बिल्कुल जड़ तक जाना पड़ेगा, तो मैं आपको ले चलता हूँ 2004, साल था 2004, मई का महीना था, और इस वक्त इनका एलियस नाम ले रहा हूँ मैं, डेविड। डेविड जो था वो 53 साल का था, सो 53 ईयर्स ओल्ड थे डेविड इस टाइम पे। जगह थी सियाटल वॉशिंगटन, और डेविड जो थे एक बहुत ही नॉर्मल, एक जैसे आम आदमी की ज़िंदगी होती वैसी लाइफ जी रहे थे, हालांकि वो एक पेशे से टैक्स अटर्नी थे, और वो उनकी वाइफ थी और उनके दो बच्चे थे, और जो जिस घर में वो रह रहे थे, इट वॉज़ अ वेरी मॉडेस्ट होम, लेकिन उसका मॉर्गेज चल रहा था, बेसिकली वो लोन पे उसका घर चल रहा था, तो काफ़ी नॉर्मल जैसे एक आम आदमी ज़िंदगी जीता है। तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम करते थे डाउनटाउन सिएटल में, और वीकेंड पे उनका रोल ये होता था कि उनके जो बच्चे हैं उनका फुटबॉल मैच देखने वो जाया करते थे। एक आम आदमी की तरह ये भी ट्रैफिक कंप्लेन करते, घर आते सो जाते, खाते पीते बस। वाइफ का नाम था नायोमी, दोनों की शादी को 22 साल हो चुके थे, 22 साल, दो बच्चे थे इनके, एमा 16 साल की और माइकल 14 साल का। डेविड थे वो 4 मई की तारीख अपना खत्म करके, और ये काफी टाइम बाद ऐसा दिन था जब उनके सर पे कोई स्ट्रेस नहीं था, सो ही केम होम, और बहुत ही शांत थे वो आज, कोई गुस्सा नहीं, जैसे ट्रैफिक भी ना मिला हो, सब कुछ अच्छा गया, सी वाज क्वाइट हैप्पी इन अ वे। और डेविड की पर्सनालिटी ऐसी थी जब वो खुश होते थे तो वो साइलेंट हो जाते थे, एक काम बिल्कुल, और अपने बे इंतहा मोहब्बत। सो 4 मई की तारीख को ही वाज वेरी वेरी काम, वो अपने घर पर आए, खाना वाना खाया, बच्चों के साथ थोड़ी बातें करी, और उसके बाद थके हुए बस सोचा अब मुझे नींद चाहिए, और यही उनका रूटीन भी था। जब वो सोने लगे और जो उनको नींद काफी जल्दी भी आ गई थकावट की वजह से, मगर देर रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब उनकी आंख खुली, और ये जब उनकी आंख खुली तो ये बिल्कुल वैसा था जैसे सपना, इसमें लेकिन एक और चीज ऐड हो गई, वो बहुत जोर से चिल्ला के उठे, और जब डेविड एकदम से चिल्ला के उठे तो उनकी बीवी नायोमी जो साइड में ही थी वो डर गई एकदम से, उन्होंने पूछा आर यू ओके, आर यू फाइन, और पैनिक करने लगी।

ही वो, और उन्होंने बहुत ही अपना सर पकड़ के जोर से नवमी से बोला, नवमी आई डोंट नो यार, मेरे सर फटे जा रहा है, आई जस्ट डोंट नो, मेरे सर के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हुआ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। एंड नवमी लगा के माइग्रेन हो सकता है, कुछ अलग परेशानी हो सकती है, बट डेविड जो था वो अपना हटा नहीं पा रहा था, अपने सर पे से हाथ नहीं हटा पा रहा था, और नवमी भी मदद कर रही थी सर दबाने में, मगर नथिंग वॉज हेल्पिंग। डेविड जो थे वो इतने बुरे हाल में थे इस वक्त, दर्द में, कि वो आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे, वो लगातार एक ही चीज बोल रहे थे नवमी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरे सर में कुछ हुआ है, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत अजीब दर्द हो रहा है। और नवमी को कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने कहा ठीक है एमरजेंसी बुलाया जाए, उन्होंने एमरजेंसी के लिए सबसे पहले कॉल करी, मगर उन्हें पता था कि टाइम लगेगा, देन शी सेड कि मैं ही लेके आ जाती हूँ, उन्होंने कहा ठीक है कम क्विकली, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा था कि कहीं उनके हस्बैंड को ब्रेन एन्यूरिज्म या स्ट्रोक ना आ गया हो, लेट हो गए तो दिक्कत ना हो जाए। वो फौरन पहुंची और हॉस्पिटल जाके एमरजेंसी में उन्हें फौरन भर्ती किया गया। थोड़ी देर बाद थोड़े काम डाउन हुए डेविड, लेकिन बिल्कुल चुप हो गए। इस दौरान उन पे काफी सारे टेस्ट किए गए, सीटी स्कैन, न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स, सब का सब किया गया, ब्लड वर्क भी किया गया, सब कुछ एकदम नॉर्मल आया। तो रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैसा दर्द महसूस हुआ, सर के बीच में दर्द महसूस हुआ, कहां दर्द महसूस हुआ? लेकिन डेविड ने कहा ये पूरे सर में दर्द महसूस हुआ। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, यू फाइन फॉर नाउ, तुम्हारे वाइटल्स भी एकदम नॉर्मल है, मैं तुम्हें पेन किलर लिख देता हूं। तो डॉक्टर साहब ने हैवी पेन किलर्स लिख के घर भेज दिया। अगले दिन सुबह डेविड जब उठा तो डेविड का मन नहीं कर रहा था काम पे जाने का, तो डेविड ने छुट्टी ली। और फिर एक और दिन इसके बाद डेविड जो था वो अजीब सी नींद में था। अजीब सी नींद का मतलब यह है कि बातें करना लगातार, लेकिन ये बातें ऐसी नहीं थी जो कॉम्प्रिहेंड की जा सके। मतलब कि एक होता है कि जब नींद में बातें करता है तो एक दो वर्ड्स पकड़ पाते हैं, मगर डेविड जब

अरे नायोमी पे क्या बातें कर रहा है, और हैरान इसलिए थी नायोमी उसकी वाइफ क्योंकि इससे पहले डेविड ने कभी ऐसा किया नहीं था, तो ये बड़ा ही आउट ऑफ कैरेक्टर था। वो उसे 22 साल शादी और 3 साल मिलने, कुल मिला के 25 सालों से जानती थी, नेवर हैपेंड। और जब वो उठा तो नायोमी कमरे में आए, उसने बोला तुम उठ गए डेविड, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। और डेविड कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, डेविड बस सीधा लेटा हुआ था, नॉट मूविंग एट ऑल, एक इंच नहीं हिल रहा था वो। नायोमी ने कहा ओके मैं नीचे मिलती हूँ, और नायोमी किचन में चली गई ब्रेकफास्ट बनाती, वो भी सोच रही थी कि डेविड को क्या हुआ है आखिर। इतने में 10 मिनट बाद डेविड जो था वो नीचे आया, किचन की तरफ आया, नायोमी के पास आया और बोला हाँ नायोमी सुनो। नायोमी ने बोला हाँ डेविड तुम ठीक तो हो? और फिर डेविड ने उसे बोला नायोमी मेरा दिल रुक चुका है, धड़क नहीं रहा है। और नायोमी को समझ में नहीं आया कि इस पे वो क्या बोले, ये कोई थॉट वैसा कुछ नहीं था, वो बात ऐसे बोली उसने जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आसमान तो ब्लू होता है। अब इट बिकम्स अ फैक्ट, समझ रहे हैं आप। एंड नायोमी बहुत कंफ्यूज थी, उसके सामने जीता जागता उसका हस्बैंड डेविड एब्सोल्युटली फाइन, सांस भी ले रहा है, खड़ा हुआ बात भी कर रहा है, और कह रहा है कि दिल नहीं काम कर रहा। तो उसे लगा कि पैनिक मोड होगा, हो सकता है अभी कुछ देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। डेविड ने नाश्ता नहीं किया, यही बोलता रहा कि नायोमी मेरा दिल रुक गया है, काम नहीं कर रहा है, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं नायोमी। और नायोमी ने अपना नाश्ता साइड में किया, उसने डेविड का हाथ थामा, बोले डेविड तुम ये क्या बातें कर रहे हो, डेविड कैसी बातें कर रहे हो, तुम चलना है हॉस्पिटल, चलना है, चलो अभी चलते हैं। एंड शी टुक हिम टू द हॉस्पिटल, कि पता नहीं क्या है। एंड पूरे रास्ते डेविड वाज जस्ट साइलेंट, कुछ बोल नहीं रहा था। और इस बार जब वो हॉस्पिटल गए तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे डॉक्टर्स को बताए, लेकिन उसने फिर भी बताया, अगर कोई बाहर का शख्स होगा ये सुनेगा तो शायद हंसेगा, मगर नायोमी जानती है वो पत्नी है, उसे पता है कि उसके हस्बैंड ने जब ये बोला कि मेरा दिल नहीं धड़क रहा, तो ये बहुत अजीब सा लग सकता है लोगों को सुनने में, लेकिन जिस हिसाब से जिस टोन में डेविड ने बोला था वो फैक्ट लग रहा था, फैक्चुअल। डॉक्टर ने तसल्ली के लिए कार्डियक मॉनिटर से हुक किया, जोड़ दिया ताकि खुद डेविड देख सके अपनी धड़कनों को, EKG और एकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट सब कुछ किया गया, धड़कन सामने मॉनिटर पे उसने देखी, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, स्ट्रॉन्ग और स्टडी। फिजिशियन जो थे वहां पे मौजूद उन्होंने कहा कि डेविड काम डाउन, ये पैनिक अटैक होगा और कुछ नहीं है, और उन्होंने जेनिक्स जो होती है वो प्रिस्क्राइब करके उसे दे दी, क्यों नो ये लेते रहो यू विल बी फाइन। और नायोमी बैठी हुई है डॉक्टर की बातें सुन रही थी, पैनिक अटैक, क्योंकि नायोमी जानती थी कि जब उसके हस्बैंड ने उसे बात बताई थी वो कहीं से कहीं तक पैनिक अटैक नहीं था, वो 20 सालों से भी ऊपर से उसे जानती है ये पैनिक अटैक नहीं था। पर नायोमी वॉज लाइक ओके मे बी मुझे कम पता है मेडिकल टर्म्स में, हो सकता है कि पैनिक अटैक हो, ठीक है। उसके बाद डेविड को घर ले गई, एंड डेविड बहुत कम खाने लगा, यूजुअली जो उसकी डाइट होती थी वो नॉर्मल होती थी, भले ही वो कितना भी थका हुआ हो, कितना भी बीमार हो, कितना भी परेशान हो, पर एटलीस्ट इंसान अपनी भूख को मिटाने के लिए चंद निवाले तो खा ही लेता है, लेकिन डेविड धीरे धीरे डिटोरेट हो रहा था, वो खा नहीं पा रहा था, और वो कुछ शिकायत भी नहीं कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि खाना बुरा बना हो, नथिंग। नायोमी ट्राइड, बच्चों ने कोशिश करी, उसके दोनों बच्चों ने कोशिश करी, बट नथिंग हेल्प्ड। एक हफ्ते बाद, इस पूरे हफ्ते में बाय द वे डेविड ने नायोमी से ज्यादा बात नहीं करी, एंड नायोमी वॉज थिंकिंग कि डेविड शायद ज्यादा बीमार है इसीलिए बात नहीं कर रहा, तो ज्यादा नहीं छिड़ा उसको। लेकिन एक हफ्ते के बाद डेविड खुद चल के नायोमी के पास गया, और इस बार भी उसने कुछ बहुत ही वियर्ड बोला, उसने इस बार नायोमी से बोला नायोमी मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, मेरे जो लंग्स ना वो मेरे लंग्स आई कैन नॉट फील इट, बंद हो चुके हैं वो,

नायोमी, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? नायोमी की आंखों से आंसू गिर रहे थे बिकॉज वो अपने पति को समझ नहीं पा रही थी. इट वॉज कंफ्यूजिंग. वो ना तो बच्चों को बता पा रही थी, ना खुद समझ पा रही थी. और उसके पास चारा नहीं था, वो फिर से हॉस्पिटल ले गई. इस बार भी इमरजेंसी में जब वो लेके गई तो डॉक्टर्स ने पहले तो नायोमी से कहा, देखो ही इन डिप्रेशन, शायद इसलिए आपको बार बार ये चीज़ें बोल रहा है वो. पर उन्होंने फिर चेस्ट एक्सरेज भी किए, एक बार चेक कर लेते हैं. ऑक्सीजन सेचुरेशन टेस्ट भी किया, वो भी ठीक था. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी किए, वो भी ठीक थे. सब कुछ वापस से नॉर्मल आया. डॉक्टर ने दिखाया, डेविड देखो एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन. और इस बार डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर है. और नायोमी से बोला कि देखो तुम्हारे हस्बैंड को थेरेपी और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, ये सब बोला. मगर इस वजह से घर पे चीजें बहुत बहुत खराब हो रही थी. डेविड ने काम पे जाना पहले ही छोड़ दिया था. वो बॉस को बोल रहा था कि बॉस मैं मर रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा. जस्ट इमेजिन वो बॉस क्या सोच रहा होगा कि उसका एम्प्लॉय छुट्टी मांग रहा है यही बोल के कि मैं मर रहा हूं. इट्स अ वेरी मॉर्बिड सेंटेंस. बहुत अजीब सी बात है ये. बॉस को पता था कि मे बी बीमार होगा, मे बी डिप्रेस है, तो उन्होंने छुट्टी दे दी. उन्होंने बोला, डेविड यू नो वट, यू टेक रेस्ट, ओके, ऐसी वैसी बातें मत किया करो, और फोन काट दिया. बट डेविड की हालत क्या थी, वो सिर्फ नायोमी देख पा रही थी और वो भी समझ नहीं पा रही थी. उसने लंच करना छोड़ दिया था और बार बार यही बोल रहा था जब उसे खाना दे रही थी नायोमी कि नायोमी तुम समझो मैं मर रहा हूं, मरे हुए को खाना नहीं देते. और वो बार बार यही बोल रहा था. नायोमी ये बार बार सुन रही थी, वो रोए जा रही थी, एक तरह से उससे भीख मांग रही थी कि प्लीज डेविड खाना खा लो, प्लीज दवाई ले लो, प्लीज. बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट. वो क्या करे, एवरी रिपोर्ट हर बार सब कुछ तो ठीक है, ये हो क्या है. वो सबसे मदद मांग रही थी, उसके बस में जहां तक था वो वहां तक रीच आउट कर रही थी. और इस बीच उसे एक डॉक्टर का नंबर मिला, डॉक्टर रोड्रिगेस. ये साइकेट्रिस्ट थी पेशे से और उनके पास वो लेके गई. तो साइकेट्रिस्ट ने बताया, डॉक्टर रोड्रिगेस ने, कि इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है. अब ऑन पेपर ये एकदम सही लग रहा था, जो सिम्टम्स थे सारी बातें एकदम मैच हो रही थी. फटीग होना, खाना पीना बंद कर देना और डेथ की बातें करते रहना, ये डिप्रेशन सिंड्रोम है. और डॉक्टर ने उसे जोलॉफ्ट, एक दवाई होती है, वो सब्सक्राइब कर दी, प्रिस्क्राइब कर दी. और कहा कि वीकली थेरेपी सेशंस के लिए आते रहो. डेविड ने साइकेट्रिस्ट के मुंह पे कह दिया कि दवाई नहीं लूंगा मैं, मैंने बोला ना आप सबको, मैंने नायोमी को भी घर पे बताया, मरे हुए को दवाई दोगे क्या, कैसे जिंदा हो जाएगा वो. एंड डॉक्टर रोड्रिगेस ने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि उनकी नजर में ऑन पेपर जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है उस हिसाब से ये डिप्रेशन की सिम्स हैं और कुछ नहीं है. फिर आई जून की दूसरी तारीख. एमा जो उसकी बेटी थी वो रात को अपने कमरे से उतरी. ऑलरेडी घर में बहुत स्ट्रेस था और वो रात में उतरी. उसने सोचा पानी पी लेती हूँ. एंड शी केम डाउन और जो किचन की तरफ आई पानी लेने के लिए, उसने देखा कि डेविड का जो लैपटॉप है, उसके फादर का लैपटॉप जो है, वो खुला हुआ है. एंड उसमें कुछ चीज़ें सर्च कर रहा है वो. और जब उसने देखी वो चीज़ें जो सर्च कर रहा था डेविड, जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं था, वो बहुत ज्यादा शॉक्ड थी. शी जस्ट फ्रोज. वो एकदम से ठंडी पड़ गई वो चीजें देख के, क्योंकि एमा देखा कि उसका बाप डेविड फ्यूनरल होम सर्च कर रहा था. इनफैक्ट वो सर्च भी नहीं, वो कंपेयर कर रहा था. प्रॉपर जो एक्सेल शीट्स होती हैं वो बना रहा था कि दफनाने के लिए कॉस्ट कितना आता है, प्लॉट कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें, लोकेशन क्या होगी, ये सब वो सर्च कर रहा था इंटरनेट पे. उसने फौरन डर के मारे, उसकी तो नींद उड़ चुकी थी, उसने अपनी माँ को बताया और दिखाया. और अब नायोमी बहुत ज्यादा, पहले से भी कहीं ज्यादा डर चुकी थी, क्योंकि उसे लगा था कि जब वो मदद मांगेगी तो कोई तो होगा जो उसकी मदद कर पाएगा, किसी के पास तो इसका इलाज होगा, बिकॉज इससे पहले उसने कभी सुना या देखा नहीं था. वो तो एक नॉर्मल घर की औरत थी और 22 साल से एक शख्स के साथ रह रही थी जो एक रात के अंदर पूरी तरह से बदल गया. डेविड का

बेटा जो 14 साल का था। बहुत मासूमियत से उसने पूछा अपनी मां नायोमी से कि इज डैड डाइंग। नायोमी को समझ में नहीं आया कि वो बच्चों को कैसे संभाले और अपने पति को छोड़ नहीं सकती। सब कुछ नॉर्मल है लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और नायोमी जो थी वो डेविड के जो होम ऑफिस, उसने घर के अंदर एक ऑफिस सेक्शन बनाया था, वहां पे जाके टटोलने लगी कि हो सकता है कुछ डेविड ने लिखा हो, कुछ कहा हो, क्योंकि वो एक जर्नल मेंटेन करता था। और उसने देखा कि उसकी होम ऑफिस में बहुत सारी फाइलों के बीच में उसकी जर्नल पड़ी हुई थी और उस पर उसके हस्बैंड डेविड ने पूरा का पूरा बरियल प्लान बनाया था, मतलब खुद को ही दफनाने का। उसमें प्लॉट कहाँ है उसे दफनाने का वो मैप पे मार्क्ड किया गया था, कौन सा म्यूजिक चलेगा उसके फ्यूनरल सर्विस पे वो भी लिखा हुआ था, उसका जो हेडस्टोन होगा वो जो कवर पे जो पीछे लगाते हैं हेडस्टोन पे क्या लिखा होगा वो भी लिखा हुआ था। और ये डेट्स सारी चीजें ऐसे लिखी हुई थी कि वो किसी छुट्टी पे जाने का प्लान कर रहा है, इट्स लाइक यू प्लानिंग अ वेकेशन। उसने सब कुछ वैसे लिखा हुआ था, वो भी अपनी ही डेथ के बारे में। नायोमी ने जब ये एक के बाद एक चीज पढ़ी, शी वॉज शेकिंग, वो कांपने लगी वायलेंटली। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये इस सिचुएशन में वो क्या कर दे। ये बिल्कुल ऐसा था कि एक हॉरर मूवी के अंदर एक कैरेक्टर को जीना। उसने सुबह होते ही सबसे पहले पूरी रात बेचैनी बिता के डॉक्टर रॉड्रिगेस को कॉल करी। वो बोल नहीं पा रही थी, बता नहीं पा रही थी, लेकिन उसने फिर भी अपनी कोशिश करी दबी आवाज में और रोते हुए उन्हें बताया कि क्या कुछ उसने देखा। मगर डॉक्टर ने बोला बहुत ही कैजुअली, डॉक्टर रॉड्रिगेस ने, ये देखो कुछ नथिंग रॉन्ग, ये डिप्रेशन है, रिलैक्स, हो जाएगा ठीक। वो ऐसा लगता है नायोमी डेविड नहीं हुआ है, ऐसे पेशेंट्स होते हैं, थेरेपी होने दीजिए। और वो तसल्ली देने लगे। मगर डॉक्टर्स एक बात नहीं समझ पा रहे थे, दरअसल वो जो 4 मई की रात थी जब डेविड चौंक के उठा और उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था किस चीज का दर्द है। और जब वो बता रहा था नायोमी को कि मेरे सर के अंदर मुझे कुछ महसूस हो रहा है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल नहीं है, वो दिन डॉक्टर्स ने अगर थोड़ी और कोशिश की होती तो पता लगता वो माइक्रो स्ट्रोक था, माइग्रेन बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल एक छोटा सा ब्लड वेसल, एक छोटा सा वेसल उसके ब्रेन की गहराई में एक तरीके से खत्म हो गया था। और ये ब्रेन की वो जगह थी जहां पे ये टिश्यू था, ये वो जगह थी दिमाग की जिसे मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, मीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आप समझने की जरूरत है आपको। ये दिमाग का वो हिस्सा होता है जो आपको आपको ये बताता रहता है कि आप जिंदा हैं। मतलब ये हिस्सा दिमाग का जो है ये प्रोसेस करता है कि आप हैं, यू एग्जिस्ट। पर जब उसे ये बहुत ही छोटा सा स्ट्रोक हुआ, बेहद छोटा, ये हिस्सा डैमेज हो गया। इतना छोटा हिस्सा है कि जो नॉर्मल सीटी स्कैन होता है उसमें दिखेगा भी नहीं, इसलिए हाई रेजोल्यूशन एमआरआई लगता है इसे डिटेक्ट करने के लिए। मगर किसी ने भी सोचा ही नहीं था कि डेविड के ब्रेन में ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये बहुत रेयर था। और इसलिए डेविड का खुद का दिमाग उसे कह रहा था कि भाई तू जिंदा है ही नहीं, जबकि दिल धड़क रहा है, उसके लंग्स उसको सांस लेने में मदद कर रहे हैं, खून नसों में बह रहा है, पर ये सब कुछ इसके बावजूद उसका दिमाग का हिस्सा जो खराब हो चुका है वो उसे सिग्नल नहीं दे पा रहा है। और इस वजह से डेविड ये मान रहा है कि वो जिंदा है ही नहीं। डेविड के हिसाब से जो भी कुछ उसके सामने हो रहा है ये महज बस यादें हैं, महज इल्यूजन्स हैं। ऐसा सेम केस जो था वो एक ग्राहम नामदे के साथ हुआ था कुछ वक्त पहले, मगर उस पर बाद पे आऊंगा। बहरहाल इस केस में

क्या होता है, अगर वो ब्रेन का हिस्सा जो मैंने बताया मीडियल प्री फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई डर, वो कोई बिलीफ नहीं होता, फैक्ट हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे दिन में सूरज निकलता है, ये फैक्ट है। खून लाल होता है, ये एक फैक्ट, और फैक्ट कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बिल्कुल वैसा है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, मगर मैं आपको बोलूं कि भाई देखो ऐसा है, ब्लड तो ब्लू है, आप नहीं मानेंगे बिकॉज आपको पता है, राइट? सो वो ब्रेन का वो वाला पार्ट जो पूरा यकीन दिलाता है कि आप जिंदा हैं, वो खराब है। तो इवन इफ ही नोज कि भाई वो सांस भी ले रहा है, वो चल फिर भी रहा है, उसका ब्रेन उससे कह रहा है तो जिंदा नहीं है, और ये फैक्ट है, ये उसे उसका ब्रेन बता रहा है। 6 हफ्ते बीत गए इस बात को, 6 हफ्ते सब सहते हुए। डेविड ने खाना छोड़ दिया, पहले दिन से 10वें दिन तक तो कोई चीज ही नहीं खाई उसने। नायोमी ने सब करके देख लिया, बच्चों से कहलवा लिया, उसका पसंदीदा खाना बनाया, नथिंग एट ऑल। वो कहता रहा मैं तो जिंदा ही नहीं हूं, तुम लोग मुझ पर खाना क्यों वेस्ट कर रहे हो। 3 हफ्तों में 12 किलो वजन गिरा उसका, गाल उसके पूरे अंदर चले गए, कपड़े पे ऐसे लगते थे जैसे टंगे हुए हों, क्योंकि उसका माइंड कुछ और ही मान चुका था। और फिर डेविड ने बोला कि तुम लोगों को डीकंपोजिशन की स्मेल नहीं आ रही है, और किसी को वो स्मेल नहीं आ रही थी, और डेविड को गुस्सा आ रहा था, बार बार अपनी बीवी बच्चों से कह रहा था तुम लोग मानते क्यों नहीं हो, अरे एक्सेप्ट कर लो ना कि मैं नहीं हूं, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। उसने धीरे धीरे घर वालों से भी इसी गुस्से के चलते बात करना तक बंद कर दिया। बच्चे अपने दोस्तों को घर नहीं ला पाते थे बिकॉज ऑफकोर्स वो एम्बेरस्ड थे, इस सिचुएशन को वो लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे। जब वो इमरजेंसी रूम में तीसरी मरतबा पहुंचाया गया तो 15 किलो वजन उसका पूरा गिर चुका था। डॉक्टर्स ने ब्लड पैनल, एब्डोमिनल सीटी, अपर एंडोस्कोपी सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ नॉर्मल, बस ये बोला कि ये मेल न्यूट्रिशन है, खाना पीना नहीं है इसका। फिर डॉक्टर ने डेविड को एंटी डिप्रेसेंट लेने को कहा कि एंटी डिप्रेसेंट दो, ऑब्वियसली डेविड ने वो नहीं लिए। और फिर एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि इन्हें साइकेट्रिक केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नायोमी इस वक्त कहीं से पढ़ के कुछ चीजें आई थी, उन्होंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर प्लीज अंडरस्टैंड, एक एमआरआई करीजिए, एक एमआरआई। डॉक्टर ने कहा नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हमने सीटी स्कैन किया, देयर इज नो नीड, एमआरआई की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका इंश्योरेंस भी अप्रूवल नहीं देगा ना, अप्रूवल नहीं आएगा। और नायोमी की बात वहां कट गई। हफ्ते बीतते रहे, डेविड कमजोर, अकेला, चुप रहने लगा, बात करना बिल्कुल बंद कर चुका था वो। दोपहर में उसकी बेटी एमा जो थी वो घर के अंदर थी और उसे बेसमेंट से आवाज आई। उसने देखा बेसमेंट से आवाज कैसे आ रही है, वो वहां पे गई, उसने लाइट ऑन करी और उसने देखा उसका बाप डेविड बेसमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था, बस इन डार्कनेस पिच ब्लैक बस बैठा हुआ था। वो अपने ही फादर को देख के डर गई, चिल्लाई, लेकिन कोई भी डेविड ने रिएक्शन नहीं दिया। और फिर वो रात जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। एक रात अचानक से नायोमी की आंख खुली और बहुत टाइम बाद उसे थोड़ी सी नींद आई थी, लेकिन उसकी आंख खुल गई क्योंकि पुलिस वालों ने कॉल करी। पुलिस वालों ने बताया कि ग्रीनवुड सेमेटरी, वो जो कब्रिस्तान था, वहां पे उन्हें घूमता हुआ मिला डेविड जो घर से भाग गया था। और वहां पे वो क्या कर रहा था, वहां पे वो कदम कदम से नाप रहा था अपना अपने लिए कवर का साइज। ये ऐसा था जैसे वो अपने लिए शॉपिंग करने निकला था कि मैं कहां मुझे दफनाया जाएगा, कहां मैं रहूंगा। मीनवाइल नायोमी जब वेट कर रही थी कि पुलिस वाले लेकर आएंगे, वो घर पे सब चीजें ढूंढ रही थी और इतने में उसके हाथ में जैकेट लगी जो डेविड की थी और उसमें $3,000 का खर्चा, एक पूरी रकम मिली जो कि एक बरियल प्लॉट के लिए थी। मतलब एक उसने प्लॉट लिया था अपने आप के लिए कि मैं यहां दफनाया जाऊंगा।

फिर एक हादसा जो नायोमी के जहन से कभी निकल नहीं पा। उन्होंने देखा कि बाथरूम में डेविड जो है चाकू के साथ है, अपने आप को मारने वारने के लिए नहीं, ना ना ना ना, वो सिर्फ अपने आप को कट करके अपने आप से बातें कर रहा था, अपने हाथ पे मार रहा था और बातें कर रहा था कि यार खून तो निकल रहा है, अजीब है, मैं तो हूं ही नहीं। नायोमी अब लिमिट क्रॉस चुकी थी। नायोमी ने अभी तक फुल साथ दिया और वो हार मानने को राजी नहीं थी। उसने तुरंत 911 पे कॉल करी और डेविड को 72 घंटे की साइकेट्रिक होल्ड पे रखा गया। यहाँ डॉक्टर्स ने उसे कहा कि स्किज़ोफ्रेनिया है, सोमेटिक डिल्यूजन्स हैं, और फोर्सफुल इंजेक्शन देके उसे कुछ वक्त के लिए बेहोश रखा गया। 7 दिन उसे रखा गया मेडिकेशन पे और 7 दिन के बाद रिलीज कर दिया। रिलीज करने की वजह, इट्स क्वाइट फनी, बेटर नहीं हुआ था वो कि रिलीज कर दिया, उसे रिलीज किया यह करके आपका इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने बंद कर दिया है सपोर्ट, और ये कॉमन प्रॉब्लम रही है अमेरिका में। 38 दिन बिना खाए डेविड का वजन 52 किलो 52 kg हो चुका था। 2 हफ्तों से बात तक नहीं करी थी, एक लफ्ज नहीं बोला था। लिविंग रूम में बैठा वो अपनी नस को बस चेक कर रहा था। माइकल और नायोमी उसके पास आए, पर बात करने की हिम्मत नहीं थी नायोमी की अपने हस्बैंड से, क्योंकि वो किसी गोस्ट जैसा लग रहा था घर में। हर टेस्ट जो डिज़ाइन किया गया था मेडिकल टर्म्स में, वो कॉमन चीज़ों के लिए था, किसी ने भी स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं किया। ये इतना रेयर था कि डॉक्टर्स ने इस बारे में, कई डॉक्टर्स ने तो पढ़ाई तक नहीं करी थी। इतिहास में ये जो उसके साथ हो रहा था डेविड के, सिर्फ 200 केसेस थे। तो मेडिकली लोग यहां तक पहुंच ही नहीं रहे थे। डॉक्टर्स जो थे वो एंटी साइकोटिक्स उस तरीके से ट्रीट कर रहे थे जैसे ये कोई केमिकल प्रॉब्लम हो, केमिकल इंबैलेंस हो, डोपामिन सेरोटोनिन इन सब पे फोकस कर रहे थे। लेकिन डेविड की परेशानी केमिकल थी ही नहीं, वो तो स्ट्रक्चरल परेशानी थी। दिमाग का हिस्सा केमिकली नहीं, फिजिकली डैमेज हो चुका था, एक डेड टिश्यू जो दवाइयों से ठीक नहीं होता। यह ऐसा है कि आपका हार्ट टूट जाए मैं बोलूं फ्रैक्चर मत लगाइए, दवाई खाइए ठीक हो जाएगा, इट विल नॉट हैपन। पूरा घर तहस महस हो रहा था, कोई भी अभी दूसरे से बात नहीं कर रहा था। जो एक नाइटमेयर होता है, बुरा सपना और जिंदगी की असलियत, दोनों के बीच की लाइन धुंधली हो रही थी। 45 दिन बीत गए। नायोमी घर आई और उसने देखा कि डेविड बैकयार्ड में था, धूप के नीचे खड़ा हुआ, सूरज की तरफ घूर रहा था। उसकी स्किन लाल पड़ गई थी और वो महसूस करना चाहता था कि जब वो है ही नहीं तो उसकी बॉडी पे क्या असर होगा। 3 घंटे बाद वापस उसे पुलिस ने बाहर से अरेस्ट किया, वो घर से भाग गया था। मगर इस बार नायोमी ने एक और हॉस्पिटल जाने का फैसला किया जो थोड़ा दूर था, लेकिन नायोमी ने कहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। और नायोमी पहुंची इस बार एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास। इनका नाम था डॉक्टर आमिर हसन। डॉक्टर आमिर हसन इंडिया के थे, ही वॉज फ्रॉम आई गेस यूपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डॉक्टर आमिर हसन न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने वो करा जो किसी ने नहीं करा, डेविड के सारी मेडिकल फाइल्स को एक एक लाइन पढ़ी, एक एक पेज, हर एक टेस्ट, हर एक डायग्नोसिस जिस पे हो चुका था। और अगली सुबह उन्होंने नायोमी से एक बात पूछी, बोले ये बताइए पहले दिन क्या हुआ था, शुरू से बताइए। और जब उसने बताया तो डॉक्टर आमिर हसन ने कहा कि ओके, एक स्पेशल ब्रेन स्कैन करना होगा, 3 घंटे लगेंगे रिपोर्ट के लिए, मगर आप घर मत जाइए, जस्ट स्टे हियर। और 3 घंटे पीने के बाद उन्होंने नायोमी को बुलाया, स्कैन दिखाया, उसमें एक डार्क, एक काला स्पॉट दिखाया और बोला ये देखिए, ये है डेड टिश्यू, मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और नायोमी को बताया कि साइकेट्रिक नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर आमिर हसन ने कहा कि इस बीमारी को कहते हैं कॉटर्ड सिंड्रोम, प्रोनंसिएशन इसके अलग अलग हो सकती है, लेकिन कॉटर्ड सिंड्रोम, ये हिस्सा अभी नहीं पहचानता कि वो जिंदा है। नायोमी खुशी और गम दोनों से रो रही थी, बिकॉज

फाइनली उसे किसी ने जवाब दिया था और उसने पूछा कि डॉक्टर क्या क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और आमिर हसन ने कॉटेट सिंड्रोम के बारे में बात करने के बाद कहा कि देखिए मैडम, ये स्टैंडर्ड मेडिकल स्टूडेंट को भी नहीं बताया जाता, पढ़ाई नहीं होती है इसकी। और उसके बाद उसने पूछा लाइट करने के लिए कि आपके बच्चे हैं, उन्होंने बताया, बोला आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। और बहुत देर तक सोचते रहे हो कि क्या करना चाहिए। उसके बाद 5 महीने, 4 अलग अलग इमरजेंसी रूम्स, साइकेट्रिक, दर्जनों टेस्ट और $1,72,000 $1,72,000 मेडिकल बिल्स। अगर जवाब सामने था, इतने खर्च हो चुके थे और जवाब सामने था, अगर कोई एक एक MRI कर लेता। मगर फाइनली डॉक्टर आमिर हसन ने ट्रीटमेंट शुरू करी, इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी। सो इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी दिमाग की वायरिंग को थोड़ा सा छेड़ती है, इसमें झटके लगाए जाते हैं ब्रेन के हिस्सों को। ये बहुत ब्रूटल होती है। 11 सेशंस होने थे 3 हफ्ते के टाइम में, और नायोमी जो थी वो फिर भी उम्मीद आ रही थी कि कुछ होगा नहीं। लेकिन जब 7वां सेशन हुआ तो डेविड ने इतने टाइम बाद पहली मर्तबा नायोमी अपनी बीवी से नजरें मिलाई और बोला, वाटर, ये कमाल था। ये बात सेशंस आगे बढ़े, 11वें सेशन में पूरा का पूरा सेंटेंस बोला। और सेंटेंस भी क्या बोला डेविड ने, नायोमी से पूछा, नायोमी मैं तो जिंदा हूं, जिंदा हूं ना। ये पैक क्वेश्चन था महीनों में। एंड नायोमी वाज क्राइंग एंड शी वाज सेइंग यस यस यस डेविड, यस यस यू आर अलाइव, यस। ये सिर्फ एक इलाज नहीं था, क्योर नहीं था, ये एक किस्म का यू टर्न था। रास्ता भटक जाते हैं, बहुत आगे जाते हैं, 3-4 एग्जिट मिस कर दिए, फिर आपको मैप पे दिखाई पड़ता है कि बहुत दूर बाद एक यू टर्न है। ये बिल्कुल वैसा ही था। इतने खर्च, इतना बीत जाने के बाद किसी ने बताया कि ये रहा यू टर्न, एंड वहां से अब रास्ता पीछे की तरफ ले जाना था। अ वेरी टफ जॉब। लेकिन फाइनली डेविड आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स ही रिकवर्ड। उसकी मेमोरी थोड़ी सी ब्लर्ड है, बट ही इज फाइन नाउ। अब वो सारी बातें नहीं कर रहा जो वो कर रहा था, एंड इसी वजह से, बिकॉज ऑफ हिज सेफ्टी और बच्चों की सेफ्टी, आई कैन नॉट टेक नेम एंड एड्रेसेस। तो वो एक प्रोटोकॉल है दैट आई नीड टू फॉलो फॉर हिम। मगर ये था किस्सा, अब आपके हवाले है। 666-22-07 एंड एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिराज, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेडिकल टर्म्स में मेरी मदद करी, वरना मैं नहीं बोल पाता। सो 666-22-107 आपके साहब के हवाले। और अब आप बताइएगा कि आपका इस पे आखिर क्या कहना है। मैं सच में जानना चाहता हूँ ये किस्सा सुन के आपका क्या रिएक्शन है, बिकॉज इसने तो आपको पक्का पक्का कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए तो रोक ही दिया होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं। इफ दैट हैज हैपेंड, लेट मी नो। मैं सच में जानना चाहूंगा। बाकी 666-22-107 माहौल को करते हैं थोड़ा सा चेंज। नहीं, अभी नहीं करते चेंज अभी, क्योंकि वैसे भी हम बजाने ही वाले हैं अपना जिंगल। एक इनफैक्ट बहुत सारे मैसेज आए हैं भाई, क्या आप कमाल हो, थैंक यू सो मच मोहम्मद शफाक भाई, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। भाई मैं कॉल अभी उठा नहीं पाऊंगा बिकॉज जिंगल का वक्त है और अजान का भी वक्त है, मैंने अभी वक्त देखा तो मैसेज में आ जाएगा, मैं खुद ही कॉल कर लूँगा आप लोगों को। मुझे नाइस स्टोरी भाई, बहुत मोटिवेशनल है स्टोरी, इमोशनल। कुछ लोगों की लापरवाही, बिल्कुल। ये मोहसिन भाई ने मैसेज किया और एक मैसेज आया वंडरफुल, वाहिद अली भाई ने मैसेज किया है, फिर अब्दुल हादी भाई क्या कह रहे हैं, इट बी क्या है, कॉर्टिकोबेसिल सिंड्रोम, नहीं कॉटेट सिंड्रोम को, तो इसमें से नाम लिख के देता हूँ आपको भाई, मैं अच्छे से पढ़ पढ़ा के आया हूँ, इसमें मेरे से कोई गलती नहीं होगी। कॉटेट सिंड्रोम है, ये ऐसे है, मैं नाम मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है मुझसे, बट ये है। वेरी इंटरेस्टिंग मेडिकल स्टोरी विच गेट गॉट क्योर लॉन्ग, क्या है मेडिकल चेकअप से, हाँ भाई उसकी वाइफ को सलाम है भाई, कसम से। स्टे ट्यून्ड, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं, पर बताते रहिएगा कैसे लगे, प्लीज़ आई वुड लव टू नो।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है।
3: अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।

0: भाई शाबाशी तो मैं दूंगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के इवन नरेट करने के बाद मैं खुद बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ. प्राउड फीलिंग है उन इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भाई. दे आर ऑलवेज ऑन टॉप ब्रो. मतलब नथिंग अगेंस्ट जो बाकी डॉक्टर्स हैं बाकी कंट्रीज के, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन भाई काम तो इंडियन और पाकिस्तानी डॉक्टर्स ही आते हैं. ये बात तो मैंने देख ली भाई. आई एम सो प्राउड ऑफ द स्टोरी ऑल टुगेदर. एक कॉल उठा लो, फिर मैसेज बहुत प्यारे प्यारे हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकात भाई.
0: जी मेरा भाई बताइए.
1: क्या बताऊं भाई इस स्टोरी पे, मैं क्या बताऊं.
0: है ना, ये है वैसी कहानी. आई नो ये है वैसी कहानी भाई.
1: उसकी वाइफ ने हिम्मत नहीं हारी और वो तो वो एक अलग ही डायमेंशन में जी रहा था.
0: हाँ.
1: अब उसको तो ऐसा हो गई, ऐसी बीमारी हो गई उसको, उसको हाँ. खुद नहीं पता.
0: यस यस यस.
1: लेकिन बीच में जो कितने डॉक्टर यार, वो डॉक्टर लोग पे बहुत गुस्सा आ रहा भाई.
0: एंड में काम तो आया भाई. एंड में देसी
1: वही ना, उसको एक एमआरआई कराना था, एक बार वो चेक कर लेते, लेकिन वो नहीं कर रहे थे सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से.
0: हाँ, तो ये भाई कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो मेडिकल फील्ड में भी काफी पेचीदा हो जाती हैं, तो इसमें भी ये सब होता है. एंड आई एम रियली सरप्राइज कि बाहर हुआ ये. खुदा ना खासा अगर किसी देसी मुल्क में होता हमारे, तो फिर क्या हालत होती है, तो ये सोच रहा हूँ.
1: क्या
0: तो
1: काफी, और ये एकदम मतलब अलग ही लेवल का ये सिंड्रोम है. असल में मैं इस चीज को ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी भी मतलब जा चुकी है और उनको भी मतलब ब्रेन का ही प्रॉब्लम था.
0: अच्छा.
1: उनका भी एमआरआई वगैरह हुआ था तो ब्रेन ट्यूमर था उनको.
0: अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए. जी मेरे भाई, तो
1: हाँ, तो वो भी मतलब ऐसा था कि उस टाइम में इलाज नहीं था.
0: हाँ.
1: और जैसे भी मतलब दवा पानी चल रहा था, वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनका दिमाग जो है ना बच्चों वाला हो रहा था.
0: राइट राइट राइट राइट. हाँ, समझ सकता हूँ.
1: इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही अब इमोशनल हो गया कि क्या क्या ही बोलूं. लेकिन मैं उनके वाइफ को बहुत मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जैसे तैसे कोशिश करके वो पहुंची वहां तक.
0: भाई
1: तो बंदा तो अभी ठीक है ना.
0: हाँ, बंदा अभी ठीक है, वो रिकवर कर रहा है. उसकी मेमोरी थोड़ी सी लॉस है, विच इज ओके कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो बच ही नहीं पाता, तो उसके मुकाबले अभी ठीक है. तो things are working fine. Therapy session
1: क्योंकि मैंने जब हम लोग मतलब करा रहे थे तो मतलब डॉक्टर्स yeah. का यही कहना था कि ज्यादातर ब्रेन में ट्यूमर वाले में मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं.
0: राइट.
1: और उस टाइम में इलाज भी बहुत कम थे ना ब्रेन के.
0: ऑफ कोर्स, यस यस यस.
1: अभी तो चलो माशाल्लाह अभी हर चीज है. लेकिन यार वाकई में भाई कबीर भाई क्या सुनाए वो स्टोरी.
0: नहीं, मुझे
1: मैं नहीं बोल पा रहा हूँ क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा भाई.
0: नहीं, अंडरस्टैंड भाई. बट ये कहीं की मदद जो उन्होंने करी, डॉक्टर सिराज है नाम उनका, और उन्होंने मेरी मदद करी है.
1: उनको भी हैट्स ऑफ है कि उन्होंने मतलब समझा इस चीज को. अब उन्होंने मतलब अब केस सॉल्व किया होगा या कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने न्यूरो सर्जन ने उन्होंने समझा और उन्होंने शुरू से पूछा उनसे कि एक्चुअल शुरुआत कहाँ से हुई और ब्रेन सी थी तो उन्होंने ब्रेन का ये किया.
0: यस.
1: हाँ,
0: तो वही है भाई. बट ये मैं सोच रहा था, कहानी तैयार भी कर रहा था, तो मेरे को पता नहीं क्या ये कहाँ से मिल गए. और अभी ये कहानी वन विल स्टे, मतलब ये टॉप थ्री में मेरे लिए. तो भाई मुझे बहुत
1: अरे भाई मेरे लिए तो टॉप, मेरे लिए तो ये टॉप वन चली गई है. हाँ भाई, बहुत बहुत टॉप कहानी है ये. और सिराज भाई को तो हैंड्स ऑफ है यार, ऐसे हमारे यहाँ ना जलवा है भाई, हमारे यहाँ
0: बिल्कुल भाई जलवा है.

0: बेशक जलवाया। नहीं थैंक यू सो मच, आपको अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा भाई, जज़ाकअल्लाह मेरे
1: भाई। अरे बहुत बहुत जबरदस्त स्टोरी थी
0: मेरे भाई, ख्याल रखिए बस अपना।
1: ओके भाई,
0: ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद कृष्ण राय जी ने मैसेज किया, वो कहते हैं गुड इवनिंग, लिखते हैं डॉक्टर कबीर। थैंक यू भाई। एक है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई, सुनाइए क्या हाल है कमल भाई, वेलकम बैक।
2: थैंक यू
0: जी भाई, बताइए
2: भाई। कहानी तो आज सुना, बहुत दिनों के बाद, एक महीने के बाद।
0: जी जी जी,
2: आपकी वैसे कहानी सुन रहा था, आप भेज रहे थे, मैं सुना था।
0: हाँ हाँ,
2: लेकिन अभी की जो आज जो कहानी सुना है ना, आपने पूरा दिमाग हिला दिया भाई। छोटा सा पॉइंट आदमी को ब्लैक पॉइंट कर दिया।
0: बिल्कुल भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं तो लोगों को सजेस्ट करूंगा एक, मैं डॉक्यूमेंट्री का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो दिमाग पर ही है, तो वो जब आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कितना कॉम्प्लेक्स और बनाया है, इसकी वायरिंग कितनी कमाल की है।
2: तो वायरिंग कमाल की, ये तो बात सही है। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि अमेजोन का जंगल है, बोले वहाँ कौन कौन सी चीजें हैं किसी को पता नहीं, वैसे इंसान के अंदर
0: भाई नहीं, आइडिया नहीं है, लो, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है भाई।
2: बोलते ये चीज हमने समझ ली, तब तो मालूम पड़ा कोरोना आ गया, ये समझ लिया बोला आ गया, कुछ ना कुछ नया वही हिसाब जिंदगी
0: का है
2: भाई। बाकी वाइफ भाई,
0: डेफिनेटली भाई, वो वाइफ को पता था ऐसे में साथ देना ना, ऐसे में साथ बहुत मेजर है, मतलब इलाज से पहले पहले जो साथ देने वाले लोग होते हैं, दैट इज वे मोर इम्पोर्टेंट। और पार्टनर ऐसे
2: लॉन्ग टाइम तक साथ दी भाई, पार्टनर रह के भी जो इतने साल समझती जो है,
0: ऑफकोर्स ऑफकोर्स भाई,
2: नहीं तो आदमी हिम्मत हार जाता, पैसे नहीं है हिम्मत हार जाता इंसान,
0: डेफिनेटली भाई। लेकिन डटी रही, वो डटे रहना काम आया भाई। So yeah, this is a story.
2: और
0: thank
2: और
0: you
2: आप भी हौसले को सलाम भाई, जो खासे ढूंढ के, मतलब जो है स्टोरी, लेकिन दूसरी बात जो सुनाने का आपका वो होता है, आप उसकी कहानी के गहराइयों में उतर के आप सुनाते हैं
0: भाई, पूरा डूब के कहानी में मजा आता है भाई,
2: पूरा डूब के।
0: हाँ भाई, यही मकसद है भाई, बस लोगों तक पहुंचे। ये काम की चीजें हैं, सिर्फ कहानी भी क्या है, काम की चीजें, हो सकता है भाई किसी के काम आ जाए, यू नेवर नो,
2: किसी के काम आ जाएगी। लेकिन जहां तक भाई अंदाजा तो है कि गरीबों
0: के
2: तो काम जल्दी नहीं आ पाएगी।
0: हाँ,
2: ये आप ध्यान में
0: रखिए, आपने
2: वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
0: डार्क कॉमेडी कर दी भाई यहाँ पे आपने।
2: हाँ भाई,
0: नहीं पर वेलकम है कमाल भाई, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, मुझे अच्छा लगा मेरे भाई, थैंक यू सो मच कहानी सुनने के लिए।
2: ओके भाई,
0: ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: अभी तो कैसी लगी जस भाई कहानी आपको?
1: अरे बिल्कुल हैंग कर दिया, जाम कर दिया मामला भाई सर। एक चीज वो है ना कबीर भाई यार, एक तो क्या है ना कोई भी कहानी तो कोई भी सुना देता है, मगर जो उसकी डीप में जाता है और जिस तरीके से नैरेट करनी होती है ना, वो जो आप करते हो ना इंसान को जो है ना उससे सुनने को मजबूर कर देते हो।
0: थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत
1: ना सुनने वाला भी इंसान होगा ना वो जरूर सुनेगा बैठ के ऊपर भाई, क्योंकि आपका जो तरीका है जो आपका लेवल है ना वो सबसे अलग है भाई।
0: थैंक यू मेरा भाई,
1: कहानी तो बहुत है, कोई भी उठा के कहीं भी पढ़ लेगा, मोबाइल पर पढ़ ले, आजकल क्या चीज नहीं है फोन के अंदर सब चीज है, बट उसको सुनाने का जो नैरेटिव है आपका भाई वो सबसे अलग लेवल का है।
0: थैंक यू मेरा भाई, ये सबसे बड़ा
1: कॉम्प्लीमेंट भाई, हैंग कर दिया है।
0: हैंग कर दिया। क्या लग रहा था किस तरफ जाएगी कहानी आपको जस भाई, क्या लग रहा था आपको?
1: अरे भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा था,
0: कुछ पता नहीं, ये चलो ये अच्छी बात है, कुछ पता नहीं लग रहा था ये अच्छी बात है।
1: हाँ भाई, अरे तुम जो है ना मैं लग रहा है ना भाई साहब आपको लेट लेट के ना साउथ की जो जैसे जैसे फिल्में साउथ की आ रही है ना वो देख के खूब देखते हो।
0: नहीं भाई मैं
1: किसी की समझ में नहीं आएगा, जब किसी की समझ में नहीं आएगा ये मूवी जाने वाली किधर है।
0: नहीं नहीं नहीं भाई, पिक्चर तो मैं पिक्चर सिर्फ मेरे पास वीकेंड होता है, वरना इन कहानियों ऊपर ही जाते हैं मेरे 6-7 घंटे, मैं बता दूं पहले ही कसम से। This took a lot of time by the way. कल शाम से इस कहानी के बारे में पढ़ाई कर करके पूरी रात निकली, उसके बाद अभी डिलीवर हुए, तो ये यही टाइम ले लेती है, तो वीकेंड ही मिलता
1: है ना भाई। आप जब इतना टाइम लेते हो पूरी रात, आपको जब रातों में आप बैठ बैठ के जाग के पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, उन्हें ध्यान से देख रहे हो, हर एक पॉइंट को नोट कर रहा हो और उसको कहाँ आपको लेकर आना है, कहाँ बताना है,
0: भाई
1: क्या
0: भाई, वो पूरी मेडिकल की पढ़ाई हो गई मेरी, तो मैं सर घूम गए थे तैयार करके, पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों तक पहुंच गए, आई एम रियली हैप्पी कि नरेशन सही हो गया
1: भाई। बता दियो कब उद्घाटन हो रहा है,
0: हो जाएगा भाई, उद्घाटन हो जाएगा भाई, पर थैंक यू सो मच मेरी जान की आपको आज आपने कहानी सुन, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच भाई।
1: नहीं यार भाई नहीं, टाइम था मैं बिल्कुल जैसा टाइम रखा ना भाई, मैं बिल्कुल बैठ के प्रॉपरली सुनूंगा।
0: थैंक यू भाई, ये आपकी मोहब्बत, जजाक अल्लाह मेरे भाई,
1: थैंक यू बड़े भाई यार,
0: थैंक यू मेरे भाई,
1: लव यू भाई,
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मणि भाई ने मैसेज क्या कह रहे हैं, लगता है स्टोरी अच्छा इसलिए बियर्ड्स नहीं आ पाते। हाँ भाई ये भी एक चीज़ है, स्टोरी बनाने बहुत टाइम जाता है मेरी जान। एक मैसेज है, वंडरफुल वुमन कबीर भाई, ही वाज लकी टू हैव हर, ऑफ कोर्स करण भाई। हुसैन भाई कहते हैं, भाई जिस हिसाब से कहानी सुनाते हैं ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने बैठ के आपको सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच भाई, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। एम के भाई लिखते हैं, आजकल क्या है, दूसरों को पानी ना दें लोग और उसकी वाइफ को सलाम, बिल्कुल बेशक भाई। और वैसे कबीर भाई दिल से शुक्रिया, आप बहुत डीप चले जाते हैं, थैंक यू सो मच, तबसुम मैंने मैसेज किया है। और लिखती है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, वेरी इमोशनल टचिंग स्टोरी, सैल्यूट टू हिज वाइफ दैट शी नेवर गिव अप। और मैं जब भी मेडिकल मिस्ट्री सुनती हूँ लगता है कि हम इंसान बहुत नाशुक्र हैं। मैं सच में कहता हूँ भाई, ये कहानी सुन के मुझे भी ऐसी लगता है, हर पल ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहना चाहिए। लिखते हैं कि ऐसी कैसी बीमारियां हैं दुनिया में, जिंदगी में हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं, फिर भी हम उसी चीज़ पर शिकवा करते हैं जो मिला नहीं, कुछ चीज़ें ना मिलें उसका भी शुक्र करना चाहिए। बेशक बहन, बेशक, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और आगे लिखते हैं, आई एम राइटिंग हेयर बट इट्स अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ, थैंक यू फॉर सच अमेजिंग स्टोरीज़, मेडिकल स्टोरीज़ कबीर भाई, थैंक यू सो मच बहन, एंड वेरी वेल सेड, थैंक यू। इनके बाद अफजल हुसैन साहब लिखते हैं, मार्वलस स्टोरी एंड नरेशन, थैंक यू सो मच अफजल भाई। और अफजल उस्मानी भाई लौट आए हैं, थैंक यू सो मच, नाइस स्टोरी कबीर भाई। फलक भाई थैंक यू सो मच, और एक और मैसेज, स्टोरी बहुत अच्छी थी, आपकी मेहनत और लगन को सलूट, जजाकल्ला भाई। ये नईम भाई ने मैसेज किया, नईम भाई के बाद एक मैसेज, हाय कबीर कैन यू प्लीज़ शेयर द स्टोरी उस्मान भाई, ऑफ कोर्स। कुछ मैसेज और मिस ना हो जाए। हाँ तो कृष्णा भाई कह रहे थे डॉक्टर कबीर, डॉक्टर कबीर आगे लिखा, टुडेज मेडिकल स्टोरी वाज अमेजिंग, द वे यू टेल योर स्टोरीज इज जस्ट वाओ, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, माय रिस्पेक्ट एंड ग्रीटिंग्स टू हिज वाइफ फ्रॉम माय साइड, लव यू डॉक्टर कबीर, डॉक्टर कबीर। और आगे लिखा, मेरे को रुला दिया, एंड माय रिस्पेक्ट एंड ग्रीटिंग्स टू द डॉक्टर फ्रॉम इंडिया एज वेल। ऑफकोर्स भाई, आई एम रियली प्राउड कि हमारे देसी डॉक्टर भाई ऊपर एकदम टॉप लेवल। और एक मैसेज है, कामरान भाई लिखते हैं, व्हाट अ स्टोरी, इमोशनल, इन्फॉर्मेटिव एंड टची, बट मैं सोच रहा था कि कोई पाकिस्तान इंडियन डॉक्टर होता तो लाजिम डेविड विल नॉट हैव बीन इफेक्टेड दैट मच। मैं अग्री करता हूं भाई। और रखते हैं, हम लोग टेस्ट से हटकर मेडिकल हिस्ट्री और कॉन्वर्सेशन को भी ट्रीटमेंट में शामिल करते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। खादर अब्दुल अजी भाई कह रहे हैं, यू शुड बिकम अ डॉक्टर, भाई मेरी बिल्कुल औकात की बात है। अगर कोई डॉक्टर सुन रहा है और देसी डॉक्टर सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको मेरा सलूट दूर से। और एक मैसेज है, भाई मेरे ब्रदर इन लॉ को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, एंड ही फॉरगॉट एवरीथिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह इज फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आतिफ भाई ने मैसेज किया, आतिफ भाई थैंक यू। अब्दुल करीम भाई लिखते हैं कि भाई आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम लोग वो सुनते तक कभी ना सुना हो, आप नहीं होते नहीं सुन पाते, थैंक यू सो मच भाई।

मोहम्मद भाई, अब्दुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी सारे मैसेज हैं भाई। तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर जानी, ग्रेट वर्क, पेड ऑफ योर हार्ड वर्क, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया लिखते हैं, इमोशनल और कुछ लोगों की लापरवाही, लापरवाही कह लीजिए या फिर सिस्टम ही ऐसा भाई। और एक मैसेज है, ग्रेट स्टोरी सईद भाई, थैंक यू। और चार्ली भाई लिखते हैं, नाइस स्टोरी, बहुत मोटिवेशनल थी। और एक लिखा है भाई, कमाल की स्टोरी थी, फिर अल्लाह आपको खुश रखे। और क्या मैसेज आया भाई, एक और भाई कह रहे हैं, भाई आप कमाल ही कर रहे हो, थैंक यू सो मच भाई, कमाल चलता रहे, गाड़ियाँ चलती रहे, आपने लोगों की आंखें खोल दी, सलूट है आपको। डॉक्टर का भी, डॉक्टर का भी, अरे नहीं भाई ये बहुत बड़ी उपाधि है भाई, ये मत जोड़ो। शमशाद भाई थैंक यू सो मच। फरहत भाई कह रहे हैं कि एरोनॉटिक्स से अभी MBBS कंप्लीट करने के बाद सर्जन बनने वाले। भाई हर फील्ड की कहानी सुना दूंगा मैं, एक वैसे आज से सभी डॉक्टर कबीर साहब बोलेंगे। अरे भाई भाई थैंक यू फॉर द लव। नसीम साहब थैंक यू सो मच, और भाई परवेज भाई शुक्रिया। तो भाई ऐसा है, आज की कहानी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंची, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, जैसा कर लो, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुबीन भाई ने तो कहा उनको अपनी वाइफ याद आ गई। कह रहे हैं जो नेक बंदा होता है उसे नेक ही मिलती है, उसके लिए खुद नेक बनना पड़ता है। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने सारी स्टोरी पढ़ दी भाई, कमाल करो। अशफाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, फरद भाई कह रहे हैं सवार जी एक तरफ, कबीर भाई एक तरफ। बेटे ये तो मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, फर्स्ट क्या फर्स्ट वाले जो नालायक डॉक्टर हो गए सब बाकी डॉक्टर को गुस्सा निकाल रही है। बट थैंक यू सो मच, ये आज का किस्सा था, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि आप लग आप सब तक ये पहुँचा। एंड इवेंचुअली अगर कोई मेडिकल फील्ड से है तो मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं, आई वुड लव टू नो कि आपको कैसा लगा। और एक मैसेज, सलाम कबीर भाई, कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन जो सुनाने वाला है वो कमाल का, बाय इमरान भाई को बहुत सारा प्यार। क्या ओके, आई एम गोना प्ले अ ट्रैक नाउ। आज मैं बड़ा खुश हूँ भाई, मतलब आप तक बढ़िया तरीके से पहुँच गई, अपना काम हो लिया भाई। और अगेन अगर कोई मेडिकल फील्ड से है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूँगा। बाकी ताजी मूड बना देंगे, सेट कर देंगे, कहानी सुना दी, अब जरा ट्रैक पर जाते हैं और कुछ देर में बहुत सारी और बातें होंगी। मगर इफ यू लव द स्टोरी थैंक यू, और बता दीजिएगा 666-222-107 पर।

आशिक आशिक आशिक आशिक भाई अभी एक और वो क्या कहते हैं मूवी आ रही, देखा आपने ट्रेलर? गन मास्टर जीना इन भाई साहब इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया एक साथ। अरे भाई आपने नहीं देखा ट्रेलर? क्या मिस कर दिया आपने, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त।

भाई आज तो कुछ एक्स्ट्रा आवाज मिल गई। अभी अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है कि हम लोग हर दो घंटे पार्टी करते हैं कबीर भाई के साथ भी। भाई थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव भाई, दिल से प्यार। और नुसरत बहन लिखती हैं कि जब हम ऑडियंस आपकी स्टोरी सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आप खुद उसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपका नरेशन इतना नेचुरल और एंगेजिंग होता है। बहन मैं बताऊं, मैं एक तो खुशी के आंसू वाला इमोजी और दो दिल भेज रहा हूं। शुक्रिया बहना, बहुत बहुत शुक्रिया, दैट इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। ये अगर मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने उस पर चिपका दूं ना रेज्यूमे पे, आ रहा है भाई साहब पागल हो जाएगी जनता। सलाम कबीर भाई, परफेक्ट स्टोरी, दो दिन से मुझे टीथ पेन है, बहुत तकलीफ है भाई, अल्लाह ताला आसानी करे आपके लिए। और लिखते हैं बिलीव में बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई, मैं देखा है मैंने भाई, दांतों का दर्द बहुत डेंजर होता है। मुदस्सिर पंकज भाई, अल्लाह ताला आसानी करे, शिफा दे आपको, आमीन। और लिखते हैं कहने का मतलब है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको, बेशक। द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर आमिर हसन, फाइनली गिव हैप्पीनेस टू हिज लाइफ। ऑफ कोर्स मेरे भाई, शाउट आउट टू दैट डॉक्टर मैन, क्या काम किया भाई ने। तो एक भाई लिखा है नाइस नरेशन, और एक भाई पूछ रहे हैं आप भी आशिक हो क्या भाई, आप बताओ, सजेस्ट आप गैस करो भाई, फिर बताना मेरे को है। अच्छा एक मुझे, मैं न्यूज़ की तरफ बढ़ता हूँ लेकिन मैं एक मैसेज इग्नोर नहीं कर सकता। ये भाई ने मैसेज किया है और सीधा इन्होंने लंदन से मैसेज किया, सो दैट इज अपने आप में बहुत बड़ी बात है भाई, वहाँ तक आवाज़ जा रही है तो मैं नहीं जानता और कोई सुनता नहीं सुनता, बट इन भाई ने मैसेज किया है और इन्होंने अपना नाम ओ आर के लिखा है, पता नहीं ऐसे पढ़ते हैं भाई आपका नाम, मुझे पता नहीं है, इज़ दैट हाउ यू प्रोनाउंस इट, और नहीं मुझे लगता नहीं कुछ और नाम होगा आपका। बट इन्होंने लंदन से मैसेज किया और ये कह रहे हैं कि आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 4 weeks नाउ, आई डिडंट नो दैट यू वर इन कतर। अच्छा आप नहीं पता लगा आपको, कतर में ही हूँ भाई मैं, बट नाउ दैट आई नो आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस 4 weeks एंड आई लव द वे यू नरेट स्टोरीज, इट्स लाइक गोइंग इन टू अ मूवी इन अ थिएटर विद पॉपकॉर्न एंड यू गेट आउट ऑफ द थिएटर क्या फीलिंग एवरी थिंग फ्रॉम द मूवी। थैंक यू सो मच, यू सच अ ग्रेट स्टोरी टेलर। एंड आगे लिखते हैं आई वुड वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम कतर एंड ब्रिंग यू टू लंडन। नहीं नहीं भाई, यहीं पर ठीक हूँ भाई मैं। अंग्रेजों का बीच में जिम्मा रखिए, काम है भाई, कोई काम नहीं है, पर आपने लंदन से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे चोरी करने की बात कर रहे हैं, बताओ यार कहाँ कहाँ से धमकी आ रही। और कबीर भाई, हाँ भाई एक दोस्त, अगर आप आशिक थे ये क्या पूछते हो, हम हर कोई था भाई एक टाइम पे। और मैसेज सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और क्या इसको देखने से लगता है कि आप भी आशिक हो, मेरे फोटो पे मत जाओ भाई। कह रहा हूँ फोटो देख के लग रहा है आप आशिक हो, नहीं। लुक्स कैन बी डिसेप्टिव मिस्टर मोहसिन, इफ यू नो यू नो। और कुछ खबरों की तरफ बढ़ जाते हैं, सबसे पहले जो खबर है वो अशगाल की तरफ से है, उन्होंने कंप्लीट कर लिए है ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स, 674 स्कूल्स के आसपास जो कंस्ट्रक्शन था रोड्स का उसको कंप्लीट किया है अक्रॉस कतर, 674। इसके बारे में पब्लिक वर्क अथॉरिटी अशगाल ने अनाउंस किया है, पूरे कंप्लीशन की डिटेल्स भी दी हैं और मकसद ये कि सेफ और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो स्कूल के इर्द गिर्द है, क्योंकि अभी बैक टू स्कूल भी शुरू हो जाएगा तो बच्चे तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। तैयार हैं क्या, कुछ बच्चे होते हैं तैयार भाई, हमारे जैसे तो हो नहीं पाते थे भाई। लेकिन जो है बहुत बढ़िया, शानदार। अब ज़रा मैं मौसम का भी हाल बताता हूँ, बिकॉज अभी जो है बताया गया है कि गर्मी अभी सुहेल स्टार जो है वो दिखने वाला है, दिखने वाला है। अभी गर्मी थोड़ी सी कम होगी, अभी फिलहाल 36 डिग्रीज फॉर नाउ, 32 मिनिमम और मैक्सिमम 42, बट 54% ह्यूमिडिटी है। कल से तकरीबन कितना ज़्यादा है, 13% ज़्यादा है भाई, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी का लेवल है आज, बट पूरे हफ्ते बढ़िया गर्मी है। एक मैसेज है, क्या लिखा, सुना तो नहीं, सोचता अटेंडेंस लगा दूं। आज की कहानी जो आपने मिस करी ना सैम भाई, आपको पता नहीं क्या मिस कर दिया है आपने, बताया आपको नहीं पता, नहीं पता। हाँ क्या इसे मैसेज करो, बंदा ऑनलाइन ना पढ़ सके। और एक मैसेज, सलाम भाई, बहुत बिजी था इन दिनों, आज आप क्या के लिए ड्रीम कार उसमें FM लगाए, आपकी आवाज़ सुनी, लव यू ब्रदर, लॉट्स ऑफ लव। अंजुम हसन साहब की समझ मेरे भाई, ड्रीम कार ले लिया आपने माशाल्लाह। नसीमा कह रहे हैं मैंने 3 दिन से आपको सुन रहा हूँ, 3 दिन से आप सुन रहे हैं मुझे, नहीं नहीं आप तो बहुत पहले से सुन रहे हैं यार, खाम खा झूठ है। क्या बात, वाह वाह वाह वाह वाह, ये का बात हो गई भैया। एक भाई साहब हैं, अच्छा वो लंदन वाले भाई साहब ही लिख रहे हैं कि आई रियली मीन इट, मेरा बस अगर चलता तो मैं लंदन में आपको पकड़ के ले आता। नहीं नहीं भाई, ये कैसी जिद पाल ली आपने। इधर आ जाओ, इधर आके सुन लो भाई, बढ़िया यहाँ पे मजे करोगे आप, ठीक है।
और 666-221-07 नंबर है. बाकी कुछ देर में ट्रैफिक हाल एक तो आप भी बता दीजिए, मैं भी बता दूंगा. और आज आज बहुत सारे दिन हैं जो कैलेंडर में मार्क्ड किए गए हैं, ये भी बड़े नायाब किस्म के दिन हैं, तो इस बारे में भी जरा बात करेंगे. 666-221-07 गाना बिन देयर डन दैट बिलाल सईद एंड तला अंजुम. बढ़िया गाना लग गया भाई. एक मैसेज आया है, सलाम कबीर भाई आपको सुन लिया, अब और क्या बाकी मेरा भाई. ये मैसेज हसन भाई ने किया है, रैण दे मैसेज धर दो भाई व्हाट्सएप पे. बिंदर बंदा.

0: मैगा जी कति एकदम कड़ाक सुत्ता गाना 666-2107 पे आप भी आ जाओ। आप कहाँ पर हैं?
1: बढ़िया चल रहा है सब, शानदार है, सेट है मामला। चलो

अरे सरदार कैसे नहीं खुश होगा, खुश होना पड़ेगा भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 7 पे, और आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भर भर के आए उसके लिए बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बिलाल साहब पसंद है आपको? बिल्कुल पसंद है भाई। बिलाल भाई क्या गाना गाते हैं, ऐसा लगता है आप अपना ही यार है वो बिलाल भाई। अच्छा तो आज कौन कौन से दिन इंटरनेशनली मार्क्ड हैं उनके बारे में जरा मैं बात करना चाहता हूँ। आज क्या तारीख हो गई, 25 हो गई आज, ज़्यादा ही तेज भाग रहा है भाई सब कुछ। अच्छा तो मैं बता दूं, आज जो है आज है नेशनल पार्क सर्विस फाउंडर्स डे, जिसके जिससे आपको कोई लेना देना है नहीं, है ना, साफ सीधी बात, तो इसको इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज है लेगेसी वीक, अच्छा और कौन सा दिन है भाई, नेशनल फिशिंग मंथ। जितने भी मछुआरे मेरे भाई लोग हैं, बढ़िया भाई, जिन्होंने देखो अपने आप को मछुआरा कहलवाने के लिए भी आपको गुच्छे में मच्छी पकड़नी चाहिए। ये एक दो मच्छी पकड़ के जो वो ले लेते हैं ना फिशिंग रॉड, कल तो फिशिंग चलेंगे, दो मच्छी पकड़ी है इन्होंने, दो मच्छी, और उसको दो मच्छी पकड़ने के बाद भाई को इतना कॉन्फिडेंस है फिशिंग रॉड लेके आ गए वो। ये मत क्या करो, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं भाई, वो पूरी रात रात जो है बिता देते हैं ये अपने, कौन सा है वो अपना, बहुत सारे बीचेज है ना वहाँ पे जाके मच्छी पकड़ने कोशिश में, रात भर खड़े रहेंगे पानी के अंदर, एक मच्छी नहीं पकड़ी, और फिर आके उन्हें शो ऑफ करना पड़ता है तो बोलते हैं अरे बहुत मजा फिशिंग में, लॉट ऑफ फोकस। अरे दो से ऊपर तो मच्छी पकड़ो तब तो ये बोलो, समझ में भी आता। मच्छी एक नहीं पकड़ी जा रही, ये फिशिंग करते हैं हम तो। अच्छा आज जो है बनाना स्प्लिट डे भी, जिसने कभी खाया तो उसे पता होगा इट्स अ मिक्सचर ऑफ बनाना आइसक्रीम, पता नहीं क्या क्या होता है इसमें, मीठा लगता है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी। और एक दो मैसेज है, फिर से सैलरी आने वाली है। नसीमा कह रहे सब दिन छोड़ो, फिर से सैलरी आने वाली, मुबारक हो भाई, आम आदमी तो इतने में खुश हुआ था भाई, मैं भी इसी में खुश हूँ भाई। फरहत भाई कह रहे हैं फिशिंग रॉड ली थी मैंने भी, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं फरहत भाई, मैं जानता हूँ ना मेरी भी ऐसे दोस्त हैं, शौक में फिशिंग रॉड ले लेते हैं वो, एक मच्छी पकड़ के उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि अगले दिन तो सीधा जलपरी ही पकड़ेंगे वो। लगता है अब मैं फिशिंग रॉड लेके आऊँ नई वाली, अब देखो समंदर सीधा जलपरी बजेगी इसमें, कॉन्फिडेंस अच्छी बात होती है मगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एक मैसेज है अली भाई फ्रॉम एचर, अली भाई सीधा रहने थे मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, और अभी सारे अपने फिशिंग रॉड छुपा रहे हो कि नहीं, मैंने नहीं ली, नहीं कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं छुपा रहा। मैं एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, ये सलमान भाई ने मैसेज किया, इनके बाद एक भाई लिखते हैं अमित, ये कह रहे भाई कल ही लेके आया हूँ फिशिंग रॉड और मैं वही हूँ जिसका जिसकी बात कर रहे हैं। मुझे पता था, देखा यहीं से पता, मैं अपने लोगों को जानता हूँ ना भाई, अपने लोगों को जानता हूँ। एक मैसेज है, फिर सॉन्ग प्ले करते कोई भी जाओ, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और एक मैसेज है, हमारे 15 के बीच में आते हैं। अच्छा तो आप 15 से 20, देखो 15 से 20 अगर मच्छी पकड़ रहे हैं आप 15 से 20, तो मोहसिन भाई फिर तो बनता है यार, फिर तो आपको फिशिंग रॉड मतलब बनती है, मगर दो मच्छी पकड़ के फिशिंग रॉड लेने का कोई तुक नहीं बनता, प्लीज़ ना किया करें ऐसा ना करें। एक मैसेज है, कबीर भाई आपको कैसे पता लग जाता है? भाई देखो अभी 3 लोगों ने हैदर भाई अग्री कर लिया है इस बात पे कि हमने फिशिंग रॉड ले ली है और पड़ी हुई है, किसी काम नहीं आ रही वो उनके, तो ठीक है ये फिशिंग मंथ है, दैट आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपने 5-6 मच्छी पकड़ी तब तो आपका सेंस बनता है। सैलरी डे मना रहे हैं मोहसिन भाई, हमारी 15 से 25 यानी सर आने वाली, ये है मेरा भाई, मुबारक हो भाई जिनकी पगार गिरने वाली है बैंक अकाउंट में, बहुत बहुत सारा प्यार मेरे भाइयों को और बहनों को भी। और एक मैसेज आया, मुझे लग रहा है मैंने कोई सही सा टॉपिक

छिड़ दिया। एक भाई ने मुझे मैसेज किया, भाई मैं नई नई फिशिंग रॉड लेके आया था, उससे मैंने दो मच्छी पकड़ी और दो मच्छी पकड़ने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है फिशिंग करने की, और अब वो फिशिंग रॉड मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बिक भी नहीं रही है। आते भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप भी इस लूप में बस गए, बहुत बढ़िया भाई। फिशिंग रॉड बेच रहे, कोई तो ले लो भाई। मच्छी तो पकड़ नहीं पा रहा, इससे कुछ नोट ही पकड़ लूँ। एक मैसेज है, लव यू भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई को अब्दुल समद भाई, थैंक यू। और समद भाई के बाद मैसेज है, मेरे को भी सेल करा दो। फरद भाई भी फिशिंग नोट लेके बैठे हुए करे बेचने के लिए, मच्छी तो पकड़े नहीं जाएगी। एक मैसेज है, ये अंदर की बात है, कैसे पता चल जाती है। हैदर भाई आप भी भाई सही बताओ, देखो हैदर भाई। और एक मैसेज है, भाई फिशिंग रॉड मेरे पास भी है लेकिन आज तक एक भी नहीं पकड़ी, शाबाश भाई। समीर भाई आप तो दिल्ली वाले हैं ना, आपका बनता है, आपका बनता है, आप नहीं पकड़ेंगे तो दिल्ली वाले तो शोशेबाजी में रहते ही हैं। सब चाहिए इन्हें, मेरे दिल्ली वाले इतने भाई भाई ने, उनको पता है हमें सब चाहिए, करना हमें कुछ नहीं है, साफ सीधी बात, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, कुछ भी कहते रहो जीरो फर्क भाई। कह मैं तो वेजिटेरियन हूँ भाई, फिर तो आप बच गए करण भाई, आपका तो सीन ही नहीं है मच्छी पकड़ने का। वेरी गुड, यू आर सेफ, बिग बॉस चाहते हैं कि आप जो हैं वापस अपनी जगह पर जाए। करण भाई थैंक यू। तो फिशिंग रॉड की बात तो हुई है, एक और मैसेज है 666-222-107 पर। हाँ भाई क्या हाल है, बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड। और क्या है, लेकिन सब होना चाहिए, यूज़ करो या ना करो, अरे जाओ वहाँ। ये दिल को तसल्ली देने वाली बात है खामखा की, सब कुछ होना चाहिए, यूज कर लो ना कर लो। आए बड़े देखो सही इनको, खैर ट्रैफिक हाल बताइएगा, सब होना चाहिए, बात है भाई देसी लोग हमारे एक से एक करते। कह रहे हमारे एक दोस्त से लेकर आया, आज तक एक भी नहीं पकड़ी, टाइम बर्बाद, पैसे बर्बाद। शुभ था गाना।

नहीं सुप्रीम डलवा दूंगा मैं गाना एक बजे से 10 मिनट बाद हमारा भाई यहां से फरार मोहसिन वगैरह 10 मिनट बाद हमारा भाई फरार जी भाई आपका भाई भागेगा सीधा मग्गे की तरफ चाय के मग्गे की तरफ दौड़ के एक बजे प्लीज इमेजिन योरसेल्फ क्या क्या किया होगा मैंने उसको भाई मैं समझ पा रहा हूं एक भाई ने मैसेज किया सलाम कबीर भाई मैं गया था एक दोस्त के चक्कर में क्या मैंने तो वे फिश भी फिश नहीं कीड़ा मिला मच्छी पकड़ने गया था कीड़ा पकड़ा वो भी छोटा वाला बस उस दिन से वो दोस्त का फोन नहीं आया मंदीप भाई मंदीप भाई क्या फिर आपने जो उसे मैसेज फॉरवर्ड किया मुझे फॉरवर्ड करो जो मैसेज आपने उसे किया होगा आई एम प्रीटी श्योर आपने पूरा पैराग्राफ लिखा होगा एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई स्टूडेंट हैं 3 दिन से एबसेंट हैं ये तो जी आपकी गलती है यूसुफ भाई अबू यूसुफ भाई आपकी गलती है एक मैसेज है लो जी कबीर भाई इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी रैपडेट होम मेरे भाई खुश रहिए खुशहाल रहिए हैदर भाई सबको सलाम दुआ कहिए घर पे इस्माइल भाई मैसेज करें इस्माइल भाई कैसे मेरा भाई बढ़िया बढ़िया चल रही है भाई और फरहत भाई ने मैसेज किया फरहत भाई मजे में है बिल्कुल मौज तो यही कर रहे हैं

भाई देखो, मैं आपको दो मूवीज बताता हूँ जो आपके बड़ी काम आ सकती हैं। मैं वैसे बेसिकली थ्रिलर्स और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और हॉरर्स बताता हूँ, तो आज मैं आपको दो मूवीज बताता हूँ जो एक आउट एंड आउट हॉरर है और एक जो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। दोनों बहुत कमाल की हैं और ये ऐसी मूवी है जिनको देखने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आप एंड में बोलेंगे ये क्या हुआ और आप 10 लोगों उसकी कहानी बताना चाहेंगे लेकिन बता नहीं पाएंगे। ऐसी दो मूवीज हैं, एक जो है जो मूवी है उसका नाम है द नाइट हाउस, लाइट हाउस नहीं, नाइट हाउस, द नाइट हाउस। एक तो ये है मूवी और एक है नो वन लिव्स, नो वन लिव्स। ये दोनों की दोनों मूवी आपको खतरनाक वाले शॉक दे, यू विल लव इट, इट्स अ गुड शॉक। दोनों मूवीज को देखने के बाद यू विल बी लाइक भाई ऐसा तो कुछ नहीं देखा, ये तो कुछ था। नाइट हाउस और नो वन लिव्स, नो वन लिव्स क्या एक इतनी इनसेन मूवी, आपने उसका प्लॉट सोच लिया होगा, आपने सोचा होगा हाँ मूवी इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसी करवट लेगी कहानी ना कि आप उस टाइम बोलेंगे नहीं मुझे कुछ निकालना, इस टाइम मेरे को मूवी देखनी है। एंड इसके अलावा है जो दूसरी मैंने बताई ना आपको, द नाइट हाउस। भाई ये थोड़ा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है पर नो वन लिव्स फॉर श्योर देखने लायक है। वैसे भाई आपने इंसेप्शन मूवी देखी है? भाई मैं बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, मेरी पढ़ाई एक्चुअली में फिल्म मेकिंग के अराउंड हुई है, तो मैंने ये सारी मूवी बिल्कुल अच्छे से देखी है। भाई ये मैसेज है, मुंह खुला रह गया तो मक्खी चली जाएगी अंदर, रात में देखना ना, लाइट बंद करे कोई मक्खी नहीं आएगी। मोहसिन भाई सारी चीज़ छोड़ के टेंशन किस बात की, मक्खी देखो मोहसिन भाई ऐसा है आपकी सैलरी आने वाली है, मजे करो ठीक है, मक्खी पे ध्यान मत दो। और इस्माइल भाई ने मैसेज किया है, चाय के साथ सुन रहे हैं इस्माइल भाई, थैंक यू मेरा भाई। सो 666-221-07 नंबर है। कुछ मूवीज़ के सजेशन अगर आप देना चाहें तो दे दीजिएगा, बाकी आप चाहते हैं अगर मैं लिख के बता दूँ आपको तो लिख के बता दूँगा, मुझे कोई ऐसी दिक्कत को नहीं भाई, ठीक है। 666-221-07 नंबर है और आप जो है मुझे बता दीजिएगा। बाकी ताजी एक सेकंड मिलते हैं इस गाने के बाद, जाना नहीं है आपने, ठीक है। एक जो मैसेज है मैं लिख के दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। फरद भाई मास्सलाम मेरे भाई।

मजा आ गया भाई। मोहसिन भाई ने मुझे मैसेज किया सऊदी अरब से, वो कह रहे हैं कि पता नहीं लगता 2 घंटे कब निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच भाई। अब मुझे भी सच में पता नहीं लगता, ये 2 घंटे मुझे लगता है कि काश और होते तो मैं और कहानी सुनाता, और सारी बातें होती, बट ठीक है, मोहब्बत में दूरी भी जरूरी है, इस तरह से लेते हैं इसको। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, और आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दुहा वाला कबीर के नाम से, KABIR.FM107, जुड़ जाइएगा मुझसे इफ यू लाइक टू। बाकी इंशाल्लाह फिलहाल तो 7 बजे न्यूज़ बुलेटिन, कल मिलेंगे इंशाल्लाह शाम 5 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और याद करते रहिएगा, पूरे दिन इंतजार होना चाहिए कि 5 बजे आने वाला है वो। दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM107. साथियों, ऑफिस लाइफ में लंच ब्रेक एक ऐसा वक्त होता है जहां हम थोड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं. थोड़ा सा टाइम मिलता है तो क्यों ना रिलैक्स करें, अपने कोलीग्स के साथ वक्त गुजारते हैं और अपना खाना भी एंजॉय करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ऑफिस लंच हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है? देखिए, रोजाना टेक अवे मील्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कंटेनर्स और फूड वेस्ट, ये सब मिलकर अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अपने लंच रूटीन में कुछ सिंपल चेंजेस ले आए ना, छोटे छोटे, तो हम अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं. ट्रस्ट मी. तो भाई क्यों ना आज इको स्विच में बात कर ली जाए इको फ्रेंडली ऑफिस लंचेस के बारे में. यानी

0: ऐसी लंच हैबिट्स जो सेहतमंद भी हो और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर भी हो। तो भाई पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए ऑफिस लंचेस के दौरान कुछ कॉमन हैबिट्स वेस्ट को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि आप कह लें क्या कहा जाए रोजाना डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स का इस्तेमाल, प्लास्टिक कटलरीज और बैग्स का ज्यादा यूज, अच्छा खाना ज्यादा ऑर्डर करना और फिर वेस्ट कर देना, अपना लंच घर से ना लेकर जाना और अननेसेसरी पैकेजिंग क्रिएट करना। देखिए कभी कभी हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही ऐसी चीजें चूज करते हैं जो कि भाई कुछ मिनट के लिए हमारे लिए यूजफुल होती है लेकिन बाद में क्या बन जाती है, वेस्ट। देखिए फूड वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ग्लोबली, क्योंकि भाई सीधी सी बात है खाना बनाने में पानी एनर्जी और रिसोर्सेज लगती हैं। इसलिए स्मार्ट लंच चॉइसेस एनवायरमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती हैं। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ऑफिस लंच को इको फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे से आइडियाज दे देती हूँ। पहली चीज तो ये कि रीयूजेबल लंच बॉक्सेस यूज करें ना, प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉक्सेस की जगह आप रीयूजेबल लंच कंटेनर्स यूज कर सकते हैं, वो जो आते हैं ना ड्यूरेबल से स्टील के होते हैं या कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो ज्यादा अरसे तक चल सकते हैं और वेस्ट कम प्रोड्यूस होता है कि नहीं। अच्छा अपनी वाटर बॉटल और मग अपने साथ रखें। देखिए ऑफिस में अपनी रीयूजेबल बॉटल और कॉफी मग रखने की आदत डालें, ये एक अच्छी हाइजीन भी है और इससे रोजाना डिस्पोजेबल कप और बॉटल्स का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। अच्छा तीसरी चीज ये है कि मील प्लानिंग करें। अगर आप घर से लंच लेकर आते हैं तो पहले से ही प्लानिंग करने की कोशिश करें। देखिए इससे फूड वेस्ट कम होता है और आप अपनी पसंद का हेल्दी खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। चौथी चीज ये कि लेफ्ट ओवर फूड को स्मार्टली यूज करें ना। देखिए घर का बचा हुआ खाना अगर प्रॉपरली स्टोर किया गया हो ना तो वो अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से उसे वापस से रीयूज किया जा सकता है। इससे खाना भी कम वेस्ट होता है और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है क्योंकि आप घर का खाना खा रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक अवे में स्मार्ट चॉइसेस करें। देखें अगर कभी कभार लंच ऑर्डर करें आप तो जितनी जरूरत हो ना उतना ही ऑर्डर करें, ये नहीं कि जब आपकी भूख डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाए तब जाके आप ऑर्डर करें डबल ट्रिपल ट्रिपल खाना, और जहां मुमकिन हो अननेसेसरी पैकेजिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें। इसकी एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना तो बहुत से ऑफिसेज में एम्प्लॉयज ने सिंपल इको फ्रेंडली लंच हैबिट्स अडॉप्ट की हुई हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग हर रोज अपना लंच रीयूजेबल बॉक्स में लेकर आते हैं, कुछ कोलीग्स मिलकर लंच शेयर करते हैं ताकि फूड का वेस्ट खाने का वेस्ट कम हो। कुछ ऑफिसेज में अपने जो है ना मेरे अपने ऑफिस में लोगों के पास अपने मग्स हैं अपनी बॉटल्स हैं वो रखते हैं और उन्होंने कल्चर बनाया हुआ उसका क्योंकि उन्हें पता है कि इससे डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल कम होता है। सोचिए अगर एक ऑफिस में सिर्फ 50 लोग भी रोजाना एक डिस्पोजेबल आइटम कम कर उसका यूज कम कर दें तो साल भर में कितना वेस्ट कम हो सकता है। छोटी सी ऑफिस हैबिट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है भाई। तो भाई साथियों आज का इको स्विच चैलेंज ये है आपके लिए कि अगली बार ऑफिस लंच के वक्त एक इको चॉइस जरूर अपनाएं, चाहे वो रीयूजेबल लंच बॉक्स हो, अपनी वाटर बॉटल लाना हो या खाने का वेस्ट कम करना हो। और हमें जरूर बताएं कि आप ऑफिस में लंच ज्यादातर घर से लेकर आते हैं या बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए एक बेहतर लंच सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए इनके सोर्स को वेरीफाई करके अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी हिफाजत है। फेक एडवर्टाइजमेंट के जरिए फ्रॉड का शिकार होने से बचिए। अपनी हिफाजत के लिए हमेशा ऑफर्स और प्रोमोशंस के जायज होने की तस्दीक करें। आमतौर पे कम कीमत पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को लेने के लिए ऑनलाइन प्रोमोशंस किए जाते हैं। FM 107 आपसे कहता है कि अगर आपको किसी ऑनलाइन फ्रॉड्स पर शक है तो इकोनॉमिक एंड साइबर क्राइम्स कॉम्बेटिंग डिपार्टमेंट से राब्ता करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM।
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की।
4: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अदान का वक्त हो गया है। अल्लाह

and diverse mind ki sakht zarurat hai. Women scientists aur engineers in problems ki unique solution provide kar sakti hain. इसीलिए स्टेम में फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को फ्यूचर की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है. वुमेन इन स्टेम हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डालती हैं. जो मोबाइल एप्स हम यूज करते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम हासिल करते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, उन्हें कई फीमेल्स ने डिजाइन किया है. ये यूं कहें, उनमें कई फीमेल्स का भी अहम किरदार है. जब ज्यादा वुमेन टेक्नोलॉजी और साइंस में काम करेंगी तो प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी की तमाम जरूरियात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी. इस टॉपिक का एक और अहम पहलू इकोनॉमिक ग्रोथ भी है. रिसर्च ये बताती है कि जब वर्कफोर्स में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव होती हैं. वुमेन का स्टेम सेक्टर में आना नए जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमीज को मजबूत बनाता है और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है. आज कई मुल्क और ऑर्गेनाइजेशंस गर्ल्स को स्टेम एजुकेशन की तरफ इनकरेज कर रही हैं. स्कूल और यूनिवर्सिटीज स्पेशल प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाएं. ये सिर्फ इक्वालिटी का मसला नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रेस और इनोवेशन का भी मसला है. फ्यूचर में AI, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज और तेजी से आगे बढ़ेंगी. अगर वुमेन इन फील्ड्स में ज्यादा नुमाया किरदार अदा करती हैं तो दुनिया को बेहतर सॉल्यूशन और ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल होगा. इस तरह वो सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाएंगी बल्कि पूरी सोसाइटी की तरक्की में एक अहम हिस्सा डालेंगी. वुमेन इन स्टेम सिर्फ करियर्स का टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर की लीडरशिप, इनोवेशन और तरक्की का भी टॉपिक है. जब लेडीज साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का इजहार करती हैं तो नए इन्वेंशंस, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं. मुस्तकबिल उन माशरों का होगा या उन लोगों का होगा जो टैलेंट को जेंडर की नज़र से नहीं बल्कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इनोवेशन की नज़र से देखेंगे. अगर आज हम ज्यादा गर्ल्स को स्टेम फील्ड में सपोर्ट करेंगे तो कल हम एक ज्यादा एडवांस, क्रिएटिव और प्रॉस्पेरस दुनिया देख सकेंगे. वुमेन इन स्टेम वाकई

0: विमेन को स्टेम में जाना चाहिए तो अपनी बच्चियों को लड़कियों को लड़कों को भी लेकिन लड़कियों को भी जरूर इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करें मोटिवेट करें। चलिए मैं तो आपसे अब यहाँ पर इजाजत लूंगी इस बारे के साथ कि इंशाल्लाह कल एक और नए टॉपिक पे आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: One step to 2030. FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हमें सब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादात या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने किराम, आज हम बात करेंगे बच्चों के साथ शफकत के बर्ताव करने की सुन्नत पर। अबू कतादा अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा बिनते ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अबुल आस बिन रबी बिन अब्दुशम्स की बेटी हैं, उनको उठाए हुए नमाज पढ़ रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो उनको उतार देते और जब खड़े होते तो उठा लेते। इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सामने किराम, जरा इस मंजर को तसव्वुर कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े हैं, अल्लाह ताला के सामने खुशू के साथ इबादत फरमा रहे हैं और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई नमासी आपके साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने कंधे या बाजू पर उठाए हुए हैं। जब रुकू या सजदे का वक्त आता है तो मोहब्बत से ज़मीन पर बिठा देते हैं और जब क़याम के लिए खड़े होते हैं तो दोबारा उठा लेते हैं। ये मंज़र कितना खूबसूरत मंज़र है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और शफ़क़त दोनों का हसीन इम्तिज़ाज दिखाता है। कभी बाज़ लोग ये समझते हैं कि बच्चे इबादत में रुकावट होते हैं, अगर मस्जिद में बच्चा हल्की सी आवाज़ निकाल दे तो फौरन सख्त की जाती है, अगर बच्चा नमाज पढ़ने वाले के करीब आ जाए तो नाराज़ी का इजहार किया जाता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें सिखाता है कि बच्चे दीन और इबादत के माहौल से दूर किए जाने के लिए नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ उस माहौल का हिस्सा बनाए जाने के लिए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे की मौजूदगी को बोझ नहीं समझा बल्कि उसकी ज़रूरत और मोहब्बत का ख्याल रखते हुए नमाज अदा फरमाई। उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा और अबुल आस बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थीं, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों और नवासियों से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। आप उन्हें गोद में लेते, बोसा देते, उनके साथ खुश तबीयत फरमाते और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। सामने किराम, हदीस में हमारे लिए सबक है कि बच्चों को मस्जिद और नमाज से मानूस करें। बच्चे अगर इब्तदाही से अपने वालिदैन को नमाज पढ़ते देखें, मस्जिद का माहौल देखें, अजान सुने और इबादत के साथ मोहब्बत का बर्ताव महसूस करें तो उनके दिल में भी दीन से मोहब्बत पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अपने इस अमल से हमें बताया है कि बच्चों की दीनी तरबियत नरमी और मोहब्बत के साथ होनी चाहिए। तो सामने किराम, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें नमाज का दुश्मन न समझें, यानी ये नहीं नमाज के वक्त उनको पूरे इलाके से दूर कर दें बल्कि उनके अपने करीब रखिए, उन्हें नमाज की हरकत दिखाइए, उनके लिए छोटी जाय नमाज रखिए। अगर वो कभी आपकी पुश्त जाएं या करीब बैठ जाएं तो तहमुल से काम लीजिए और जब मुनासिब उम्र हो तो मोहब्बत के साथ नमाज सिखाइए, यही नबवी तरबियत है। अल्लाह ताला हमारी औलाद को नेक साले और नमाज से मोहब्बत करने वाला बनाए और हमारे घरों को इबादत और मोहब्बत से आबाद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
2: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ بمرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فی قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن بار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔
0: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, FM 107 पे इस्तकबाल है आपका और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में हम आपसे बात करते हैं हर हफ्ते। और इस हफ्ते है बात एजुकेशन स्कैम के बारे में, एजुकेशन फ्रॉड के बारे में। आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ये फ्रॉड और इसकी वजह है बच्चे पढ़ाई के लिए फोन, टैबलेट्स और इंटरनेट का यूज करते हैं। स्कैमर्स फेक एजुकेशनल वेबसाइट्स, ऑनलाइन ट्यूटरिंग सर्विसेज, स्कॉलरशिप ऑफर्स और लर्निंग एप्स बनाकर स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। वो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, गारंटीड एग्जाम सक्सेस, फ्री स्टडी मटेरियल्स या ऐसी स्कॉलरशिप्स का एड दिखाते हैं जो सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इन ऑफर्स को लेने के लिए बच्चों से रजिस्टर करने को कहा जाता है और की पर्सनल डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल की डिटेल्स, ईमेल एड्रेस या पासवर्ड। इतनी ही जानकारी काफी है फ्रॉड करने के लिए। कुछ फेक वेबसाइट स्टडी मटेरियल या एग्जाम प्रेप के लिए पहले पेमेंट भी मांगती है। बहुत बार ये वेबसाइट्स कोई एजुकेशनल सर्विस नहीं देती, इसके बदले वो पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेती हैं, पैसे ठग लेती हैं। ये डिवाइस में हार्मफुल सॉफ्टवेयर डाल देती हैं। स्कैमर्स फेक ईमेल्स या मैसेजेस भी भेजते हैं जो देखने में लगता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी या एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए हैं। इन मैसेजेस में स्टूडेंट्स को एक लिंक पर क्लिक करके अपना स्कूल अकाउंट अपडेट करने या आइडेंटिटी वेरीफाई करने को कहा जाता है। जैसे ही लिंक खुलता है, स्कैमर्स को पर्सनल इन्फो या ऑनलाइन अकाउंट का एक्सेस जो है वो मिल जाता है। ऐसे स्कैम से आइडेंटिटी थेफ्ट, पैसे का नुकसान और बच्चे फैमिली दोनों को स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका सॉल्यूशन भी है। कैसे बचें इन स्कैम से या फ्रॉड से? बच्चे सिर्फ वही वेबसाइट और एप्स यूज करें जो स्कूल, टीचर्स या ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस ने रिकमेंड की हो। दूसरा तरीका है कोई भी ऐप डाउनलोड करने या क्लास के लिए पे करने से पहले पेरेंट से वेरीफाई करवाएं। तीसरा, अननोन वेबसाइट पर कभी भी पासवर्ड, पर्सनल इन्फो या फिर पेमेंट डिटेल्स शेयर ना करें। वेबसाइट का एड्रेस यानी कि यूआरएल ध्यान से चेक करें कि वो ऑफिशियल स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। अगर कोई ईमेल या मैसेज सस्पिशियस लगे तो लिंक पर क्लिक ना करें, बड़ों को रिपोर्ट करें। इस तरह से आप फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि आजकल नए जमाने के नए फ्रॉड कुछ इतने यूनिक और ट्रिकी होते हैं कि उनको पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको सतर्क और होशियार रहने की जरूरत है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट फ्रॉड अवेयरनेस के एपिसोड में, जहां पर नए जमाने के और नए फ्रॉड के बारे में हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: है, चाहे आपको म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन क्लासेस हो या फोन कॉल्स हो। बहुत सारे अफराद कई कई घंटे कानों में हेडफोन लगाए रखते हैं। अगर इनका इस्तेमाल एहतियात से ना किया जाए तो ये हमारी समाअत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कि ज़्यादा आवाज़ जो है, हमें समझना यह है कि क्यों नुकसानदेह है। हमारे कान के अंदर नहायत बारीक सेल्स होते हैं जो आवाज़ को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ या तवील अरसे तक शोर में रहने से ये खलिये मुतासिर हो सकते हैं, और एक बार नुकसान पहुंच जाए तो फिर अमूमन दोबारा ठीक नहीं होते। आवाज़ को मुकम्मल तेज़ करने के बजाय आप उसे दरमियानी सतह पर रखें। 60/60 उसूल जो है वो माहरीन तजवीज़ करते हैं, यानी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60% रखें और एक वक्त में 60 मिनट से ज़्यादा मुसलसल हेडफोन इस्तेमाल ना करें। हर एक घंटे के बाद कम से कम 5-10 मिनट का वक्फा ज़रूर लें। सोते वक्त हेडफोन लगाकर ना सोए, और इर्द गिर्द के अफराद भी आपके हेडफोन की आवाज़ सुन सकते हैं तो समझें कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें मालूम हो कि साथ हमारी ख़राब हो रही है तो इसमें इस तरह से भी जाहिर होती है कि दूसरे अफराद की जो बात है वो बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। टीवी या मोबाइल की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद करना हो, इसी तरह कानों में मुसलसल सीटी या फिर घंटी जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाए, शोर वाली जगह पर बात समझने में मुश्किल हो, और अगर ये अलामत महसूस हो तो आप इसे जल्द कंसल्ट कीजिए। अपने कानों का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी समात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम, काम और रिश्तों के लिए बहुत अहम है।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर फारिस इब्राहिम के बारे में। फारिस इब्राहिम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में मर्दों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ दो ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किए। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में फारिस ने मजमी तौर पर 402 किलोग्राम वेट उठाया। बहुत ये जो वेट कैटेगरी के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, काफ़ी यू नो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट था। उन्होंने स्नैच में 177 किलो और क्लीन एंड जर्क में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ 225 किलोग्राम लिफ्ट किया, जिसकी बदौलत वो ओलंपिक चैम्पियन बने। इसके बाद फारिस ने अपनी वेट कैटेगरी तब्दील कर ली और 102 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबले किए। अब वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 94 केजी वेट क्लास में ट्रांजिशन कर रहे हैं। बताता चलूं, 2028 का जो ओलंपिक होने जा रहा है वो लॉस एंजलिस में होगा। फारिस आज भी दुनिया के बेहतरीन वेटलिफ्टर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने IWF वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप और कतर इंटरनेशनल कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कई गोल्ड मेडल्स जीतकर कतर का नाम रोशन किया है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
4: माहिरीन की राय पर।
3: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
4: हेल्थ गाइड,
3: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
4: इलाज और एहतियात तक।
3: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी,
4: दिल से देसी।
3: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
5: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दें। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
6: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है,

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107। दिल

जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी

0: बनेगी यादगार।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपके अपने दिल से लगे हुए शो, दिल से जुड़े हुए प्रोग्राम में। भाई वो प्रोग्राम जहां रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे यादगार कहानियों में बदल जाते हैं। कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, कभी शॉपिंग मॉल्स की रोशनियों में चमकती यादें, और कभी मेट्रो या दीगर सफर के पहले एनकाउंटर्स जो दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। हर शख्स के पास एक कहानी होती है, एक एहसास, एक याद जो उसकी अपनी वर्चुअल डायरी का हिस्सा होती है। और ये यादें ही हैं जो हमें रोजमर्रा की मसरूफ जिंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाती है, एक सुकून, एक मुस्कुराहट और एक नई ताजगी देती है। तो आइए मिलकर सुनते हैं, महसूस करते हैं और शेयर करते हैं वो कहानियां जो हम सबको एक दूसरे के और भी करीब ले आती हैं। यह है आपका अपना प्रोग्राम जहां हर याद एक सफर है और हर सफर एक कहानी। और इसी सिलसिले से हमारे साथ इस प्रोग्राम में होते हैं एक मेहमान, जहां हम उनसे उनकी कहानी सुनते हैं, कुछ सवाल जवाब के जरिए से उनको जानते भी हैं और उन यादों से खुद को कनेक्ट भी करते हैं। दोस्तों इसी सिलसिले से आज के हमारे प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनकी जिंदगी इल्म, दीन और दावत अल्लाह से वाबस्ता है। हमारे मेहमान नौमान शाहिद साहब असल में इंडिया से रखते हैं। आप बचपन में तकरीबन 6 साल की उम्र में अपने वालिद साहब के साथ कतर तशरीफ ले आए और आपकी इब्तदाई तालीम तरबियत कतर में ही हुई। अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कतर में गुजारने के बाद आपने आला दीनी तालीम के लिए इंडिया का रुख किया और दुनिया भर में मकबूल इदारा दारुल उलूम देवबंद से कुल्लियतु शरिया की डिग्री हासिल की। इसके साथ साथ आपने फने तफसीर में तखस्सुस भी किया और अल्लाह सुभान व तआला के फजल से हाफिज़े कुरान भी हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप कतर वापस तशरीफ ले आए और इस वक्त आप विजारतुल औकाफ बराए इस्लामी उमूर दोहा कतर से वाबस्ता हैं और आप एक मस्जिद में इमाम व खतीब के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मरकज अब्दुल्ला बिन जायद आल महमूद अल तकाफी में बाहैसियत दाई की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और कतर की मुख्तलिफ मसाजिद में दरस कुरान, दरस हदीस और दीगर इल्मी और दावती मौजूआत पर मुतअद्दिद दर्स देते हैं। आप विजारतुल औकाफ के शोबा तहफीज के तहत मरकज इमाम अबू हनीफा में बाहैसियत मुदर्रिस भी अपनी कीमती खिदमात पेश कर रहे हैं। आज हम उनसे उनकी इल्मी सफर, दीनी खिदमात, दावत के तजुर्बे और कतर में दीनी तालीम के फरोग के हवाले से भी बातचीत करेंगे। आइए उनके हुजूर चलते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। नौमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सरवर भाई कि आपने हमें मौका दिया और माशाल्लाह हमने सुना, बहुत ही कीमती, बहुत ही मालूमाती और बहुत ही लुत्फ से भरा हुआ प्रोग्राम।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम कुछ सवाल जवाब के सिलसिले से इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। तो नुमा साहब, आप असल में से हैं, इंडिया से हैं, लेकिन बचपन से दोहा में पले बड़े हैं। आज दोहा को आप किस नजर से देखते हैं?
2: सरोज भाई, दोहा को मैं यूं समझता हूँ कि मैं भी कम उम्र ही में दोहा आ गया था, 5-6 साल की उम्र में। जो जो मैं जवान हुआ तो दोहा भी जवान हुआ।
1: वाह,
2: जैसे मैं जवान हुआ हूँ, मेरी परवरिश हुई है, इसी तरीके से दोहा भी जवान हुआ है। आज भी मुझे याद है यहाँ की कॉर्निश की सड़कें और वहाँ पर मौजूद इमारतें। आज जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ी हैरत होती है, क्योंकि पिछले तकरीबन सारी जो मेमोरी है, पूरी जो जिक्रियात सब वापस आ जाती है। हमारे वक्त में तो कॉर्निश का हाल यह था कि सिर्फ 2 बिल्डिंगें नजर आती थी, ले देकर एक शेरेटन की, दूसरी पोस्ट ऑफिस वाली।
1: सही,
2: लेकिन आज जाइए, आज तो पूरा मंजर ही बदल गया।
1: सही,
2: तो इसलिए आसान जवाब ही है आपके सवाल का कि जैसे मैं जवान हुआ हूँ इसी तरीके से दोहा भी जवान हुआ।
1: क्या बात है। शायद साहब, आपके लिए दोहा सिर्फ एक शहर है या घर जैसा देता है?
2: नहीं, अमानतदारी का तकाजा ये है कि दोहा हमारे लिए सिर्फ एक ऐसी जगह नहीं जहां हम रह कर कमा रहे हैं, ये नहीं, बल्कि ये हमारे लिए घर से भी बढ़कर है, घर से भी बढ़कर है। जिस तरीके से हमें अपने वतन हिंदुस्तान की मिट्टी से मोहब्बत है, चाहत है, वहाँ की मिट्टी में हमें अपनाइयत महसूस होती है, तो मैं अपने तौर पर कहता हूँ अपने लिए बिना किसी तामुल के, मुझे दोहा की मिट्टी से भी वही खुशबू महसूस होती है।
1: वाह।
2: और मैं कहीं भी चला जाऊं, इवन कि मैं हिंदुस्तान जाता हूं, वहां से जब वापस आता हूं, जैसे ही लैंड करता हूं यहां दोहा में, तो वो सुकून, वो राहत जो मैसर होती है ना, वो बयान नहीं की जा सकती। इस कदर सुकून महसूस होता है।
1: क्या बात है।
2: और यहाँ के लोगों का बड़ी उसाते जरफी है कि हम लोगों को इस तरह से समेटा है कि मालूम ही नहीं होता कि हम कहीं और से आकर यहाँ रह रहे हैं।
1: क्या बात है।
2: ये इस मुल्क की खूबसूरती है और इस मुल्क का एक इंतजार और क्या कहते हैं कि इम्तियाज है।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब। तो चलिए ये बताइए कि दोहा में आपका एक आइडल या सुकून भरा दिन कैसा होता है?
2: देखिए सरवर भाई, दोहा में एक सुकून भरा दिन, अगर हम इसको तकसीम करें दो हिस्सों में, एक तो वो दिन हुआ करते थे जब हम तालिब इल्म थे, स्कूल जाते थे और इसी तरीके से तालीमी मशगूलियत हुआ करती थी, स्कूल है, ट्यूशन है, तहफीज है, ये सारी चीजें। और एक होता है, एक दिन वो है जो आज हम जी रहे हैं, आज हमें स्कूल की टेंशन नहीं है, आज हमें अपने काम की टेंशन रहती है, तो आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों दिन कैसे गुजरते थे, आपको पता होगा दोनों में फर्क रहता होगा बिल्कुल।
1: वाह वाह,
2: ठीक है,
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और स्कूल के जो अय्याम थे, यानी जब हम स्कूल जाया करते थे, तब का तो सुकून का दिन हम यही समझते थे कि किस तरह से स्कूल में छुट्टी हो जाए आज, क्यों, लेकिन यहाँ तो वो सीन नहीं है कि भाई जिस तरह अपने मुल्कों में होता है कि किसी वजह से छुट्टी बार, लेकिन सुकून का दिन यही होता था कि आप सुबह स्कूल से वापस आए, स्कूल से वापस आने के बाद और आने के बाद बस ये इंतजार रहता था किस तरह से बस घर के पास पहुंचे और हम निकल कर अपना फुटबॉल या कभी जब क्रिकेट का शौक चढ़ा तो बैट बॉल लेकर मैदान की तरफ रवाना हो जाए। और ये आप हमारे नाज़रीन को भी इल्म होगा, यहाँ कॉर्निश पर ये जो अभी कतन नेशनल म्यूजियम बना हुआ है
1: जी,
2: तो इसके करीब ही हमारा घर हुआ करता था, सलाता करीम में हमारा घर होता था। और कतन नेशनल म्यूजियम के बिल्कुल पड़ोसी में एक बड़ा सा मैदान है जो अब एक होटल में तब्दील हो गया है, और तो वहाँ पहले होटल नहीं था, वो पूरा मैदान खाली हुआ
1: करता था जहाँ पे क्रिकेट हुआ करता था, याद है,
2: वहीं पर क्रिकेट होता था, वहीं पर लोग साइकिलिंग करते थे, वहीं पर लोग फुटबॉल भी खेलते थे, तो वो एक तरह से समझिए कि हमारे मोहल्ले के जो लड़के थे, हमारा वो एक क्या कहते हैं कि पॉइंट था जहाँ हम लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ खेलते थे। और आज भी याद है जब कभी कभार मैं बकाले में जाता हूँ, वो एक रैल वाला जो वो आता है, रानी के फ्रूटी आती है, वही सबके हाथ में हुआ करती थी।
1: क्या बात है।
2: और वहाँ अपना किस तरह से इसको हम लोग बड़ा क्या कहते हैं कि खुशी का और बहुत सुकून का लफ्ज़ समझते थे। और ये चीजें बहुत कम मैसर होती थी, इसलिए कि हफ्ते के बीच में घर वाले निकलने नहीं देते थे।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत साचा खींचा है आपने। सिर्फ 6 साल की उम्र में दोहा आना हुआ और बचपन की पहली याद जो आज भी जहन में है आपके, आपने काफी चीजें हमें बता दी ऑलरेडी, फिर भी कोई एक लाइन में कुछ को और ज्यादा खास बताना चाहते हो इस बात को, इस सवाल के जवाब में?
2: दोहा आने के बाद सबसे पहली चीज जो यहाँ, जब हम एयरपोर्ट पर निकले, चूंकि मैं अपने नाज़रीन को बता दूं, हमारे वालिद साहब यहाँ 90s से यहाँ पर है, लेकिन हम लोग आए 2005 या 6 में आए हैं। तो जैसे अभी जो चीज मुझे याद है भी अपने दिमाग में, वो ये कि जैसे हम लोग यहाँ तो एयरपोर्ट पर लैंड किए, जब बाहर निकले, उस वक्त ये पुराना एयरपोर्ट होता था, मतार कदीम वाला, और ये हत्ता की ये मस्जिद अबू बकर के सामने वाला भी वो एयरपोर्ट नहीं था
1: जी, जी।
2: तो मैं छोटा सा था, मेरे दादा लेकर आए थे मुझे, तो वालिद साहब ने देखते ही, जो चीज मुझे याद है, गोद में उठाया और एक बाप वाली मुश्किकाना मोहब्बत वाली झांकी देकर एक पप्पी दी थी।
1: वाह वाह वाह,
2: ये लम्हा मुझे याद है।
1: क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है भाई, वाह। 1990s, और कहना चाहिए अब्बा जब होंगे तो आप जाहिर बात है छुट्टी वगैरह में भी आते होंगे, और फिर जब आप परमानेंट आ गए तो फिर तो बात ही अलग थी। बट आज के दोहा में सबसे

0: बड़ा फर्क आपको किस चीज में नजर आता है जब के दोहा में और आज के दोहा में, अगर बस एक लाइन में हम इसका जवाब चाहें तो?
1: तब का दोहा तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, लेकिन आज के दोहा में बहुत सारी खुसूसियात हैं। सबसे पहली चीज ये कि आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के साथ साथ आपको मुख्तलिफ सकाफतें भी दिखती हैं।
0: वाह।
1: आपको मुख्तलिफ कल्चर भी आपको देखने को मिलता है।
0: वाह।
1: और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि इतने ममालिक के लोग, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के कल्चर की, एक दूसरे की आदात की, एक दूसरे की तकालीद की, एक दूसरे की जुबान की, हर चीज की इज्जत करता, कदर करता, उसमें शरीक होता है।
0: सही।
1: और ये चीज बहुत कम मिलती है आज भी दुनिया में। बहुत सारे ममालिक तरक्की याफ्ता है, लेकिन ये खास इम्तियाज जो है ना, वो दोहा को नसीब है।
0: क्या बात है। दोहा में गुजरी हुई तालीमी जिंदगी ने आपकी शख्सियत को किस तरह से शेप किया है?
1: बिल्कुल यकीनन, दोहा में गुजरे हुए तालीमी जो अय्याम हमारे हैं, मैं तो यूँ समझता हूँ कि हमारी जिस तरह से नशोनुमा दोहा में हुई है, इसी तरीके से हमारी वसात ज़र्फ़ी, फिक्री बुलंदी और इल्मी बुलंदी, और मुख्तलिफ जिंसियात, मुख्तलिफ ज़हनों के साथ हम आहंगी और उनके साथ मिलना जुलना, उनकी बातों को समझना और उनको समझना, ये सारी नेमत जो है ना, ये सारी चीजें दोहा ही की मरहूल मिन्नत है। बाकी और किसी जगह पर मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि अगर मैं होता, शायद अपने मुल्क ही में अगर मैं होता, शायद मैं इस कदर जो वसात है, इस कदर जो खुलापन है, वो नहीं होता।
0: वाह।
1: और ये वसात, ये खुलापन ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज है। अगर आप हुदूद शरा के अंदर अंदर किसी के अंदर ये चीज है, ये महमूद चीज है, पसंदीदा चीज है। और आगे आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, मैं आपको, चूंकि मैं जिस शोबे से वाबस्ता हूँ, मुख्तसरन कहता हूँ कि अगर आप दावत इल्लाह का काम करना चाहते हैं, जब तक आपके अंदर वसात नहीं होगी जरूर भाई, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। लोगों को अपने करीब आप कैसे लाएंगे?
0: सही सही।
1: और ये चीज जो मिली है दोहा की बरकत से मिली।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सर

0: फिर है
1: माशाल्लाह।
0: हमारी दादी की वो हाफिज आती है, हमारे दादा तो बहरहाल वो एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, अल्लाह उनको लंबी उम्र अता फरमाए। बाकी और इसी तरीके से और भी जो है हमारा ये घरेलू बैकग्राउंड ये क्या है कि भाई दीनी है, तो जिस तरीके से हम बड़े हुए शऊर की उम्र को पहुंचे तो हमारे कानों में ये बात आने लगी कि भाई आपको भी इसी लाइन पर चलना है।
1: क्या बात है, क्या बात,
0: आपको भी इसी लाइन पर चलना है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही होता है अमूमन, ठीक है ना, तो यही चीज थी कि भाई ये मुफ्तियों का घराना है तो इसमें भी आलिम और मुफ्ती ही होंगे।
1: क्या बात,
0: तो ये चीज हमारे कानों में जाने पड़ने लगी और कानों में जब चीज जाती है तो वो दिलों में जाकर बैठ जाती है। फिर हमने उसी को अपना रास्ता चुना और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर चले और चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ता कयामत चलते रहेंगे, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता
1: फरमाए। आमीन आमीन। और यहाँ से फिर दारुल उलूम देवबंद का सफर शुरू हुआ, तो इसके हवाले से क्या बताना चाहते हैं?
0: जी, मैंने हिफ्ज यहीं किया अपने वालिद साहब के पास, उसके बाद यहाँ मंसूरा में एक मरकज है तहफीज का औकाफ का, उससे वाबस्ता हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ अरबी स्कूल जो होता है, मैंने अरबी स्कूल में भी पढ़ा, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब स्कूल था, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल था, और वहाँ से उसके साथ साथ स्कूलिंग के साथ साथ मैं अपने वालिद साहब के पास ये दर्स निज़ामी जिसे कहते हैं कुल्लियतु शरिया, इसके इब्तदाई दर्जात की तालीम में हासिल करता रहा। लेकिन जाहिर से बात है कि अब आपको आला तालीम तो घर तो मिलेगी नहीं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं का सफर करना होगा।
1: सही।
0: और दारुल उलूम देवबंद एक दुनिया की मायानाज इल्मी दरसगाह है, दीनी दरसगाह है, और हमारे घराने के कई अफराद वहाँ से फारिग तहसील है, वहाँ से उन लोगों ने दर्स हासिल किया। और जिस तरह उम्र बढ़ती रही तो वालिद साहब इस चीज की तरगीब भी देते रहे कि बेटा कोशिश करो, मेहनत करो, और आपको वहाँ जाना है, वहाँ से आपको वहाँ दाखिला लेकर आपको पढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आया 2018 में हमने जाकर दारुल उलूम देवबंद में एंट्रेंस एग्जाम दिया, और अल्लाह का करना ऐसा था कि माशाल्लाह नसीब भी था, वालिद साहब की दुआएं थी वालदैन की, वहाँ एग्जाम में पास हो गए, हमारा दाखिला हो गया। और उसके बाद सिर्फ एक तकरीबन 4 या 5 साल की मुद्दत हम वहाँ अर्सा क्याम हमारा क्याम रहा और हमने वहाँ आला तालीम हासिल की। और ये चीज पहले से थी कि हमें दारुल उलूम जाना है, मैं तो हमें पहले से बात बताई गई थी।
1: सही,
0: उसी वजह से उसी चीज को ध्यान में रख के हमने तैयारी भी की। फिर
1: क्या बात है सर, तो सर देवबंद में तालीम हासिल करते हुए दोहा की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती थी?
0: सबसे ज्यादा यहाँ के खाने याद आते थे।
1: क्या सच्ची बात है भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है,
0: यहाँ की खाने याद आते थे और तुर्की होटल के शॉर्मे याद आते थे।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो तालीम मुकम्मल करने के बाद कतर वापस आने का फैसला कैसा रहा, क्यों किया, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए।
0: वापस तो आना था हमको इसलिए कि हमारा पूरा घराना यही मुकीम था, यही है, ठीक है,
1: ओके।
0: और दूसरी बात ये हमने देखा कि हमने जो तालीम हासिल की है इसके जो मौके और इसमें काम करने के जो मौके यहाँ फराहम होंगे, यहाँ मिलेंगे, वो शायद से हिंदुस्तान में नहीं मिल सकते थे। और हमारे वालिद साहब क्योंकि एक अरसे से इस मैदान में इस काम में थे, उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के मैं वापस आया और मुझे आना भी था।
1: क्या बात है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सरवर मिर्जा आपके साथ, बस मैं यूं गया और यूं वापस आया, देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आज इमाम और खतीब के तौर पर उसी मुल्क में यानी कतर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो ये ऐसा करना कैसा लगता है जहां आपकी परवरिश हुई और वहीं अब आप माशाल्लाह इस लेवल पे हैं, तो कैसे क्या एहसास है इसको लेके?
0: ये बहुत अच्छा एहसास है, जिस मुल्क ने हमें पाला पोसा, हमें सिखाया पढ़ाया,
1: वाह,
0: अब हम उसी मुल्क को सर्व कर रहे हैं,
1: वाह,
0: और ये हक है, इस मुल्क का हक है हमारे ऊपर कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, और जिस तरीके से जिस शोबे से वापस होकर खिदमत कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है देखिए अल्लाह का करम है यकीनन, लेकिन अल्लाह के करम के बाद अल्लाह के फजल के बाद इस मुल्क की देन है, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को जरिया बनाया, तो हम उसी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं वापस।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मरकज में दाई के तौर पर मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात

0: मुलाकात होती ही होगी और होती ही है। कोई यादगार वाकया शेयर करना चाहते हैं जो हम सब के लिए फायदेमंद भी हो?
1: जी, एक बतौर दाई, जैसा आपने कहा कि भाई मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है, सब हर किस्म के हर नस्ल के लोग, बहरहाल एक वाकया है चाहे इसको आप किस तरह से लेंगे बल्कि हमारे सामीन को मजा आएगा।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: कि जी एक आदमी, एक मुझे अच्छे से याद है, मैं सुख वाकिब की मस्जिद में इमाम था, तो एक आदमी आया हमारे पास, अफ्रीकी किसी मुल्क से वो उसका ताल्लुक था, उसने कहा नमाज के बाद आकर कि उसके साथ एक आदमी और था कि भाई मुझे इस्लाम कबूल करना है। ठीक है,
0: सुभान अल्लाह।
1: बड़ी खुशी की बात, बड़ी खुशी की बात थी। तो बहरहाल हमने बात उसकी नमाज के बाद हमने ऐलान किया मस्जिद के अंदर कि भाई एक हमारे भाई हैं वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो सरवर भाई ये ऐलान हुआ, और आपको पता है कि जब यहाँ इस तरह की चीज होती है तो लोग किस कदर उसका एहतराम करते हैं। लोग एहतराम और मोहब्बत के साथ साथ लोग माली ताउन भी करना शुरू कर देते हैं उसकी सबात करने के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज हुई, और एग्जैक्ट वही चीज, उसी वही आदमी मुझे दो हफ्ते के बाद, मैं सनाइया की अलातिया जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाता था उस वक्त।
0: ओके,
1: ये बात है सन 2023-24 की। तो वहाँ तो देखा कि नमाज के बाद फिर एक जगह कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने मालूम करने पता चला कि एक आदमी इस्लाम लाना चाहता है। मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ जाइए। उसके बाद जब मैंने उसको देख गया,
0: मैं पहुंच गया
1: वही आदमी। मैंने कहा भाई, मैंने कहा कि तुम तो वहाँ भी थे बस 2-3 हफ्ता पहले, वहाँ अभी यहाँ। तो बाद में पता चला कि ये दो तीन आदमी, इनका काम ही है।
0: माजर चाहता हूँ, मुझे हंसी आ गई, बट क्योंकि बात ही ऐसी थी, और बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको बताया। अभी बाहर हाल आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में कतर जैसे मल्टी कल्चरल मुआशरे में दीनी पैगाम पहुंचाना कितना चैलेंजिंग है आपके लिए?
1: हकीकत ये कि इसमें कोई इस कदर चैलेंज नहीं है कि जिसे हम परेशानी से ताबीज करें।
0: वाह।
1: बल्कि हमारे लिए सहूलत पैदा करता है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल मैं आपको बताऊं सरवर भाई, 2022 में जब कतर में फीफा हुआ था, आप देखें कि ये खेल का प्रोग्राम था, दुनिया खेल के लिए आ रही है, और बहुत ये दुनिया के बहुत बड़ा मेला होता है खेल का।
0: सही, फीफा, सही,
1: ठीक है। लेकिन आप देखें कि कतर ने, यहाँ कतर में रहने वाले दुआत ने किस तरह उसका इस्तेमाल किया और उसे एक इस्लामी प्रोग्राम भी बनाया और दावती प्रोग्राम बनाया, और उस नतीजे में कितने लोग, बल्कि कितने हजार लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
0: सुभान अल्लाह।
1: शायद रिपोर्ट पड़ी होगी।
0: सुभान अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये इसको कोई चैलेंज नहीं कह सकते, बल्कि ये हमारे लिए मुफीद होता है, मददगार साबित होता है।
0: क्या बात है,
1: मददगार साबित होता है।
0: क्या
1: यहाँ के हम जब किसी के कल्चर की कदर करते हैं, उसको अच्छी निगाह से देखते हैं, उसकी इज्जत करते हैं ना, तो वो ये सारी चीजें वो इंसान के करीब होने का सबब बनता है। और जब कोई आपसे करीब होता है ना, तो वो आपकी अपनी जिंदगी से अगर अच्छी जिंदगी तो उससे मुतासर भी होता है, फिर वो तासुर किसी तरह आपको एक कामयाब सफर पे लेके जाता है।
0: क्या बात है। क्या कोई ऐसा वाकया है जब किसी शख्स की जिंदगी में आपकी बात ने खूबसूरत तब्दीली लाई हो और आपको याद हो, या उन्होंने आपसे शेयर किया हो, क्या कभी ऐसा हुआ है?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह ये होता रहता है, क्योंकि हम लोगों का काम, आपने जैसा कि आपने शुरू में बताया था,
0: जी।
1: मताकिब में ये दुरूद देना और इसी तरीके से दावती अस्पार की सारी चीजें, तो ऐसा बहुत हुआ है कि हमारे दर्श में बहुत सारे लोग आते थे जिनकी जिंदगी पहले कुछ थी, लेकिन दुरूस में आने के बाद अल्लाह की मदद और तौफीक के साथ उनकी जिंदगी काफी तब्दील हुई।
0: क्या बात।
1: और मैं आपको बताऊं कि एक आदमी, एक हमारे साथी थे, उनकी अपने घर अपने वालिदैन से किसी बात पर नाशाकी थी, इख्तलाफ था। आप यकीन ही करेंगे सर और भाई, वो उस बंदे ने 3 साल अपने वालिदैन से बात नहीं की थी किसी बात पर ना, और न वो अपने वतन जा रहा था। मैं यहाँ मुगरीना में मस्जिद नंबर 131 है, जहाँ हलीमा सादिया या मेरा दर्स होता है, और उस दिन मैंने दर्स पर ये वालिदैन के हुकूक पर थोड़ा सा गुफ्तगू की। तो आदमी मेरे पास आया और आकर उसने अपनी ये सारी चीजें बताई। मैंने उसको बस इतनी बात की, मैंने कहा कि आप जरा ये सोच लें कि अगर आपका बच्चा आपके साथ ये करे, आपको आप पर कैसे गुजरेगा। मैंने कहा कि अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो अपने वालिदैन को बर्दाश्त कराओ, अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर खुद भी ये काम मत करो।
0: बहुत हो।
1: मैंने उससे बस इतनी बात की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वतन

0: की और हमने कहा कि आप वीडियो कॉल करके माँ को एक बार उसको बात तो करो, उसको एक क्या कहते हैं मोहब्बत भरी शफकत भरी पप्पी तो दो माँ को,
1: क्या बात
0: बता दो बाप को,
1: क्या
0: दो
1: बात।
0: लेकिन माशाल्लाह इसी एक मुख्तसर से बने उसका ये जो जिंदगी का एक तारीख पहलू था 3 साल का वो उसने
1: बहुत खूब। शाहिद भाई इतनी मसरूफ जिंदगी के बावजूद अपने लिए वक्त कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक मतलब एक अजीब सी बात यह है कि हम सोचते हैं दाई हैं, इमाम हैं, मौलाना हैं, जिम्मेदारी तो इनके ऊपर है, बट ये बड़ा मुश्किल काम है ऐसा यूजुअली लोग सोचते हैं, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ।
0: देखिए मेन चीज ये है सौरभ भाई कि अगर आप अपने औकात को मुरतब कर लेना, अपना एक निजाम औकात बना ले, टाइम टेबल बना ले, तो ये सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और इस मुल्क की नशो नुमा में ये चीज भी थी कि हमने देखा कि लोग किस तरह से अपने औकात की हिफाजत करते हैं, अपने औकात को कीमती बनाते हैं, तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से घर में भी सिखाई। तो तमाम तर मसरूफियात के साथ साथ घर वालों के लिए अपने लिए वक्त निकालना आसान होता है, मैं इसको भी उसी मसरूफियात में समझता हूँ।
1: वाह,
0: मैं इसको भी उसी मसरूफियात में समझता हूँ। जैसे यहाँ पर वीकेंड का बड़ा शिद्दत से इंतजार रहता है, सबको रहता है, जिस तरह से वीकेंड आता है, मिसाल के तौर पर मैंने अपने लिए जुमा के दिन चुना, जुमा के दिन असर के बाद से लेकर ऐशा तक ये सारा वक्त घर वालों के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, और उसके बाद लेके निकलना इधर उधर, और अपने लिए क्या है कि भाई तमाम तर जो काम है उसको अंजाम देने के बाद जो वक्त निकलता हो तो
1: बात है। दोहा के लोगों की कौन सी आदत या खूबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
0: दोहा में जो लोग जब बाहर के लोग दोहा आ जाते हैं उनके अंदर एक जो चीज सबसे अच्छी ज्यादा मुझे पसंद आती है, अच्छी लगती है कि वो बहुत सारी वो हरकतें जो अपने मुल्क में नहीं, वो अपने मुल्क में बड़ी खुले दिल से करते तो यहाँ आकर वो एक अच्छे इंसान बन जाते। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आसान से बात बताता हूँ, अपने मुल्क में जब लोग रहते हैं ना तो उनकी उनको हर आदमी की फिक्र रहती है, हर आदमी पर तबसरा, हर आदमी पर तबर्रा, भाई फला
1: मैं समझ रहा हूँ,
0: फला पतला फला मोटा। यहाँ आने के बाद ना तो ये सारी जो खुराफात है उनसे उनके दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रह के फिर वापस जाते हैं, तब भी वो इसी सूरत इसी हालत पर कायम रहते हैं।
1: ये हमारे दोहा की खूबसूरती है माशाल्लाह।
0: जी
1: नौमान भाई, क्या किसी गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, या जैसे कि आपने बताया नए मुस्लिम के साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहते हो?
0: हमारे मरकज में तो इस तरह से बहुत सारे लोग आते रहते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं। मैं एक बार तो मैं जब भी उनसे किसी से पूछता हूँ कि भाई आखिर आप कोई भाई 30 साल से कोई किसी और मजहब को मानने वाला, कोई 40 साल से किसी और मजहब को मानने वाला है, तो उसी में सारी उनकी खानदान है, सारी फैमिली है, मैं पूछता हूँ कि भाई आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको इस तरफ लेकर आ रही है, ठीक है। तो अक्सर तकरीबन 80% लोगों का जो जवाब होता है वो कहते हैं कि हमें इस्लामी तकालीस से इस्लामिक जो कल्चर है, यहाँ इस्लामी जो सकाफत है, हम इससे मुतासिर होकर हम इस तरफ आए, हमने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, इस्लाम को समझना शुरू किया, आज हम इस्लाम को कबूल करने के लिए आए।
1: क्या बात है।
0: इसलिए हमारे सुनने वालों से यही गुजारिश है कि बजाय किसी को अपनी जुबान से कहने कि भाई तुम ये हो जाओ, वो हो जाओ, ये करो, वो करो, हम अपनी अपने अखलाक से, अपनी आदात से और अपने हुस्न अखलाक से बल्कि हम दूसरों को दावत दें। याद रखिए किसी बड़े अल्लाह वाले का ये कहना है कि जितना आपका अमल दूसरों पर असर डालता है आपका कौल उतना असर नहीं डालता है।
1: क्या बात है। जो प्रोग्राम हमारा इख्तिताम को पहुंच रहा है तो कुछ एक दो सवाल और, जो फैमिलीज और यंग जनरेशन के जो लोग हैं कतर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं या आ रहे हैं या अभी अभी आए हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
0: उनके लिए हमारा पैगाम यही, हमारे जो नौजवान हमारे भाई बहन यहाँ रहते हैं और इसी तरीके से जो आएंगे, आप सबसे पहली चीज आप इस मुल्क की कदर करें, इसलिए कि जो चीजें आपकी जिंदगी में इस मुल्क की वजह से हैं, वो आपको अगर शायद वहाँ मिलती तो आप यहाँ ना आते, वहाँ ना मिलती इसकी आप यहाँ
1: बहुत अच्छा।
0: आप इस मुल्क की कदर करें और यहाँ के कवानीन की कदर करें, और यहाँ की जो सबसे बड़ी नेमत है वो अमन अमान की नेमत है, अमन अमान की सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए यहाँ के कवानीन की कदर करके आप इस मुल्क की कदर करें। और दूसरी बात यह है कि ये एक आप यहाँ आए हैं, आपको मुख्तलिफ जिंसियात, मुख्तलिफ सकाफतें, मुख्तलिफ कल्चर के लोग मिलेंगे, तो आप अपने अंदर अदब और एहतराम का जज्बा पैदा करें।
1: वाह।
0: किसी की बात पर बेजा तनकीद, बेजा नकीर, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तरगीज नहीं।
1: वाह।
0: इसलिए कि एक इस्लामी मुल्क है, अगर एक इस्लामी मुल्क ने किसी चीज की जगह दी, इजाजत दी है, तो वो हमसे और आपसे अच्छे अंदाज से समझ कर उन्होंने दी है, क्या पता वही चीज कल उसके लिए किसी और रास्ते पर चलने का सबब बन जाए। इसलिए इज्जत और एहतराम अपने अंदर जरूर पैदा करें, किसी पर बेजा तनकीद ना करें।
1: क्या बात है भाई, बहुत खूब। प्रोग्राम के अख्तिताम पर हमारे लिसनर्स के लिए आपका क्या मुख्तसर पैगाम है?
0: हमारे जो भाई सुनने वाले हैं भाई बहन, उनके लिए भी मुख्तसरन यही पैगाम है कि इस मुल्क की कदर कर यहाँ के लिए और यहाँ के जो हुक्काम हैं उनके लिए आप दुआएं किया करें।
1: वाह।
0: उनके लिए दुआएं किया करें। आप अपनी जुबान से, अपने कौल फेल से कोई सी बात ना करें जो आपके लिए भी परेशानी का सबब बने, और इस मुल्क की जो एक इज्जत है, इसका जो एक वकार है, उसको भी आप मजरूह करें। और इसी तरीके से इस मुल्क में रहते हुए मैं दीनी जाविये से बात कहता हूँ कि अपने आप को आप इस्लाम से जोड़े, करीब करें। इसलिए कि जितना जिस कदर आपको यहाँ मौके मैसर है ना, आपको कहीं और मैसर नहीं हो सकते हैं। आप इस चीज पर तवज्जो दें, और यहाँ पर इस चीज को बल्कि हुकूमती सतह पर प्रमोट किया जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह मराकिज, कुरान के मराकिज मिलेंगे, दीनी मराकिज मिलेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। वो इसीलिए कि आप यहाँ आए, कुछ सीखें, कुछ पढ़ें, कुछ लिखें, और अपनी जिंदगी को तब्दील करें, एक मकाम को लेके जाए, ये चीज यहाँ आसानी में असर।
1: जज़ाकअल्लाह खैरन, बहुत बहुत शुक्रिया नौमान साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, बट दिल ये चाहता है कि आपसे बात करते रहें और आपसे सीखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से इतना वक्त निकाला कि आप हमारे साथ बातचीत कर पाए। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। तो दोस्तों, आप सब भी इतना ख्याल रखिए, और आपसे इतना ही कहना है कि जिंदगी का हर सफर खूबसूरत है, हर नई मंजिल पर अपना हौसला जिंदा रखिए, अपनी पहचान को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहानी सिर्फ शहर ही नहीं लिखता, कहानी आप भी लिखते हैं। इसी खूबसूरत सोच के साथ इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात के लिए इजाजत दीजिए। सुनते और देखते रहिए FM 107, दिल से देसी।
2: दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार। कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107,
3: दिल से देसी। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क के हादसों को बढ़ा देता है। ये सिर्फ आपकी अपनी जान को ही नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए दरख्वास्त है कि हमेशा एहतियात बरतें, ड्राइव करते वक्त अपना पूरा ध्यान सड़क पर रखें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी के लिए जिंदगी और मौत का सबब बन सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि जिम्मेदार ड्राइवर बने, अपनी और दूसरों की सेफ्टी को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: Are you ready?
4: फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
3: टॉप 10 काउंटडाउन।
4: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

हफ्ते नए सरप्राइजेस, वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

0: इसीलिए लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
1: द रिक्वेस्ट शो
0: शाम 4 से 5 फील के साथ,
1: फील के साथ
0: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहे कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: बस बहुत गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, the अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
5: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल वेटलिफ्टर फारिस इब्राहिम के बारे में। फारिस इब्राहिम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में मर्दों की 96 किलोग्राम कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया और इसी के साथ दो ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किए। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में फारिस ने मजमी तौर पर 402 किलोग्राम वेट उठाया। बहुत ये जो वेट कैटेगरी के बारे में जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, काफ़ी यू नो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट था। उन्होंने स्नैच में 177 किलो और क्लीन एंड जर्क में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ 225 किलोग्राम लिफ्ट किया, जिसकी बदौलत वो ओलंपिक चैंपियन बने। इसके बाद फारिस ने अपनी वेट कैटेगरी तब्दील कर ली और 102 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबले किए। अब वो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए 94 केजी वेट क्लास में ट्रांजिशन कर रहे हैं। बताता चलूं, 2028 का जो ओलंपिक होने जा रहा है वो लॉस एंजलिस में होगा। फारिस आज भी दुनिया के बेहतरीन वेटलिफ्टर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने IWF वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप और कतर इंटरनेशनल कप जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कई गोल्ड मेडल्स जीतकर कतर का नाम रोशन किया है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन FM 107

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत ना सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम एक ऐसी नेमत के बारे में बात करेंगे जिसकी कदर अक्सर हमें उस वक्त होती है जब इसमें कमी आना शुरू हो जाती है, और वो है हमारी हेयरिंग, हमारी समात। आजकल हेडफोन्स और ईयरबड्स का इस्तेमाल बहुत आम हो चुका है। चाहे आपको म्यूजिक सुनना हो, ऑनलाइन क्लासेस हों या फ़ोन कॉल्स हों, बहुत सारे अफराद कई घंटे कानों में हेडफोन लगाए रखते हैं। अगर इनका इस्तेमाल एहतियात से ना किया जाए तो ये हमारी समात को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कि ज़्यादा आवाज़ जो है, हमें समझना यह है कि क्यों नुकसानदेह है। हमारे कान के अंदर नहायत बक सेल्स होते हैं जो आवाज़ को हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ या तवील अरसे तक शोर में रहने से ये खलिये मुतासिर हो सकते हैं, और एक बार नुकसान पहुंच जाए तो फिर अमूमन दोबारा ठीक नहीं होते। आवाज़ को मुकम्मल तेज़ करने का आप उसे दरमियानी सतह पर रखें। 60/60 उसूल जो है वो माहरीन तजवीज़ करते हैं, यानी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60% रखें और एक वक्त में 60 मिनट से ज़्यादा मुसलसल हेडफोन इस्तेमाल ना करें। हर एक घंटे के बाद कम से कम 5-10 मिनट का वक्फा ज़रूर लें। सोते वक्त हेडफोन लगा कर ना सोए, और इर्द गिर्द के अफराद भी आपके हेडफोन की आवाज़ सुन सकते हैं तो समझें कि आवाज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे हमें मालूम हो कि समात हमारी ख़राब हो रही है तो इसमें इस तरह से भी जाहिर होती है कि दूसरे अफराद की जो बात है वो बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। टीवी या मोबाइल की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद करना हो, इसी तरह कानों में मुसलसल सीटी या फिर घंटी जैसी आवाज़ आनी शुरू हो जाए, शोर वाली जगह पर बात समझने में मुश्किल हो, और अगर ये अलामत महसूस हों तो आप जल्द से जल्द कंसल्ट कीजिए। अपने कानों का ख़ास ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी समात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम, काम और रिश्तों के लिए बहुत अहम है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, ऑफिस लाइफ में लंच ब्रेक एक ऐसा वक्त होता है जहां हम थोड़ा रिलैक्स सा फील करते हैं। थोड़ा सा टाइम मिलता है तो क्यों ना रिलैक्स करें, अपने कोलीग्स के साथ वक्त गुजारते हैं और अपना खाना भी एंजॉय करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे ऑफिस लंच हैबिट्स का एनवायरनमेंट पे क्या असर होता है? देखिए, रोजाना टेक अवे मील्स, प्लास्टिक पैकेजिंग, डिस्पोजेबल कंटेनर्स और फूड वेस्ट, ये सब मिलकर अननेसेसरी वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने लंच रूटीन में कुछ सिंपल चेंजेस ले आए ना, छोटे छोटे, तो हम अपना खाना भी एंजॉय कर सकते हैं और अपनी एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। ट्रस्ट मी। तो भाई क्यों ना आज इको स्विच में बात कर ली जाए इको फ्रेंडली ऑफिस लंचेस के बारे में, यानी ऐसी लंच हैबिट्स जो सेहतमंद भी हों और एनवायरनमेंट के लिए बेहतर भी हों। तो भाई पहले तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। देखिए, ऑफिस लंचेस के दौरान कुछ कॉमन हैबिट्स वेस्ट को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि आप कह लें, क्या कहा जाए, रोजाना डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स का इस्तेमाल, प्लास्टिक कटलरीज और बैग्स का ज्यादा यूज, अच्छा खाना ज्यादा ऑर्डर करना और फिर वेस्ट कर देना, अपना लंच घर से ना लेकर जाना और अननेसेसरी पैकेजिंग क्रिएट करना। देखिए, कभी कभी हम सिर्फ कन्वीनियंस के लिए ही ऐसी चीजें चूज करते हैं जो कि भाई कुछ मिनट के लिए हमारे लिए यूजफुल होती है, लेकिन बाद में क्या बन जाती है, वेस्ट। देखिए, फूड वेस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा ग्लोबली, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, खाना बनाने में पानी, एनर्जी और रिसोर्सेज लगती हैं। इसलिए स्मार्ट लंच चॉइसेस एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती हैं। तो भाई सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन ऑफिस लंच को इको फ्रेंडली बनाने के लिए मैं आपको कुछ अच्छे से आइडियाज दे देती हूँ। पहली चीज तो ये कि रीयूजेबल लंच बॉक्सेस यूज करें ना। प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉक्सेस की जगह आप रीयूजेबल लंच कंटेनर्स यूज कर सकते हैं। वो जो आते हैं ना, ड्यूरेबल से स्टील के होते हैं, या कुछ बॉक्सेस ऐसे होते हैं जो ज्यादा अरसे तक चल सकते हैं और वेस्ट कम प्रोड्यूस होता है कि नहीं? अच्छा, अपनी वाटर बॉटल और मग अपने साथ रखें। देखिए, ऑफिस में अपनी रीयूजेबल बॉटल और कॉफी मग रखने की आदत डालें, ये एक अच्छी हाइजीन भी है और इससे रोजाना डिस्पोजेबल कप और बॉटल्स का इस्तेमाल भी कम हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि मील प्लानिंग करें। अगर आप घर से लंच लेकर आते हैं तो पहले से ही प्लानिंग करने की कोशिश करें। देखिए, इससे फूड वेस्ट कम होता है और आप अपनी पसंद का हेल्दी खाना भी एंजॉय कर सकते हैं। चौथी चीज ये कि लेफ्ट ओवर फूड को स्मार्टली यूज करें ना। देखिए, घर का बचा हुआ खाना अगर प्रॉपरली स्टोर किया गया हो ना, तो वो अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से उसे वापस से रीयूज किया जा सकता है। इससे खाना भी कम वेस्ट होता है और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है, क्योंकि आप घर का खाना खा रहे होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक अवे में स्मार्ट चॉइसेस करें। देखें,

0: अगर कभी कभार लंच ऑर्डर करें आप, तो जितनी जरूरत हो ना उतना ही ऑर्डर करें. ये नहीं कि जब आपकी भूख डबल ट्रिपल ट्रिपल हो जाए तब जाके आप ऑर्डर करें डबल ट्रिपल ट्रिपल खाना. और जहां मुमकिन हो अननेसेसरी पैकेजिंग को अवॉइड करने की कोशिश करें. इसकी एक अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, तो बहुत से ऑफिसेज में एम्प्लॉयज ने सिंपल इको फ्रेंडली लंच हैबिट्स अडॉप्ट की हुई है. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कुछ लोग हर रोज अपना लंच रीयूजेबल बॉक्स में लेकर आते हैं, कुछ कोलीग्स मिलकर लंच शेयर करते हैं ताकि फूड का वेस्ट, खाने का वेस्ट कम हो. कुछ ऑफिसेज में अपने जो है ना, मेरे अपने ऑफिस में लोगों के पास अपने मग्स हैं, अपनी बॉटल्स हैं, वो रखते हैं और उन्होंने कल्चर बनाया हुआ उसका, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल कम होता है. सोचिए अगर एक ऑफिस में सिर्फ 50 लोग भी रोजाना एक डिस्पोजेबल आइटम कम करें, उसका यूज कम कर दें, तो साल भर में कितना वेस्ट कम हो सकता है. छोटी सी ऑफिस हैबिट एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है भाई. तो भाई साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज ये है आपके लिए कि अगली बार ऑफिस लंच के वक्त एक इको चॉइस जरूर अपनाएं, चाहे वो रीयूजेबल लंच बॉक्स हो, अपनी वाटर बॉटल लाना हो या खाने का वेस्ट कम करना हो. हमें जरूर बताएं कि आप ऑफिस में लंच ज्यादातर घर से लेकर आते हैं या बाहर से ऑर्डर करते हैं. मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107. याद रखिए, एक बेहतर लंच सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है. छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें, और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107. दिल से देश.
1: Qatar's most heard radio station FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे आखिरत की तैयारी के बारे में। जिंदगी का असल मकसद सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है। हर दिन जो हम गुजारते हैं वो हमें अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा होता है। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया को छोड़ दें बल्कि ये है कि हम हर अमल को अल्लाह की रजा के लिए करें। छोटी छोटी नेकियां, सच्चाई, इबादत और अच्छा रवैया, ये सब आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट है। अक्सर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं लेकिन असल प्लानिंग आखिरत की होनी चाहिए जो हमेशा के लिए है। आज का अमल ये है कि अपने किसी एक अमल को अल्लाह की रजा के लिए इम्प्रूव करें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi. One step to 2030.
1: Welcome to our segment called One Step to 2030. Main hoon aapki host Nazia.
0: One Step to 2030.
1: आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ विमेन इन स्टेम शेपिंग द फ्यूचर। आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की वजह से तेजी से तब्दील हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बायोटेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी फील्ड्स मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं। और इन तमाम फील्ड्स का ताल्लुक स्टेम से है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। Women in STEM, इससे मुराद उन फीमेल से है जो इन फील्ड्स में तालीम हासिल कर रही हैं और अपने आइडियाज, रिसर्च और इन्वेंशंस के जरिए दुनिया को बेहतर बना रही हैं। माजी में STEM फील्ड्स को ज्यादा मर्दों की फील्ड समझी जाता था, लेकिन आज फीमेल साइंस और टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स के तौर पे काम कर रही हैं। उनकी मेहनत ने साबित कर दिया है कि टैलेंट और कैपेबिलिटी का जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया को ज़्यादा इनोवेशन और नए आइडियाज की ज़रूरत है। जब सिर्फ सोसाइटी का एक हिस्सा सॉल्यूशंस डेवलप करता है तो बहुत से पर्सपेक्टिव मिस हो जाते हैं, लेकिन जब विमेन भी स्टेम फील्ड्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं तो नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस और ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और मजीद स्ट्रॉन्ग वे में सामने आते हैं। आज दुनिया के सामने कई बड़े चैलेंजेस हैं जिनका हमें और आपको सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ क्राइसिस है, फूड सिक्योरिटी है, टेक्नोलॉजी के भी नए चैलेंजेस हैं। इन मसाइल को सॉल्व करने के लिए डाइवर्स माइंड्स की जरूरत है। जी हाँ, डाइवर्स माइंड की सख्त जरूरत है। वेमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इन प्रॉब्लम्स की यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। इसीलिए स्टेम में फीमेल्स की पार्टिसिपेशन को फ्यूचर की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है। वेमेन इन स्टेम हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी गहरा असर डालती हैं। जो मोबाइल एप्स हम यूज करते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम हासिल करते हैं और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, उन्हें कई फीमेल्स ने डिजाइन किया है। ये यूं कहें, उनमें कई फीमेल्स का भी अहम किरदार है। जब ज्यादा वुमेन टेक्नोलॉजी और साइंस में काम करेंगी तो प्रोडक्ट और सर्विसेज सोसाइटी की तमाम जरूरियात को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी। इस टॉपिक का एक और अहम पहलू इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। रिसर्च ये बताती है कि जब वर्कफोर्स में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा सक्सेसफुल और इनोवेटिव होती हैं। वुमेन का स्टेम सेक्टर में आना नए जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमीज को मजबूत बनाता है और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आज कई मुल्क और ऑर्गेनाइजेशंस गर्ल्स को स्टेम एजुकेशन की तरफ इनक्रेज कर रही हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटीज स्पेशल प्रोग्राम्स चला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में करियर बनाएं। ये सिर्फ इक्वालिटी का मसला नहीं है दोस्तों, ये प्रोग्रेस और इनोवेशन का भी मसला है। फ्यूचर में एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी जैसी इंडस्ट्रीज और तेजी से आगे बढ़ेंगी। अगर वुमेन इन फील्ड्स में ज्यादा नुमाया किरदार अदा करती हैं तो दुनिया को बेहतर सॉल्यूशन और ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हासिल होगा। इस तरह वो सिर्फ अपना करियर ही नहीं बनाएंगी बल्कि पूरी सोसाइटी की तरक्की में एक अहम हिस्सा डालेंगी। वुमेन इन स्टेम सिर्फ करियर्स का टॉपिक नहीं है, ये फ्यूचर की लीडरशिप, इनोवेशन और तरक्की का भी टॉपिक है। जब लेडीज साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी सलाहियतों का इजहार करी है तो नए इन्वेंशंस, नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। मुस्तकबिल उन माशरों का होगा या उन लोगों का होगा जो टैलेंट को जेंडर की नज़र से नहीं बल्कि एबिलिटी, कैपेबिलिटी और इनोवेशन की नज़र से देखेंगे। अगर आज हम ज्यादा गर्ल्स को स्टेम फील्ड में सपोर्ट करेंगे तो कल हम एक ज्यादा एडवांस, क्रिएटिव और प्रॉस्पेरस दुनिया देख सकेंगे। वुमेन इन स्टेम वाकई मुस्तकबिल को शेप कर रही हैं और उनका किरदार आने वाले दौर में और भी ज्यादा अहम होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, विमेन को स्टेम में जाना चाहिए तो अपनी बच्चियों को लड़कियों को लड़कों को भी लेकिन लड़कियों को भी ज़रूर इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए इनक्रेज करें मोटिवेट करें. चलिए मैं तो आपसे अब यहाँ पर इजाज़त दूंगी इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह कल एक और नए टॉपिक पे आपकी हमारी मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
3: फ्रॉड अवेयरनेस।
4: ऑफिस में बैठे हुए थोड़ा सा कॉफी ब्रेक लिया, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच ही रहे हैं, तभी आपको एक कॉल आती है।
5: सर गारंटीड रिटर्न्स, 30 दिन में पैसा डबल, जीरो रिस्क।
4: और आप पूरी स्कीम समझ के इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, पहले थोड़ा प्रॉफिट, फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट और

0: फिर एक लंबा साइलेंस। अस्सलाम वालेकुम, यह है फ्रॉड अवेयरनेस और मेरा नाम है वेद। इस किस्म के फ्रॉड को कहते हैं फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम। शुरू में छोटा प्रॉफिट ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, बाद में बड़ा पैसा और एग्जिट। क्रिप्टो स्टॉक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप्स, सबका मिसयूज। तो थोड़े ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद जैसे ही आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही ये कंपनियां, ऐसे लोग गायब हो जाते हैं। तो अपने आप को ऐसे फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम से बचाएं। तो कैसे पहचानेंगे ऐसे स्कैम्स को? जब बहुत ही ज्यादा गारंटीड रिटर्न की बात हो, कोई अगर सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आपको देता है उससे दूर रहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को ही ट्रस्ट कीजिए। तो अगर कोई बोलता है जल्दी इन्वेस्ट करो और मौका जीतो, ये कार जीतने का मौका जीतो और पैसे डबल करने का, तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है। कहते हैं ना, मार्केट में रिस्क होता है लेकिन गारंटीड रिस्क सिर्फ स्कैम में होता है।
1: सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: कंसिस्टेंसी इज द की. ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. सो सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ. छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए. सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महविश खान. ये है वो शो जो बात करता है हमारे प्लैनेट अर्थ के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की. आज का टॉपिक है ग्रीन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग फॉर टुमारो.
2: टॉपिक ऑफ द डे.
1: आज हम बात करेंगे इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और अर्बन प्लानिंग के बारे में, जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करते हैं. To make this planet a better place, we need to think smart about how we build our homes, offices and cities. आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बिल्डिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं जो एनर्जी सेव करें, और कैसे कतर के प्रोजेक्ट्स जैसे लुसेल सिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मिसाल बन रहे हैं. प्लस हम शेयर करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं. और हाँ, हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ऑन सोशल मीडिया @FM107 कतर और व्हाट्सएप नंबर 6622107 पर अपनी थॉट्स और क्वेश्चन शेयर करने के लिए. रेडी है? चलें तो शुरू करते हैं आज का शो
2: सस्टेन द फ्यूचर.
1: डियर लिसनर्स, जब हम सोचते हैं कि हमारे घर, ऑफिसेस या शहर कैसे होने चाहिए, तो अक्सर हम स्टाइल और कंफर्ट के बारे में सोचते हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये बिल्डिंग्स हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर डाल रही हैं? ग्रीन आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग बिल्डिंग्स दैट वर्क विद नेचर, नॉट अगेंस्ट इट. ये वो तरीका है जिसमें हम अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़े और नेचुरल रिसोर्सेस का सस्टेनेबल यूज करें. आप सोच होंगे कि ये ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? ये कोई सिर्फ पेंट का कलर नहीं, बल्कि एक नई सोच का तरीका है जहां घर और ऑफिसेस एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनी में डिजाइन किए जाते हैं. तो चाय का कप ले आइए और हम आज डिटेल में समझते हैं कि ये बिल्डिंग फॉर टुमारो कैसे हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए एक नई उम्मीद है. ग्रीन आर्किटेक्चर का मतलब है ऐसे घर, ऑफिसेस और सिटीज डिजाइन करना जो एनर्जी सेव करें, पोल्यूशन कम करें और नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करें. यानी ये बिल्डिंग सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक सिस्टम होती है जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने के बजाय प्रोटेक्ट करती है. सोचिए एक घर जिसमें बिजली अपने सोलर पैनल से जनरेट होती हो, रेन वाटर कलेक्ट होकर गार्डन और बाथरूम्स में रीयूज होता हो, और रूम्स में हमेशा नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर हो. ये है असल ग्रीन आर्किटेक्चर. अब थोड़ा सा जायजा लेते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस ग्रीन बिल्डिंग्स का. ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में ज्यादा सीमेंट, स्टील, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का यूज होता है. हर वक्त एसीज और हीटर्स चलते हैं और पानी और बिजली का ज्यादा वेस्टेज होता है. जबकि ग्रीन बिल्डिंग्स स्मार्ट इंसुलेशन और डिजाइन की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइट का फायदा उठाती हैं, और ऐसे मटेरियल से बनती हैं जो रिसाइकल्ड, इको फ्रेंडली होते हैं. रिजल्ट ये होता है कि ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा ड्यूरेबल, कॉस्ट इफिशियंट और कंफर्टेबल होती हैं. ये क्यों जरूरी है? लिसनर्स, आज के वक्त में ग्रीन आर्किटेक्चर लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है. कुछ फैक्ट देखते हैं. जैसे दुनिया की टोटल एनर्जी यूज का 40% सिर्फ बिल्डिंग्स कंज्यूम करती हैं. कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में 1/3 है, और अगले 25 इयर्स पे 70% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी. सोचिए

अगर हमने अपने घर और ऑफिसेस सस्टेनेबल नहीं बनाए तो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज डबल स्पीड से बढ़ेगा। अब बात करते हैं ग्रीन डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि ये एनर्जी एफिशिएंसी रखता हो। ग्रीन बिल्डिंग्स एनर्जी को वेस्ट नहीं करते। सोलर पैनल और स्मार्ट विंडोज के थ्रू नेचुरल हीटिंग और कूलिंग होती है, यानी कम बिल्स, कम डिपेंडेंसी और क्लीन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल। सेकेंड प्रिंसिपल है वाटर कंजर्वेशन। हर क्रॉप की वैल्यू समझी जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, एफिशिएंट टैप्स और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग से हर बिल्डिंग अपने पानी की डिमांड खुद मैनेज करती है। थर्ड प्रिंसिपल इज सस्टेनेबल मटेरियल्स। रिसाइकल्ड स्टील, बैम्बो और कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स, ये सब मटेरियल्स इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल होते हैं, प्लस इनका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। फोर्थ प्रिंसिपल इज इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी। नॉन टॉक्सिक पेंट्स और वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से घर के अंदर एयर फ्रेश और सेफ होती है। इसका मतलब है रेजिडेंट्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और एलर्जीज कम। फिफ्थ प्रिंसिपल इज वेस्ट रिडक्शन। कंस्ट्रक्शन वेस्ट को लैंडफिल भेजने के बजाय रिसाइकल किया जाता है। ओल्ड ब्रिक्स और वुड को दोबारा यूज किया जाता है, जो रिसोर्सेज सेव करता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है स्मार्ट लैंडस्केपिंग। ग्रीन रूफ्स और वर्टिकल गार्डन से बिल्डिंग ठंडी रहती है और हवा में ऑक्सीजन पड़ता है। ऐसे स्पेसेस सिटी पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स लें तो बॉस्को वर्टिकल यानी मिलान में एक वर्टिकल फॉरेस्ट है जहां हर बालकनी पर ट्रीज लगे हैं और आपने शायद ये पिक्चर देखी भी होगी। इसके साथ दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो द एज जो कि एम्स्टर्डम में है, स्मार्टेस्ट और ग्रीनेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है जहां हर चीज एनर्जी एफिशिएंट है। इसके साथ ही यूके में वन एंगल स्क्वायर अपनी कैटेगरी का सबसे ज्यादा सस्टेनेबल ऑफिस सिर्फ 20% ट्रेडिशनल बिल्डिंग की एनर्जी यूज करता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाती है कि फ्यूचर का डिजाइन तो ग्रीन ही ग्रीन होगा। साउथ एशिया का सीन चेक करें तो हमारे रीजन में अभी शुरुआत हुई है। इंडिया में IGBC ग्रीन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रैपिडली बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सोलर और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। नेपाल और बांग्लादेश बैम्बो और बर्ड ब्लॉक्स यूज करके लो कॉस्ट सस्टेनेबल घर बना रहे हैं। अभी लॉन्ग वे टू गो है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है। बेनिफिट्स अगर हम चेक करें ग्रीन आर्किटेक्चर के, तो सबसे पहला तो एनवायरमेंटल बेनिफिट है। पोल्यूशन और इमिशंस कम होते हैं। ग्रीन रूफ्स और ट्रीज कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। दूसरा फायदा है इकोनॉमिक बेनिफिट। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। प्रॉपर्टी वैल्यू भी हाई होती है। सोशल और हेल्थ बेनिफिट चेक करें तो नेचुरल लाइट और क्लीन एयर की वजह से लोग मेंटली फ्रेश और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। रिसर्च कहती है कि ग्रीन ऑफिसेस में प्रोडक्टिविटी 15-20% ज्यादा होती है। इसके साथ ही ये एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। इंसुलेशन और स्मार्ट डिजाइन की वजह से हर मौसम में घर कंफर्टेबल होता है, न गर्मी का एक्स्ट्रा बोझ, न सर्दी की एक्सट्रीम। ये एक बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल देता है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज है हाई इनिशियल कॉस्ट। सोलर और ग्रीन मटेरियल्स स्टार्ट में महंगे लगते हैं। सेकेंड इज अवेयरनेस की कमी। लोग अभी तक इसे सिर्फ एक लग्जरी समझते हैं। स्किल प्रोफेशनल्स की भी कमी है। आर्किटेक्चर और कॉन्ट्रैक्टर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर पॉलिसी गैप्स यानी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज और रूल्स बहुत कम है। फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो नेट जीरो होम्स जो इतनी एनर्जी खर्च करें उतनी खुद जनरेट भी करें। स्मार्ट होम्स जिसमें सेंसर्स और AI से वेस्ट कम और एनर्जी ज्यादा एफिशिएंट हो। 3D प्रिंटेड ग्रीन होम्स, चीप और फास्ट कंस्ट्रक्शन रिसाइकल्ड मटेरियल से। फ्लोटिंग सिटीज यानी के राइजिंग सी लेवल्स का सोल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं? अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है
कि हम क्या कर सकते हैं। घर बनाते वक्त सोलर पैनल्स कंसिडर करें, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स और अप्लायंसेस यूज करें, वाटर लीक्स फिक्स करें और रेन वाटर कलेक्ट करें, बालकनी या रूफ पर प्लांट्स उगाएं। रेनोवेशन के वक्त नॉन टॉक्सिक प्लांट्स और इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। अगर हम रोड मैप देखें फॉर साउथ एशिया, तो सबसे पहले तो बिल्डिंग कोड्स में ग्रीन स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होने चाहिए, सोलर और विंड एनर्जी पर सब्सिडीज मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ज्यादा बढ़ने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च की जाए। तो लिसनर्स, अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रीन आर्किटेक्चर में फोकस होता है रिन्यूएबल मटेरियल्स, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स और डिजाइंस जो नेचुरल लाइट और एयर का मैक्सिमम यूज करें। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं कतर पर। यहाँ की एक शानदार एग्जांपल है लुसेल सिटी। ये कतर का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट है जो सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लुसेल सिटी में बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया है ताकि वो कम एनर्जी यूज करें, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स भी हैं जो पानी के वेस्टेज को कम करते हैं। इसके अलावा यहाँ की अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क्स और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जोन्स को प्रायोरिटी दी जाती है। दिस मीन्स पीपल कैन वॉक और साइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। लुसेल सिटी एक मिसाल है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल विजडम को मिलाकर हम सस्टेनेबल शहर बना सकते हैं। लेकिन लिसनर्स, ये सिर्फ बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं है, हर छोटा घर भी ग्रीन हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब हम अपने घर बनाते हैं या रेनोवेट करते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि कैसे हम इंसुलेशन को बेहतर कर सकते हैं ताकि गर्मी या सर्दी के लिए कम एनर्जी यूज हो, या फिर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जैसे एलईडी लाइट्स या स्मार्ट थर्मोस्टेट्स का यूज कर सकते हैं। दीज स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। अब जरा सोचिए, जब हम अपने घर में अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करते हैं जैसे पुराने बल्ब्स जो ज्यादा बिजली खाते हैं या विंडोज जो गर्मी को अंदर आने देती हैं, ये सब एनवायरनमेंट पर बोझ डालता है। कतर जैसे मुल्क में जहाँ गर्मी ज्यादा है, एयर कंडीशनिंग का यूज कॉमन है, लेकिन अगर हम अपने घर की वॉल्स या विंडोज को थोड़ा सा इंसुलेट कर दें, तो एसी का लोड कम हो सकता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा। ग्रीन आर्किटेक्चर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि माइंडसेट के बारे में भी है। ये सोच है कि हम अपने प्लैनेट के साथ हार्मनी में कैसे रह सकते हैं। कतर में जहां सस्टेनेबिलिटी एक नेशनल प्रायोरिटी है, हम देख रहे हैं कि कैसे न्यू प्रोजेक्ट्स ट्रेडिशनल कतरी आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे विंड टावर्स जो नेचुरल एयर सर्कुलेशन के लिए यूज होता है। दिस ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू इज व्हाट मेक्स ग्रीन आर्किटेक्चर सो एक्साइटिंग। तो लिस्टनर्स, ग्रीन आर्किटेक्चर का मकसद है कि हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो ना सिर्फ हमारे लिए कंफर्टेबल हो, बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी सेफ हो। लेट्स मेक आवर होम्स एंड सिटीज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। तो लिस्टनर्स, हमने देखा अब तक ग्रीन आर्किटेक्चर बिल्डिंग फॉर टुमारो, कि कैसे बिल्डिंग्स पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का मेजर कॉज है और कैसे ग्रीन आर्किटेक्चर इस मसले का सलूशन बन सकता है। फ्यूचर की बिल्डिंग्स सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगी, बल्कि एक लिविंग सिस्टम होंगी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, पानी सेव करेंगी और हेल्थ इंप्रूव करेंगी। अगला सवाल ये है, आप अपने घर को कितना ग्रीन बनाने के लिए तैयार हैं? और क्या तैयार हैं इस वक्त एक ब्रेक लेने के लिए? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महविश खान। और अब वक्त हुआ है हमारे ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का।
0: ग्रीन फ्लैश,
1: दिस इज आवर ग्रीन फ्लैश सेगमेंट। सबसे पहली खबर है सिंगापुर के स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के बारे में। सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पूरा शहर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। यहां बिल्डिंग्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो एनर्जी यूसेज को मॉनिटर करते हैं और स्मार्ट ग्रिड्स इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना हो। इसके अलावा यहाँ रूफ टॉप गार्डन्स और वर्टिकल फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। डेनमार्क में एक नया ट्रेंड है जीरो वेस्ट कंस्ट्रक्शन का। वहाँ आर्किटेक्ट्स ऐसे मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जो रिसाइक्लेबल होते हैं और बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें डिसमेंटल करके दोबारा यूज किया जा सके। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन वेस्ट। फिर हम बात करते हैं मजदार सिटी जो कि यूएई में है। यूएई का मजदार सिटी एक और मिसाल है जहां पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। यहां सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन से बिजली बनाई जाती है और बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया है ताकि वो नेचुरल कूलिंग सिस्टम्स यूज करें। ये शहर दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम सस्टेनेबल अर्बन लिविंग अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेगमेंट ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट पे।
0: ग्रीन इनोवेशन।

0: में प्रीमेड पार्ट्स में बनाया जाता है और फिर उन्हें साइट पर असेंबल किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन टाइम और वेस्ट दोनों कम होते हैं। एक कंपनी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी ही करके एक स्कूल बिल्डिंग सिर्फ 3 महीनों में बना दिया, जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन से 50% कार्बन इमिशंस प्रोड्यूस करता है। Isn't that incredible? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का आइडिया है कि हम फास्ट, इफिशिएंट और इको फ्रेंडली तरीके से बिल्डिंग्स बना सकें। और अब वक्त हुआ है इको लिविंग टिप्स का। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपने रोजाना की जिंदगी में यूज कर सकते हैं ताकि आपके घर भी ग्रीन हो जाएं।
1: इको लिविंग टिप्स।
0: सबसे पहले याद रखिए, इंसुलेशन इज की। अपने घर की वॉल्स या विंडोज को इंसुलेट करें। ये गर्मी या सर्दी दोनों को कंट्रोल करते हैं, जिससे एसी या हीटर का यूज कम होता है। दूसरी टिप है स्विच टू एलईडी लाइट्स। पुराने बल्ब्स को एलईडी लाइट से रिप्लेस करें। ये 80% तक एनर्जी सेव करते हैं और ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस। जब भी आप न्यू अप्लायंसेस खरीदें, एनर्जी स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स चुनें। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में पैसा और एनवायरनमेंट दोनों बचाती है। एड प्लांट्स टू योर होम। इंडोर प्लांट्स ना सिर्फ एयर क्वालिटी बेहतर बनाते हैं बल्कि आपके घर को नेचुरल कूलिंग भी देते हैं। ट्राई दीज टिप्स एंड सी द डिफरेंस। अब वक्त हुआ है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का। अब सुनते हैं एक इंस्पायरिंग वॉइस जो हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में मोटिवेट करेगी। ये है एक ऑडियो क्लिप फ्रॉम अ रीनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट जो कतर में इको फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग पे काम कर रहे हैं।
2: Qatar Green Building Council, it's one of the community development centers to establish more green buildings in Qatar. In 2014 and 2015, there were lots of green buildings established already in Qatar. However, we found a gap of people's understanding of how to live and work and deal with green buildings. And that's where we started raising awareness on we as people, how we can change in our day-to-day life to become more sustainable. We have our big national campaign, Qatar Sustainability Week, which started back in 2016. Over the past few years, we have around 150,000 people taking part in Sustainability Week. Government organizations, we have commercial companies, schools, hotels, community groups, and individuals taking part in the week. They can go on the Sustainability Week website. They can check all of the different events and activities that are taking place, and they can go and attend. One more way to take part in Sustainability Week is to register a pledge. And this is something that we introduced in 2020. And when people have a list of pledges they can make, it can give them ideas of the things that they can change in offices from the corporate side or in their day-to-day lifestyle on the individual side. To get more information about Qatar Sustainability Week, you can go to www.qatarsustainabilityweek.com. So far, we've got around more than 100 events that are already registered, and we are hoping more will be coming in the next 3 weeks. And we urge you to register your own. Join our national campaign to be part of the change movement for Qatar and for a greener Qatar. Sustainable living, better tomorrow. I love Qatar.
0: जी लिसनर्स, अभी आपने सुनी हमारी आज की वॉइस और ये आवाज हमें याद दिलाती है कि हम सब ने कैसे अपने हिस्से का काम करना है। Let's be part of this change. अब हम चलते हैं आज के टेक अवे चैलेंज की तरफ।
1: Weekly challenge.
0: लिस्टनर्स, हर हफ्ते हम आपको एक सस्टेनेबिलिटी चैलेंज देते हैं और आज का चैलेंज है स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग। इस हफ्ते अपने घर के कम 2 बल्ब्स को एलईडी लाइट से रिप्लेस करें। ये छोटा सा स्टेप आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्लैनेट दोनों के लिए अच्छा है। अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। Read out to us on FM 107 Qatar or WhatsApp at 666-22-107. Shukriya listeners, ke aapne aaj ka show Sustain the Future suna. Umeed hai ke aapko green architecture ke baare

0: में कुछ नया सीखने को मिला और आप इंस्पायर्ड हैं अपने घर और शहर को सस्टेनेबल बनाने के लिए। अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक पर, द रोल ऑफ यूथ इन सस्टेनेबिलिटी। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स और यूथ एनवायरमेंटल चेंज के लिए लीड कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्रीन और अपने थॉट्स शेयर करें एट FM 107 कतर या व्हाट्सएप पे 666-22107। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज और टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Absolute cinema.
3: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, मैं हूँ ना.

0: भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
1: मेहतराज है अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत ना सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइंस का पेमेंट कर सकते हैं ना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं अपने फाइंस चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के लिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
2: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी एक एहसास उनकी जबानी हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी दोहा डायरीज जहां हर कहानी बनेगी यादगार
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

चल बात करें सिर्फ तू और मैं, सवाल सारे जो गलत फहमी में बदल गए वो दूर करें। मोहल्ल में भी शोर है, हो हाय ये कैसा दौर है, सच बताऊं

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se desi. Dil se desi.
5: FM 107 se ab pesh khidmat hai Tilawat-e Kalam-e-Pak. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔

रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह मुसख़र कर रखा है कि हर एक एक वक्ते मुकर्रर तक चले जा रहा है। जान रखो, वो जबरदस्त है और दरगुजर करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए मवेशियों में से 8 नरोमादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओं के पेटों में 3-3 तारीक पर्दों के अंदर तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। यही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर फिराए जा रहे हो।